من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक दफा की बात है कि एक छोटे से गांव की एक पुरानी और प्यारी सी खानदानी हवेली में एक घड़ी लटकी हुई थी जो हर वक्त टिक टॉक की आवाज करती रहती थी। वो घड़ी बहुत पुरानी थी लेकिन हर वक्त अपना काम करती रहती थी। हर एक घंटा गुजरने के बाद अपनी घंटी की आवाज सुनाती थी। हर वक्त अपनी उस आवाज से सबको याद दिलाती रहती थी कि वक्त बहुत कीमती चीज होता है। लेकिन उसके घर वाले जो हर दिन अपने काम में मसरूफ रहते थे कभी उस घड़ी को ध्यान से सुनते ही नहीं थे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और घड़ी अपना काम करती रही, यानी उसकी टिक टॉक जारी रही। हर घंटा गुजरने पर उस घड़ी से घंटी की आवाज आना शुरू हो जाती थी लेकिन घर वाले उसे नजरअंदाज कर दिया करते थे और अपने कामों में उलझे रहते थे। उनको ये पता ही नहीं था कि वक्त का एक एक लम्हा किस तरह उनकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। एक दिन घर के सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। बैठे बैठे उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारी जिंदगी कितनी मसरूफ हो गई है ना, हम वक्त का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। उस घर के बड़े भाई अली ने ये बात कही, हम अपना वक्त बेकार गुजार रहे हैं, हमें अपनी आदतों में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। अली की ये बात सुनकर उनकी अम्मा ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा अली,

अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी में काफी अच्छी तब्दीलियां ला सकते हैं और हमें ये तब्दीली छोटी-छोटी बातों से शुरू करनी होगी। उन्होंने फैसला किया कि अब से अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजारना शुरू करेंगे। उन सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लाने का सोचा जो उनकी जिंदगी में सुधार लाए। वो सब अपनी आदतें बेहतर करना चाहते थे ताकि उनकी जिंदगी में ज्यादा खुशी और कम स्ट्रेस हो। पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो था सुबह जल्दी उठना। सबने मिलकर डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी उठकर अपने दिन का आगाज किया करेंगे। उनकी अम्मी ने कहा, अगर हम सुबह जल्दी उठकर अपना काम जल्दी शुरू करेंगे तो हमारा दिन पूरी तरह से बेहतरीन गुजर सकता है। दूसरा कदम था अपने कामों को टाइम पर मुकम्मल करना। उनके बाबा ने कहा, हम हमेशा अपने काम देर से करते हैं। अगर हम अपने कामों को वक्त पर पूरा करेंगे तो हम खुद को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। और साथियों, तीसरा कदम था शाम को वक्त पर सोना ताकि अगला दिन अच्छे तरीके से गुजार सकें। एक दफा अम्मी ने फिर बोला, अगर हम शाम को देर तक जागते रहेंगे तो सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपनी नींद को भी एक रूटीन में ढालना चाहिए। ये छोटे छोटे बदलाव उन्होंने अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर दिए। हर दिन घड़ी की टिक टॉक के साथ उन्होंने जिंदगी में भी नए बदलाव लाना शुरू कर दिए। अब वो सब अपने कामों में बहुत ज्यादा फोकस हो गए थे और उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। घड़ी अपनी टिक टॉक करती रहती थी, लेकिन अब हर टिक टॉक का एक मकसद था। जब भी घड़ी की आवाज सुनाई देती, घर में मौजूद हर एक शख्स को ये याद आ जाता था कि वक्त का हर एक लम्हा कितना कीमती है। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि वक्त का सही इस्तेमाल करके ही वो अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। पहले जैसे सब अपने कामों को देर तक खींचा करते थे, अब वो वक्त पर काम खत्म करते थे। अली ने अपनी स्टडी रूटीन को भी बहुत बेहतर बना लिया था और वो सुबह के वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया करता था। उसने अपनी दोस्ती और हॉबीज के लिए भी वक्त निकाल लिया था और वो हर काम वक्त के मुताबिक करने लगा था। उनकी अम्मी अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी बेहतरी ले आई थी। पहले वो हमेशा घर कामों में मसरूफ रहती थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी जिंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना शुरू कर लिया था। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना शुरू कर दिया, रिलैक्स होने के लिए वक्त निकालना शुरू कर लिया और अपनी हॉबीज को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर लिया था। बाबा ने भी अपने काम की रूटीन को सही टाइम पर मैनेज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने ऑफिस का काम वक्त पर खत्म करना शुरू कर दिया था और घर के काम में भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया था। इससे उनको अपनी जिंदगी में सुकून मिल रहा था। अली की छोटी बहन सारा ने भी अपनी स्कूल की रूटीन बेहतर बना ली थी। वो अपने होमवर्क को वक्त पे खत्म कर लिया करती थी और फिर फ्री टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी। उसने ये सीख लिया था कि जब हम अपने काम को टाइम पर खत्म करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में और ज्यादा खुशी और सुकून मिलता है। और फिर एक दिन जब सब लोग अपनी रूटीन्स के मुताबिक काम कर रहे थे, घर में एक अजीब सी बात हुई। घर के सब लोग घड़ी की आवाज सुनकर खुश हो गए। वो सब ये बात समझ गए थे कि वो वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो गई है। हर एक टिक टॉक उनके लिए एक नई सुबह थी जो उनको जिंदगी में बेहतरी का मौका दे रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त की कदर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दफा जब वक्त गुजर जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता। हर लम्हे की कदर करें और हमें चाहिए कि हम अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करें। जिन्होंने वक्त की कदर की उन्हें जिंदगी में हमेशा सक्सेस और खुशी हासिल हुई है। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बाजार की। वैसे तो अगर इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन किया जाए तो कहलाएगा भालू का बाजार। लेकिन अगर इसे इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करूं तो इसे कहते हैं बियर मार्केट। बियर, नॉट डियर, ठीक है? तो चलिए, बियर मार्केट है क्या, इस बारे में भी बात करते हैं। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया में बियर मार्केट एक अहम कॉन्सेप्ट है जो खासकर स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जब किसी भी मार्केट को बियर मार्केट कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ की प्राइसेस में कमी आई है और इन्वेस्टर्स का मूड पेसिमिस्टिक होता है। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में बियर मार्केट है क्या। देखो, बियर मार्केट का मतलब है कि किसी फाइनेंशियल मार्केट, खासकर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस लगातार गिर रही हों। जी हाँ, इसे तब बियर मार्केट कहा जाता है जब किसी भी मार्केट में प्राइसेस 20% या उससे ज्यादा गिर जाती है और ये ट्रेंड कुछ वक्त तक चलता है। इस दौरान इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने की तरफ झुकते हैं, जो और भी प्राइसेस को गिरा देता है। वेल, बियर मार्केट का असल नाम बियर से ही आया है। बियर जानवर, भालू, जो कि एक जानवर है और इसकी एक बड़ी खासियत है। इसकी खासियत ये है कि ये अपने शिकार को नीचे की तरफ धकेलता है। इसी तरह से बियर मार्केट में भी प्राइसेस नीचे की तरफ चली जाती हैं। लिहाजा इस मार्केट को इस जानवर की इस खुसूसियत के साथ जोड़कर इसका नाम बियर मार्केट रखा गया। वेल, बियर मार्केट की अहमियत जो है वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये उन्हें मार्केट के हालात और उनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को समझाने में मददगार साबित होता है। वैसे इसकी और भी चीजों में, और भी कॉन्टेक्स्ट में अहमियत है। जैसे सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को समझना। बियर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग साइन होता है। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें सोच समझकर डिसीजंस लेना चाहिए। वहीं दूसरी इम्पोर्टेंट बात है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जी हाँ, बियर मार्केट अक्सर इकोनॉमिक टर्न डाउन या रिसेशन का पहला निशान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो इससे इस बात का इजहार होता है कि इकोनॉमी भी मुश्किल में आ रही है। जी, इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजीज भी मैटर करती हैं। जी हाँ, बियर मार्केट में इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को दोबारा सोचना पड़ता है। वो शॉर्ट सेलिंग या डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ झुकते हैं जो बियर मार्केट के दौरान ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए एक छोटी सी मिसाल देकर मैं आपको समझाती हूँ। मान लो 2007-2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो, इस दौरान बेसिकली ग्लोबल स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी। जी हाँ, यूएस स्टॉक मार्केट जैसे कि S&P 500 ने 2007 से 2009 तक 57% तक की कमी देखी। इस वक्त इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था और लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो बेचना शुरू कर दिए थे। इस बियर मार्केट के दौरान बहुत से लोगों ने अपने रिटायरमेंट सेविंग्स को गवाया और बिजनेसेस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त के हालात ने ये साबित किया कि बियर मार्केट सिर्फ स्टॉक प्राइसेस का नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर भी असर डालता है। जी हाँ, बियर मार्केट का अगर इसको और समझें तो हम कई बार इसे मार्केट एनालिसिस के साथ भी कनेक्ट करके देखते हैं। एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट बियर मार्केट को मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक हेल्थ को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें ये जानने में मदद करता है कि मार्केट किस तरफ बेसिकली जा रहा है। वहीं पर बेयर मार्केट के चलते इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस भी सामने आते हैं। इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर वो समझते हैं कि मार्केट में और गिरावट आएगी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का फैसला कर लेते हैं। वहीं हेजिंग स्ट्रेटजीज, जी हाँ, बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स हेजिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑप्शन या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि वो अपने लॉसेस को कम कर सके। तो ऑल टुगेदर बेयर मार्केट बुल मार्केट का जस्ट उलट है। जी हाँ, बेयर मार्केट का उल्टा बुल मार्केट है, जहां पर प्राइसेस लगातार बढ़ रही होती हैं, इन्वेस्टर्स का मूड ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो वो कहलाता है बुल मार्केट। जी हाँ, बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हैं, जबकि बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स का मूड पेसिमिस्टिक होता है। यहाँ पर प्राइसेस लगातार जो है वो गिर रही होती हैं। ये कंडीशन बेयर मार्केट में तब होती है जब बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स को मार्केट के हालात समझने में मदद करते हैं। वेल, जाते जाते बस यही कह सकती हूँ कि बेयर मार्केट एक अहम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल मार्केट्स की हालत को समझाने में मददगार होता है। ये इन्वेस्टर्स को मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस का जायजा लेने का भी मौका देता है।

0: जब भी बेयर मार्केट का सामना होता है तो इन्वेस्टर्स को सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि ये उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर असर डाल सकता है। इसीलिए बेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझना हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जरूरी है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकें और मार्केट की हालात का सही अंदाजा लगा सकें। वेल, मुझे उम्मीद है कि आपने भी कुछ हद तक सही अंदाजा लगा ही लिया होगा। मतलब आप समझ गए हैं कि अब टाइम हो गया है मेरा आपसे इजाजत लेने का। दोस्तों, वाकई टाइम हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह नए एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट पर बात होगी। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकॉनमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकॉनमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107, दिल से देसी।
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
5: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम नबी सल्लम की सुन्नतों का पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा कि आंखें बंद करके जिंदगी गुजारो, बल्कि हमेशा बेदारी, एहतियात और बसीरत के साथ आगे बढ़ो। मोमिन गाफिल नहीं होता, बल्कि वो खतरे को पहले से भांप लेता है और अपने फैसले सब्र और हिकमत से करता है। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज में शक हो उसे छोड़ दो और वो इख्तियार करो जिसमें शक ना हो, क्योंकि सच्चाई इत्मीनान है और झूठ शक को बेचैनी है। कितनी अजीम रहनुमाई है। अगर दिल किसी काम में बेचैन हो तो जान लो कि वो दुरुस्त नहीं। अगर दिल मुतमईन और पुरसकून है तो ये अलामत है कि वो अमल हक और जायज है। ये गोया एक अखलाकी कंपास है जो हमें खैर और शर में फर्क बताता है। समीन, ये थी आज की सुन्नत, एहतियात और बसीरत। आइए हम अपनी जिंदगी में हर फैसले को तकवा और दिल की तमानीनत के तराजू पर परखें, शक को शुबा से बचें और यकीन

0: नूर के रास्ते पर आगे चलें। फी अमानिल्लाह।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप।
2: एवरी संडे और ट्यूजडे दोपहर 1 बजे से
3: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो फुटबॉल के दुनिया में एक कीमती विरासत छोड़ गया है। और जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विलियम मैक्रम की, जो पेनल्टी किक के मुअर्रफीन है, यानी जो इंट्रोड्यूस्ड, यानी हु इंट्रोड्यूस्ड द पेनल्टी किक्स इन द स्पोर्ट फुटबॉल। विलियम मैक्रम 1865 में आयरलैंड के एक छोटे से गांव मिलफर्ड में पैदा हुए। वो एक अमीर जमींदार के बेटे थे, मगर उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ दौलत के जरिए नहीं, बल्कि अपनी सोचने की नई सूरत और फुटबॉल के लिए मोहब्बत के जरिए बनाई। 1880 के दिहाई में फुटबॉल का खेल मशहूर तो हो रहा था, मगर एक मसला बड़ा आम था। जब प्लेयर्स नीचे गिरते या फाउल होता तो फैसले में डिले हो जाता। ऐसे में मैक्रम के जहन में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, पेनल्टी किक। उनका आइडिया बहुत ही सिंपल था। अगर एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ फाउल करे पेनल्टी एरिया में, तो दूसरी टीम को एक सीधा शॉट दिया जाए बिना किसी रुकावट के। यह फैसला फेयरनेस और डिसिप्लिन का सिंबल बन गया। विलियम मैक्रम का यह आइडिया 1891 में ऑफिशियली फुटबॉल के रूल्स का हिस्सा बन गया, और आज पेनल्टी किक को दुनिया भर के मैचेस में देखा जा सकता है, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो या लोकल टूर्नामेंट। मगर लिसनर्स, क्या आप जानते हैं विलियम मैक्रम की जिंदगी उतनी कामयाब नहीं रही। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ने उन्हें मुश्किल वक्त देखने पर मजबूर किया, लेकिन उनका काम फुटबॉल के हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक विजनरी शख्स की, जिन्होंने एक छोटी सी सोच के जरिए खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। विलियम मैक्रम फुटबॉल के असली हीरोज में से एक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लाइफ को इजी बनाने के लिए कमाल के लाइफ हैक्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का सबसे पहला लाइफ हैक है लहसुन का जादू। हाँ जी, लाइफ में सबसे मुश्किल काम यही लगता है जब हमको घर पे लहसुन छीलने को बोल दिया जाता है। मतलब वो चिप चिप, टाइम वेस्ट और हाथों में स्मेल, उफ। बट फिकर नॉट, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जिससे इन सब से आप बच सकते हैं। सो एक पूरा लहसुन लो, उसकी कलियां अलग अलग कर लो, उन्हें एक बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल दो। अब डब्बा अच्छे से टाइटली बंद करो और जोर जोर से शेक करो, जस्ट शेक इट लाइक शमी 30 सेकेंड्स के लिए। एंड देन जब आप खोलोगे तो आप देखोगे कि सारे छिलके अपने आप अलग हो जाएंगे। क्यों, है ना कमाल का मैजिक ट्रिक? तो ये भी ट्राई करो। और आज का दूसरा हैक है

0: अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो बीजों को अगले साल के लिए फ्रेश कैसे रखें ये मैं आपको बताती हूँ। तो गार्डनिंग के बाद अगर बीजों के पैकेट बच गए हैं तो उन्हें सिलिका जेल के पैकेट्स के साथ एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दो। सिलिका जेल सारी नमी सोख लेगा और आपके बीज अगले साल तक एकदम फ्रेश रहेंगे, ना अंकुरित होंगे और ना उनमें फफूंद लगेगी। तो यस, इन ट्रिक्स को जरूर ट्राई करना। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Assalamu alaikum listeners, आप सुन रहे हैं Green Path, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी कम्युनिटी को ग्रीन और सस्टेनेबल बना सकते हैं। हम सब मिलकर अपनी लोकैलिटी को क्लीनर और ग्रीनर बना सकते हैं। अपने नेबरहुड में कम्युनिटी गार्डन सेटअप करें जहां पर लोग मिलकर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकें। अपने एरिया में रीसाइक्लिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करें और लोगों को प्लास्टिक और अदर वेस्ट आइटम्स को रीसाइकिल करने की इम्पोर्टेंस समझाएं। ग्रीन इनिशिएटिव फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली अवेयरनेस के लिए लोकल इवेंट्स या कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करें। अपने नेबरहुड में क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें लोग अपने एरिया को सफाई से क्लीन करें। ग्रीन कम्युनिटीज आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं और हमारे प्लैनेट को सेफ रखती हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है।

0: तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुंच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के इस नए हलके में एक मतलब आप सबको खुश आमदीद। सामिन किराम, कुरान आप सब जानते हैं कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और हकीमाना तरतीब रखने वाली किताब है। अक्सर लोग कुरान को इस अंदाज से पढ़ते हैं कि एक सूरत ख़त्म हुई दूसरी शुरू हो गई, लेकिन कभी ये सवाल जहन में नहीं आता कि ये तरतीब क्यों है। क्या हर सूरत अपनी जगह इत्तेफाकन रखी गई है या उसके पीछे भी अल्लाह ताला की हिकमत है। सामिन किराम, कुरान मजीद की 114 सूरतें मुख्तलिफ ग्रुपों और ख़ानदानों की शक्ल में मुनज़्ज़म हैं। हर ग्रुह का एक मरकज़ी मौजू है और उसके अंदर मौजूद सूरतें एक दूसरे की तकमील करती हैं। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह मायदा को देखिए। ये चारों मदनी सूरतें हैं, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये सब लंबी सूरतें हैं और इस्लामी माशरे की तश्कील, कानून, इबादत, ख़ानदानी निज़ाम, जिहाद, अदल और इज्तिमाई ज़िंदगी के अहकाम बयान करती हैं। जब आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि गोया चार सूरतें कोई मुस्तकिल या अलग मौजू नहीं, बल्कि एक ही मुसलसल गुफ्तगू के मुख्तलिफ अबवाब हैं। इसी तरह कुरान में बाज़ बड़ी मक्की सूरतें भी एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखती हैं। इनका अंदाज, इनका पैगाम और इनका मुखातब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ मालूम होते हैं। इसलिए सिर्फ एक सूरत को अलग पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि उसकी पड़ोसी सूरत कौन सी है, इससे पहले क्या मज़मून था, इसके बाद गुफ्तगू किस तरफ जा रही है। सामने किराम, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ें तो क्या हर बाब बेतरतीब होता है? हरगिज़ नहीं। पहले तारुफ़, फिर बुनियादी उसूल, उसके बाद तफसीलात, फिर नताइज। अगर तरतीब ना हो तो पूरी किताब समझना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल उसी तरह कुरान करीम भी एक किताब है और अल्लाह ताला ने खुद उसे किताब का लक़ब अता फरमाया, कहा है कि किताबुल्लाह। कुरान में इरशाद होता है किताबुन उहकिमत आयातु, यानी ये ऐसी किताब है जिसके आयात मजबूती के साथ तरतीब दी गई है। एक नहायत लतीफ़ नुक्ता इस सिलसिले में ये है कि अरबी में किताब का लफ्ज़ सिर्फ लिखी हुई तहरीर के लिए नहीं आता, बल्कि इसमें जमा, तरतीब और मजबूत रब्त का मफहूम भी शामिल है। गोया कुरान खुद ऐलान कर रहा है कि उसकी हर आयत और हर सूरत अपनी मुकर्रर जगह पर रखी गई है। जैसे कपड़ा सिलाई के बाद खूबसूरत लिबास बनता है, वैसे ही कुरान की हर आयत अपने मकाम पर एक हिकमत के तहत रखी गई है। अगर सिलाई का एक टांका भी अपनी जगह से हट जाए तो लिबास ख़राब हो जाता है। उसी तरह कुरान की तरतीब भी अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा है। इसीलिए तयशुदा और मतमद आली बात यह है कि कुरान की मौजूदा तरतीब यह अल्लाह ताला की तालीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक कायम हुई। सामने किराम, जैसे सूरह फातिहा में हम तरतीब नहीं बदल सकते, हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, फिर अर्रहमान अर्रहीम, फिर मालिक यौमिद्दीन। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं पहले आखिरी आयत पढ़ूंगा और फिर पहली, क्योंकि यही तरतीब अल्लाह की मुकर्रर करता है। इसी तरह पूरे कुरान की तरतीब हिकमत पर मबनी है। आजकल तदब्बुर कुरान के मैदान में उलमा इस बात पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं कि हर सूरत को उसके पूरे सियाक व सबाक में समझा जाए। जब ऐसा किया जाता है तो कुरान के बहुत से नए पहलू सामने आते हैं और इंसान महसूस करता है कि वाकई एक मरबूत और कामिल किताब है। अब जानेंगे मक्की सूरतों का बुनियादी मौजू क्या था। मक्की सूरतों का बुनियादी मौजू तौहीद, आखरत और रिसालत था, और उन लोगों को खबरदार करना जो अल्लाह के पैगाम को झुठला रहे थे। लेकिन एक अहम गलत फहमी भी दूर करनी चाहिए, वो ये कि बाज़ लोग समझते हैं कि मक्की दौर में कुरान मक्का वालों की मुखालफत पर नाजिल हो रहा था। हालांकि बात ऐसी नहीं। कुरान की सख्त तंबीह दरअसल मक्के उन ताकतवर सरदारों, सरमायादारों और सियासी कायदीन के लिए थी जो अपनी दौलत, अपनी हैसियत और अपने रसूख को इस्तेमाल करके

0: जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107।

FM 107. Time check. Time check. Alright guys, salam adab, a very very good early morning. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.

हाँ जी हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के। और आज है बहुत ही खूबसूरत वाली 21 जुलाई और ट्यूसडे का दिन। दिन का जो आज आगाज़ हुआ है बहुत ही खूबसूरत से नोट पे हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज मुझे मौसम इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ी सी हवा चल रही थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, बट मैंने तो किया। मैंने देखा अरे वाह आज हवा चल रही है, उस तरह की ह्यूमिडिटी नहीं है, उस तरह की देखो गर्मी तो है एंड टूवर्ड्स लाइक डे थोड़ी सी और गर्मी होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। बट हाँ मॉर्निंग बहुत ही सूदिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। तो चलिए मैं तो आ चुकी हूँ और पूरे 3 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स होती है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी बात होती है। और आज का टॉपिक इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आज

0: पर भी बात करेंगे. तो बस आप जहां से भी हैं हमें सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़ जाइए. नंबर है 666-22-107. और चाहे आप काम पर जा रहे हों या फिर आप घर के कामों में मसरूफ हैं या फिर आप चाय पी रहे हैं या फिर आप कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आपको हर लम्हा हमारे साथ रहना है क्योंकि आज भी शो में हम बहुत सारी ख़ास बातें करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे. एंड ऑफ कोर्स आज जो 21 जुलाई है तो दुनिया भर में किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है उस पर भी बात होगी. तो बस मुस्कुराइए, रिलैक्स कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए. जुड़ने के लिए नंबर व्हाट्सएप तो मैंने आपको बता दिया है 666-22-107. वहीं अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग बातें होंगी. स्टे अप टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूँ नाजिया आपके साथ and 6:14 on the clock. और सुबह सुबह कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर WhatsApp पर जुड़ चुके हैं. तो सबसे पहले सलाम मुझे भेजा है यहाँ पर, इनका नाम है हुसैन जी. अ वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग. उम्मीद करें कि आपके दिन की भी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी. सलाम कहते हैं तौफीक जी अल बकरा से. वालेकुम अस्सलाम एंड हु इज ही. यहाँ पर सलाम भेजा है हबीब अली खान जी ने. वालेकुम अस्सलाम. और यहाँ पर सलाम हमें कहते हैं मुजाहिद जी, एंड सो नाइस टू हियर यू, थैंक यू सो वेरी मच. और यह एक और सलाम, एक वॉइस नोट है, वो मैं भी सुनती हूँ और फिर मैं जो है उनको रिप्लाई करती हूँ. तो चलिए अभी हमारी मॉर्निंग की तो शुरुआत हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6:15. धीरे धीरे मौसम जो है वो, जैसे मैंने कहा, आज अपना रुख बदलने वाला है मॉर्निंग में. हालांकि थोड़ी हवा चल रही थी, तो अब मैं आपको मौसम का हालचाल बताती हूँ, फिर कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करनी है.
1: मौसम का हालचाल.
0: तो आज जो है वो दोहा में मौसम ज़्यादातर सनी एंड ऑफ कोर्स बहुत गर्म होने वाला है. जी हाँ, मौजूदा टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और मैक्सिमम जो है वो आज 46 तक जाने वाला है. आपको महसूस होगा जैसे कि ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस. वहीं अगर हवा की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से 15 से 24 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवा चल रही है एंड ह्यूमिडिटी इज़ 49%, इसीलिए गर्मी और ज़्यादा महसूस हो रही है. वहीं पर यूवी लेवल की बात करें तो आज यूवी लेवल बहुत हाई रहेगा, इसीलिए अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर आप कैरी कीजिए. एंड हाँ, पानी भी जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना और पानी पीना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, यहाँ पर जो है वो राइज आज हुआ है 4:55 AM पर और सनसेट है 6:24 PM. तो आज दोहा में जो है वो धूप का राज रहेगा. टेम्परेचर इज गोइंग बी 46 डिग्री सेल्सियस. अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं तो हाइड्रेशन का आपको खास ख्याल रखना है और डायरेक्ट धूप से बचने की भी कोशिश करनी है. एंड सो फॉर दैट मैंने आपसे कहा कि सनस्क्रीन जो है वो कैरी जरूर कीजिए. और शाम के वक्त मौसम कुछ बेहतर होगा लेकिन गर्मी फिर भी बरकरार रहेगी. तो आपका दिन अच्छे से गुजरे उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए व्हेन वंस यू लीव एंड स्टेप आउट ऑफ योर हाउस. तो बस ये तो मौसम की बात हो गई. और भी कुछ बातें हैं जो आपके साथ करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो भी हम करने वाले हैं आपके साथ शेयर. लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने कहा था कि आज इज 21st of July, तो 21st of July को कुछ खास दिन भी ऑब्जर्व किए जाते हैं तो उस पर भी बात करते हैं, जिसे आज बेल्जियम का नेशनल डे है. तो बेल्जियम अपना नेशनल डे मनाता है

फूड, बट आज का दिन है, इट्स लाइक अ नेशनल जंक फूड डे. तो आज लोग अपने जो पसंदीदा जंक फूड हो सकते हैं, या लाइक चॉकलेट्स हैं, या फिर जो फ्राइज हैं, व्हाटसोएवर, जो भी आप इंजॉय करते हो, इस दिन को लोग जो है वो इंजॉय करते हैं अपने फेवरेट मील्स के साथ. उसके अलावा आज है नेशनल बी समवन डे, यानी ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव फ़र्क ला सकते हैं, किसी के लिए भी हम स्पेशल साबित हो सकते हैं, किसी की मदद करके, किसी की बात सुन के, कभी किसी का हौसला बढ़ा के, एंड दैट्स हाउ दिस डे इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. वहीं आज है नेशनल क्राफ्ट फॉर योर लोकल शेल्टर्स डे. आज लोग जो हैं वो एनिमल शेल्टर्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी ज़रूरतमंद अफराद हैं उनके लिए कोई हैंडमेड चीज़ तैयार करते हैं. इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है, कोई और डेकोरेटिव आइटम हो सकता है, यू नो, कोई हैंडबैग हो सकता है, एंड मे बी समथिंग एल्स. बट आज जो है अपने हाथ से बनाना और किसी को देना, वाह, ये भी बड़ी बात है, और आज के टाइम में तो बहुत ही बड़ी बात है. अच्छा, इसके साथ है आज नो पेट स्टोर पपीज डे. ये दिन जो है वो कहीं ना कहीं जानवरों के लिए उनकी शेल्टर को, उनको किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए, वो सही तरीका क्या हो सकता है अडॉप्ट करने का, एंड ऑल दैट, उस हवाले से ये दिन सेलिब्रेट भी किया जाता है. तो ऑल टुगेदर आज 21 जुलाई हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना, दूसरों की मदद करना, किस तरह से जानवरों की देखभाल करना, हमारी और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है. तो आज अगर आपको टाइम मिलता है तो किसी के लिए मुस्कुराहट का सबब बनिए और अपना दिन पॉजिटिव अंदाज में गुजारिए. तो ये हमें ये सारे डेज सिखाते हैं. इसके साथ और भी हैं बातें, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप 666-222-107 पर कॉल करें, जहाँ पर हम आपकी कॉल नहीं ले पाते, मतलब लाइव आपको कनेक्ट नहीं कर सकते. तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देन द नंबर इज़ 443-443-77, यानी 443-443-77. इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तब हम और आप जो है वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और आपको लोग जो है बाहर सुन सकते हैं, बिकॉज इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज लेते हैं हम 666 वाले पे. कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. तो वापस आऊँगी तो एक छोटी सी अपडेट के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसे भी मैं रिवील करने वाली हूँ. बट बिफोर दैट एक छोटा सा क्विक ब्रेक. हम यूं गए और यूं आए.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
4: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है।

0: अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से।

0: और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं समा मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:30 ऑन द क्लॉक. तो चलिए सबसे पहले छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आज का जो हमारा करंट कन्वर्सेशन है, जो टॉपिक है, उस पर आ जाते हैं.
1: लोकल न्यूज.
0: तो आज क्या है लोकल न्यूज में, वो मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक्टिविटीज लाइन अप की जा रही हैं धीरे धीरे समर को और ज़्यादा इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग बनाने के लिए. तो कतर में जो समर है वो होते भी ऐसे हैं कि समर्स तो है ही, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप देखते हैं कि एंटरटेनमेंट को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया जाता है. और उसके लिए आ चुका है कलर वर्स एक्सपीरियंस. एक नया इमर्सिव अट्रैक्शन है जो इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लाइव परफॉर्मेंसेस को कंबाइन करता है ताकि फैमिलीज और बच्चों को एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिले. जी हाँ, ये अट्रैक्शन जो है वो 16 जुलाई से स्टार्ट होकर 15 सितंबर 2026 तक कटारा कल्चरल विलेज साउथ पार्किंग में अवेलेबल रहेगा. और इसे कतर कैलेंडर और विजिट कतर ने हाला समर्स 2026 कैंपेन के तहत इंट्रोड्यूस किया है. आपको बताएं कि 4 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे और फैमिलीज के लिए स्पेशली बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की हैं. विजिटर्स को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव जर्नी पर ले जाएंगे. एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा और साथ ही टेक्नोलॉजी का एक शानदार कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा. इसके टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो वीकडेज में शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक. वहीं वीकेंड्स की बात की जाए तो अगेन शाम 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक. तो ये एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आपको मिस नहीं करना है. अगर आप इस समर एक फन, यू नो, कलरफुल और टेक्नोलॉजी बेस्ड फैमिली एंटरटेनमेंट या एडवेंचर ढूंढ रहे हैं तो वो कलर वर्स एक्सपीरियंस कटारा में आपके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है. तो अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि हमें जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, बच्चों के लिए ये वाली लाइन जो है ना बहुत ही कॉमन है. कितने मैंने बच्चे ऐसे सुने हैं जो हर बार ये कह रहे होते हैं, अरे हम तो बोर हो रहे हैं, हमें समझ में आ, छोटी सी कोई एक्टिविटी बहुत ही छोटी सी कर ली उसके बाद एकदम से बोर हो गए. अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अगर उसे कहा जाए कि चलो हॉलीडेज हैं, आप बोर हो रहे हो, ऐसा सच कुछ करने के लिए आपके पास है ही नहीं, तो आप थोड़ा सा पढ़ लो या यू कैन फिनिश योर होमवर्क या फिर हॉलीडे असाइनमेंट्स हैं, तो बच्चों को बड़ा ख़राब लगता है. अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत छुट्टी है, बाकी हम तो बाद में करेंगे. मतलब उन्हें ये लगता है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी शुरू हो गया है कि जो होमवर्क है ना वो धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट पे इतनी डिबेट होती है, इतनी बात होती है कि

0: इसको कहीं ना कहीं एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की बात भी चल रही है. आई मीन टू से कम्प्लीटली बैन करने की भी बात चल रही है. वैसे अगर मुझसे आप पर्टिकुलरली पूछिए तो होमवर्क जो है वो स्कूल लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था हमारी लाइफ का, तो एटलीस्ट था कि मतलब हमें क्लास वर्क वी यूज टू राइट CW एंड HW और बड़ा हम इंजॉय करते थे उस चीज़ को लिखना और करना. बट आज जो है वो बच्चे उस तरह से एक्साइटेड नहीं होते हैं, स्पेशली अपने होमवर्क्स को लेकर. टीचर्स भी होमवर्क इसलिए देती हैं और देती थी जो मैं कहूँगी वो कि बच्चों को जो भी क्लास में पढ़ाया गया है वो एक तरीके का उनके लिए रिविजन हो जाए जिससे उनकी लर्निंग और इम्प्रूव हो सके. लेकिन आज का सवाल जो है यहीं से है और आजकल ये सवाल जो है बहुत डिस्कस भी हो रहा है. और सवाल ये है कि क्या होमवर्क को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए. तो मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ, क्या लगता है आपको, क्या होमवर्क हैं उन्हें पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? पार्शली तो हो ही चुके हैं, बची बची जो भी जान है उनमें वो भी निकाल लेनी चाहिए. क्या आपको लगता है क्या होमवर्क ज़रूरी है बच्चों के लिए या होमवर्क ज़रूरी वाकई नहीं है? जितना भी पढ़ा बच्चे ने वहीं पढ़ लिया क्लास में एंड दे यू फील लाइक इट्स डन फॉर हिम और हर, या फिर वापस आके घर आके एक छोटा सा रिविजन होना, या मतलब बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होमवर्क्स तो नहीं मिलने चाहिए. वो तो मैं भी कहती हूँ कि नहीं, बच्चे की हॉलीडेज़ हैं जो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए. और स्पेशली फॉर गॉड से किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है वो बनाना है. वो उससे तो कहीं ना कहीं आसान पड़ता है कि बच्चा होमवर्क कर ले, क्योंकि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ड्यूरिंग वेकेशंस तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करती मदर्स हैं. तो बच्चा शायद इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, मदर्स को भी लगता है कि स्पॉइल कर देगा एक्टिविटी, तो चलो मैं ही कर लेती हूँ. तो इस चक्कर में वो तो बिल्कुल ही मुझे लगता है मदर्स का होमवर्क है, बच्चों का तो होमवर्क नहीं होता, बच्चों के लिए एक्टिविटी नहीं होती. बढ़िया, फिर भी कहीं ना कहीं ये एक जहन में रहते ही है कि चलो करना है, एक होमवर्क है, मतलब आपके थोड़ा सा हल्का सा एक प्रेशर रहता है. अब जो है वो डिस्कशन ये है कि बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया जाए. ऑलरेडी उनकी लाइफ में ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, विच आई पर्टिकुलरली डोंट बिलीव इस तरह का ऐसा स्ट्रेस है. हाँ, उनको आने वाले टाइम के लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आज का सवाल यही है कि क्या होमवर्क को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? वो लोग जो होमवर्क के सपोर्ट में है ज़रूर हाथ उठाए, आए जुड़े हमारे साथ, हमें बताइए कि यस हमें लगता है कि नहीं होमवर्क्स होने चाहिए. और थोड़ा होमवर्क बच्चों को जो है वो क्विक रिविजन देता है, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं होमवर्क्स आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बच्चा ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट है, इतना थक कर आता है, अननेसेसरीली उसके ऊपर एक और एडिशनल बर्डन बढ़ जाता है. एंड सो फॉर दैट होमवर्क्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए. सो दिस इज टुडेज कन्वर्सेशन का जो हमारा कड़क कन्वर्सेशन है वो इसी के अराउंड होने वाली है. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर. एंड यस वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं तौफीक जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: कैसी जा रही है आपकी सुबह?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आया काम से, थोड़ा फ्रेश हो गया.
0: अच्छा वाला आपने जो है वो ब्रेकफास्ट कर लिया?
1: अभी करूंगा.
0: अच्छा, अभी किया नहीं,
1: थोड़ा बाद में, थोड़ा आराम करके इसके बाद करूंगा.
0: अच्छा,
1: जो आएगा फिर चोएगा फिर पेट निकलेगा. यानी का किस वाले चाहिए.
0: ये तो अच्छी बात है कि आपको अपना ख्याल है. अच्छा वाला नहीं होना भी चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका तमी निकल आता है तो फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तो कितनी बार आपको पनिशमेंट मिली है होमवर्क ना करने की वजह से?
1: होमवर्क तो अच्छी बात है, जब छुट्टे होते होमवर्क जरूरी है. तो हम लोग स्कूल में ज्यादातर भी था, बच्चा हम स्कूल का शौकीन नहीं था ना, नालायक था, नहीं तो स्पोर्ट्स शौकीन था. सीधा बात बताऊंगा, इसलिए अरबी स्कूल में छात्र था, लेकिन अपना पाकिस्तानी स्कूल में दो स्कूल पढ़ता था, सुबह भी शाम को भी दो स्कूल.
0: फिर तो इट्स लाइक अ बिग नो टू होमवर्क आपके लिए, तो फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं है, सुबह शाम तो आप पढ़ ही रहे.
1: वो बाद में असल का टाइम तो स्पोर्ट्स करता था, सब तीनों चीज करते टाइम निकाल के करते थे. तो होमवर्क अच्छी चीज है, क्यों बच्चों का ध्यान थोड़ा सबक पे होना चाहिए, ज्यादा नहीं नॉर्मल जैसा. बस हम लोग उस टाइम

0: ज्यादा दे रहा था तो अगर होमवर्क नहीं किया तो स्कूल जाके फिर टीचर मारता था होमवर्क नहीं किया। आजकल तो ऐसा नहीं है,
1: आजकल तो बिल्कुल भी मारनी पड़ती है।
0: हाँ अभी तो नहीं, अभी तो बस ऐसे ही, लेकिन होमवर्क जरूरी चीज है।
1: आपको लगता है कि होमवर्क होने ही चाहिए और बैलेंस वे में हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ज्यादा खैर होते भी नहीं है, पर होना चाहिए।
0: हर मतलब हर इंग्लिश उर्दू कोई भी अरबी ना कोई भी जबान में मतलब सब थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए,
1: होना चाहिए। है ना, पता चला बच्चा घर में आके कुछ किताब को टच ही नहीं कर रहा है, वो बस स्कूल में जो हो गया।
0: मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे तालीम वाले, लास्ट वाली छोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह जामा यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई
1: अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने, भले ही आपने कहा कि मैं शैतान रहा, मैं पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देता था, बट आप खेलने में बहुत अच्छे थे, बट आप ये चाहते हैं कि होमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो बरकरार रहना चाहिए, राइट? वो खत्म नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा लगा एज ए पेरेंट्स सुन के मुझे कि कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो कम्प्लीटली प्रो हैं इस बात के कि होमवर्क्स को बैन नहीं करना चाहिए, वो रहने चाहिए, वो बच्चों की लर्निंग का हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है।
0: हिस्सा होता है ना, अगर नहीं पड़ेगा तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, पर बाद में दूसरी चीजों पे मतलब मोबाइल हो गया और आजकल तो मोबाइल के कोई रह भी नहीं सकता। मैं रह सकता मोबाइल बिल्कुल ना हो ना, सिर्फ ये गवर्नमेंट की चीज ना होता तो मेरे पास मोबाइल ना होता।
1: अरे अरे सच्ची?
0: मैं शौकीन नहीं मोबाइल का।
1: अगर
0: मेरा गवर्नमेंट मतलब दुनिया में नहीं मिलेगा। मोबाइल तो कोई नहीं बोलेगा क्या मोबाइल नहीं होना, जैसे महावत बहन ने बोली थी ना, सब लोग मोबाइल रहने में कोशिश की लेकिन फोन नहीं मिला, तो मैं ये बात बोलने वाला था उसको, अभी आपके साथ ये बात हो गई
1: भाई। आपको सल्यूट है, आप जैसे एक ही दो लोग हैं जो मतलब मोबाइल का जिनको एडिक्शन नहीं है, अदरवाइज तो हर किसी को एडमिट करे या ना करे बट सबको एक एडिक्शन तो है ही, उन्हें चाहिए ही चाहिए मोबाइल। बट ग्लैड आप काफी अच्छे और यूनिक पर्सन है आज के टाइम में। यही कहा जा सकता है,
0: आप भी लाओ, मुश्किल आप भी लाओ, आप बस देन कीजिए लेकिन आप भी करो बाद में,
1: ठीक है?
0: नो टाइम बाद,
1: सही,
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट एंड थैंक यू फॉर योर कॉल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इज़ अबाउट होमवर्क। एक तो क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव जिस पर हम बात कर रहे हैं और आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि होमवर्क को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी इज़ गोइंग टू बी वेरी पर्सनल, क्या आप अपना होमवर्क खुद ही करते थे या फिर आप उस तरह के थे बंदे जो अपनी बहन से, अपने बड़े भाई से या फिर अपनी अम्मा से अपना होमवर्क करवाते थे, और अगर पकड़े गए तो क्या हुआ? कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई इंटरेस्टिंग बात है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, नंबर 6622107 या फिर आप हमें कॉल कीजिए 6436377 पर। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह सुबह मैं चला आया अलखोर से, थोड़ा दूर था अभी मैं जस्ट ट्यूनिंग किया रेडियो।
1: अच्छा, आज सुबह सुबह आपकी अलखोर की ट्रिप हो गई?
2: हाँ, थोड़ा सा जरूरी था, अलखोर से भी थोड़ा 15-20 किलोमीटर थोड़ा सा और शमाल की तरफ आना पड़ा था इस जगह में एक लोकेशन में।
1: अच्छा,
2: तो हम बोले चलो, तो अभी जस्ट मैंने देखा तो आप कुछ होमवर्क के बारे में
1: पूछ तो रही हूँ। हाँ, होमवर्क का पूछ रही हूँ, मुझे बताइए आप खुद अपने होमवर्क करते थे या करवाते थे दोस्तों से?
2: नहीं, बिल्कुल मेरी आदत नाजिया, मेरा ये आदत बिल्कुल नहीं था कतई, मैं दूसरे पे, यहाँ तक कि मेरे शादी के तकरीबन 10 साल मतलब तकरीबन अभी मैं जस्ट मतलब वॉशिंग मशीन और अभी मैं जाता हूँ थोड़ा सा मतलब, नहीं तो 10 साल तक तकरीबन मैं अपने हाथ से अपने कपड़े तक भी मैं वाइफ पे डिपेंड नहीं रहता था कि यार, मैं बोलता था यार खुद इन लोग को घर में इतना सब मतलब बच्चे और सारे लोगों का घर का खाना पानी ये वो उनको इतना काम होता उनके पास, तो वो मदद करके तकरीबन मैं 90% में मदद कर देता था कि यार छोड़ो तुम मतलब जितना मतलब ये रहे। हाँ, इस्त्री करते कपड़ा थोड़ा सा भारी लगता था, हम बोलते थे कि

0: प्रॉब्लम ये करके दे देते, कम से कम इतना करवा दो, मुझे थोड़ा भारी लगता है। बाकी चीज में अपना खुद का जो करो तो उसमें थोड़ा सा आदमी को सेटिस्फाई भी रहता है कि मतलब उसमें दूसरे में नक्श निकालना और तरह तरह का ये ऐसे कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। कोई सामान बहुत से लोग हैं कि ऐसे मतलब पड़ा रहेगा वो ऐसे पैर से नाक के निकल जाएंगे। या मैं देखता हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं बोलता हूँ यार किस टाइप का बंदा है या बंदी है यार, कि यार वहीं पे सामान उसको उठा के उसको अलग उसी में ठोकर लगेगा, थोड़ा सा पैर इधर से दाएं बाएं करके चले
1: जाएगी।
0: यार मैं बोलता हूँ यार किस टाइप का बंदा है यार, कि मतलब यार ये थोड़ा सा उठा दे, अगर तू बच गया जब तुझे थोड़ा ठोका लगा कोई दूसरा आए गिर जाए।
1: हाँ, सही बात है। और क्या,
0: बहुत से लोगों का और बहुत से के घरों में भी ये सब चीजें मतलब बिल्कुल, क्योंकि घर का जो अपने पेरेंट्स होते हैं ना डिपेंड करता है कि मतलब वो किस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग, किस तरीके से अपने आप को क्लीनिंग मतलब या अपने अपने काम को किस तरीके से करते हैं, तो बच्चे भी देखते हुए सीखते हैं।
1: और
0: हम लोग ये चीजें बच्चों को बहुत कि यार बच्चा पढ़ रहा है और ये कर रहा है तो छोड़ दो उसके सारे काम, ये हम अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, ये भी उनके जो उनके लाइक उनसे खुद करवाओ काम। भैया तुम अब करने लायक हो, अपने कपड़े तुम खुद सबमिट करके रखो, अपना बैग अपना अपना जूता अपना जो भी है ये जो मतलब अफसोस होता है जो मतलब एकदम छोड़ दिया कि हाँ भैया चलो अब ये पढ़ लिख रहे हैं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और इनसे, तो फिर वो ही बच्चे फिर वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं उनका मतलब ये रहता है रूट
1: पढ़ाई
0: में तो रहता है लेकिन उनकी जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो बड़ा खराब कर देते हैं, बहुत खराब कर लेते हैं।
1: एकदम सही बात है,
0: पेरेंट्स को भी चाहिए कि मतलब जो करने लायक है उनसे करवाएं काम और खुद भी मतलब जो काम मतलब अपना भी अपने मतलब जो घर के काम है, ये नहीं कि मतलब दूसरे पे डिपेंड रहे कि नहीं कि मतलब ये मैं क्यों करूं वो ये काम तो उसका है, ये चीजें हमारे जहन से निकलना चाहिए
1: सबसे
0: बड़े जो हम लोग के मतलब मुरब्बी हादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो खुद आप एक सबक देके गए हैं कि मतलब हम लोग उससे सीखें कि अपने कपड़ों को सिलना या अपने अपने अपने आप को मतलब ये अपने अजवाज के साथ में किस तरीके से रहते थे, तो हम उससे हमारी क्या हस्ती है भाई, हम कौन हुआ है मतलब उनके सामने क्या हमारी मतलब हस्ती नहीं है। तो हम कौन होते हैं इतने बड़े जो जिसको अल्लाह ताला ने मतलब हर चीजें मतलब उनके लिए आसानी अगर चाहते हो तो आसानी अल्लाह ताला उनके सामने पेश किया था कि आपको चाहिए तो क्या दुनिया चाहिए और ये चाहिए सारी चीजें मतलब मुख्तसर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मशक्कत वाली जिंदगी और अपनी जो ये थी वो पसंद किया क्योंकि ये हमारे लिए आइडल थे, हमारे लिए आइडल थे। अगर वो सारी अपनी ऐश और इसरत के और अपने साहब को मतलब उसके तरफ सबक देते थे तो फिर ये हमारे लिए आज के 1400 साल पहले फिर वही हमारे लिए नमूना बन जाता और हम भी कहते यार चलो, तो ये हमारे लिए ये हमें देखना चाहिए कि पीछे बैकग्राउंड में उन लोगों का क्या हाल था, किस तरीके से थे। एक वाकया है कि मतलब हजरत उस्मान के पास एक तख्त मांगने के लिए गया तो वो किसी अपने मतलब गुलाम से कह रहे थे कि मतलब तुमने चिराग को इतना ज्यादा रोशनी करके क्यों रखा, तो वो लौट आए बोले यार एक चिराग की रोशनी पे वो बंदा अपने उसको मतलब डांट रहे हैं तो हमें क्या देंगे वो, तो ऐसे करके तो फिर बाद में जब उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने बहुत कुछ समझा और उन्होंने कहा कि भाई ये दुनिया के जो मसाइल है हम फजूल खर्ची पे आता है, तो हम अपने फजूल खर्ची को और हर चीज को अपने हिसाब से अगर हम ये करके रखेंगे तो क्या हमारे लिए मतलब आगे अल्लाह ताला हमने से सवाल करना है कि तुमने तुम्हें इतना जिंदगी मिला, तुम्हें इतना माल मिला, तुमने कहाँ खर्च किया।
1: सही बात,
0: ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक सबक का जरिया है कि मतलब हम अपने बाल बच्चों को भी और अपना खुद का जो काम करने लायक है और अपना जो ने फ्यूचर के लिए भी है कि मतलब आज हम कमा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हम अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग थोड़ा सा कर लें कि यार हमारा ना उम्र यहीं पे रहेगा ना हमारा कमाई यहीं बाकी रहेगा, तो अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करके रख लें ताकि हमारे फ्यूचर में आने के वक्त हम जाके सुकून से थोड़ा सा मतलब जिंदगी गुजार सके, ना कि मतलब इस तरीके से अपना कि अपनी उम्र है चलो कमाए खाए ऐश किए, तो ये इसमें आगे मसला बनेगा उनके लिए। ये कहने का मतलब
1: कि मतलब इतना ज्यादा आराम बच्चों को भी नहीं मिलना चाहिए कि हर तरह से उन्हें रिलैक्सेशन मिलता चला जाए कि वो
0: प्यार से, ये नहीं कि मतलब उनसे उनको उसी हिसाब से उनका आदत डाला जाए, बच्चों को उस हिसाब से उनका आदत डाला जाए कि बेटा तो या बेटी तुम्हारे लायक ये काम है तो तुम खुद करोगे, तुम्हारा जो अपना काम है वो करोगे तो तुम्हारा आदत बना रहेगा और बाद में फिर वो आगे चल के उनके लिए आसानी होता है वो काम करने के लिए। और हम उस दूसरे पे अगर माँ बाप पे और लोगों पे बड़ा छोटे पे मतलब दोष जमा रहा है और वो उससे छोटे पे तो ये चीजें बाबसी बच जाती है, जिसके लायक जो है वो कर लिया करे वो बेहतर है मेरे ख्याल से।
1: बहुत ही अच्छा कहा। तो मतलब आप ये कहते हैं कि थोड़ा बर्डन, थोड़ा सा प्रेशर जो है होमवर्क का भी वो बच्चों पे रहना चाहिए, वो खुद करें, पेरेंट्स है हर हाल में उन्हें मोटिवेट
0: करना चाहिए। मैं अब शायद लोग इत्तफाक ना रखें, लेकिन मेरा तो यही है कि भाई ज्यादातर मतलब वो नुकसान का बाइस बनता है कि अगर हम करते जाए उनके लिए, फिर वो बच्चे इतने लेजी बन जाते हैं, इतने मतलब ये करके कि अपना काम खुद का, क्योंकि मेरा लड़का खुद का भी इतना कुछ पढ़ लिख के वो खुद भी मतलब वो इतना लेजी, अब वो आदत उनका इसे मतलब खराब कर दी है कि वो इधर से उधर मतलब वो करना नहीं पसंद करते हैं। मैं खुद उससे भुगत रहा हूँ कुछ लोगों के मतलब, खासकर जो लड़के होते हैं, लड़कियां तो बल्कि तकरीबन उनको थोड़ा डांट बोल के उनको उससे करवा लोगे, जो लड़के होते हैं ना अगर शुरू में उनको ये नहीं किए तो फिर वो थोड़ा सा फिर आपको टेंशन के उसमें डिप्रेशन में डालते हैं कि यार ये किस टाइप का है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा आप, बिल्कुल यही बच्चों की तरबियत है, यही उनकी ग्रूमिंग है कि किस तरह से आप उन्हें जो है प्रिपेयर कर रहे
0: हो। नहीं रखता मेरे ख्याल से, खाली तालीम तालीम पे लोग आजकल फोकस कर रहे हैं, भाई तरबियत बहुत बड़ी चीज है, तरबियत अगर नहीं है, अखलाक अगर नहीं है तो फिर वो कोई फायदा नहीं। तालीम का मकसद क्या है भाई, हमको तालीम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं ताकि हमारे अपने लाइफ से लेके सारी चीजें दुनिया भी की मतलब वो हम अपना मतलब सही से सबमिट कर सके। अब अगर हमारे पास मतलब तरबियत और तालीम नहीं तो फिर सारा पढ़ाई सारा वो फिर वो बेवकूफों में से है। और ये बहुत कम पढ़े लिखे बड़े बड़े अखलाक के और बड़े उसके मतलब ये हैं और उनकी तारीफ होती है और अच्छे खासे पढ़े लिखे, उनकी जबान उनकी बात उनका रवैया ऐसा होता है कि लोगों के साथ में लोग उनसे मतलब तकलीफ महसूस करते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
1: बहुत ही अच्छी बात, और आपने लाइफ एग्जांपल के साथ समझाया भी ये क्यों जरूरी है, जिससे बच्चे इतने लेजी ना हो और थोड़े से डिपेंडेंट बने, थोड़ा उन्हें रिस्पांसिबिलिटीज का एहसास
0: है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब अगर गफलत करोगे कि ये लड़का है या वो है इसको छोड़ दो थोड़ा सा मतलब इसको, तो वो फिर वो परेशानी का जरिया बन जाएंगे आपके लिए।
1: फिर वही है कि जब उनको लाइफ में एक्चुअल में उन चीजों को फेस करना पड़ता है तो वो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, कर नहीं पाते
0: तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते
1: हैं, जाहिर स्ट्रगल करेंगे, तो आपने सिखाया नहीं है, फिर वो ब्लेम भी क्या होता है पेरेंट्स को ही जाता है, बच्चा भी कहता है आपने हमें सिखाया नहीं, है ना, वो तो बहुत खड़ाक से बोल देते हैं बच्चे, तो बस ये है कि आप उनपे थोड़ा सा प्रेशर।
0: असल में एक बहुत बड़ी कमजोरी हम लोगों की ये भी है कि हम घर पे नहीं रहते हैं ना, बाप तो ज्यादा तो माँ को उतना ज्यादा उनको वो अहमियत नहीं देते हैं, और उनके वो रहम दिल भी होती है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा मतलब ये करके डांटेंगे भी, फिर जाके उनसे ये भी करेंगे मतलब थोड़ा सा बात, तो फिर उनके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता
1: नहीं
0: है। जो प्रेशर बाप का होता है घर पे वो प्रेशर माँ के जरिए नहीं बन पाता है, तो हम बचपन से ही उन बच्चों को उस हिसाब से ढालें, उस हिसाब से ये करें कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भी मतलब ज्यादा नहीं कि मतलब मैं खुद भी देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कमजोरी कि हम कितने जिम्मेदार थे, कितने जिम्मेदार थे कि बिल्कुल हमारे माँ बाप समझ लो कि बहुत कम पढ़े लिखे और बहुत कम मतलब समझ लो कि ये थे, लेकिन उनके उनसे मतलब नहीं था कि तुम बनाओ या बिगाड़ो, क्या करना है तुम हिसाब से, तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी आई। हाँ खेती बाड़ी बहुत ज्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ मजदूर रख के करवाते थे अब्बू भी हम लोग, लेकिन उससे वो नहीं पूरा होता नाजिया, वो जो आजकल का इतना महंगाई और इतना ये हो गए कि कितना भी हो कि उससे जब तक अगर बाहर से आप ये नहीं करोगे ना, तो आजकल का इतना खर्च इतना जरूरत बन गया बच्चों की पढ़ाई के लिए कि नहीं पूरा कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते हो आप, तो वो हम मतलब हमने सीखा, और हमारे बच्चे जब आँख खोलते हैं तो हमने सारी चीजें मुहैया कर दी उनके लिए, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा मतलब मशीन उनका कपड़ा धोने के लिए से लेके और उनके खा मतलब सारी चीजें, तो फिर उनको मतलब ये एहसास नहीं रह जाता है, तो ये चीजें थोड़ा सा हमको ये करके ख्याल करके रखना चाहिए, उनको भी थोड़ा जिम्मेदार बनाना चाहिए,
1: जिम्मेदार बनाना चाहिए, और छोटी छोटी चीजें उनपे डालनी चाहिए जिम्मेदारी वाली,
0: बिल्कुल उनको रहना चाहिए गाहे बगाहे कि वो आगे चल के, और उनके ऊपर जरूरत पड़े तो प्रेशर करके कि भाई ये तुमने ही करना है, चाहे दो दिन बाद करो तुम्हारा काम वहीं पे पड़ा रहेगा, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं इतना सीखा हूँ, मैं कभी कभी मतलब मुझे इतना अफसोस होता कोई कोई बात उनकी माँ बताने लगती है, मैं बोलता हूँ यार मुझसे मत बताओ, तुमने खुद खराब किया उनको आदत, तो फिर हम सबको बता रहे हो, हाँ तुम लोग अरे बच्चा है वो पढ़ के आ रहा है या मतलब उसने ये है वो है, तो फिर भैया तुम भुगतो को फिर हमसे क्यों बता रहे हो, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से,
1: सही बात।
0: ये सब चीजें मतलब हमें थोड़ा सा ये करके ख्याल करके रखना चाहिए, जो जिस लायक है वो करे, और खुद भी मतलब हम तो इतना बस सोच रहे हैं कि मतलब आजकल जिस तरीके से हम लोग अपना

0: लाइफ अपना ये करके हम बचपन में भी अपनी परेशानी को थोड़ा देखे और ये करके, और हम इतना एफर्ट करके परदेश में रह के दिन भर काम करो फिर आओ शाम को अपना सारा चीज खान पान, मतलब जो बैचलर लाइफ जी रहे हैं उनको एहसास है कि हम कितना मतलब ये करके बर्दाश्त करके और फिर भी अपना भाई मजबूरी है, किसके ऊपर तुम दोष जमाओगे, तुम करोगे तो खाओगे। और वो चीजें हमारे बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों को हमने मतलब इतना ट्रेवल दे दिया कि मतलब उनके सब मोबाइल से लेके सारी चीजें, तो अब वो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो ये चीजें हमको मतलब उनको थोड़ा सा ये करके रखना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर जरूरत रहे, पैसा खींच के रखना, हर चीज उनको हाथ में मुहैया नहीं करके देना चाहिए, भाई नहीं है मेरे पास, बस नहीं है मैं कर सकता हूँ, तुम खुद जिस दिन कमाना ये करना ले लेना।
1: सही कहा बिल्कुल, थोड़ा सा हल्का सा इसको स्ट्रिक्टनेस नहीं कहेंगे, इसे राइट पेरेंटिंग मैं कहूंगी कि ये जरूरी भी है।
0: हाँ जरूरत है उनको, अगर कोई चीज का मतलब उनके तालीम के लिए कोई तो उनको मतलब प्रोवाइड करें कि भाई हाँ जरूरत है, वो पैसा वो कहाँ से मतलब ये करेगा, उनके जरूरियात को प्रोवाइड करें, लेकिन वो भी नजर रखें कि वो कर क्या रहे हैं। ये चीज अगर हम नजर नहीं रखेंगे कि भाई वो मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप, मतलब किसके साथ मिलजुल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये चीजें हमारे लिए, अगर किसी बच्चे से हम मोबाइल मांग रहे हैं और मोबाइल नहीं दे रहा है तो ये समझ लो कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर उसने शराफत से दे दिया तो समझ लो कि वो बच्चा मतलब आगे चल के तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा, हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा। तो अपनी सारी चीजों को मतलब एकदम ये करके रखें कि अपने मोबाइल उनको दे दें, उनका मोबाइल, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, माओं को भी इसके ऊपर थोड़ा सा ये करना चाहिए, ख्याल करके रखना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। आजकल का माहौल बहुत बड़े फितने का जरिया बन रहा है, ये खासकर मोबाइल के जरिए,
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब चीजें हमें ख्याल करके रखना चाहिए, जो उनके लायक है होमवर्क वो उनसे करवाएं,
1: जरूरी
0: है।
1: और होना भी चाहिए,
0: नरमी से पेश आते आते उनको उसमें मतलब आदत उनके डाल के रखें ताकि वो मुसीबत ना बने आगे चल के, और अपने लाइफ को भी, वो चाहे लड़की रहे, मान लो उसे तो शादी ब्याह करके जिस घर में जाना है, तो मान लो तुम्हारे पे सारी चीजें मुहैया थी, तुमने ये करके दिया सारा, अब वो जब अपने ससुराल में गए क्या गई तो गई वो, तो मतलब फिर वहां पे के लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है कि हमारे घर पे तो ये था तो हम तो इसको हाथ में नहीं लगाते थे, अरे भैया यहाँ पे हो तो तुमको यहाँ के हिसाब से करना है।
1: सही बात है, बिल्कुल। आप तो बड़ी प्रैक्टिकल है, आई रियली लाइक योर अप्रोच, आपकी काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है।
0: दुनिया को देख के मैं थोड़ा सा ये करके, और मैं ये कर रहा हूँ कि भाई अगर हम और आप, मान लो हमारे साथ नहीं हो रहा तो औरों के साथ मैं देख रहा हूँ जो ज्यादा गफलत किए हैं, तो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा अवेयर रहता हूँ, देखता हूँ कि मतलब किस तरीके से, तो थोड़ा सा ख्याल करके रखता हूँ दूसरों को देख के, जो थोड़ा सा गफलत में जिंदगी गुजार रहे, तो फिर उनके बच्चे बहुत गलत रास्ते पे चले गए हैं कि वो उनको इतना पछतावा हुआ कि अब वो उनको कुछ नहीं कर सकते हैं।
1: राइट, बिल्कुल।
0: तो ये चीजें बहुत जरूरी है,
1: जरूरी है, बहुत जरूरी है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मजा आया आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट कॉलर थे, उन्होंने पूरी तरह से डिटेल में समझाया कि बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अपने लाइफ एग्जांपल्स भी उन्होंने शेयर किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम जिसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इज़ अबाउट होमवर्क। कहने को तो ये होमवर्क है, लेकिन इस पर काफ़ी डिबेट होती जा रही है, हो रही है, अब भी चल रही है, और कुछ लोग जो है काफ़ी प्रो हैं इस बात के कि हाँ बैन कर देना चाहिए होमवर्क्स को, कुछ लोग इस बात के प्रो नहीं है। उनका मानना है कि होमवर्क जो है वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट है या फिर सेल्फ स्टडी की जो एक आदत है उसे और इम्प्रूव है। तो आज मैं आपसे भी यही पूछ रही हूँ, क्या होमवर्क को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे बताइए 666-22-107 पर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर।
2: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत ना सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है, और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं,

0: और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, welcome back. A very good morning. और हम अपने शो के सेकेंड आवर में एंट्री ले रहे हैं 7:03. जी हाँ, 7:03 में हमने अपने शो के सेकेंड आवर में एंट्री ले ली है और अभी आप और हम पूरे 2 घंटे और आपके साथ हैं और भी बहुत सारी बातें चलती रहेंगी. बट आज का जो दिन है ना वो बड़ा खास है, जस्ट बिकॉज आज ट्यूजडे है और ट्यूजडेज में ये तय पाया गया है कि हम टर्निंग बैक ट्यूजडेज विद 90s सेलिब्रेट करेंगे. यानी अब से आपके जो फेवरेट 90s के जो सॉन्ग्स हैं वो पूरे 2 घंटे तक चलने वाले हैं. तो या आपके जितने भी फेवरेट 90s, बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 90s का क्रेज़ है, 90s के सॉन्ग्स को बहुत पसंद करते हैं. तो ट्यूसडेज में हमने डिसाइड किया है कि वील प्ले 90s के ही सॉन्ग सारे के सारे. तो बस थोड़ी देर में यहाँ पर जो है वो अमेजिंग ट्रैक्स जो है वो आपके लिए लाइन अप किए गए हैं, आप इन्जॉय करेंगे थ्रू आउट. बट हाँ, उससे पहले आज का जो हमारा कड़क कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है उस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा.
1: कड़क कन्वर्सेशंस.
0: हाँ जी, तो हम जिस करेक्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है होमवर्क को लेकर. जी हाँ, होमवर्क को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही आज का सवाल है. यही हम आज आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी हमारे पास हैं, जैसे सलाम कहा है. सिर्फ सलाम ही कहा है इन्होंने और इनका नाम अच्छा यूसुफ जी है. यूसुफ सलाम कहते हैं. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. रमेश यादव जी हैं और रमेश यादव जी ने भी वेलकम और हैप्पी मॉर्निंग कही है. थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया. इसके साथ यहाँ पर कोई और भी हमारे साथ जुड़ा है, इनका नाम मुझे नहीं पता. CB लिख रखा है इन्होंने और ये कहते हैं आजकल होमवर्क पेरेंट्स को मिलता है ऑनलाइन, बच्चे खुद कर ही नहीं सकते. अच्छा हाँ, ये तो मैंने बोला था कि बहुत सारे होमवर्क्स ऐसे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जाती हैं जो बच्चे तो वाकई नहीं कर रहे होते, वो मदर्स ही कर रही होती है, वो प्रोजेक्ट उनकी मदर्स को ही मिल रहा होता है. तो ऐसा होमवर्क तो बिल्कुल बेकार है. इससे तो बहुत अच्छा है कि आप जो है ना स्कूल में ही करा लो कोई एक्टिविटी, है ना. यहाँ पर हिशाम है, सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं. हेलो.
2: सलाम वालेकुम नाजिया जी. गुड मॉर्निंग.
0: वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग.
2: सबाल खैर.
0: सबाल
2: खैर. सबाल खैर. बेस साहब इंशाल्लाह आप खैर भी. अच्छा है.
0: अच्छा है. आप कैसा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हुआ फुटबॉल का? मेरा बहुत सच निकला नहीं निकला अभी किधर?
0: आपकी बात तो बिल्कुल सही निकल गई, हालांकि वो बात मेरे भी दिल की बात थी, बट आपने अपने मुंह से अपनी जुबान से कह दिया तो वाकई. तो बताइए कहाँ है पार्टी?
2: पार्टी मुश्किल नहीं, आप कहाँ से बोलो मुश्किल नहीं है. पार्टी मेरी तरफ से.
0: आपकी तरफ से? हाँ, यही तो सुनना था मुझे कि पार्टी किसकी तरफ से. तो बताइए आपने एंजॉय किया जब आपकी टीम जीते, ही कुछ था छोटा मोटा सेलिब्रेशन? नहीं,
2: मैं एंजॉय किया. कल कौन है अपना पाकिस्तानी, नाम मैं भूल गया, सभा को. अच्छा. सभा को भी मामरू की दिया.
0: अरे वाह, क्या बात.
2: कल आप नहीं मिला रहे? कल आप नहीं मिला रहे? कल बिजी था बहुत तुम्हारा, इसलिए नहीं मिला था मैं.
0: अच्छा, कल नहीं मिल पाया.
2: चलिए, मैं सभा को बोला, हमारा सभा को बोला था तुम्हारा पार्टी कौन देगा.
0: अच्छी बात यह है कि हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे. जब आपको उम्मीद कम हो और कुछ हो जाए तो एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी नहीं मुझे. मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा चांसेस हैं, 80% मुझे लगता था कि अर्जेंटीना ही जीतेगी.
2: मैं पहले आपको बताया ना, मैं बोला,
0: तो मुझे बोला था कि नहीं स्पेन जीतेगा, बहुत ही कन्विक्शन से. लेकिन अच्छी बात है. हाँ, देखिए होता है ना, कभी कभी आपके मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है. और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्पेन को चीयर किया, वो सपोर्ट कर रहे थे. मुझे उस दिन जो मैसेजेस से ये पता चला कि अरे भाई, सिर्फ लोग मेसी को ही नहीं, औरों को भी पसंद करते हैं इक्वली. तो अर्जेंटीना के अलावा बहुत लोग जो थे वो स्पेन के साथ थे. स्पेन के साथ हो या ना हो, फॉर अ रीजन वो चाहते नहीं थे कि अर्जेंटीना जीते, आप जानते हैं.
2: स्पेन देखो, स्पेन ने इतना खेल खेला, खाली एक गोल का आया बस.
0: हाँ,
2: एक ही गोल का आया बस.
0: बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, बहुत अच्छा खेला.
2: आप देखा

0: मैं तो सो गई थी क्योंकि मुझे भाई यहाँ सुबह आना होता है ना 6 बजे, तो इसलिए फिर बाद में कल मैंने थोड़े हाइलाइट्स वगैरह देखे।
1: नहीं मैंने देखा, मालूम है वो रेहन पार्क में ये बड़ा स्क्रीन लगा था, उधर भी जाके लेके बहुत यार बंगालियों का रश, उधर बोलता पूरा हल्ला करके अर्जेंटी अर्जेंटी बोल के अर्जेंटी अर्जेंटी बोल रहा था।
0: आप उसके बीच में अकेले स्पेन को चेयर कर रहे थे क्या? फिर तो सही है, मैंने कहा अजीब ही हो जाता आपका हाल अकेले बैठ के। बात तो आपकी एकदम सच निकली, बहुत ही कमाल की बात।
1: और कैसा चल रहा है ड्यूटी, कैसा चल रहा है काम,
0: सब ठीक, सब कुछ ठीक है? आप बताइए, पानी वानी का ख्याल रख रहे हैं, धूप से बच रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं आप? आप कीजिए, देखिए आपकी फट से कबूल हो जाती है, आप सबके लिए कीजिए दुआ सबसे पहले और मैं भी करूँगी इंशाल्लाह।
1: और कुछ?
0: बस जी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो बहुत ही प्यारे से हमारे कॉलर, और कुछ कॉलर इतने स्वीट होते हैं ना, मज़ा आता है उनसे, लगता ही नहीं कि आप टॉपिक पे बात करें पूछे, लगता है कि बस उन्हें सुने क्या कह रहे हैं, तो बिल्कुल दिल से बात की इन्होंने, बहुत ही अच्छी प्यारी बात। वैसे हमारा जो टॉपिक है स्टिल इट्स ओपन, हम पूछ आपसे यही रहे हैं, क्या होमवर्क्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ कुछ और भी मैसेजेस हैं जहाँ लोगों का कहना है कि नहीं मैडम होमवर्क्स रहने चाहिए, जैसे इनका नाम है इफ्तिखार और ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि होमवर्क्स जो हैं वो बढ़ा देने चाहिए। क्यों, आपके बच्चे आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्या जो होमवर्क को बढ़ा देना चाहिए? अच्छा एक और मैसेज है और इनका नाम देखते हैं, नाम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आमिर इनका नाम है। ओके गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ मैम आप खैरियत से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे। और साथ ही इन्होंने कहा है कि मैडम होमवर्क्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के पास फिर वक्त नहीं रहता स्पोर्ट्स के लिए। हाँ ये एक पॉइंट है, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है आमिर जी जो आपने यहाँ पे शेयर किया, और यही लोग सपोर्ट में भी बोल रहे होते हैं। मतलब होमवर्क के सपोर्ट में तो खैर जो है सो है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग होमवर्क के ख़िलाफ़ हैं उनका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होता है कि बच्चा पूरे दिन जो है वो पढ़ाई करके आ रहा है, अब उसको आराम के लिए टाइम चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए टाइम चाहिए, और फैमिली के साथ वक्त गुजारना भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर दिस उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो होमवर्क ना हो, जिससे उसके मतलब एक स्ट्रेस उसके ऊपर ना हो, एंजाइटी ना हो, बच्चे में बहुत ज़्यादा थकान जो है वो महसूस ना करे। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं होमवर्क की वजह से ये भी कहा जाता है कि अपनी हॉबीज़ और अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, सो फॉर दैट होमवर्क जो है वो नहीं होने चाहिए। जो नहीं वाले लोग हैं मैं उनकी बात बता रही हूँ, खैर मेरा ये इंस्टेंस नहीं है, मैं अपना तो बाद में शेयर करूँगी, लेकिन आपको क्या लगता है? और एक चीज़ मुझे और भी ऐड करके बताइएगा अपने चाइल्डहुड मेमोरीज से कि क्या आप अपने सारे होमवर्क्स खुद ही करते थे या फिर आप जो थे वो पटाते थे अपनी बड़ी बहन को कि तुम मेरा होमवर्क कर दो, या फिर आपका कोई फ्रेंड था जो आपकी बड़ी मदद करता था, आप तो चिल कर रहे हैं वो आपकी जगह आपका होमवर्क सारा कंप्लीट कर रहा है, वो बात अलग है कि वो बुरा भला भी बोलता जा रहा है लेकिन कर रहा है, तो कोई था ऐसा, कोई ऐसा इंसिडेंट है ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ 666-222-107 पर, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 443-443-77। और अभी के लिए

हाँ जी, दूल्हे राजा मूवी से ये सोनू निगम और जसविंदर नरुला की आवाज में अखियों से गोली मारे अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय की। स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 7:23 ऑन द क्लॉक. और यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है. इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है बट ये बोलती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मॉम ही है बट आई डोंट नो, लास्ट में इनके नंबर के है 136. तो खैर, इन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा से एक लिख के भेजा है कि मैं सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो उसको होमवर्क मिले, वो जो पढ़ने की आदत है वो बच्चों की बनी रहे. बट उसके बाद एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि बच्चा बुरी तरह से थक जाता है. अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप

0: आपका बच्चा काम करने की वजह से या होमवर्क की वजह से यू नो ओवरवेल्म्ड फील करता है, तो व्हाट यू कैन डू इज, अब क्या कुछ कर सकते हो, सबसे पहले जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि होमवर्क रूटीन बनाया जाए. मतलब हर दिन का एक फिक्स्ड स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए बच्चों के लिए, जिससे बच्चे को लगे नहीं कि मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा एडिशनल बर्डन है. क्योंकि आज मुझे होमवर्क मिला है तो मेरे ऊपर एक एडिशनल बर्डन है और मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा. क्योंकि अगर उसका रूटीन सेट होगा ना, तो उसको पता होगा कि डेली मुझे कुछ करना है, चाहे होमवर्क मिले ना मिले, बट आई हैव टू सेट एंड हैव टू डू दिस, तो वो उसके जहन में एकदम क्लियर रहेगा. वहीं पर कई बार जो होते हैं ना, बड़े टास्क हैं, बड़ा कोई प्रोजेक्ट है या कुछ ज़्यादा बड़ा काम है, बच्चे को मिला है होमवर्क, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए. एक वक्त में सिर्फ एक पार्ट पे फोकस करना बच्चे के लिए काफ़ी आसान हो जाता है और इससे वो स्ट्रेस में नहीं आता, उस पर प्रेशर बिल्ट नहीं होता, ये बड़ा ज़रूरी है. फिर अगर बच्चे को थोड़ा सा होमवर्क मान लीजिए ज़्यादा ही मिला है, या थोड़ा काम उसको ज़्यादा करना है, या फॉर एग्जाम्पल लर्निंग मिल गई, चलो लिखना नहीं है बट लर्न करना है, अब वो भी तो काम ही है, वो भी तो एक होमवर्क ही है ना. अब आप बोलोगे कि नहीं लर्निंग भी नहीं करना है बच्चे को, तो ऐसे कैसे काम चलेगा. तो उसमें आप बच्चों के लिए ना रेगुलर एक ब्रेक्स दें, 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक है वो कहीं ना कहीं बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है. वहीं पर अगर वाकई आपको लगता है कि यू नो होमवर्क बहुत है और बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है एंड ऑल दैट, तो टीचर से आप कम्युनिकेट जरूर कीजिए. बच्चों को अच्छा लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें, टीचर्स से कनेक्शन भी बनाएं या उनकी बात होती रहे. टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि ये पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से कंसर्न हैं. अगर होमवर्क ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने जो कंसर्न्स हैं उन्हें ओपनली डिस्कस कर सकते हो, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं एक चीज़ और मैं सारे पेरेंट्स से और सारी मदर्स से सबसे कहना चाहूँगी कि बच्चे के एफर्ट्स को जो है वो अप्रिशिएट कीजिए. मतलब उसके एफर्ट्स पर आपका फोकस होना चाहिए, परफेक्शंस पे नहीं. परफेक्ट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट होना. बच्चा कंसिस्टेंटली रोज़ बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा है या सीख रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती, बिलीव मी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स को चैलेंज तो करती है, थोड़ा सा हो सकता है थकाती भी है, लेकिन इतना नहीं कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में या फिर प्रेशर में आ जाए. कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक बैलेंस जो है लाइफ में राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसको बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि बाद में भी आपके पास जब आप जॉब करने लगेंगे तब आपके पास डेडलाइंस आएंगे, आपके पास जो है वो टास्क होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में उन्हें फिनिश करना होगा, तो आपने तो प्रेशर कभी लिया ही नहीं है ना. क्योंकि आपके मामा ने आपके पेरेंट्स ने आपको इतना ओवर प्रोटेक्टेड रखा, आपको प्रेशर लेना ही नहीं आता, आप हैंडल ही नहीं कर पाते हो, तो फिर आपके लिए आपके बच्चे के लिए ना उस टाइम बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करूं. यहाँ मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जैसे मेरी शुरुआत में मुझे जो था इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ा. मैंने आपको कई बार शेयर भी किया है कि आई लॉस्ट माय मॉम एट अ वेरी यंग एज. तो मेरे फादर को लगा था कि नहीं, इन लोग को हॉस्टल में डालना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और ज़्यादा चीज़ें सीखें. जबकि उस वक्त हमें ये लग रहा था कि नहीं, ये माई फादर इज़ क्वाइट हार्श टू अस, मतलब हम लोग के साथ वो बहुत जुल्म कर रहे हैं, वो वाली फीलिंग आ रही थी. बट बाद में हमने महसूस किया कि एट अ वेरी यंग एज आई वॉज एबल टू लर्न सो मैनी थिंग्स. अपना खुद का काम करना, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, सुबह खुद ही उठना है ना, कोई आपको उठाने वाला नहीं है, कोई आपको उठाएगा नहीं, आप किसी को नखरे नहीं दिखाओगे, और एट टाइम्स आपको खुद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी देखना पड़ता था. मतलब भाग के आपको जाना तो है मिस पे, चीज़ें तो करनी, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया वो टाइम तो फिर आपको नहीं मिलेगा ना ब्रेकफास्ट. तो आप जो है थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और चीज़ों को खुद से मैनेज करना और सारी चीज़ें हैंडल करना सीख जाते हैं, जो बाद में आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा बड़ा यूज़फुल होता है. तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, हर तरीके से उसकी वेलबींग का ख्याल रख रहे हैं, जो कि रखना भी चाहिए और जो कि हमारी जिम्मेदारी भी है. लेकिन हाँ, ऐसे नहीं आप उसको इतना ओवर प्रोटेक्टेड या इस तरह से उसकी पैम्परिंग या इस तरह से उसे ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि वो आगे जाके जो है वो अपने आप में यू नो इस तरह का महसूस करें कि मैं तो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ नॉट कंडीशन या शी इज़ नॉट कंडीशन दैट वे. उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसे करना है इन चीज़ों का हैंडल. तो बस इसके लिए मुझे लगता है कि होमवर्क का जो थोड़ा सा लोड है, थोड़ा सा जो प्रेशर है या थोड़ा सा जो स्ट्रेस आ रहा है बच्चे पे, वो आने देना चाहिए. उसको पूरी तरह से ऐसे साइडलाइन करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं. नंबर है 6622107, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर. यहाँ पर एक मैसेज है, और होमवर्क शुड इंक्रीज फॉर हस्बैंड्स. अब्दुल रऊफ जी कहते हैं, क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको करना पड़ता था? भाई आप बहुत ही रेयर होंगे फादर्स, तो मैंने नहीं देखा कि वो बच्चों का होमवर्क या बच्चों के प्रोजेक्ट्स या बच्चों की ड्राइंग्स या कोई ऐसा काम करते हैं. बट अगर कोई फादर ऐसे हैं जो अपने बच्चों के होमवर्क कराते हैं, बच्चों के होमवर्क के लिए बैठते हैं या कंसर्न होते हैं, तो हैट्स ऑफ. प्लीज़ निकल के आइए बाहर वो सारे फादर्स जो वाकई इस चीज़ को रोज़ डेली मॉनिटर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या काम मिला, या आइए हम साथ में बैठ के होमवर्क करते हैं, कराते हैं, समथिंग लाइक दैट. प्लीज़ मुझे बताइएगा. एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरिफ जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग्स?
1: अभी अच्छी जा रही है, अभी एक पराठा लपेट दिया, अभी लपेट के पहुंच गया.
0: अरे मुझे तो बड़ी अजीब सी लग रही है बात, मैंने तो नहीं किया अभी तक कोई भी नाश्ता. आपने पराठे खा लिए? पराठा खाए या पराठे खाए?
1: चाय को सामने रख के मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है.
0: हाँ, वाह वाह वाह, वा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन पहले शुरुआत करेगा.
1: मैंने बोला थोड़ा थम जाओ, बात कर लूं, फिर हम एक दूसरे को देखेंगे.
0: फिर हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे. लेकिन इस मुलाकात, ये मुलाकात ठंडी ना हो जाए आपकी. नहीं, मैं कहूंगी. तो जैसे जैसे मौका मिल रहा है आप उनसे सलाम दुआ करते रहिए बीच बीच में.
1: Okay.
0: अच्छा आरिफ जी, मुझे बताइए बचपन में आप ऐसी शरारत करते थे कि खुद अपना होमवर्क नहीं किया, किसी से करवा लिया या किसी और ने आपकी जगह पे कर दिया, मतलब इस तरह की रहती थी आपकी, आप खुद ही सारा कुछ करते ही थे? अभी तो देखो होमवर्क नहीं है, बचपन में तो सबको मिले, हम लोग के टाइम में तो होमवर्क थे भर भर के.
1: मैं अपना होमवर्क खुद करता था, क्योंकि माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है और बाबा तो बाहर ही रहते हैं, कहीं रहते थे अभी भी.
0: अच्छा,
1: पर जो हाँ चिंसे थे घर वाले, मार मार के पढ़ाते थे, ये बात.
0: अच्छा, मार मार के पढ़ाते थे आपको?
1: मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा.
0: हाँ बताइए.
1: तो अभी हम लोग घर से थोड़ा मतलब 2 किलोमीटर इतना दूर एक सेकंड फ्लोर का स्कूल खुला था नया, इस टाइम बोर्डिंग था, प्राइवेट था.
0: सही.
1: तो उससे दादा ने नाम लिखा दिया, फिर उससे बस चलती थी, तो पहले बस से जाते थे. थोड़ा बड़े हुए तो पास में था, तो हम लोग वैसे दादा ने बोला कि मैं छोड़ दिया करूंगा साइकिल से. एक दिन मेरे को बच्चे थे उस टाइम, तो नहीं जाने का दिल था, मैंने बहुत जिद किया घर पे, रो रहा था. फिर दादा ने साइकिल पे बैठा और एक वो कंची आती थी ना, वो पतला कंची होती है, वो उठाया और मेरे को बैग पहनाया, फिर वो साइकिल पे और मैं पैदल. इधर मैं रुकता था, उधर मारते थे, फिर मैं दौड़ के चलता था आगे.
0: तो आप भाग जाते थे उधर?
1: नहीं नहीं, भागता नहीं था, पर हाँ मार खा खा के उस दिन पढ़ने गया था. उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला था कि आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा.
0: अरे भैया, वाकई अगर इस तरह की पिटाई हो, वो भी चल चल के मार मार के पहुंचाया जाए, तो फिर तो लगता है कि स्कूल ज्यादा सेफ है.
1: उन्होंने उनके हिसाब से थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, पर
0: बट आप मुझे सच बताइए, उनकी स्ट्रिक्टनेस का आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए.
1: उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगा, और अभी आके समझ में भी आता है ना कि उन्होंने क्यों मारा था उस टाइम पे. मेरा भविष्य बन जाए, मैं अच्छे से पढ़ लिख के एक कामयाब इंसान बनूं.
0: ट्रू ट्रू, देखो कितनी अच्छी बात है कि वो भी इतने कंसर्न थे.
1: हम लोग को लगता है लाजिम, कोई भी बच्चा उतना तो समझदार नहीं होता है कि लगेगा कितना एक दिन छुट्टी प्ले करना चाहिए, पर वो हमारे भले के लिए होता है.
0: वही बात है कि हमें तरीके से समझना है. ये तो चलिए थोड़ा सा उन्होंने आपके साथ सख्ती कर दी, थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आपको पीट लिया, लेकिन अगर समझा बुझा के किसी और तरीके से आपको ले जाते.
1: अब बच्चे समझेगा, बच्चे तो मैं जितने भी था थोड़ा ज्यादा क्यों.
0: अच्छा, फिर से जीते हो आपसे?
1: मैं पहला घर का पहला लड़का था, उसके लिए थोड़ा जितने भी था. और सबसे फिर देखो ये भी बात है, सबसे ज्यादा प्यार मेरे को दादा ने किया है बचपन में.
0: देखिए
1: मैं दादा और दादी के साथ अपने रहा हूँ बचपन, लगभग
0: के साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा. तो भाई सही बात है, जब ये लोग होते हैं तो इनका अलग तरह का प्यार भी होता है, समझाते भी, और इनकी जो लेसन है वो याद, हाँ डांट भी होती है लेकिन हमारे फायदे के लिए। आपकी तो घर पिटाई हुई, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि मैं डिजर्व करता था पिटाई।
1: नहीं वो मैं डिजर्व नहीं करता था, इतना जिद्दी था ना कि वो एक मार जरूरी थी।
0: एक मार नहीं, कई बार मार जरूरी हुई होगी आपको मुझे लगता है।
1: वैसे तो मार तो बचपन में पड़ती रही है, वो तो कल की कथा है, वो सुनाने बैठूंगा तो फिर मैं इमोशनल हो
0: जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी दादाजी आपको बहुत प्यार करते थे, आपने बताया वो आपसे अटैच, आप भी उनसे बहुत ज्यादा अटैच, तो वो जितना प्यार अगर आपको कभी मारते होंगे तो फौरन ही अगले पल कंपनसेट करते होंगे, मतलब वो उस तरह से प्यार भी दिखाते होंगे
1: उन्हें। वो तो हाँ। मैंने तो नहीं देखा, पर उनको भी एहसास तो होगा ना, लाजिस की मैं जिस बच्चे को इतना प्यार दे रहा हूं कि उसको मारना पड़ रहा है, और मेरे भले के लिए उन्होंने मारा था, मेरे अच्छे के लिए सोची।
0: चलिए कुछ भी सही, आपकी पढ़ाई तो उन्होंने मार पिटाई से करवा ही दी पूरी, ये अच्छी बात है।
1: और उसका आपको फायदा तो आपने कुछ ये है,
0: अच्छा कोई भी नहीं
1: पढ़ने के लिए कोई नहीं मारता था कि घर पे बैठ के पढ़ो।
0: हाँ
1: बस सब बोलते थे नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे, ये अच्छा से पढ़ लिख लो, घर में कोई नहीं है पढ़ाने, तुम ही हो बड़े, तुम ही हो छोटे बच्चे में,
0: अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए
1: नहीं
0: पढ़ तो लिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कामयाब भी है, पढ़ भी लिए, हाँ थोड़ी सी पिटाई और होती तो थोड़ा पढ़ते, हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि चलिए हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि चीज़ों को समझ रहे हैं, बात करने का तरीका हमें आता है, लोगों से इंटरेक्ट करना आता है, ये सारी चीज़ें भी तो पढ़ाई के थ्रू आपको आती है ना, तो इसलिए भी
1: पढ़ना।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आप अपने होमवर्क खुद ही करते थे, अभी तक कोई ऐसा निकल के नहीं आया जिसके होमवर्क कोई और कर रहा हो, उसकी बहन, उसके भाई बड़े या अम्मी कर दें या फिर दोस्त कर दें, नहीं ऐसा कोई नहीं है।
1: चलिए नहीं करके जाते तो टीचर लोग जानते थे, करते भी थे, क्यों उस टाइम की मार बहुत ही अलग थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: अभी तो टीचर लोग मारते भी नहीं, अभी का टीचर लोग तो
0: डरते हैं, खुद बच्चों से डर रहे हैं।
1: हमने इतनी मार खाई है, वो
0: वाकई सही बात है,
1: हाथ उल्टा करके, एक तो हथेली पे वो मारते थे, वो लगे उसको उल्टा करा के भी मारते थे।
0: सही बात है, सब कुछ हमारे ही टाइम में हुआ, होमवर्क सबसे ज्यादा हमारे टाइम में, मार पिटाई भी हमारे ही टाइम में, सारी चीज अब आते आते सब कुछ बेहतर हो गई।
1: 10-15 दिन का हॉलीडे है तो उसमें इतना होमवर्क मिल जाता था कि दिमाग खराब।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: है, होमवर्क करे घर पे,
0: सही बात है, हम लोग ने कितने होमवर्क्स किए सोचिए, मतलब भर भर के हम लोग को समर ब्रेक्स में तो इतना मिलता था, अभी तो कुछ भी नहीं बच्चों को मिलता है, उसमें भी बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यही बहुत है। अरे भाई
1: मैंने दोबारा,
0: हाँ वही ना, जितना आराम मिल रहा है ना उतने ही फैलते जा रहे हैं बच्चे के, और आराम चाहिए और आराम चाहिए, और हम लोग को बुरा लग रहा है कि हमारे टाइम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, बड़ी बुरी बात है। हाँ देखिए ना कितना आसान है, और सारी चीजें हैं आप आसानी से, पहले हम लोग स्ट्रगल करके एक चीज को समझते थे, इस तरह से नेट और चीजें तो थी नहीं अवेलेबल, तो आसान
1: है ना,
0: वही बात है, मतलब बड़ा दिल खराब होता है ना, सब कुछ ऐसी चीजें हमारे टाइम में नहीं आई, अब देखो अब ये बच्चे उसमें भी रोते चल रहे हैं, इनको बताओ हम लोगों ने कितनी मेहनत की, तो इन्हें यकीन भी नहीं आता, बताओ कहते अरे हाँ आप ऐसे बोल रही, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, मार खाए भी लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं,
1: गार्जियन भी नहीं जाते थे ना कि तो स्कूल में क्यों मेरे बच्चे को मारा,
0: हाँ
1: तो और मारो, बच्चे
0: तो
1: घर पे पढ़ाई नहीं करता इसको और मारो, और अभी का गार्जियन भी चले जाते हैं,
0: हाँ अभी तो फौरन कंप्लेन हो जाती है टीचर
1: को मारा,
0: हाँ इतनी सी खरोज नहीं आनी चाहिए, टीचर्स डर रहे होते हैं बच्चे से, बच्चा नहीं डरता है टीचर से आज के टाइम में, ये बात तो है,
1: हाँ
0: ये तो सच्ची बात है। चलिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की आपने, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, थैंक यू सो मच, मैं नहीं चाह रही हूँ कि पराठा जो है वो ठंडा हो जाए पूरी तरह से हमारी बातों से, तो खैर
1: पराठे तो खा लिए था, चाय था, तो भी थोड़ा थोड़ा पी ही रहा हूँ।
0: हाँ वही ना, उसको भी जरा सलाम दुआ करते रहिए, बातचीत करते रहिए उन्हें भी उनके साथ। बट थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिए। बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर हुई है, आरिफ जी ने इतनी अच्छी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज हमारे साथ शेयर की। मैं भी इतना कनेक्ट कर पा रही हूँ, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग भी होंगे जो डेफिनेटली इस बात के साथ कनेक्ट करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग,
0: अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: अज्जू।
0: अज्जू कैसे हैं अज्जू आप?
2: सो
0: आई एम श्योर आज आप हमें सुन रहे होंगे, तो आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ये कि क्या पूरी तरह से होमवर्क्स को बैन कर देना चाहिए। दिस इज लाइक अ डिस्कशन गोइंग, आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं?
2: नहीं, एक्चुअली होमवर्क बैन नहीं करने का, जो आउट ऑफ सिलेबस छोड़ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होमवर्क देना चाहिए, लाइक ड्राइंग, स्मॉल स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट जैसे होना चाहिए। वो पूरा सी, मैं आई वाज इन माय स्कूल, आई नेवर डू एनी होमवर्क्स।
0: ओह रियली, हाउ कम दिस इज पॉसिबल? रियली
2: how come it's possible is my school and my home 1 hour by almost travel is 1 hour,
0: but still daily, okay
2: main daily cycle mein jata hu, cycle mein aata hu.
0: Acha,
2: after home main cricket khelne ke liye jata hu, uske baad martial arts jata hu, uske baad thoda activities main karta hu, isliye time nahi milega.
0: वाह भाई वाह, अज्जू जी आई एम सो सो सो प्राउड ऑफ यू। आपने कितना ऑनेस्टली कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है होमवर्क करने का, लेकिन ये जो आपने बोला कि ठीक है आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे, दैट्स वेरी गुड, बट स्टिल आपको मैनेज तो करना ही होगा अपना होमवर्क। कौन करता था फिर आपका होमवर्क? फिर तो कंप्लेंट्स आती होंगी स्कूल से।
2: टीचर तो बोलेगा क्लास में बाहर जाओ, मैं ठीक है जी मैं बाहर जाएगा, मैं सीधा ग्राउंड में चला जाएगा।
0: This is amazing, hats off भाई, ये वाले guts ही कहाँ से आता है लोगों में?
2: नहीं मैं, लेकिन मैं दो subject का homework में कभी कभी करता हूँ, maths and science, वो दोनों मेरे को बहुत पसंद है।
0: भाई hats off है, आप दो subject का कभी कभी कर लेते थे।
2: ये कभी कभी मैं करता हूँ।
0: तो मुझे बताइए आप class में तो रहे ही नहीं है, ज्यादातर तो ground पे ही रहे।
2: नहीं नहीं कोई, मैं ये दो सब्जेक्ट का होमवर्क कभी भी करता हूँ। वो बहुत आसान है, मैथ्स तो थोड़ा आसान है, 5 मिनट बैठेगा तो आप पूरा वो प्रॉब्लमेटिक सॉल्व कर सकते हैं।
0: तो आपका बहुत क्रिएटिव माइंड है ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स साइंस दोनों ही टफ है।
2: नहीं मेरा कभी भी मैथ्स का एवरेज 90 का नीचे नहीं जाता है, साइंस का भी 90 का नीचे नहीं जाता है। Tamil and English only going below 80.
0: But still it is good agar aap homework nahi kar rahe, you are not properly attending the classes and despite of that scoring like 60 or 75 in other subjects, so baki mein to aapko 90 aa rahe hain, so you are really a good student, that means you are intelligent. Aap to bina padhe itna acha score kar rahe the.
2: नहीं नहीं, कोई सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट होता ना, वो आपके लिए दिल रहेगा उसको पढ़ने के लिए।
0: हाँ ये तो है, कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको एकदम इंटरेस्ट नहीं आता ना, आपका तो, दिल नहीं लगता है।
2: सो कोई आपको थोड़ा माइंड यूज करने का, लेकिन वो आपको पसंद रहेगा तो आपको बहुत इजी है, आपको बहुत तैयारी करता है वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए।
0: जी जी,
2: मैं पूरा साइंस का रिलेटेड सब्जेक्ट, अब तो ना मैं इंजीनियरिंग पूरा स्टडी किया, पूरा साइंस का रिलेटेड है।
0: सो यू आर इंजीनियर।
2: एक बात है, वो अभी आज क्या सिचुएशन में, मेरा एक ब्रदर का डॉटर था, वो अभी 8th or 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसका स्कूल 7 o'clock शुरू होता है। नॉर्मली स्कूल वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 9 o'clock राइट इन इंडिया, बट दे स्टार्टेड फ्रॉम 7 o'clock, लाइक एवरी ईयर दे हैव टारगेट राइट, so they want to achieve the target, so they are giving more pressure on students, Even after 4 o'clock, they went to tuition for each and every subject, like maths, science, some subject. They went for tuition also, and came back to home around 8 o'clock. And after food, homework. And what time they are sleeping? Around 10 o'clock, 11 o'clock. So, main kya bol raha hun? Aapko 8 hours, 9 hours of school mein jitna उसको सीख रहा है वो काफी है. वो घर में थोड़ा उसको आराम देने के लिए, आराम देने का अगर होमवर्क चाहिए तो थोड़ा माइंड रिलेट, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक ड्राइंग, साइंस रिलेटेड, कोई स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल ऐसे देना चाहिए. वो उसको भी एक दिन दो दिन टाइम देगा तो दे आर वेरी हैप्पी.
0: ये बात तो है.
2: अभी अभी एक एक मैथ टीचर एक होमवर्क देता है, साइंस टीचर एक होमवर्क देता है, तमिल टीचर एक, इंग्लिश टीचर एक, एंड सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री. आप ही कितना, 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट में एक एक टीचर एक एक घंटा होमवर्क देगा तो किधर सोएगा बच्चा लोग.
0: ये तो है.
2: वो क्या होता है, वो उसको मेंटली डिप्रेस होके वो बहुत डिप्रेस हो गया. वो खाना नहीं खाता है, वो सही से नहीं सोता है, ऐसे उसका एवरेज बहुत कम हो गया. उसके बाद मेरा भाई क्या किया, उसको डॉक्टर में लेके जाके वो साइकोट्रिस्ट को लेके गया, लेके गया करके फिर उसका स्कूल भी चेंज कर दिया.
0: आई थिंक ये वाला प्रेशर जो है अज्जू जी, कहीं ना कहीं जो एकेडमिक प्रेशर है वो ठीक है स्कूल की तरफ से भी आता है, बट देन इट कम्स पैरेलली फ्रॉम होम आल्सो. व्हाट आई मीन टू से, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. कई बार होता क्या है कि ग्रेड्स का, हाई ग्रेड्स का एक्सपेक्टेशन किसका है, पेरेंट्स का भी है.
2: मैं कभी भी मेरा ब्रदर सिस्टर्स किसी को भी आए पढ़ो नहीं बोले, मैं नहीं बोलता हूँ.
0: अच्छा, हर कोई आपकी तरह जीनियस भी तो नहीं है. आप तो चलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे.
2: ये जीनियस और ना जीनियस ये दूसरी बात है. आपको फ्यूचर, आपको लाइफ में सक्सेस होना चाहिए आपको पढ़ने का. वो आपको आपको माइंड में वो ध्यान है तो वो कैसे भी वो पढ़ेगा.
0: लेकिन
2: ये एक एक सब्जेक्ट को एक एक घंटा आप होमवर्क दे रहे तो आपको, आप पूरा दिन होमवर्क ही करता है. होमवर्क क्या देता है, एक एक टॉपिक को कवर कर दिया, एक एक सम देता है, लाइक एग्जाम्पल मैथ्स टीचर एक दो तीन सम देता है, आप होम में ये करके आओ. अभी मेरा टाइम में गूगल ये इंटरनेट चैट जीपीटी कोई नहीं है. आजकल ये क्या करता है बच्चा लोग, यूट्यूब में देखते हैं और चैट जीपीटी में डालेगा तो वो पूरा आ जाता है,
0: पूरा आ जाता है.
2: सो व्हाट इज द यूज फॉर होमवर्क. कोई कोई बच्चा लोग को उसका दिमाग से काम करता है. ओके, कोई कोई बच्चा लोग को नहीं करता है, वो सीधा चैट जीपीटी और जेमिनी एआई में डालता है, वो पूरा सम आ जाता है, उसको लिख के दीजिए क्लास. तो उसका मीनिंग क्या है आजकल नया टेक्नोलॉजी में, उसको एक्सप्लोरेशन मोर चाहिए. तो साइंस का रिलेटेड उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थोड़ा देगा तो वो एक घंटा ड्राइंग करेगा तो वो बच्चे लोग का दिल थोड़ा खुश होता है.
0: इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए. बट एट सम स्कूल्स आई हैव सीन कि वो आर्ग्यू करते हैं दैट एट अ सर्टेन लेवल एक प्रेशर यू नो जो बच्चों पे स्टूडेंट्स पे आता है, दे हेल्प डेवलप देयर डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, एंड उनकी जो स्किल्स विच आर लाइक रियली रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर.
2: आई नो डेफिनेटली होमवर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता.
0: अच्छा नहीं आप मानते,
2: क्योंकि आजकल होमवर्क कौन करता है, बच्चों लोग ओके मैक्सिमम 20-30% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करता है, बाकी लोग को पूरा फादर और मदर और ट्यूशन में जाएगा तो ओके कोई
0: वहीं पे करवाते हैं.
2: मेरा एक दोस्त था,
0: ये भी सही कह रहे हैं,
2: क्लास आने का 5 मिनट पहले मेरा होमवर्क लेके पूरा फटाफट लिख के मेरा टीचर को देता है. ओके आप
0: नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, अग्री विद दिस. अ मॉडरेट एक वर्कलोड होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे टुवर्ड्स लर्निंग एंड टुवर्ड्स ग्रोथ. मतलब बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू यू एक एक्सेसिव, हां मॉडरेट होना चाहिए.
2: अकॉर्डिंग टू मी आई नेवर से होमवर्क इज नॉट गुड. होमवर्क इज गुड बट वी हैव टू रिड्यूस द लोड. आपको ये सी द टाइम वाज चिल्ड्रन विल बी हैप्पी इन स्कूल टाइम ओनली. They have lot of time. आपको खेलने के लिए जाने का, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम स्कूल में. आप कॉलेज जाने का टाइम आपको नहीं कर सकता है, एंड आफ्टर कॉलेज यू विल बी प्लेस इन जॉब, उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगा.
0: ट्रू
2: जस्ट रिड्यूस द लोड ओनली.
0: हाँ, जस्ट वे कि मॉडरेट वर्कलोड हो, जो बच्चा एंजॉय करे, लर्न करे, एंड शुडंट बी एक्सेसिव, जो बर्नआउट की एंग्जायटी की सिचुएशन आ जाए. दैट्स राइट, वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉल. एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कॉल. प्लेजर टॉकिंग टू यू. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय. तो यहाँ पे हमारे साथ जो कॉलर जुड़े अज्जू, उन्होंने बहुत ही अच्छा बड़ा डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव शेयर किया. आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड ही हैज़ अ वैलिड रीज़न, जिससे मैं भी इतफाक रखती हूँ, या पार्शली कहो या फिर पूरी तरह से मैं कहूँ कि हाँ, बात में दम तो है कि ठीक है, बच्चा जो है वो फिर वाकई बर्नआउट या एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, एंड जो पर्पस है वो भी डिफीट हो रहा है. बिकॉज हमारा पर्पस क्या है कि बच्चा जो है जेन्युइनली कुछ सीखे. बट आजकल के इतने सारे टूल्स हैं, इतने AI टूल्स आ गए हैं, AI के बच्चे आराम से उनसे करवाते हैं, और मतलब क्या ही सीख रहे हैं. सो दैट इज अनदर डिबेटेबल थिंग. बट बिफोर दैट, हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं. हेलो.
3: हेलो नाजी जी, सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: अहमद बोल रहा हूँ.
0: अहमद, कैसे हैं आप अहमद?
3: अल्हम्दुलिल्लाह नाजी जी, सच अ वंडरफुल टॉपिक, बिलीव मी, इतना अच्छा टॉपिक आपने आज रेज किया है. ये मेरे ख्याल से तमाम पेरेंट्स, तमाम स्टूडेंट, हर एक शख्स जो उस सिचुएशन से गुजर चुका, उस दौर से, वो अपने आप को रिलेट कर लेगा इस टॉपिक से.
0: या डेफिनेटली. तो क्या आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू से?
3: मैं कहूंगा कि इसको टोटली बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जैसा हम लोग बोलते हैं कि वर्क और फैमिली बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ फैमिली लाइफ बैलेंस होना चाहिए. उस वक्त जो स्टूडेंट जो होते हैं उसके लिए भी स्टडी टाइम और जो प्ले टाइम है वो भी बैलेंस होना चाहिए. ये नहीं कि आप उसको पूरा बर्डन कर दो होमवर्क से. वो टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से वो थोप देते बच्चों पर कि भाई ये आपने करना है और कर लेकर कल करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो वो अभी जो प्रीवियस जो कॉलर थे, मैं उनसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने जो कहा कि वो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते बच्चे. खुद हमारे साथ हो चुका है, वो इतना होमवर्क देते हैं टीचर्स, क्या बच्चे परेशान हो जाते हैं. वो सही है, यानी उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है.
0: ये अभी काफी
3: कुछ कुछ टीचर्स जो है वो उसको थोड़ा यानी इजीली ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर ध्यान दे रहे हैं, जैसा कुछ यानी जो बच्चों को आगे चलकर यानी काम आए.
0: काम आए. अच्छा, ऐसा नहीं लगता अगर पूरी तरह से बैन कर दे तो बच्चे ने जो भी क्लास में पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन, छोटे छोटे छोटा होमवर्क हो, बहुत ही प्रिसाइज हो, जो बच्चों के लिए रियली यूजफुल हो, वो कहीं लैक करेंगे बच्चे, और उस तरह से उनकी ग्रोथ
3: कैसे, आप वो छोटे को कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि एक जो टीचर होगी वो ये तो नहीं कहेगी कि मैथ्स में जाओ सिर्फ एक ही सम करके आओ, या इंग्लिश के टीचर जो कहेगी कि सिर्फ एक सेंटेंस खाली आपको लिख कर लाना है. वो तो लाजिम कहेंगे ओके एटलीस्ट वन पेज लिख कर लाओ,
0: एटलीस्ट वन पेज. तो एक पेज तो
3: आप उसको मल्टीप्लाई करें ना, फिर सेवन सब्जेक्ट अगर होते हैं बेसिक प्राइमरी स्कूल में तो फिर वो सेवन तो हो ही जाते हैं.
0: हाँ, जैसे अगर पूरे दिन में आधा दिन तो स्कूल में निकल गया, आधा बचता है, तो सात पेज
3: क्या? बच्चों के पास फिर और भी तो करने के लिए चीजें होती है. मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कुरान वगैरह पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको कुरान की भी टाइमिंग चाहिए, फिर उसका प्ले टाइम भी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइम भी चाहिए.
0: बिल्कुल, कोई स्पोर्ट में बच्चे को डालना है.
3: अर्ली मॉर्निंग जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग जा रहा है, उसको आने के बाद में थोड़ा रेस्ट भी चाहिए.
0: वो निकल के आता है कि क्या जो स्कूल की जो टाइमिंग्स हैं उन्हें थोड़ा सा रिड्यूस करना जरूरी है?
3: देखिए, स्कूल टाइमिंग मेरे ख्याल से मिनिमम तो 7 hours होते ही, जहाँ तक मेरा ख्याल
0: है. इसको कम करना चाहिए.
3: अगर आप कहेंगे कि नहीं हम होमवर्क बढ़ा देते हैं तो फिर स्कूल आवर्स 4 hours आप समझ लो कहेंगे, तो फिर देन आई वुड पार्शियली एग्री कर ठीक है चलिए 4 hours स्कूल कर देते हैं, और बच्चा के लिए जो 3 hours एक्स्ट्रा जो उसको मिलते हैं वो उसमें अपना होमवर्क कर कंप्लीट करेगा. क्योंकि होमवर्क कभी कभार रियली में बहुत ज्यादा हो जाता है, टीचर भी आई थिंक रियलाइज करते हैं, बट वो चाहते हैं कि बच्चे को प्रेशराइज करें ताकि एंड ऑफ द ईयर उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है.
0: वही कि बच्चा एक थोड़ा कंसिस्टेंट हो पढ़ाई के साथ घर पे भी, यानी कि एकदम गया घर पे और बिल्कुल टच नहीं कर रहा बुक्स, ये भी कहीं ना कहीं टीचर्स. जी
3: हर बच्चे की जो एबिलिटी होती है लर्निंग की और अंडरस्टैंडिंग की वो डिफरेंट होती है, करेक्ट?
0: बिल्कुल सही बात है।
3: एक क्लास में होता है कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल यानी स्कॉलर होता है, यानी उसका ब्रेन बहुत डेवलप्ड होता है, तो उसको इस चीज का असर नहीं पड़ेगा, वो क्लासरूम में इतना ग्रास्प कर लेगा कि वो उसको होमवर्क की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में, ये अपोजिट है।
0: सही कहा आपने। अच्छा एक और मेरा कंसर्न है एमर जी, क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं आपसे ही पूछूं, आज के इस डिजिटल दौर में हमारा, आप जानते हैं कि लर्निंग जो है वो सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे एजुकेशनल एप्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं, ये तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से भी है और होमवर्क का होमवर्क, तो इस तरह के एक्टिविटीज
3: टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चों का वो जो रुझान है, मिसाल के तौर पे अगर आप आज के बच्चों को पूछेंगे हिस्ट्री वगैरह के बारे में, तो वो कहते हैं कि हम लोगों को याद करने की क्या जरूरत है, गूगल पे एक सेंटेंस मारेंगे, चैट जीपीटी पे एक मारेंगे, हम लोगों की हिस्ट्री आ जाती है। So what is the need of history? Even my daughter was telling me one day, hey, Papa, history ki kya zaroorat hai? Manala, why? Asher, you have to learn, you have to know, you have to understand. Yeah. No, Papa. Google के ऊपर तो आपको सब मिल जाता है, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन करो मैं आपको एक मिनट में बता दूंगा। रीजनेबल तो रीजनेबल है, व्हाट इज द नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग व्हेन यू कैन हैव एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स।
0: यस दैट्स द वैलिड रीजन जो बच्चे आज के दे भी रहे हुए। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद योर दिस पॉइंट कि जो ट्रेडिशनल होमवर्क है उसे कम करके इंटरैक्टिव लर्निंग को ज्यादा प्रमोट किया जाए। That could be a better solution.
3: काफी इस बारे में डिस्कशन किया हूँ अपने कोलिग्स के साथ में मैथमेटिक्स को लेकर। ठीक है, मैथमेटिक्स को कहा जाता है कि भाई आज की लाइफ में आपका इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है। एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे नहीं होता है, बट योर ब्रेन डेवलप्स एट दैट एज। अगर आप वो जो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, यू आर एबल टू सॉल्व फ्यूचर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। मैथमेटिक्स का जहां तक मैंने अपना एक नजरिया बनाया कि मैथ्स उसमें जो पढ़ा जाता है वो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं उसको जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो लाइफ में आप यूज करते हो अननोइंगली, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से डेवलप हुआ है, आपने वो मैथ्स को सिलेक्ट किया हुआ है।
0: राइट,
3: तो मैथ्स के लिए आई वुड कंसिडर, बट हिस्ट्री के लिए आई रियली डोंट थिंक।
0: नहीं, मुझे लगता है हिस्ट्री पे हमेशा देयर वाज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट,
3: लेकिन जैसे कि आप खुद गौर करें ना, अगर आपको कोई चीज भी आपको हिस्टोरिकल आपको पता करनी है तो आप क्या करोगे? अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल पे गए, आप इमीडिएटली गूगल करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको सबको क्रैम किए, सब याद कीजिए, बाय हार्ट कीजिए, और वो एक आज के टाइम में बिल्कुल सही है, बिकॉज प्रीवियसली वी डोंट हैव ऑल दीस टूल्स, अभी तो मैं बस है तो बाय हार्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सो आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि हाँ, जो ट्रेडिशनल होमवर्क का स्टाइल है उसे कम करना बहुत जरूरी है। दैट्स ट्रू। मुझे लगता है आपको इतने प्रोजेक्ट वर्क की चीजें लानी पड़ी है कि ना, कंप्लीटली बिल्कुल सही। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इतना ओपनली, इतना ऑनेस्टली इस टॉपिक पे अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने ओपिनियन है वो शेयर किया हमारे साथ। एंड वी ट्रूली ट्रूली एक्साइटेड।
3: टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक आपने रेज किए, थैंक्स अ लॉट फॉर यू एज वेल।
0: थैंक यू।
3: कुछ कुछ इदारों तक जानी चाहिए ये बात।
0: लेट्स होप, डिस्कशन तो हो ही रहा है, लेट्स होप कि जो भी हो बेहतर।
3: बच्चे लोग आपको बहुत दुआएं देंगे।
0: हालांकि मैं अब अपनी राय चेंज करने पर हूँ, क्योंकि प्रीवियसली आई वाज नॉट फुल्ली इन सपोर्ट कि होमवर्क कंप्लीटली बैन हो, बट क्वाइट लाइक कन्विंस्ड आप दोनों से।
3: टॉपिक आपका जब ये प्रोग्राम फिनिश होगा तो आपकी राय इंशाल्लाह पॉजिटिव हो जाएगी।
0: हाँ, ये बात तो सही है इंशाल्लाह।
3: अभी तक आप इस नजरिए में थे कि नहीं होमवर्क देना चाहिए?
0: हाँ, अभी तक मेरा ये था कि हाँ, मतलब मैं ये मानती हूँ कि ट्रेडिशनल होमवर्क नहीं हो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मॉडरेट वर्कलोड बच्चों पे होना चाहिए, वो उनके लिए जरूरी है, उनके फ्यूचर के लिए, उनको प्रिपेयर कराने के लिए भी थोड़ा जरूरी है। बट देन एज यू मेंशन के और सारी चीजें भी बच्चा कर रहा है, तो समहाउ उसकी पर्सनालिटी इनहांस तो हो ही रही है उन एक्टिविटीज के थ्रू। सो लेट्स रिस्ट्रिक्ट इट टू स्कूल। तो
3: किताबों से ठीक है, आपको एकेडमिक पूरी नॉलेज मिल जाती है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल फिजिकल होना ही बहुत बहुत जरूरी है ब्रेन के लिए।
0: डेफिनेटली
3: आपके फ्यूचर में उसकी बहुत यानी जरूरत पड़ती है। बेसिक घर के जो छोटे मोटे, मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं, जब याद नहीं आ रहा कोई एक स्कूल ने स्टार्ट किया था, तो बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको घर में इलेक्ट्रिकल इश्यू कोई हो जाए, छोटा सा बेसिक, आप उसको भी सॉल्व कर पाओ।
0: कर पाओ।
3: ये नहीं, ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि ये सिर्फ आपको किताबों से ही यानी नॉलेज नहीं मिलती है, आपको प्रैक्टिकली भी काफी नॉलेज मिलती है।
0: बहुत मिलती है, बिल्कुल सही कहा। और इस तरह के
3: होमवर्क का टाइम अगर आप उन चीजों में अगर फैमिली या टीचर्स अगर स्कूल में अगर इसको एडजस्ट कर ले तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
0: Very nice, very well said. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and we would definitely would appreciate कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इंशाल्लाह।
3: अच्छा टॉपिक रहा तो बिल्कुल मैं अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा, बिल्कुल।
0: अगर अच्छा भी नहीं रहे ना तब भी आप रखिएगा कुछ ना कुछ अपना।
3: नहीं तो फिर वो मजा नहीं आता है ना, अपना अपना कुछ नजरिया बयान करने के लिए अगर उसमें इंटरेस्ट और उससे कुछ रिलेट नहीं कर पाए तो टॉपिक फिर मैं सुनता हूँ आपको, डेली सुनता हूँ।
0: चलिए आई होप मैं आई विल जस्ट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस।
3: 29 इयर्स पहले का लिसनर हूं तो आई एम लिसनिंग एवरी डे।
0: ओके ग्रेट नाइस। चलिए मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको जो है वो ड्रैग कर सकूं टुवर्ड्स द कॉल।

0: Sure. Thank you. Thanks a lot.
1: Thank you. Take care. Bye.
0: Thank you. Have a nice day.
1: You too. Take care. Bye. All right. So, हमारे साथ जैसे कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले तो मैं होमवर्क के बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना 100% साथ चल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए कितना कैसे क्या वो, हाँ थोड़ा सा मैंने विंडो ओपन रखी है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बट अभी जैसे जैसे हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे कॉलर अज्जू जुड़े, अभी अहमद जी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ दे वर ऑल्सो लाइक टू सम एक्सटेंट लेकिन हाँ एट अ लार्ज एक्सटेंट वो भी सही कह रहे हैं और शायद मुझे कन्विंस होना चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी और लोग क्या कहते हैं. वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ?
2: जी मेरा नाम जावेद है.
1: जावेद
2: मैं एक राय देना चाहता हूँ.
1: हाँ जी.
2: जैसे सुबह के टाइम जो है 6 बजे 7 बजे स्टार्ट होता है.
1: हाँ जी.
2: उसमें क्या है कि तिलावत कुरान मजीद का जो है तर्जुमा तफसीर के साथ आप बयान करते तो ये बेहतर होता है.
1: हाँ, तो सुबह होता है ऐसा
2: जी?
1: अच्छा, आप कह रहे हैं कि और बयान बढ़ा देना चाहिए.
2: जी जी, 1 घंटा नहीं 2 घंटा जैसे प्रोग्राम जो है डेली.
1: हाँ.
2: तो है जैसे कतर एफएम पे जो है कुरान का जो है तर्जुमा, कुरान जो है बताया जाता है अरबी में, लेकिन लोगों को उसका तफसीर नहीं मालूम होता है उर्दू में.
1: अच्छा, ओके. चलिए, ये हम आपकी जो आपने जो ख्वाहिश जाहिर की है इसे पहुँचाएंगे मैनेजमेंट.
2: ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तर्जुमा तो पढ़ते हैं लेकिन तफसीर नहीं मालूम है.
1: हाँ ये तो है, लेकिन हमारा एक शो आता है नूर इस्लाम.
2: जी नूर इस्लाम आता है लेकिन वो हफ्ता में एक बार आता है, आपको चंद टाइम ज्यादा वक्त नहीं रहता है, लेकिन इसी चीज को आप सुबह के टाइम आप कर दें तो लोग जो है इस पे ज्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं.
1: हम लोग अर्ली मॉर्निंग्स जो है हमारे शो चल रहे हैं जो आई थिंक फजर की नमाज के बाद स्टार्ट हो जाते हैं. एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ लेकिन मैं कल आपको बताऊंगी. अगर आपको मौका मिलता है फजर के बाद तो सुनिएगा.
2: लोग जो है फजर की नमाज के वक्त के बाद नहीं सुन सकते ये चीज. लोग जो है ज्यादातर ड्यूटी पे आते हैं 6 बजे या 7 बजे, 6:30 बजे, तो इस दरमियान जो है ये शो आप जैसे कर रहे हैं इसी दरमियान जो है आप करें 2 घंटा का 1 घंटा का नहीं डेली ये करेंगे तो सदका जारिया लोग को मुसलमान जो जितने हैं लोग सबको जो है कुरान के बारे में मालूम होगा
1: डिजाइन किए जाएंगे जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी. और आपका जो जी
2: जैसे आप डेली आप सब प्रोग्राम लेके आते हैं कभी सॉन्ग का ज्यादातर लेके आते हैं लेकिन बेहतर हम ये कहना चाहेंगे कुरान का जो है सुबह के टाइम आप रखिए टाइम.
1: अच्छा ठीक है, चलिए ऐसा करेंगे. अब मुझे
2: हम लोग
1: हाँ
2: तो रेडियो ऑन करते हैं तो अब उसमें क्या है पहले सबसे पहले कुरान तिलावत सुनना है उसके बाद हम कुछ करना है.
1: वैसे हम लोग सुबह है हमारा 12 मिनट का जहाँ पे हम कुरान चलाते हैं उसके बाद ही 6 बजे के बाद मतलब 5 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद फौरन कुरान की तिलावत होती है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप समझ लीजिए 6:30 से स्टार्ट होता है सही तरीके से शो, तो इस तरह से लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे.
2: इसे कतर एफएम पे 2 घंटा का प्रोग्राम होता है 2 या 3 घंटा, तो उसमें क्या है डिस्कस करते हैं ये आयत क्यों नाजिल हुआ, क्यों उतरा, किससे उतरा, इसका मानी क्या है, मतलब क्या है और तफसीर क्या है, ये सब निकाला जाता है उसका.
1: एक और हमारा शो आता है वो जो है तलहा भाई करते हैं संडे से थर्सडे रोज, लेकिन वो रात में है तो 9 बजे से है या शायद 10 बजे से है डेली कुरान पे जहाँ पे वो आपको तफसीर जो है वो वहाँ पे बयान की जाती है और भी चीज़ें हैं. वो शो अगर आपको मौका मिलता है रात में तो ज़रूर सुनिएगा, वो रोज़ है संडे से थर्सडे.
2: ठीक है,
1: तहफीमुल कुरान करके है वो शो. ठीक है,
2: क्या है देखिए कतर जो है अरबी का जो एफएम है उसमें 2-3 लोग होते हैं उसमें डिस्कस करते हैं यह क्यों नाजिल हुआ क्यों उतरा.
1: डिस्टर्ब करना आपको अच्छा लग रहा है क्या
2: जी?
1: और एक चीज मैं आपको और बताऊं, हमारा एक फुल डे सेगमेंट चलता है हदीस टू हैबिट करके और ये सुबह 10 बजे हर टाइम ही रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से भी लोगों को मौका मिल रहा है कि वो सुने और समझें. क्या होता है जब आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हो तो इंसान को याद रखना आसान हो जाता है. अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम में आपको दे दी जाएँ तो शायद उस तरह से याद ना रख पाओ, है ना. तो हमारी कोशिश होती है कि हर तरह की ऑडियंस है, सबके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन थ्रू आउट द डे इस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए, स्केड्यूल किए गए कि रिपीट हो रहे हैं. अब टाइम एग्जैक्टली रिपीट का नहीं पता, जैसे मैंने मुझे अभी याद आ गया संडे से थर्सडे है कुरान का जो हमारा खास शो है, रोज़ है रात में, वहाँ आप ज़रूर सुनिएगा. और हदीस वाला मुझे भी याद आ गया तो वो आप ज़रूर सुनिए. उसके अलावा भी हमारे शोज़ हैं जो मैं आपको कल बताऊँगी, अगर या मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको टाइम वगैरह लिख के भेज दूँगी. बट थैंक यू सो मच आपने बताया, इस चीज़ को हम आगे और आगे डिस्कस करें.
2: हम एफएम पे हम सुनते हैं ज़्यादा, हम कॉल नहीं करते हैं और अच्छा. हम काफी पुराने हैं.
1: अच्छा अच्छा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह. नहीं चलिए, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू. मुझे अच्छा लगा कि आप आए और आपने बात हमारे साथ शेयर की. हम डेफिनेटली इस पर जो है वो सोचेंगे और फिर इंशाल्लाह बेहतर आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं. तब तक के लिए आप जो हमारे चल रहे हैं शोज उन्हें ज़रूर सुनिए और मिस मत कीजिए, ठीक है.
2: आप चलाएं लेकिन इस बारे में सोचें और हाँ, हाँ. जो है ये दो घंटे का प्रोग्राम रखें.
1: हाँ रखें,
2: लोगों को मालूम हो ज़्यादा से ज़्यादा.
1: ज़रूर इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना ख्याल रखिए. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़. ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नासिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:06 अपने शो के। हम जो है वो लास्ट आवर में एंट्री ले चुके हैं। यहां पर इस आवर में जो है वो गेम सेगमेंट हमारा आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट करती हूं और फिर हम गेम्स ठीक तरीके से खिला भी नहीं पाते। कल हमारे साथ तो एक चैंपियन जुड़े जो चैंपियन ही हैं, क्योंकि उन्हें कोई हरा ही नहीं पाया। एक कॉलर जुड़े, अलबत्ता उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की। वी सल्यूट एंड अप्रिशिएट, बट हाँ वो उस तरह के अप टू द मार्क, मतलब उतने सीरियस होकर उन्होंने नहीं गेम खेला। और फिर जब हमें कॉल्स आ रहे थे तो हम पिक ही नहीं कर सके क्योंकि टाइम नहीं था। तो अब से बस थोड़ी देर के बाद हम अपना गेम स्टार्ट कर देंगे। आज मैंने सोचा है कि मैं आपको 30 सेकेंड्स, जो T30 चल रहा है वो चलेगा वैसे ही, और वो कहा गया है कि वैसे चलना चाहिए। तो यहाँ आपको कुछ वॉइसेस सुनाए जाएंगे, आपको मैक्सिमम जितनी समझ में आती हैं दैट यू हैव टू पिक, और 30 सेकेंड्स में जितना आप पहचान लेते हैं उतने बड़े आप चैंपियन बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
2: आइए आप उसका इंतजार है, देरी लगी आने
1: बहुत देर हो गई आज आपको।
2: आए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप बताइए कैसे हैं?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ है और अल्लाह की फजल करम से बेहतरीन है, रोजी रोटी चल रहा है।

0: बच्चे खुश हैं।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा आपने गाते हुए एंट्री ली है, क्या बात है।
0: हाँ, तो आप पहचाने नहीं थे?
1: नहीं पहचानी हूँ मैं, आप ही वंस अपॉन अ टाइम नूर जी है ना, शायरी है ना।
0: शायरी तो बस,
1: हाँ
0: आपके जाने के बाद मैंने शायरी ही बंद कर इस्लाम के तौर पे वो बहुत बेहतरीन लगा। जो भाई साहब कॉलर थे पिछला वाला, तो भाई साहब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 107 है और हर तरह के इंसान है दुनिया में,
1: वही ना,
0: और हर इंसान को खुश रखना हम लोग का काम है, यानी नजिया जी का 107 का काम है। तो आपको अगर इस्लामिक कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो बहुत चीज है, अच्छी पॉइंट रखे आपने, उसका बात आगे तक पहुँचाएगा। पर शो का एक टाइम दिया गया है, एक ही शो चलेगा, तो शायद एग्जाम्पल अगर एक ही तरह का खाना हम लोग घर में खाएंगे तो बोर हो जाते
1: हैं,
0: इसी तरह से।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात की।
0: टॉपिक क्या है मुझे नहीं पता।
1: हाँ,
0: तो मैं तो कॉल लगा रहा था बहुत देर से, टॉपिक बताइए थोड़ा, मैं थोड़ा इसको मैं अच्छा।
1: हाँ हाँ जरूर जरूर। आज मैं पूछ ही रही थी कि जो होमवर्क बच्चों को मिलता है उस पर एक डिबेट और एक डिस्कशन चल रहा है कि उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, तो क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं?
0: तो मैं ये बताना चाहता हूँ सभी कॉलर से, जिसने भाई कलर इस पर जो बंद करने का सवाल किया है, तो मुझे ये बताइए अगर नाजिया जी ये शो बंद कर देगा या तो नंबर चेंज कर देगा तो क्या हम लोग को कॉल करने का मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब कुछ सीखने को नहीं मिला। मेरा कहना का मतलब ये है इंसान को जज्बा होना चाहिए कोई भी चीज हासिल करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने कॉल आधे घंटे से लगा रहा हूँ, अब मैंने ये सोचा था कि मैं कॉल पे बात करते रहूंगा तो रहूंगा, अगर मैं बीच में छोड़ देता तो मैं बात नहीं कर पाता। तो बस इंसान को जज्बा होना चाहिए हर चीज के लिए। मैं तो इतना पढ़े लिखे तो पहले से भी पता है आपको कि मैं नहीं हूँ पढ़े लिखे में इतना।
1: नहीं आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, कोई नहीं कह सकता आप पढ़े लिखे नहीं, आप माशाल्लाह समझदार
0: हैं। मैं अपने बच्ची को मैं बात करता हूँ, मैं अपने बच्ची के पढ़ाई के लिए मैं होम ट्यूशन हो या कोई भी ट्यूशन में बहुत कोशिश किया, पर मेरा बच्ची का मतलब ट्यूशन नहीं मिला। मेरा बच्ची ने कहा अबू टेंशन नहीं लीजिए, अभी दुनिया डिजिटल है, पढ़ लूंगा और उसका जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, वो यूट्यूब से ही पढ़ के मार्क अच्छे लाते
1: हैं।
0: मतलब अभी मतलब 12 क्लास में हिस्ट्री किया है और जो 10 क्लास का जो उसका मार्कशीट है समथिंग जीपी 3.80 है उसका।
1: अरे
0: बगैर ट्यूशन का
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है।
0: इंसान को जज्बा होना चाहिए,
1: हाँ।
0: बस और कुछ नहीं,
1: डेडिकेशन हो लगे रहे तो आदमी कर ही लेता है, बस ये है कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे और फिर वो डेडिकेशन हो तो आप कर लेते हैं काम। बहुत ही अच्छी बात कही।
0: एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा कंपनी बोलता है तुमको 1:30 बजे उठ के 2 बजे बस में बैठना है, रात को कौन उठ सकता है 1:30 बजे, पर उसका टेंशन होता है। मैं करता हूँ 2-3 महीने से, तो बस ये आदमी का जज्बा होना चाहिए कि मुझे एक फोकस एक काम दिया तो मैं करके रहूंगा भले कोई रहे या ना रहे।
1: ये बात आपने तो मुझे भी मोटिवेट किया, पता है मुझे लग रहा था अरे मुझे 4:30 बजे उठने में बड़ी दिक्कत आ रही है, आप तो बहुत पहले उठ रहे हैं देखिए, तो अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। हाँ देखो
0: गाड़ी में बैठ जाते हैं,
1: तो जल्दी सोते हैं आप, तो प्लीज सोइए जल्दी।
0: प्रदेश में ऐसा होता है कि 4 किस्म का इंसान रहता है रूम में, तो हमारा सुबह रूल है कि 10 बजे के पहले लाइट ऑफ नहीं हो, सोने वाला सो जाता है, जागने वाला जगता
1: है। बड़ी टफ टफ माशाल्लाह, वैसे ही आपके लिए बहुत इज्जत थी, मुझे लगता है अभी और हो गई माशाल्लाह, कि देखिए आप सारी टफ सिचुएशन में भी हंसना मुस्कुराना जानते हैं, अपने आप को उन चीजों में एडजस्ट करना जानते हैं, ये बड़ी बात है।
0: एग्जाम्पल तो मैं पढ़े लिखे इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो मैं जानता हूँ कि बस मैं जिसका से मैं इतना पीछे भी नहीं हट सकता हूँ, बस हक की हक बात हक है, जो सच है जो सच है, झूठे जो झूठे, मुझे बोलने में कोई शिकायत नहीं होता है।
1: सही, बहुत ही अच्छा, चलिए जी थैंक यू,
0: जज़ाकअल्लाह।
1: अच्छी रही, बहुत अच्छी रही,
0: आपका छुट्टी कैसे गुजरा?
1: अच्छी रही, बहुत अच्छी, बहुत आराम, मजा किया घूमे। हाँ बस अब काम
0: लगाया, पर कुरान की तिलावत चला था, मैं सोचा अभी ये पूरा महीना चलेगा, फिर आज लगाया।

0: नहीं, आप मुझे ना मैसेज कर दिया कीजिए अगर ऐसा कुछ हो मसला तो, फिर मैं आपको देखूंगी कि भाई प्लीज कॉल मी, ऐसे कुछ लिख दीजिए, हमें कॉल कर लीजिए, तो फिर हम खुद ही आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है?
1: वो तो सही बात है, हकीकत है, वो कर लेंगे, लेकिन बस मेरा पास मौका है 9 बजे तक, तो मैं मैसेज नहीं कर पाता।
2: सही है, चलिए हमें भी आइडिया हो गया।
1: मीटिंग में थाम लेता हूँ, मुझे बात करना है तो कैसे लेकर के मैं कर लेता हूँ।
2: अरे वाह, चलिए जी, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आपका साथ हमेशा बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ हमारी बात होती रहे, ये हमारी दुआ है इंशाल्लाह। हाँ, कल से, ठीक है, कल से आप स्टार्ट करिए। सही है, चलिए ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आज का जो टॉपिक है उसे हम कंक्लूड भी करेंगे, एंड बैक टू आर T30 वाला गेम। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, जितने चैंपियंस हैं वो सब आज अपना लक अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। नंबर इज 666-22-107, जहाँ मुझे हाई हेलो लिखकर भेजेंगे टू लेट मी नो कि आप गेम खेलना चाहते हो। हाई का मतलब है येस आई एम रेडी, तो आप मुझे हाई लिखकर भेजिए। और अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है तो आप सीधा कॉल कर सकते हैं, 4434-3-7-7 इज द नंबर।

हाय, कितना खूबसूरत सा ट्रैक साधना सरगम की आवाज में आपने सात समंदर पार विश्वात्मा मूवी से एंजॉय किया. अमेजिंग सा ट्रैक एंड वेलकम बैक. हाँ जी, मैं वापस आ चुकी हूँ. मेरा नाम है नाजी. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग 8:26. हालांकि सोचा था कि आज आइडियली हम थोड़ा सा जल्दी अपना गेम स्टार्ट कर लेंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सका. चलिए झटपट से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसे कंक्लूड कर देते हैं. पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है वो इस टॉपिक पर बात की, अपनी ओपिनियन इतना खुल के अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर की. और आखिर में जो बात कही जानी चाहिए वो जो मेरा स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं घुमा के ट्विस्ट के साथ आने वाला, इन वेरी डिप्लोमेटिक वे, कि होमवर्क को देखो कंप्लीटली बैन करना शायद एक सोल्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट सोल्यूशन ना हो. लेकिन हाँ, आई एम लाइक फुली कन्विंस्ड कि होमवर्क अगर लिमिटेड हो, मीनिंगफुल हो, तो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू लर्निंग. लेकिन जब होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑफकोर्स कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, जो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग इज़ बैड, तो वही चीज़ है. तो बच्चे पे स्ट्रेस भी आता है, थकान बढ़ जाती है, फैमिली टाइम नहीं मिलता. इसीलिए ज़रूरत मुझे लगता है इस बात की ज़्यादा है कि स्कूल एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करे. जैसे हमने कहा ना कि हेल्दी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे और आपके हिसाब से एजुकेशन का जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे ग्रेड्स बच्चा जो है वो हासिल कर ले, बल्कि स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करना, उनमें कॉन्फिडेंस लेकर आना, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखिए, लर्निंग जो है वो तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हों, ना कि ओवरवेल्म्ड हों, है ना. तो होमवर्क रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर आई थिंक हर आदमी की अपनी एक अलग ओपिनियन होगी, एक अलग राय होगी. लेकिन एक बात सब मानते हैं, एजुकेशन जो है वो हर हाल में स्टूडेंट को इंस्पायर करनी चाहिए. उन पर नेसेसरी जो अननेसेसरी तरह का जो एक स्ट्रेस है या जो एक प्रेशर है वो बिल्ड ना करें. इससे तो हम सब यूनानिमसली इस बात से इत्तेफाक रखते ही रखते हैं. तो मुझे लगता है कि अब आगे की डिबेट जो है वो फिर कभी आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ही प्यारा सा मैसेज यूसुफ जी का था, और उन्होंने भी यही बात कही कि भाई होमवर्क का जो है वो ट्रेंड कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए. बच्चे जो हैं उन्हें और भी टाइम चाहिए और चीज़ों के लिए, चाहे कुरान पढ़ना है, चाहे पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह. तो इस लिहाज से थोड़ा सा यू नो मॉडरेट वर्कलोड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स सो ट्रू. मैं भी मानती हूँ. अच्छा, यहाँ पे थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ जी, उनका कहना है कि यहाँ बड़ा प्यारा मैसेज है जो मैंने उस तरह से नहीं समझा. उन्होंने कहा कि हस्बैंड शुड डू मोर वर्क फॉर वाइफ, क्योंकि वाइफ्स जो है वो इतना ज़्यादा ख्याल रख रही होती हैं बच्चों का एंड ऑल, तो इसका ख्याल रखने के लिए थोड़ा सा बच्चों मतलब थोड़ा सा हाथ बटाना ज़रूरी है. यहाँ थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए, और वॉइस नोट है सैयद खादिम हुसैन जी आपकी, मैं जो हूँ आपका वॉइस नोट मैं सुनती हूँ, हालांकि उन्होंने बताया कि बिजी हैं इसलिए वो

0: सर नहीं जुड़ पाए और शिराज मलिक जी ने कुछ हमको वॉइस नोट भेजा है, उन्होंने कॉल्स भी की हैं हमें इस पे, तो मैं आपको बताऊं शिराज अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो नंबर है 4434377। चलिए अब जो है हम अपना T30 वाला गेम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई रियली वुड लव एंड रिक्वेस्ट कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो चैलेंज ले आए, एटलीस्ट एक दो लोग। और आज मैंने बड़ा आसान रखा है, कुछ एक्टर्स की, कुछ क्रिकेटर्स की इनकी वॉइस हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, जहाँ पर आप ठीक ठाक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई कीजिए, ट्राई करने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए, कॉल करने के लिए नंबर है 4434377 और फिर हम और आप मिलके साथ में इस गेम को खेलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें एक मैसेज है सुभान खान, कहते हैं मैम बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक और मैं सुन रहा था बट मैं कॉल, अच्छा पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रही, मुझे नहीं मालूम। वैसे तो मैं, मेरी भरपूर कोशिश है कि जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितनी भी कॉल्स आ रही है मैक्सिमम हम लें, हो सकता है एक आध कुछ इधर उधर हो गई, बट अगर आपको ऐसा लगता है सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड यू जस्ट राइट के कॉल मी, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आरिफ जी का एक और मैसेज है, कहते हैं एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर आए, स्कूल से भी और पेरेंट्स की तरफ से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ सक्सेसफुल एंड गुड पर्सन यू आर, दैट्स ट्रू। किस तरह से आप अपनी, जो कल हम लिख रहे थे ना, हर इंसान की अपनी कामयाबी की एक अलग डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन जो है वो खुद हमें लिखनी होती है, वो दूसरा जो है हमारे लिए नहीं लिखेगा, तो बस उसे लिखने के लिए हमें शुरुआत करनी है, शुरुआत करने के लिए हमें पेन उठाना है एंड वी हैव टू डाउन समथिंग। तो बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में जो पहला स्टेप है, जो शुरुआत है, वो थोड़ी सी हर के लिए टफ होती है, हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है, उसकी सर्कमस्टांसेस अलग हैं, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज है और इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ MS लिखा हुआ है, बट कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मैम सुन रहा था आपको लगातार, बहुत ही अच्छे कॉलर्स जुड़े और मुझे, मैं अहमद जी की बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक ये रखते हैं, उनकी बात से अग्री करते हैं। अच्छा, बड़े सारे लोग ऐसे भी निकल के आए जो इस तरह से सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों पे जो है वो प्रेशर तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं, तो सो फॉर दैट इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। अच्छा, अब हम T30 वाला गेम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए 4434377 पर। कुछ आवाज़ें हैं, कुछ वॉइसेस हैं जो आपको पहचाननी है और बहुत ही सिंपल है, ऐसा है नहीं, मतलब मुझे लगता है लोग थोड़ा सा घबराते हैं, डरने लगे हैं, बट ऐसे डरने वाली बात है नहीं, आप जुड़िए, ट्राई कीजिए एंड लेट्स सी, हो सकता है विनर हो। जैसे अल्टीमेट विनर हमारे हैं मोहम्मद यूसुफ जी, हमेशा ही खेलते हैं, ट्राई करते हैं और जीतते भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्राई करना चाहिए लाइफ में हमेशा, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे, तो वो थोड़ी सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
0: हाय, कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम सऊद है, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सऊद?
2: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आपके साथ हम अपना गेम स्टार्ट करें, आप खेलने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ तैयार हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम होगा, मैं आपको कुछ वॉइसेस सुनाऊंगी, आपको पहचाननी है, जो नहीं समझ में आप मुझे नेक्स्ट बोलना, ठीक है?
2: ओके ओके बिल्कुल।
0: चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
3: हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है।
2: इमरान हाशमी।
0: बिल्कुल सही।
4: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या।
2: नेक्स्ट।
5: एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।
2: आमिर खान।
0: बिल्कुल सही।
6: जी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज।
2: नेक्स्ट।
0: और यहाँ पे टाइम अप हुआ है, बट आपने कम से कम दो वॉइसेस तो पहचान ही ली, इमरान हाशमी मुझे लगा टफ है बट आपने पहचाना, वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की और फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो मैं कहूँगी अमेजिंग। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग अक्सर जो है ना डर की वजह से ट्राई नहीं करते।
2: बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम मेरा,
0: अच्छा फर्स्ट टाइम
2: पार्टिसिपेट है ऑनलाइन।
0: Oh, nice. वेरी नाइस। चलिए आई होप ये फर्स्ट टाइम नहीं रहेगा, आगे आप मेरे साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे, है ना? इट्स अ प्रॉमिस, जरूर,
2: इंशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय
2: थैंक यू बाय
0: बाय ऑलराइट यहां पे एक बहुत ही अच्छी सॉलिड सी शुरुआत हुई है

0: जहां पर कुछ ना कुछ तो स्कोर करके गए हमारे कॉलर. एक और कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, लेट्स सी वो कितना स्कोर करते हैं. हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. तो ये तो नूर जी लग रहे हैं, नूर ही नूर.
1: जी
0: अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो नूर जी आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं? ये बात, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तो कुछ लोग जो है ना ट्राई करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं देते हैं. कोशिश करना चाहिए, कोशिश ही इम्पोर्टेंट है, उसे अप्रिशिएट करती हूँ मैं. तो चलिए यहाँ पे 30 seconds का आपके पास टाइम है. 2 का स्कोर इज़ हाईएस्ट. कोशिश कीजिए कि 2 से ज़्यादा जब स्कोर कर पाए. और अगर आपको समझ में नहीं आ रही वॉइस, लेट मी नो नेक्स्ट बोलिए तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ. ठीक है, चलो जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
2: When I was away, I was very cut off from the industry for 12 years.
3: Guru bhai se ladna to Guru bhai banke.
4: See sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very.
0: क्या बोला आपने?
1: Amir.
0: Amir? नहीं.
5: बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ना तेरा फैजर.
6: मुंबई का किंग कौन? बिकू
1: मात्रे.
0: अरे वान नहीं, जीरो इज कुछ नहीं होता है. आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है. पता है इस तरह से ऑन एयर आना और ट्राई करना बहुत हिम्मत चाहिए. कोई किसी के लिए आसान नहीं होता. पता है कोई बात नहीं, हम लोग फिर ट्राई करेंगे, कल फिर ट्राई करेंगे. ठीक है,
7: प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड.
0: अरे ये होल्ड करा के चले गए. ओके थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए. ऑलराइट एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं.
8: हेलो
0: हेलो, अरे कनेक्ट.
8: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
8: जी कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और आपका नाम क्या है?
8: मेरा नाम साहिब है.
0: शाहिद.
8: और जी
0: कैसी जा रही है आपकी सुबह? मेरा नाम नाजिया.
8: पहली बार कॉल किया.
0: अच्छा आपने फर्स्ट टाइम किया? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए.
8: जी आपसे बात हुई है कोई और शो पे, पर इस वक्त आपके इस शो पे पहली बार शायद कॉल था.
0: हाँ हो सकता है कि अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपकी मेरी बात हो रही है. बट अच्छा लग रहा है मुझे कि आप मेरे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे इंशाल्लाह जरूर. तो आपके साथ गेम स्टार्ट करें?
8: जी बिल्कुल स्टार्ट करें.
0: चलो ट्राई कीजिए आप. 30 seconds का आपके पास टाइम है. ठीक है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
9: हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, था कमाल का होता.
8: इमरान हाशमी.
0: सही.
10: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे पता तेरी रजा क्या.
8: अनिल कपूर.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
11: सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी.
8: आमिर खान.
0: बिल्कुल सही.
3: गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के.
0: कौन?
8: अभिषेक बच्चन.
0: अरे क्या बात है भाई, 1 2 3 4 क्या बात है, जबरदस्त. और मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि आप 4 का स्कोर कर लेंगे. अमेजिंग, क्या बात है. फर्स्ट टाइम आप खेल रहे हैं. आपने शाहिद नाम बताया ना मुझे?
8: साहिब.
0: शाहिद.
8: साहिब. साहिब.
0: शाहिद जी. जी तो आप बहुत अच्छा खेले. अभी हाईएस्ट वाज लाइक 2, 2 का स्कोर हाईएस्ट था, बट आपने जो है वो 4 का स्कोर किया है. कमाल है, हैट्स ऑफ. 4 आप पहचाने, प्ले ही 4 हुए और 4 आपने पहचान लिए.
8: 90s के किड्स हैं मैम हम लोग. 90s के किड्स के लिए एंटरटेनमेंट एक ही था कि आप मूवीज देखें और ये करें.
0: हाँ शायद यही है. नहीं बट फिर भी इतनी जल्दी से रिकॉल करना नाम को आसान नहीं होता. बट वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला आपने. रियली आई एम सो इम्प्रेस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना ख्याल रखिएगा. ओके टेक केयर,
8: बाय
0: बाय. दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट इज नाउ 4, 4. कोई है बंदा जो 4 से ज्यादा का स्कोर कर सकता है? जो कर सकते हैं जरूर मेरे साथ जुड़े हैं. 666-22-107 पे हाई हेलो भी लेकर भेज सकते हैं, कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 4434-3-4437.

हाँ जी, 90s के इतने प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं कि क्या ही बात है. उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में अगला बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक राजा मूवी से एंजॉय कीजिए. स्टे हुक्ड फ्रॉम 107 दिल से डीसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: हाय हाय, इतना प्यारा सा ट्रैक जो मैंने आपके लिए नेक्स्ट लाइन अप किया है और ये कुमार सानू अलका यागरी की आवाज़ में आपसे थोड़ी देर में आप इंजॉय कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए वेलकम बैक। Right guys, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ 8:45 ऑन द क्लॉक। और चलिए झटपट से एक छोटी सी अपडेट आपके साथ और शेयर करते हैं और फिर हमारा जो T30 वाला गेम चल रहा है जहाँ पे हाईएस्ट शाहिद जी का स्कोर है 4 का, उसे देखते हैं कौन चैलेंज करने वाला है। तो पहले आपको मैं बताऊँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने उन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के खिलाफ वार्निंग जारी की है जो एक्सोसोम्स पर मुश्तमिल है और इंजेक्शन की शक्ल में मेडिकल या फिर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे और खास करके यहाँ पे जो फीमेल्स है वो जानती होंगी। तो मिनिस्ट्री ने जो है वो फार्मेसी और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 19 जुलाई 2026 के सर्कुलर में बताया है कि उन्होंने देखा है कि कुछ एक्सोसोम्स जो है वो उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना बेहतर है स्किन के लिए और इंसान के लिए, और इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने यह भी कहा है कि यह सर्कुलर पेशेंट की हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने की वजह से जारी किया गया है। यानी कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है उन्होंने एक्सोसोम्स वाले इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर फिलहाल एक वार्निंग जारी की है। मिनिस्ट्री के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स को मेडिकल और कॉस्मेटिक यूज के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ये एक सही कदम नहीं है। पेशेंट की सेहत और सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इसे क्रॉस चेक करना और इस पर जो है फिलहाल रोक लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये तो एक अपडेट आपके साथ, एंड नाउ बैक टू आवर गेम जहाँ पर हमारा गेम जारी है T30। अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अभी जो है मेरे पास कुछ ऐसे भी वॉइसेस हैं जो क्रिकेटर्स की हैं, फुटबॉलर्स की हैं, और अगर आप पहचान सकते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए। नंबर इज 6662107 जहाँ पर आप मुझे हाय हेलो भेजिए और फिर मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे आपको कॉल करना है, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434373 7 7 पर। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम गोवा।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया राजी जी, और सुनाइए
0: कहाँ थे रमेश जी?
1: ड्यूटी में था, बिजी, हमने कहा लाओ थोड़ा मिला ले अभी टाइम।
0: अरे वाह, चलिए फाइनली आपने बहुत अच्छा सोच लिया, थोड़ा सा आपको टाइम मिल गया। तो कैसी जा रही है आपकी लाइफ, जॉब वगैरह सब कुछ ठीक?
1: जी,
0: ये बहुत अच्छा है कि सारी चीजें सेट है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ वही ना, जैसे भी चले चलनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपके साथ मैं गेम खेलती हूँ, आई होप आप खेलने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं, आप हो सकता है पहचान ही ले। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, हाईएस्ट स्कोर 4 है, लेट्स सी 4 से ज्यादा आप कर पाते कि नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है आप।
2: याद रखें कि गावस्कर जिस तरह की बॉलिंग खेले हैं वो सचिन नहीं खेले, जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 तेज बॉलर उनके टीम में थे जो चारों मैच विनर्स थे।
3: वसीम अकरम? एक मैच नहीं, वसीम अकरम नहीं है। अबाउट 12 एंड सर्टेन
4: टाइम इज गुड टाइम, ईदर यू आर लर्निंग।
0: राइट आंसर, क्या बात है, और टाइम खत्म होते होते

0: का भी स्कोर होता है 4. रमेश जी, आपने तो यूं ही सोचा कि चलो इसे ट्राई कर लेता हूँ, है ना? क्या बात है, लेकिन आपने ठीक ठाक तरीके से आवाजें पहचान ली. कुछ क्रिकेटर्स की थी, कुछ एक्टर्स थे, बट आपने पहचान लिया. ग्रेट, नाइस. अब कुछ और मुझे नई वॉइसेस भी डालनी चाहिए, बट देखते हैं. अभी पहले इसमें ही लोग पहचान ले, डरते हैं उस तरह से नहीं कनेक्ट हो पाते. बट आई एम ग्लैड कि आप जुड़े और आपने ये लिया चैलेंज कि हाँ मैं जो हूँ ट्राई करूँगा. ये बहुत अच्छा लगा मुझे.
1: और मैम, छुट्टी कैसी रही?
0: छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही, बड़ा मजा किया मैंने. घूमी घामी
1: उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा घूम गया
0: उत्तराखंड उत्तराखंड ही घूमी बस, मैं ये कह सकती हूँ. और तो मैं कहीं नहीं जा पाई. हाँ, कुछ नहीं था तो चलो कुछ घूम लेते हैं. बेसिकली जिम कॉर्बेट गई थी तो वहाँ बस हुआ घूमना. नैनीताल नहीं जा पाई, रानीखेत तक तो पहुँचे हम लोग.
1: नैनीताल जाना चाहिए,
0: जाना तो चाहते थे पर मिला ही नहीं. वो इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया था.
1: हाँ,
0: नहीं टाइम नहीं, लोग इतने ज्यादा थे कि हमें वहाँ पे एंट्री बंद कर दी थी.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो सारी गाड़ियाँ रोक रखी थी. हाँ, उस टाइम ऐसा था, वेकेशन चल रही थी बच्चों की, तो लोग बहुत भर के पहुंचे हुए थे. पर चलिए नेक्स्ट टाइम कभी. पहले तो मैं मुंबई घूम के आऊंगी. हाँ, अभी मेरी नेक्स्ट में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाना ही है, मुझे जाना ही है. तो नेक्स्ट में
1: बरसात में मत जाइएगा. लेकिन
0: हाँ, किसी ने बोला कि बरसात में आइडियल नहीं होता जाना स्नान कर.
1: नहीं नहीं, बरसात में तो बिल्कुल ना जाए बॉम्बे.
0: हाँ हाँ, दैट्स राइट. चलिए कभी ना कभी नेक्स्ट उसमें हम जरूर प्लान करेंगे. पर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय.
1: थैंक यू, थैंक यू.
0: और दोस्तों, मैं कह सकती हूँ फाइनली आज एक नहीं दो चैंपियंस हमारे साथ हैं. शाहिद जी एंड रमेश जी, दोनों ने स्कोर किया है 4 का. तो कमाल की बात है कि दोनों ने बहुत ही अच्छा और डिसेंट स्कोर किया. कल जो है वो और चीज़ें भी ट्राई करेंगे. अभी तक गेम को लेकर ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है, कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं. कोई आपके पास सजेशन है तो ज़रूर मुझे भेजिए, मुझे बताइए 6622107 पर. या आप क्या चाहते हैं, इस तरह का गेम हो या किसी और तरह का गेम हो, जो भी आपके जहन में है तो वो आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाएगा. लेकिन जब तक है तो T30 तो खेलना ही है, ये तो आप मान के चलिए. चलिए फिलहाल दोस्तों, अब मेरा वक्त हो रहा है कि मैं आपसे इजाज़त ले लूं इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्द कल सुबह 6 बजे इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पानी वगैरह उसका ख्याल रखिए, पीते रहिए और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिए. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से हाफिज, न्यूज रूम से फरकान शाहिद और सफा सफदर को दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट। हमारे

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं, और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
0: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
0: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
0: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर के एक नौजवान फुटबॉलर यूसुफ अब्दुर्रिसाक। या दोस्तों, 26 साल का प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं यूसुफ और विंगर के तौर पर खेलते हैं। और दोस्तों, वो इस वक्त डोमेस्टिक फुटबॉल यानी कतर स्टार्स लीग में अल वखरा के लिए खेलते हैं, जबकि वो अल सद के प्लेयर हैं, लेकिन वो लोन के तौर पर वो अभी अल वखरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही कतर की कौमी फुटबॉल टीम की भी नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, अपनी तेज रफ्तार, ट्रांजिशन स्पीड और सीरी अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर यूसुफ को पिछले महीने मुनक्किदा वर्ल्ड कप फुटबॉल में कतर के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। और अगर उनके क्लब करियर के बारे में थोड़ा बात करूं तो पता चलता है कि यूसुफ ने अपनी फुटबॉल की तरबियत मशहूर एस्पार एकेडमी में हासिल की और 2018 में असद क्लब के साथ अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सितंबर 2025 में उन्हें ज्यादा मुसलसल प्लेइंग टाइम देने के लिए एक सीजन के लोन पर अल वखरा भेजा गया। 2025-2026 सीजन के डोमेस्टिक लीग में उन्होंने 4 गोल स्कोर किए और टीम के अटैक में अहम किरदार अदा किया। And moving on to his international career, Yusuf 2019 से कतर की सीनियर कौमी टीम का हिस्सा है। वो कतर की तारीखी 2023 AFC एशियन कप जीतने वाले स्क्वाड में भी शामिल थे और पिछले महीने मुनक्किदा, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैचेस में भी उन्होंने कतर के लिए कई अहम मुकाबलों में शिरकत की और अपनी स्पीड और अटैकिंग खेल से टीम को मजबूती फराहम की। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम ऐसी बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है लेकिन सेहत और फिटनेस के लिए बेहद अहम है। तो आज हम बात करेंगे वर्जिश यानी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग की अहमियत क्या है। बहुत से अफराद एक्सरसाइज शुरू करते हैं जैसे कि दौड़ना, वजन उठाना या और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर देते हैं, जबकि जिस्म को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग दरअसल मसल्स, जॉइंट्स और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्टिव करने के लिए या हरकत

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: और आज भी मैं अपने कल वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज भी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स मेटावर्स की और इकोनॉमी की। तो कल मैंने आपसे बताया था कि हाँ, किस तरह से जो है मेटावर्स पे जॉब्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स अपने आप में है क्या, वर्चुअल दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। कल हमने इस पर हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। आज बात करेंगे बिजनेस और ट्रेड की। जी हाँ, मेटावर्स एक बिजनेस हब बन चुका है। कंपनीज वहाँ अपने स्टोर्स ओपन कर रही हैं, ब्रांड्स अपने वर्चुअल शोरूम्स बनाएंगे जो और ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं लोग डिजिटल एसेट्स यानी NFTs जो है सेल करेंगे। सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी है, डिजाइन है, एंटरटेनमेंट है, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांजेक्शन जो है वो फास्ट और डिजिटल होंगे।

0: इट पॉसिबल होगा। वहीं अगर इसके मैं कुछ फायदे गिनवाऊं तो देखिए, दुनिया की किसी भी हिस्से से लोग बैठकर काम कर सकते हैं, यानी उनके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्पेस की अब जरूरत ही नहीं हो, लोग जो है लो कॉस्ट पर बिजनेस करेंगे, ये भी एक बड़ा फायदा है। फिर बात की जाए एक और अगर फायदे की, तो एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिल रही है। यू नो, लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए आइडियाज बना सकते हैं। वहीं पर लोग घर बैठे काम भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, चीजें आसानी से जो है ना एक्सेसिबल है। वहीं इनके रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क जो हमें और आपको समझ में आता है वो है सिक्योरिटी इश्यूज, हैकर्स और फ्रॉड का रिस्क। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। फिर एक और रिस्क की बात की जाए वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। लोग फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं और करेंगे भी। वहीं एक और चीज जो हमें और आपको बेचैन कर देती है वो है एडिक्शन। लोग रियल दुनिया से दूर होकर इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा ना घुस जाए कि रियल दुनिया का जो उनका अपना एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाए। फिर एक चीज आती है समझ में, इनइक्वालिटी। हर कोई आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जिसके पास भरपूर पैसा होगा वो तो एडवांस्ड तरीके से पैसे बनाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा। देखिए, इसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा। मेटावर्स लोगों के सोशल इंटरेक्शंस को चेंज कर देगा। आजकल के बच्चे भी ना ज्यादा टाइम वर्चुअल दुनिया में ही गुजारना पसंद करते हैं, वही उनको लगता है कि हमारी रियल दुनिया है। आने वाले वक्त में ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी। लोग दूर रहकर भी कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन रियल रिलेशनशिप वीक हो जाएंगे। फ्यूचर में मेटावर्स एक फुल्ली फंक्शनल इकोनॉमी बन सकता है, जहां लोग काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी डिजिटल लाइफ बनाएंगे। हो सकता है कि लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में गुजारें, लेकिन नतीजा क्या है पता नहीं। मेटावर्स इकोनॉमी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का काम करने का तरीका बदल सकता है और बदल रहा है। लेकिन इसके साथ रिस्क भी हैं, जहां मैनेज करना, जिन्हें समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर सही तरीके से यूज किया गया इसे तो मेटावर्स एक नया डिजिटल सिविलाइजेशन भी बन सकता है, और अगर सही तरीके से इसे यूज ना किया जाए तो शायद ये आपके और हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। फिलहाल सही इस्तेमाल, गुड बैलेंस, ये हमेशा हम सब के लिए बेस्ट टेक अवेज है। अब इन्हें अप्लाई करना और इन पर काम करना और खुद को इस एडिक्शन से दूर रखना, अभी हमारी और आपकी समझ से ये बात थोड़ा दूर है ऐसा लगता है। चलिए, फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस टॉपिक से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ कल वापस हाजिर होंगे इसी सेगमेंट में, जिसका नाम है 1 Step to 28:30। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए, और जो रियल वर्ल्ड है फिलहाल जिसमें हम हैं, रियल कनेक्शंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। और देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: 1 Step to 2030। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: from one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरी With RJ Server

0: मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस के लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
0: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
3: Aap sun rahe hain FM 107.
4: Dil Se.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर इको स्विच। साथियों जरा सोचिए, एक सनी सा एक धूप वाला दिन है, वीकेंड है, पार्क हरा भरा है, हवा में ठंडी सी फ्रेश हवा चल रही है और लोग पिकनिक मना रहे हैं। क्या तो मस्त माहौल लग रहा है। सैंडविचेस

जूस, किलकारियां, सब कुछ परफेक्ट ना, मजा आ रहा है ऐसा. अच्छा अच्छा ठीक है. अब एक और सिनेरियो इमेजिन करें, सेम पिकनिक है, सेम मजा है, लेकिन जब लोग पार्क छोड़कर जाते हैं पिकनिक खत्म करने के बाद, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, जैसे यहाँ पर कोई आया ही नहीं था. यही होता है इको फ्रेंडली पिकनिक का मैजिक, मजे भी और जिम्मेदारी भी और जमीन की हिफाजत भी. तो भाई साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली पिकनिक के बारे में. इको फ्रेंडली पिकनिक होती क्या है भाई? देखें, इको फ्रेंडली पिकनिक का सिंपल सा मतलब है नेचर को नुकसान दिए बगैर आउटडोर फन एंजॉय करना. यानी प्लास्टिक प्लेट्स की जगह रीयूजेबल प्लेट्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पर रिफिलेबल बॉटल्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बैग्स की जगह पर कपड़े के बैग्स यूज कर लेना. ये सिर्फ पिकनिक का तरीका चेंज करना है साथियों, मजा कम नहीं होता इससे. अब आप पूछेंगे भाई ये क्यों जरूरी है, तो जरा सोचिए एक छोटी सी पिकनिक से कितना वेस्ट बनता है. साथियों आप जानते हैं सिर्फ 5 लोगों की पिकनिक से 1 से 2 किलोग्राम तक कचरा बन सकता है. और जब ऐसे आप कह लें कि मिलियंस ऑफ पीपल यू सी अराउंड जब पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो दुनिया भर में हर साल पता है आपको कितना वेस्ट जनरेट होता है? तकरीबन 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है. और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक प्लास्टिक बॉटल को खत्म होने में 400 से 450 साल लग सकते हैं. मतलब आज का जो आपने पिकनिक मनाई थी, आज की कल के बच्चों की दुनिया को वो अफेक्ट कर सकती है. देखें, एक नॉर्मल सी पिकनिक के बारे में अगर हम सोचें ना, तो लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और डिस्पोजेबल प्लेट्स ले जाते हैं. ये मैं भी करती हूँ अक्सर औकात, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना किया जाए. देखें, पिकनिक के बाद होता है ये कि सब कुछ डस्टबिन या कभी कभी वहीं पर छोड़ दिया जाता है जिस ग्राउंड पे आप बैठे होते हैं. रिजल्ट क्या होता है? गंदा पार्क और नेचर पर लोड आना. ये गलती हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हम सबसे हुई है ये गलती. अब इको पिकनिक में क्या होता है? घर से होममेड फूड लेकर जाना, स्टील बॉटल्स लेकर जाना, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाना, और वापस आते वक्त जब आप वहां से छोड़कर जा रहे हैं तो सब कुछ साथ लेकर वापस आना. पहले मैं भी नॉन इको पिकनिक मनाती थी, लेकिन अब मैं भी इको पिकनिक पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ कि घर से होममेड फूड लेकर जाती हूँ, स्टील वाली बॉटल्स लेकर जाती हूँ, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाती हूँ, और जब हम वहां से जाते हैं तो अपना सारा सामान साथ में वापस लेकर जाते हैं. उसका रिजल्ट ये होता है कि क्लीन पार्क, जीरो गिल्ट, सेम फन, डिफरेंट इम्पैक्ट. देखिए, इको फ्रेंडली पिकनिक सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसका रियल फायदा पता है क्या है? प्लास्टिक कम होता है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, जानवर सेफ रहते हैं, प्लास्टिक उनके लिए खतरा बन सकता है, नेचर खूबसूरत रहती है, पार्क्स और बीचेस क्लीन रहते हैं. बच्चों के लिए एक लर्निंग पॉइंट भी होता है, वो सीखते हैं कि छोटी हैबिट से बड़ा चेंज कैसे लाया जा सकता है. साथियों कुछ फन फैक्ट्स आपको बताऊं. क्या आप ये बात जानते हैं कि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को खत्म होने में 200 साल तक लग जाते हैं, एक रीयूजेबल बॉटल एक साल में तकरीबन 150 प्लस प्लास्टिक बॉटल्स रिप्लेस कर सकती है. हर मिनट दुनिया में लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं. देखिए भाई, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज से आप साल भर में 100 से ऊपर प्लास्टिक आइटम्स कम यूज कर सकते हैं. इसी के साथ अगर अब बात करें प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में साथियों, तो प्रैक्टिकल टिप नंबर 1 है, अपना घर से खाना लेकर जाएं. पैकेजिंग, इससे वेस्ट जो होता है ना, पैकेजिंग वेस्ट, वो कम होगा. रीयूजेबल आइटम्स यूज करें, जैसे कि स्टील बॉटल्स हो गई, प्लेट्स हो गई और कटलरीज, ये बेस्ट हैं, घर से लेकर जाएं. प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड करें, सिंगल यूज चीजों से दूर रहें. चौथी टिप ये कि भाई वेस्ट वापस ले आए, यानी कि लीव नो ट्रेस रूल फॉलो करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचुरल पैकेजिंग ट्राई करें, यानी कि कपड़े की बनी हुई बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इन्हें यूज करें. साथियों इको फ्रेंडली पिकनिक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज लाती हैं. अगर एक फैमिली भी हर वीकेंड इको फ्रेंडली पिकनिक मनाती है, तो इमेजिन करें कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है. तो साथियों, इको स्विच का आज का चैलेंज ये है कि नेक्स्ट पिकनिक पर सिर्फ 3 चीजें जरूर ट्राई करें. नो सिंगल यूज प्लास्टिक, रीयूजेबल आइटम्स यूज करें, सारा वेस्ट वापस लेकर आएं, और देखें पिकनिक का मजा भी बेहतर हो जाता है और हमारी अर्थ भी, यानी कि हमारी जमीन भी खुश रहती है. इसी के साथ आप सुन रहे थे सफा के साथ इको

0: स्विच ऑन FM 107, जहाँ छोटा सा स्विच बड़ा चेंज लाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है इल्म हासिल करने की अहमियत पर। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। इस्लाम ने इल्म को बहुत बुलंद मकाम अता किया है, क्योंकि इल्म इंसान को रोशनी देता है और उसे सही और गलत में फर्क समझने में मदद करता है। इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि तजुर्बे, ऑब्जर्वेशन और सीखने के जज्बे से भी हासिल होता है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन असल इल्म वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए। जब इंसान इल्म हासिल करता है और उस पर अमल करता है, तो वो अपने और दूसरों के लिए फायदेमंद बन जाता है। आज का अमल यह है कि रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।

0: आरजे सफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 11:01 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो भाई सन एंड साउंड है, यानी कि सन भी है और साउंड भी है और सफा भी है, तो एंजॉय करो ना। क्यों मुंह सजाकर बैठे हुए हो, गर्मियां हैं तो क्या हुआ, गर्मियों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, टेंशन ना लें, मैं आपको याद दिलाती रहूंगी क्या क्या अच्छा होता है गर्मियों में और क्या क्या अच्छा किया गया है पिछले दिनों में, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे दूं। भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर शो जिसका नाम है सन एंड साउंड। मेरा और आपका साथ रहता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इसके दौरान हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं भाई, कुछ तफसरे करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे आपसे सवाल करते हैं ऑन अ वेरी नॉट सो सीरियस नोट। ओके, सीरियस जो लोग हैं ना वो एक काम करें, वो ज़रा साइड पर हो जाएं, क्योंकि सीरियस हमसे ना हुआ जाएगा। अच्छा खैर, देखें इंटरैक्टिव शो है तो लोग इसके अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर। क्या नंबर है? 6622107 फॉर मैसेजिंग। हाँ ये रहा मोबाइल, जब नंबर बताती हूँ तभी याद आता है कि भाई मोबाइल टेबल के कौन से किनारे पे पड़ा है। मुझे जब मोबाइल ढूंढना होता है ना तो मुझे 3 चश्मे और लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी नज़र एक तो वैसे ही कमज़ोर चल रही, उम्र का तकाजा है चलें, लेकिन मोबाइल वैसे ही मेरी पसंदीदा चीज़ नहीं है तो सामने पड़ा भी नज़र नहीं आता। खैर तो जब, लेकिन आपके मैसेजेस आते हैं तो पसंदीदा हो ही जाता है, तभी तो मिल जाता है। और भाई हमें अगर आपने कॉल करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, 4434377 पर। द नंबर इज 4434377। और आपको याद दिलाती चलूँ कि भाई हम बॉलीवुड ट्रिविया खेलते हैं 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले हम अपनी गपशप कर लेते हैं ना, थोड़ा वार्म अप होता है, वार्म अप जैसे जिम में जाते हैं तो वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप होता है, गर्मियाँ हैं वार्म अप की ज़रूरत नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन लेकिन हमारी गेम से पहले का होता है ना बातचीत होती है। तो भाई आप लोगों की रिकमेंडेशन, सजेशन था आप लोगों का कि 80s के गाने, चलो 80s के पहचानेंगे हम। तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, आज 80s का दौर शुरू करने वाले हैं हम, आज 80s के गाने पूछेंगे, देखते हैं कितने शहनशाह बैठे हुए, कितने बैठे हुए जो कह रहे थे, बहुत बहुत कहते हाँ हाँ ओल्ड इज गोल्ड, चलाओ ओल्ड इज गोल्ड, उसको पहचान लेंगे हम। आज देखते हैं कितने प्लेयर्स पहचान, मतलब कितने प्लेयर्स जो हैं वो पहचान सकते हैं गाने। करना आपने सिर्फ ये होगा कि गानों के नाम पहचानने होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले मैंने ये रखा था कि भाई मूवी के नाम भी साथ में दो, तो लोगों ने ना कुछ नाक चढ़ाना शुरू कर दी, मूवी के नाम नहीं हो रहे, या एक पूछो। तो मैंने कहा चलो एक ही पूछ लेती हूँ, मूवी का नाम नहीं बताना, सिर्फ गाने का टाइटल बताना है, ठीक है। मज़े मज़े गाने जो कि मुझे खुद भी, मैंने बचपन से सुने तो याद हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी याद ही होंगे, ये ऐसे गाने के जो हर किसी को रटे हुए। अच्छा भाई वो गानों के बारे में तो बात कर रहे थे, अरे ये हमारा वेदर रिपोर्ट रह गया भाई, मुझे पता है गर्मी तो है लेकिन कितनी है ये तो बताना पड़ेगा ना मुझे, अब मैं आई हूँ तो कुछ तो कर ही जाऊँगी ना। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, अभी वेदर रिपोर्ट चलाने वाली हूँ। तो भाई वेदर रिपोर्ट में आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 44 डिग्री सेल्सियस। खबरदार, जो मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि मेरी गाड़ी का टेम्परेचर तो 47 बता रहा है, मुझे नहीं पता मेरा टेम्परेचर 44 बता रहा है, ठीक है, तो मैंने जो बोल दिया ना बस बोल दिया। तो भाई मुझे बता रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ ये और बात है कि इट फील्स लाइक 49। ओ भाई फील्स लाइक 49। मुझे ऐसा लगता है हमारे पास ना एक सुपर एबिलिटी आ गई है, हम वो कहते हैं ना ह्यूमंस जो होते हैं ना वो कर जाते हैं, क्या क्या वर्ड कहा जाता है उसे, अडेप्ट कर जाते हैं, हाँ अडेप्ट कर जाते हैं। तो हमारे पास ना अडेप्शन का एक सुपर पावर अनलॉक, एक अलग ही लेवल अनलॉक हो गया है हमारे पास यहाँ पे रहकर। है कि नहीं, हम सुपर पावर रखते हैं। कभी हम वापस पाकिस्तान जाए ना या इंडिया जाए तो आपसे पूछना आपके पास कोई सुपर पावर है, तो बोल देना मेरे पास गर्मी बर्दाश्त करने का सुपर पावर है। 50 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है, अच्छा।

जी अच्छा, आज की एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है सीधे से बता देती हूँ, जो कि आप पिछले दिनों से रखते आ रहे हैं। आज फिर बता देती हूँ, एक्सपेक्टेड सनी स्काइज, ठीक है। हाईएस्ट जो टेम्परेचर जाएगा वो 46 तक जाएगा, और आज कुछ ब्रीजी डे जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। सुबह को मैं जब निकली थी तो भाई दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे थे, यानी कि हवा की रफ्तार जो है वो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवा इधर उधर लहरा रही हैं। हम मज़े में हो ना हो, हवा को बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ वहाँ लहराती घूमती चल रही हैं, और जो गर्मी के पटाखे यूँ मुँह पर पड़ते हैं चपेड़े, आए हाय हाय हाय हाय हाय, बस लू वाली हवा ना चले, बाकी सब खैर है। ह्यूमिडिटी का अगर हिसाब बताया जाए तो ह्यूमिडिटी हमारे ऊपर हवा की तरह मेहरबान हो चुकी है, जबकि उन्हें होना नहीं चाहिए था। इनसे हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि आप ऊपर की तरफ जाएं, आप नीचे ही रहती तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं फिर भी प्रोग्रेस कर रही है ना, प्रोग्रेस कर रही है, सिर्फ हम क्यों प्रोग्रेस करें, ह्यूमिडिटी ने कहा मैं भी प्रोग्रेस करूंगी। तो ह्यूमिडिटी आज 25% पर है, और आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई प्लान है ना बाहर भाग दौड़ करने का, या आपको बहुत ज़्यादा आज के दिन में जिम विम याद आ रहा है, आप कह रहे हैं आज से मैं सेहतमंद होके घूमूंगा, ये रनिंग शनिंग का प्लान है ना, तो भाई बहुत पुअर है, बहुत बहुत बहुत गलत प्लान कर रहे हैं आप। छोड़ दें इस प्लान को, अभी छोड़ दें, अभी के लिए बहुत पुअर वेदर है फॉर रनिंग राइट नाउ, सो अभी ये काम ना करना, कहीं आवा गिरे पड़े हो गए ये काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा भाई, यूवी रेज एज यूजल हाय हैं, गर्मियों के दिन है तो अपना ख्याल रखें, पानी की बोतलें अपने साथ रखें, बोतल नहीं बोतलें अपने साथ रखें, हाइड्रेटेड रहें। और एक बहुत अच्छी सी टिप देने लगी हूँ, वो अपने आते हैं ना इन्हें कहते हैं एफर्वेसेंट्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं हाइड्रेशन की, हाइड्रो करके उनका नाम होता है, कुछ पता नहीं क्या नाम होता है, उन्हें हाइड्रो कहते हैं, कि वो आपको हाइड्रेटेड रखती हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी कि आप कहीं की भी किसी भी कंपनी की उठाएं, लेकिन वो एफर्वेसेंट आती हैं, हाइड्रो एफर्वेसेंट, उनको आप इस्तेमाल करें तो वो आपको आपका जो नमकीनियात हैं बॉडी में, जो मिनरल्स हैं, जो हाइड्रेशन का मामला है आपका, वो सेट रखती हैं। एटलीस्ट एक ज़रूर अपने साथ रखें, रखना नहीं है सिर्फ जेब के अंदर या गाड़ी के अंदर, उसे इस्तेमाल भी करना है, पानी के अंदर डालोगे यूं करके पी जाओ तो वो अच्छी होती है, इट हेल्प्स अ लॉट। वरना याद रखना, सर में जो दर्द हो रहा होगा, बॉडी में जो फटीग हो रहा होगा, जो गर्मियों का मामला होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगा। अगर वो नहीं कर सकते तो आपकी जो नॉर्मल पानी होता है ना, उसके अंदर एक चुटकी आपने नमक डाल लिया और थोड़ा सा उसके अंदर चीनी डाल ली एक दो चुटकी, और वो उसको शेक करके पी लें, तो वो भी नमकीनियात को अच्छे तरीके से बॉडी में लॉक रखता है। चलो भाई, ये तो हो गई गर्मी की बात, लेकिन गर्मी के बारे में बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आ गई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, शेयर कर ली जाए। आप हाँ बोलें ना बोलें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो शेयर करूँगी, करने आई हूँ शेयर तो करूँगी, तो काम है मेरा भाई। चलो इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देते हैं, आज का ना आपको थोड़ा सा फन ट्रिविया बता देती हूँ, बॉलीवुड ट्रिविया बाद में आएगा 12 बजे के बाद, लेकिन फन ट्रिविया आपको बता देती हूँ। तो साथियों देखें, आजकल के दौर में, अब ये फुटबॉल का सीज़न भी थोड़ा गया है, तो थोड़ा जो ना वो एथलीट नुमा मेरे अंदर जो शख्स है ना जो रहता है, वो उभर उभर के बाहर आ रहा है, उछाक उछक के बाहर आ रहा है, और कह रहा है कि आपके साथ कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें शेयर की जाएं। तो देखें, आज के दौर में जो हम अब अंदर बैठे हुए हैं टेलीविज़न पर, हम जो अपने गेम्स वगैरह देखते हैं, ओलंपिक्स देख लेते हैं, तो हमें ना मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले नज़र आते हैं, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, हमें कहीं पर स्विमिंग के मुकाबले नज़र आ रहे होते हैं, कहीं पर भाग दौड़ के मुकाबले नज़र आ रहे हैं, कहीं पर स्नोबोर्डिंग नज़र आ रही होती है, कहीं पर आइस स्केटिंग नज़र आ रही होती है। तो आपने कभी बात सोचिए कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था? ये जो चीज़ें ना, ये जो स्पोर्ट्स आप अभी देख रहे हैं, ये तो जदीद दौर के स्पोर्ट्स हैं, ये जदीद दौर के यानी कि न्यू स्पोर्ट्स हैं। आपको पता है ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था? आपकी इत्तला के लिए मैं आपको इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो सारे स्पोर्ट्स हैं ना, इनका मामला गर्मियों के दिनों से ही शुरू हुआ था। ये असल में जो स्पोर्ट्स की जो 1, 2, 3 शुरू हुई थी ना, ये गर्मियों का मज़ा दुबाला करने के लिए ही शुरू किए गए थे, गर्मियों का मज़ा दुबाला करने के लिए। स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स होते थे ना, ओलंपिक्स वो गर्मियों में होते थे असल में। जी हाँ, साल था 1896 का, वो जो ग्रीस का दौर था ना, ग्रीक एथेंस, हाँ एथेंस के शहर में जब दुनिया के आप कह लें कि सबसे पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे ना, तो उन्हें आप कह लें कि मखसूस जो एग्जैक्टली जिस सीज़न में मनाया जाता था ना, वो होते थे समर स्पोर्ट फेस्टिवल, यानी गर्मियों के खेलों का मेला कहा जाता था उसे। और इसको डिज़ाइन इस तौर पे किया गया था कि ये समर में होते थे। देखें, अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि यार ये खेलों का मौसम से क्या लेना देना होता है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका क्या लेना देना होता है। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं।

होती हैं, ये जब शुरू हुए थे ना, सबको पता है अगर आप जाएं, अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री नहीं पता और जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स की हिस्ट्री, तो भाई सबसे बेहतरीन जगह हमारे कतर में एक है, ये अपना 321 स्पोर्ट्स म्यूजियम, बेहतरीन भाई। इसके अंदर पूरी हिस्ट्री जमी पड़ी है स्पोर्ट्स की, और उसके अंदर ये भी एक सेक्शन दिखाया गया है जिसके अंदर आपकी मालूमात में इजाफा होगा कि ये जो ओलंपिक शुरू हुए थे ये ग्रीस से शुरू हुए थे। बहुत खूबसूरत सेक्शन है, जाकर देखिएगा रिकमेंडेशन पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई खेलों का मौसम से क्या लेन देन होता है, तो चलिए आपको इसका मैं आपको एक मज़ेदार सी कहानी समझा देती हूँ उसकी। देखिए हज़ारों साल पहले ना पुराने ग्रीस में लोग खेलों के मुकाबले रखा करते थे, लेकिन फिर वो बंद हो गए, यानी कि 1896 के दौर में एक फिर से एक वेव आई। मतलब पहले जो मुकाबले हो रहे थे, रखे जाते थे गर्मियों में, वो बीच में बंद कर दिए गए। फिर 1896 में एक फ्रेंच बैरन थे, उन्होंने सोचा कि भाई दुनिया को आपस में फिर से जोड़ने के लिए ना हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी हो जाए, और फिर उन्होंने इसीलिए अप्रैल और मई के मौसम में ये चुना कि यहाँ जो जब धूप अच्छी खासी हो रही होती है ना, तो अब दुनिया को जोड़ने के लिए हम वापस से गेम्स करेंगे। पहले होते थे, फिर बंद हो गए, फिर डिसाइड हुआ कि वापस से एक ऐसा दौर आएगा कि जिसके दुनिया को जोड़ने के लिए रखा जाए। तो फिर ये हुआ, उस जमाने में ना किसी ने सोचा भी नहीं था कि बर्फ में भी खेल हो सकते हैं, ओलंपिक्स हो सकते हैं। पहले मॉडर्न ओलंपिक्स जो होते थे ना, वो सिर्फ तीन खेलों पर मुश्तमिल थे, जैसे कि आप कह लें कि जिसमें होती थी साइकिलिंग, स्विमिंग और जिमनास्टिक्स। सर्दियों के खेलों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई सर्दियों के ओलंपिक विंटर जो ओलंपिक्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो भाई अगले 28 साल तक सर्दियों के गेमों तक का कोई नामो निशान तक नहीं था। जो शुरू में मनाए जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ 9 खेल थे, और उनको गर्मियों के लिए रखा जाता था। अच्छा, पहले ना ओलंपिक का एक मज़ेदार बात ये है कि पहले जो ओलंपिक की स्विमिंग वगैरह होते थे ना, वो इंडोर नहीं होते थे। नो, एक्चुअली में उनके मुकाबले जो होते थे वो ओपन सीज में, ओपन समंदर में हुआ करते थे। सोचिए अप्रैल की ठंडी ठंडी धूप होती है ना, वो कितने मज़े की लग रही होती है अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम आया नहीं होता। अप्रैल की अच्छी सी मीठी मीठी सी धूप होती है, तो उसमें एथलीट्स को समंदर की लहरों में उतार दिया जाता था कि भाई चलो जो पहले किनारे पर पहुंचा, यानी कि दरिया और समंदर की फुल फैसिलिटी आप कह लें कि वो लोग अवेल कर रहे होते थे कि चैंपियन वो होगा जो दरिया के उस किनारे पहले पहुंच गया। मतलब साथियों, आज जो आप एसी कमरों में बैठकर जो अपने चिप्स जूस खा रहे पी रहे होते हैं ना, और फुटबॉल के मैचेस देख रहे होते हैं, तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। आप अगर खेलों का हिसाब कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, याद दिला चलूं कि 1896 के दौर में असल में समर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मरहला आगे बढ़ना शुरू हुआ था। तो भाई अगर आप गर्मियों को कोस रहे हैं तो ना कोसें, गर्मियों में लोगों ने पहले ज़माने में, ये जो मोबाइल है, हमारी अम्मा कहती है ना हर फसाद की जड़ ये मोबाइल है, तो भाई पहले भी लोग एंटरटेनमेंट किया करते थे। गर्मियों के दिनों में एंटरटेनमेंट होता था, लोग बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स खेला करते थे गर्मियों को एन्जॉय करने के लिए। आप भी एन्जॉय करें, अभी के लिए नहीं, लेकिन ये मेरा काम था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप गर्मी को ज़्यादा नेगेटिव वे में ना लें। अभी भी हम स्पोर्ट्स एन्जॉय कर सकते हैं इसके अंदर। तो भाई इसी इन्फॉर्मेशन के साथ एक काम करती हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जाती है तो एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके अपने मुद्दे पर आएंगे, ठीक है, मुद्दे पर आएंगे, ओके। और मुद्दा आज हमारे पास बहुत मज़े का है, तो रेडी रहना, ब्रेक के उस पार मुद्दा चलेगा, मुद्दा। और फिलहाल तो चलेगा 1 2 3 मेरी तरफ से, और आपको याद दिलाती चलूँ कि आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफ़ा, दिल से देसी। और फिलहाल तो आपको गिनती याद करा रही हूँ, 1 2 3, मैं गिनती बोल रही हूँ, लोगों को माधुरी याद आ रही है, चलो कोई नहीं, आनी भी चाहिए, 1 2 3, दिल से देसी।

0: अच्छा। मुझे चाहिए काले रंग की गाड़ी जिसकी लाल रंग की आंखें और जिसकी आवाज आती हो बुम बुम। मैं वो बोल रही थी, पूछ रही थी, मैंने कहा मैं बता देती हूँ। चले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ही बता देती हूँ कि आप सुन रहे हैं,
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: अच्छा, अगर काले रंग की गाड़ी दे ही रहे हो तो भाई उसके साथ एक खोखा भी भेज देना। क्या कहते हो, पूछा था क्या चाहिए तो बता रही हूँ दिल खोल कर। वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा दिल से देसी। और भाई देखें, हम जो है ना ब्रेक के उस पार आ चुके हैं, तो भाई आप लोगों से दरखास्त है कि अटेंडेंस लगवा लो। आज क्या हुआ है, सो रहे हो क्या? लोगों का मंडे ब्लू होता है, तुम लोगों का क्या ट्यूसडे ब्लू चल रहा है क्या? तो भाई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस नंबर पे 666-2107 पर, मेरे अंदर का गजनी जाग उठा था, 666-2107 पे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे और अटेंडेंस लगवा सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। और चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर, 443-443-77 पर। और भाई आज का मुद्दा हमारा पता है क्या है, बड़ा सिंपल सा सीधा सा मुद्दा है। मैं बांट रही हूँ सुपर पावर, ठीक है? और वो सुपर पावर जो है ना दो किस्म की है। हेलो, दोनों नहीं लेकर जा सकते, ठीक है? ये जो काम करते हो ना कि आया हूँ तो कुछ तो लेकर ही जाऊँगा, दो लूंगा, ऐसे नहीं हो रहा, नहीं ये नहीं हो रहा, एक ओनली वन चॉइस, ठीक है? पहली चॉइस ये है, आपको सुपर पावर मिल रही है कि आप लाइव लाई डिटेक्टर बन जाएं। यानी कि ये कि आपका दोस्त आपको चिढ़ाने के लिए, एवं शोखी मारने के लिए, वैसे तो घर में बैठा हुआ है लेकिन आपको कह रहा हो कि हाँ मैं तो समंदर के किनारे बैठा चाय पी रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, बोर हो रहा है, हाय हाय तेरे घर वाले तो तुझे बाहर आने भी नहीं देते, जाने दे। वैसे लाहौर वाले जो है ना वो ये बहाना मार नहीं सकते, छोड़ो रहने दो, लाहौर वालों को छोड़ो, हम कराची वाले हम ही बहाना मार सकते हैं, हाँ सी व्यू के किनारे बैठे हम चाय शाय पी रहे हैं, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा रहे हैं, लाहौर लाहौर है, कहाँ ही देखा होगा दरिया या कोई समंदर उन्होंने। जोक था। अच्छा भाई, पहली पावर ये है कि आपको लाइव झूठ डिटेक्टर बनने को मिल रहा है। मतलब ये कि आपको कोई दोस्त आपको मैसेज करता है कि भाई मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में, और आपको ये पता चल जाए, एकदम सायरन बजने लगे आपके दिमाग में, ये तो अभी तक सोया पड़ा है, झूठ बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन भी है, रुको जरा सबर करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपके एक्सक्यूजेस कभी पकड़े ना जाएं। यानी कि जो छोटे मोटे हल्के फुल्के बेजरर से झूठ आप यहाँ वहाँ बोल देते हैं कि भाई आपकी सासू माँ ने आपको मैसेज किया और आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने एकदम से कहा कि भाई हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते तुम आजकल, तो आपने बोला नहीं आंटी वो ना वो फोन साइलेंट पे था ना, वो असल में नेट का मसला था ना, तो यू नो व्हाट आई मीन, आपने इधर उधर करके गोली दे दी और अगलों ने मान लिया। यानी कि आपके एक्सक्यूज कहीं पकड़े ना जाए। अब सोचिए आप कौन सी पावर को आप अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहेंगे और कौन सी पावर आपकी जिंदगी को मोर इंटरेस्टिंग, मजेदार और थोड़ा सा डेंजरस बना देगी। देखिए सासू माँ की कॉल ना उठाई तो कितना ही डेंजर मामला हो जाएगा, लेकिन डर के आगे जीत है। बेगम ने लंबी चौड़ी सी लिस्ट फरमाइशी भेज दी और आपने कहा बेगम वो नेट नहीं चल रहा था। देखिए मौत को छूकर से वापस, ऐसे वाला गेम। तो आपने बताना है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन

0: अच्छा लग रहा है, लाइव झूठ डिटेक्टर का या एक्सक्यूजेस कभी ना पकड़े जाने का? आपको कौन सी पावर चाहिए होगी? बोलो बोलो, टेल टेल, गोबिंदिया फुल्लो, आ जाओ लाइन में, जरा आ जाओ, लग जाओ लाइन में और बताओ। 666-22-107 पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, तो आप 666-22-107 पे मैसेज कर दें, कोई बात नहीं। और अगर चाहें तो आप, मैं अगर दीदा दिलेरी दिखाना चाह रहे हैं, फुल हल्क फॉर्म में आना चाह रहे हैं, तो आप खुलकर बात करें, आप हमें मैसेज कर, आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर। आए जरा खुशबू लगा के बातें करते हैं। 443-443-77 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, लाहौर वालों का बहाना पकड़ा नहीं जाएगा कि हम समंदर किनारे बैठे हुए चाय पी रहे हैं। समझ गए? समझ रहे हो ना? हाँ, बस चले मैं एक कॉल अटेंड करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। कैसे हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे कि ये कोई जो है ना अभी बताने आया है कि किसके शहर में दरिया है और कौन बैठकर दरिया का बहाना मार सकता है।
1: नहीं, हमारे शहर में दरिया नहीं है,
0: नहीं है?
1: जंगल है।
0: अरे भाई, तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन कैसे पकड़ा जाएगा भाई, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो? अच्छा, कौन बात कर रहा है पहले ये तो बताएं।
1: मैं मुबारक बोल रहा हूँ, राजस्थान से।
0: राजस्थान से?
1: हाँ, राजस्थान में तो रमल
0: है। हाँ, राजस्थान में तो वाकई में रमल है भाई। मुबारक भाई। हाँ। राजस्थान में भाई, राजस्थान में जो लोग रहते हैं ना। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि राजस्थान में कुछ वसाइल की भी कमी की वजह से पानी का भी कुछ मसला रहता है, इज इट?
1: नहीं नहीं, वो ऐसे सुना हुआ है हमारी साइड में।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान का कल्चर बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं ना उनका ट्रेडिशन और कल्चर, और वो उसके लिए बड़े मशहूर है। वो
1: पूरी दुनिया में ना राजस्थान के आदमी है ना सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
0: सही सही सही सही, ये गुड इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छी अच्छी बातें करें एक दूसरे से, अच्छी अच्छी बातें। अच्छा ये बताएं, अच्छा आप राजस्थान से, तो आपको कतर आकर कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी, आप कह रहे होंगे कि गर्मी भाई बहुत ज्यादा हाल बुरा कर
1: दिया। ये गर्मी होती है ना, इग्नोर करते हैं क्योंकि हम राजस्थानी है।
0: हाँ,
1: तो गर्मी है।
0: हाँ। तो मुझे यही लग रहा था कि राजस्थान की जो गर्मी है ना वो माशाल्लाह से बहुत हाई फाई होती है भाई। अच्छा ये
1: माशाल्लाह बहुत।
0: अच्छा ये बताएं कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि लाइव लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने की मशीन आप बन जाए, ठीक है, वो चूज करेंगे, या आप ये चूज करेंगे कि आप जिंदगी भर जो छोटे मोटे झूठ होते हैं ना, जो आपको कट मार के निकल जाए, आप पकड़े ना जाए आपके झूठ?
1: नहीं नहीं, मैं झूठ खुद पकड़ने वाला हूँ दूसरा आदमी।
0: अरे भाई, ऑलरेडी बिल्ट इन है,
1: बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है कि कौन आदमी कैसे क्या कर रहा है।
0: इसी इंतजार में तो मारे जाते हैं हम। जब तक हमें पता चलता है, हमारी जिंदगी झंड हो चुकी होती है जब तक हमें पता चलता है कि सामने वाला कैसा है।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें पकड़ लेता है फिर बोलता है नहीं भाई।
0: अरे वाह,
1: टेक्नोलॉजी
0: ये सही है, जर्मन टेक्नोलॉजी। जर्मन टेक्नोलॉजी, हाँ ये सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी ये बिल्ट इन पावर है।
1: हाँ हाँ, ये चीज है, मैं समझ जाता हूँ आदमी के चेहरे से, आवाज से, एक्सपीरियंस से समझ जाता हूँ क्या बोल रहा है आदमी।
0: लगता है जिंदगी में बहुत मसले मसाइल सुलझाए हैं। बहुत पाला पड़ा है आपका ऐसे लोगों से।
1: नहीं समझा, मसले मसाइल है ना, तो जाता रहता हूँ मैं ऐसे ही।
0: अच्छा ये एक बात होती है, इंसान के एक्सपीरियंसेस से ना जितना आप इंटरेक्शन रखते हो ना लोगों के साथ, उसके हिसाब से
1: मैं बहुत रखता हूँ।
0: सही,
1: ये सब लोगों के साथ पूरा कंट्री है ना, बहुत कंट्री के आदमी है ना, जान पहचान वाले हो गए मेरे।
0: एक्सपीरियंस
1: आपको मालूम है, टिकटॉक पे चलता ही रहता है जिंदाबाद।
0: हाँ ये एक फैक्ट है, खासतौर पे जो इंटरनेट की दुनिया है ना, इंटरनेट की दुनिया ने अब जो है वो मामले बड़े डिफरेंट कर दिए हैं। 90s के बच्चे बड़े अलग थे, और इस दौर में जो हम लोग जी रहे हैं वो हम लोग पॉलिश हो गए।
1: कि 90s है ना, 80 और 90s के बीच में जो आदमी पैदा हुआ ना, वो हमेशा ना खुश रहता है।
0: हाँ, ना फिक्र ना फाका आजकल काका। वो जो 2000 और वो जो Pentium 4 Pentium 3 की आने के बाद वाली जो पैदाइश है ना,
1: 2000 के बाद की बच्चे ना, 2000 के बारे में वो सैड रहते हैं।
0: उनकी दुनिया इंटरनेट है, उनको सांस नहीं आता इंटरनेट के बगैर। लेकिन एक और बात है, उनके

0: में एक और चीज बड़ी अच्छी हुई है कि उन्होंने हमने जो चीजें धक्का खा खा के सीखी उन्होंने धक्के खाए बगैर सीख लिया, उनको ऑलरेडी वो एक्सपोजर मिल चुका है, वो कम धक्के
1: उनको पता नहीं है ना, नानी के घर में जाते हैं तारों की छांव सोते हैं 2000 के बाद में पता ही नहीं उन लोगों को, तो 90 वाले को पता है।
0: अच्छा, अरे भाई ये वाली जो जनरेशन है ना, इनको दरख्तों पे चढ़ना नहीं आता,
1: नहीं आता
0: ये चूंटियां होती है ना, चूंटियां दरख्तों पे चूंटियां चढ़ती हैं, वो उससे डर के भाग जाते हैं।
1: हां,
0: चूंटियों से डरते हैं ये।
1: मैं बोल रहा हूं ना, जो आदमी है ना 90 और 80 के बीच में पैदा हुआ ना, वो जमाना कभी भी नहीं आएगा, किसी की लाइफ में नहीं आएगा।
0: चले भाई, तो आपका ये है कि आपको, आपके पास तो ऑलरेडी पावर चल रही है भाई, तो आप उसको, आपको बूस्टअप मिल जाएगा, आपको बूस्टअप।
1: मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ।
0: सही, चले भाई, ये तो अच्छी बात हो गई, मतलब आपको झूठ लाई डिटेक्टर आपके पास ऑलरेडी है, तो दूसरा भी आ जाएगा आपके पास, 1-on-1 फ्री। किसका झूठ? अच्छा, एक बात तो बताए, सबसे पहले किसका झूठ पकड़ेंगे अगर आपको पावर मिल जाती है? रिश्तेदारों में किसका झूठ पकड़ेंगे सबसे पहले? स्पेसिफिकली बताएंगे, देखिए बड़ा मसला हो जाएगा। ऑन एयर बोलकर बड़ा मसला हो जाएगा।
1: नहीं, वो मेरे सामने क्या कि वो बोलते नहीं है ना झूठ, अभी तक तो कोई बोला नहीं मेरे को, पता नहीं है।
0: नहीं, मुबारक भाई, आपको क्या पता, रिश्तेदारों के बारे में ये कहा गया कि इनको तो दिल में जगह दी थी, आस्तीनों से कहां से निकलने लगे। ये रिश्तेदारों के बारे में सोशल मीडिया में चलता है,
1: कुछ झूठ ऐसे होते हैं कि हम पकड़ लेते हैं लेकिन नहीं बता सकते।
0: हाँ, ये मुरब्बा तो मारे जाते हैं ना,
1: वो खुश नहीं रहेंगे। सबको खुश रखना बस।
0: चलें ठीक है, अच्छी बात है, कुछ झूठ आप कवर अप कर लें, अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा, कुछ झूठ अल्लाह ताला आपको कवर कर देगा।
1: तो वो होती है ना, कुछ झूठ बोलने से किसी का भला हो जाता है, वो झूठ को नहीं पकड़ना चाहिए,
0: रिश्ते बचे रहते हैं।
1: रिश्ते बनाने रखना पड़ता है।
0: चलें भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करते रहिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, याद रखना।
0: चलिए भाई, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: रईस बात कर रहा हूँ।
0: अरे रईस भाई आए भाई, अरे गुलाब के फूल कहाँ हैं? रईस भाई आए हैं, फूल लेकर आओ।
2: आपको शायद एक बार बात हुआ था मेरा, बहुत पहले, आपसे कम बात होता है, तो मैं अक्सर महवश के उसमें और नाजिया।
0: जी सही, तभी तो मैंने कहा रईस भाई आए, गुलाब के फूल कहाँ हैं?
2: यट्टी के जमाने के हम लोग हैं, यट्टी के 85 के जमाने के, तो वो टाइम का कुछ माहौल अलग था। सही बात है, आपने जो कहा पेड़ों पे आजकल के लोग चढ़ना नहीं जानते।
0: हाँ, मजाक के अलावा। अरे मैंने अपने बच्चों को ऐसी मजाक में बोल दिया, मैंने कहा ये दरख्त है वो बेरी का पेड़ होता है ना, जो हम लोग तो बचपन में कैसे बेर तोड़ा करते थे।
2: कंपटीशन चलता था हम लोगों का पेड़ों से, इस डाल पे उस डाल, मतलब भागने का और पकड़ने का एक दूसरे का, मतलब ये कंपटीशन चलता था। और वहां से मतलब नजदीक आके और जल्दी से उड़ी मार के फिर जमीन पे कूद के फिर भाग के, मतलब ये इसका बहुत
0: मजे की बात है। बड़े
2: तैरने में भी, तैरने में, पेड़ों पे चढ़ने में, कबड्डी खेलने में, और उसके एक खेल, मतलब गिल्ली डंडा और ये सब बहुत खेल, मतलब अब के बच्चे तो बस ज्यादातर मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करके बर्बाद कर देते हैं। उस टाइम ज्यादा पढ़ाई के टाइम में खेल कूद का और भाग दौड़ का ये सब बहुत था। ऐसा नहीं था कि मतलब उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने ऐसा जनरेशन देखा कि बहुत नीचे से और बहुत।
0: हाँ, एग्जैक्टली,
2: क्योंकि हम लोगों ने बहुत पूर्व, मतलब बहुत जो मतलब कि लोग एकदम पुराने जमाने के ख्यालात के, वो बुजुर्ग तो मिले हम लोगों से, वो लोगों का ख्यालात, उन लोगों से बैठ के, उन लोगों से गपशप करते थे और वो पुरानी बातें अगर याद करा के और वो अपनी कहानियां सुनाने लग जाते थे, तो हम लोग वहाँ पे घंटों तक बैठ के उनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता था कि यार
0: अरे, हमारे हम लोगों को अगर ये कह दिया जाता ना कि इंसान के नहीं बंदर के बच्चे हो क्या, चुप करके बैठ जाओ, तो हमें ये लकब दिए जाते थे, हमें बंदर के बच्चे हो क्या, तुम लोग चुप करके बैठ जाओ।
2: तो यकीन उनकी बातों पर 100% हम लोग यकीन करके, मतलब अपने बुजुर्गों के साथ में जो मतलब बैठ गांव के
0: एग्जैक्टली
2: उनकी बातें, सारी बातों को हम यकीन करके, हाँ फिर क्या हुआ पूरा, मतलब
0: सुनते थे।
2: पास और कुछ कराए तो थे नहीं टाइम पास के, स्कूल से भाग के आए और छुट्टी मतलब छुट्टी मिला तो फिर
0: वो पंखे की ठंडी ठंडी हवा आए हाय हाय हाय एसी भी नहीं होते थे।

0: टाइम पर तो
1: जी जी जी जी बहुत बहुत मजा आता था. और झूठ और ये सब चीजें भाई मैंने
0: नहीं थी, बहुत कम थी, लोगों की जबान काफी थी, मोमिन की एक जबान बस, वो वक्त वो दौर था. अच्छा ये तो बताएं, ये तो बताएं, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप जिंदगी में आपको दो चीज़ें दी जा रही हैं, दोनों में से कोई एक चुननी है, या तो आप जिंदगी भर छोटे मोटे जो है ना वो ऊपर नीचे वाले झूठ होते हैं ना जो बेजरर से होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते.
1: अरे भाई मैंने बेजरर वाली झूठ एक जिंदगी में एक बार इतना बड़ा मजाक और झूठ मैंने ये किया था कि वो मैं नहीं भूल सकता, वो लाइफ बर्बाद हो जाता था दूसरों का. मैंने मजाकन बस हम लोग उस टाइम बॉम्बे में शिफ्ट थे बचपन में, मतलब ये करने तो पहले वो खत खतूत वाला कुछ मामला हाँ, था आज के कुछ सालों पहले, मतलब मोबाइल का आज के 15-20 साल पहले मोबाइल का इतना दौर तो था नहीं. तो उसके फादर ने खत लिख के भेजा अपने बच्चे को, तो हम लोग के साथ में काम करता था, तो उसका शादी नया नया हुआ था, तो मैंने बस 6 महीने गुजरे थे और मैंने उसी खत को खोल के और उसमें लिख दिया तेरे वाइफ को बच्चा पैदा हुआ है,
0: लो जी
1: माफ करे. वो बंदा खत को पढ़ रहा है और मतलब वो इतने टेंशन में इतना यहाँ तक कि मतलब वो
0: कुछ ज्यादा एक्सट्रीम मजाक हो गया भाई ये.
1: बहुत बहुत बहुत बड़ी मतलब मैंने मजाक किया था, तो वो समझ लो कि वो बल्कि जज्बात में आ गए कि मैं तलाक तो दे दूंगा ऐसा ऐसा. मैंने कार पकड़ लिया बहुत बाद में, मैं जब सुन लिया दूसरों से तो यार मैं बोला यार ये तो बहुत बहुत गए. और उस वक्त हम लोग बिल्कुल ना समझी का मतलब ये आलम था कि बिल्कुल नहीं समझे मतलब जिंदगी तबाह हो जाएगी.
0: तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या चूज करेंगे आप? आप ये चूज करेंगे झूठ बोल के निकल जाएं या आप लाई डिटेक्टर बन जाएं, झूठ पकड़ने वाली मशीन बन जाएं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल वही डिटेक्टर ही बनना है, मतलब भाई नहीं नहीं डिटेक्टर ये करके किसी को रोको भाई ये करके, नहीं तो पता चला कि किसी की जिंदगी मतलब सबसे बड़ी जड़ है.
0: सबका अपना अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है, आपका बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस था, उसके बाद से आपने झूठ ना बोला होगा फिर.
1: मैंने कान मतलब मैंने कहा मजाक में भी अब मैं झूठ बोलने से बहुत बचता हूँ.
0: चले
1: भाई अल्लाह माफ करे, मैंने मजाकन मतलब इतना ज्यादा लंबा उसकी लाइफ को मतलब ये करने के लिए हालात था, मतलब उम्र में हम लोगों से थोड़ा बड़ा था तो वैसे थोड़ा सा अजीब गरीब मजाक करना ये बहुत भारी
0: पड़ गया. नहीं नहीं करना चाहिए ऐसा सोच समझ के, वो उम्र होती है उसके बाद इंसान सबक सीख जाता है.
1: नहीं बिल्कुल उस टाइम बस सोच समझ के मामले में बहुत हम लोग मतलब कमजोर थे, वो नहीं इतना दुनिया के माहौल का. अब जितने आजकल के बच्चे हम लोग के बच्चे जो हैं वो जो 10 साल में इतना करके हम लोग 20 साल में शायद वो उस टाइम इतना ये नहीं होता था.
0: सही,
1: क्योंकि बहुत पीछे हम लोग का ये रहता था कि इतना ज्यादा लंबा ये एडवांस नहीं था ना, इतना मतलब नहीं था. आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है लोगों का लाइफ है और ये इतना टेंशन जितना अब लोग लेके और अपनी जिंदगी को ये कर रहे हैं उतना उस टाइम हम लोग बिल्कुल फ्री होते थे कि मतलब इतना लंबा बनाने का इतना लंबा ये ड्रीम नहीं होता था.
0: चले भाई रईस भाई, आपकी कहानी सुनकर ना बड़ा डिप्रेशन हो गया मुझे, लेकिन लोगों के लिए सबक है कि भाई मजाक एक लिमिट में करना, ये एक बड़ी सही बात है.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं बस वो अल्लाह माफ करे, बस मैं वो उससे लोगों को ये कर मतलब ये सब किसी के जिंदगी के साथ में किसी मतलब हंसी मजाक, हालांकि ये सब मामला नहीं होने पाया, मतलब हम लोगों ने संभाल लिया फिर बाद में मजाक को मतलब
0: ये तो दुरुस्त चलिए अच्छी बात हो गई, मामला सुलझ गया. अभी फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि अजान का टाइम भी होने लगा है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे वापस से बात होगी फिर कभी. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.
1: ओके अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम.
0: तो भाई साथियों मजाक लेकिन लिमिट में रहकर करना चाहिए, कभी कभी ये जो बचपन में हम हरकतें कर जाते हैं ना, हम सबकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये हरकतें हैं, तो ध्यान से मजाक किया जाए. और फिलहाल के लिए एक काम करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ ठीक है, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी और बातें और आपके मैसेजेस भी पढ़े हुए, तो एक ब्रेक और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है.

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। आप सुन रहे हैं सफा के साथ,
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई सफा के साथ आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, और इस वक्त एफएम 107 की घड़ी कितने बजा रही है सफा, आंखें खोल कर देखो। तीन चश्मे लाकर देखती हूं मैं, तीन चश्मे। इस वक्त बज रहे हैं 11:52 हो रहे हैं, यू नो एक्सेंट के साथ बोलते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। अच्छा भाई, अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर हों। आपको किसने रोका है, कौन सी पाबंदी लगी हुई है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। मैसेजेस की जानिब अगर बढ़ूँ तो भाई यूसुफ भाई का मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सफा जी, कैसी हैं आप, होप वेल, वेलकम सन एंड साउंड, ठीक है। ट्यूसडे, हैप्पी वाला ट्यूसडे। ट्यूसडे पता है क्यों हैप्पी होता है, क्योंकि ट्यूसडे पे खड़े होकर अगर आप सामने नाक की सीध में देखें, लेफ्ट राइट नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है, नाक की सीध में देखें ना, तो एक दिन छोड़कर, नहीं हाँ एक दिन थर्सडे वाले दिन को काउंट कर ही लेते हैं, चलो दो दिन छोड़कर ना, आपको वीकेंड नजर आ रहा होता है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या तो वीकेंड की लहरें, हाय हाय हाय मजे की। अच्छा भाई यूसुफ भाई और क्या कह रहे हैं, सफा जी आई वुड चूज फर्स्ट ऑप्शन, लाई डिटेक्टर वाला, सभी के झूठ पता चल जाएंगे मुझे। पता है ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, अगर ये मुझे मिले ना तो मैं कभी नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ऐसे लोगों की असलियतें आ जाएंगी, ऐसी ऐसी लोगों की असलियतें आ जाएंगी, मेरे पास ना एड्डा वड्डा दिल नहीं हैगा, बिल्कुल भी नहीं हैगा, एक इकलौता दिल हैगा, गोभी दया फूलो मेरे पास, वो भी टुट भज जाए तो मैं क्या करूंगी। हाय हाय हाय हाय, बड़ा खतरनाक ऑप्शन है पहले वाला, लाई डिटेक्टर वाला। सोचो किसी के बारे में आप सोच कर बैठे हुए हो कि ये भाई खुशबू लगा के सबसे बेहतरीन मटेरियल है मार्केट में, और उसका झूठ पकड़ा जाए, ओए होए होए, डट डावट। या एक काम करेंगे, अगर किसी ने ऐसी कोई फैसिलिटी अवेल करनी है तो मेटल का दिल लगाएंगे उसके पास, क्या कहते हो, मेटल का दिल होना चाहिए ये वाली, भाई बड़ा जिगर चाहिए। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कौन सलाम कर रहा है, सामी भाई, सामी भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बस ये लिखा है इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम। सामी बाकी का चैप्टर कहाँ गया, ये किताब क्या एक ही पन्ने के साथ शाया हुई थी। अच्छा और कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, फयाज सईद हैं, क्या कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल यू आर नॉट ओल्ड माशाल्लाह, विजन इज़ गुड। देखिए विजन इसलिए गुड चल रहा है, अब विजन का तो ओल्ड और हाँ ओल्ड से ताल्लुक होता नहीं, अपने आप को ऐसे ही हम बोल देते हैं ताकि लोगों की तारीफें बटोर सकें ना। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं नाजिया जी, अच्छा नाजिया जी के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी व्हाई नाजिया मैडम इज़ वेजिटेरियन। अरे ये क्या मतलब, मेरे पास थोड़ी है कोई डिटेक्शन वाली मशीन, अब मैं नाजिया से स्पेशली जाकर पूछूं, नाजिया व्हाई आर यू अ वेजिटेरियन। सबकी अपनी चॉइस होती है, उनकी अपनी चॉइस है भाई, अल्लाह ताला ने खुली ज़मीन रखी है, नाजिया जो है वो घास फूस खाएं, वेजिटेरियन बने या नहीं खाएं, तो इससे किसी को कोई क्या मसला होना चाहिए, उनको अपनी सेहत प्यारी होगी, अब मेरे ऐसे लोगों को नहीं होती, उनको माशाल्लाह होगी, उनको तो वो माशाल्लाह से अपने आप को फिट रखने के लिए खाती होंगी, इट्स बीइंग वेजिटेरियन इज़ हेल्दी, तो उसके अंदर कोई मसला थोड़ी है। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अच्छा ये ओल्ड वाला मैसेज हैगा, चलें जी आप एक काम करना ना फयाज भाई, कल मॉर्निंग शो में फ़ोन कर देना नाजिया को, बस फ़ोन कर देना, कहना नाजिया वाई वाई नाजिया, ठीक है। तो भाई आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, और चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22107 पर।

0: तो भाई साथियों, अब जो है ना हमारा थोड़ी देर में बॉलीवुड ट्रिविया का गेम भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने फरमाइश की थी कि पुराने गाने लेकर आओ, तो आज मैं खोद तलाश करके ना खबर पुराने वाले गाने लेकर आई हूँ। कौन है वो चीता जो मुझे कह रहा था कि पुराने गाने लेकर आओ, मैं तो मार का सर करूंगा, ओलंपिक जीतूंगा मैं, ओलंपिक नया रंग लेकर आऊंगा जिंदगी में। अच्छा, और मैसेज की तरफ अगर जाया जाए तो भाई ये कौन है हमारे साथ, हमारे साथ इनका नाम क्या लिखा, मासूम, बहुत ही मासूम चल रहे हैं। अच्छा ओके सॉरी, तो मैं तो झूठ डिटेक्टर वाली पावर लूंगा ताकि ताकि मेरी वाइफ जब कहे मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं तो मुझे असली रिपोर्ट मिल जाए। भाई ओ भाई, इधर तो बहुत ही खौफनाक किस्सा चल रहा है। मतलब हाँ ये होता है, लोग कहते हैं औरतें जो है ना बहुत मुश्किल होती हैं समझने में, तो लाइ डिटेक्टर से इनको एटलीस्ट समझ तो ये वैसे भी नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है मार्केट में। चलिए भाई देखते हैं, मैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, ठीक ठाक?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
1: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
0: मुदस्सिर भाई, ये मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर भाई भाई अपना पूरा नाम तो बताएं जरा। मैंने तभी नहीं बोला, कहेंगे फिर मुझे कहेंगे
1: आप बोलने वाली थी आप,
0: लेकिन मैं रुक गई,
1: आप सांप वाले या वो
0: नहीं, मैं रुक गई, मैंने कहा पता नहीं ऑफेंड ना हो जाए फिर ये।
1: नहीं बोलने वाली थी ना,
0: पूरा नाम बताया, लाइट डिटेक्टर।
1: देखो मैंने तुमको लाइट डिटेक्टर में बन गया ना,
0: मैंने कहा मुदस्सिर भाई का एक हमें पता होना चाहिए ना कौन से वाले मुदस्सिर है। अब बार बार मैं ये बोलती फिर सांप वाले नहीं तो बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा।
1: मेरा नाम मुदस्सिर अय्यूब है।
0: मुदस्सिर अय्यूब सही है, अच्छा अब हम याद रखेंगे। चलिए जी,
1: आप तो वो बन गई ना, वो जो एक फिल्म का क्या नाम ले रही थी,
0: गजनी गजनी गजनी,
1: तुम वो बन गई हो।
0: नहीं मुझे जो है ना,
1: अच्छा वो तो जो बच्चों का शो तक करती थी उसका तो पूरा नाम याद आता था, अभी तो हमारा पूरा तो बड़कर बन गई पावी।
0: बड़ों के शो में ना, बड़ों के शो में आके जरा बच्चों वाला मजा नहीं आता ना, बच्चों के शो में ट्रिपल मजा आता है, तो चीजें याद रहती हैं।
1: हाँ बच्चों के साथ तो बात करना बहुत मजा आता है ना।
0: अच्छा मुदस्सिर भाई ये बताएं, ये बताएं कि जिंदगी में अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, आपको सुपर पावर के अंदर से कोई एक चूज करनी है, दो के अंदर से कोई एक चूज करना है, या तो आप लोगों का झूठ पकड़ सके, या तो आप खुद ऐसे झूठ बोलने वाले बन जाएं कि आपका झूठ कोई पकड़ा ना जाए।
1: मेरा झूठ ना पकड़ा जाए अच्छा है,
0: ये अच्छा है। अच्छा रीजन बताएं, रीजन बताएं, मुझे रीजन सुनना है, लाई डिटेक्टर क्यों नहीं, क्यों नहीं?
1: हर आदमी का तो झूठ झूठ पकड़ गया तो फिर बात किसके साथ करोगे? तो फिर
0: अरे भाई क्या बात कर दी, अगर ये लाई डिटेक्टर बन जाओगे तो फिर बात किससे करोगे?
1: हर आदमी तो झूठ बोलता है लाजिम,
0: मैंने सही कहा था कि भाई पत्थर का दिल रखना चाहिए फिर अगर लाइट डिटेक्टर बनना है तो।
1: हाँ पत्थर का दिल रखना था, किसी के साथ नहीं लगता है फिर भी तुम उसके साथ बैठोगे।
0: मतलब आप वाली बात कर रहे हैं कि अगर मैं उनसे अलग तो बैठ नहीं सकता तो उन्हीं के साथ ही मिलकर कर लूंगा, उन्हीं जैसा बन जाऊंगा मैं। ये सही चल रहा है मामला,
1: तो रीजन यही है।
0: चले भाई ये मतलब
1: आप क्या चीज करोगे?
0: मेरे भाई मैं तो यही चाहूंगी कि लाइट डिटेक्टर बन जाऊं, लेकिन दिल पत्थर का लगवा लूंगी फिर, वो कहीं से मैनेज, जिस दिन पत्थर का दिल मैनेज हो गया ना उस दिन अवेल करेंगे ये फैसिलिटी।
1: फिर नहीं लगता है फिर तो बस तुम्हारा हर किसी के साथ बंदी भी नहीं होगी
0: भाई,
1: अकेले
0: हम अपने आप को ऐसे कहते हैं ना, हम कहते हैं हम अपनी तन्हाई एंजॉय करते हैं, हम तन्हाई एंजॉय करने वाले लोगों में से, तभी हम किसी से बात ही नहीं करते। तन्हाई पसंद लोग हैं भाई, हमें ज्यादा फर्क ना पड़ेगा। हाँ ये है कि मेरा असल में जज्बाती मानना ये है कि आप बेशक एक आधे इंसान से सलाम दुआ रखो, लेकिन वो एक आधा इंसान भी आपकी जिंदगी में मुखलिस हो, ना कि आपको पता है कि वो झूठ बोलता है और फिर भी आप उसके साथ चलो, वो बड़ा खतरनाक मामला होता है। फिर आप उन्हीं लोगों में से एक बन जाते हो जिनसे आप खार खा रहे होते हो, कि इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: हर कोई तो बस नहीं करता है ना, कौन करता है कोई नहीं करता है, एक
0: हाँ,
1: करता
0: ये बिग बात है, ये बिग बात है,
1: कोई तो नहीं करता है ना, जब पूरे दुनिया ऐसे हो जाएगा
0: तो बड़ा घपला हो जाएगा। नहीं मैं तो कह रही हूँ सब सीधे हो जाएंगे, कोई झूठी ना बोलेगा, सब सीधे हो जाएंगे, सबको सीधा करो, सब फड़े जाएंगे।
1: तो पूरा ये खिचड़ी वाला बन जाएगा ये।
0: हाँ चलिए भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए मुदस्सिर भाई, और उम्मीद करते हैं कि कोई हमसे झूठ ना बोले।
1: झूठ भी ना बोलो, गेम चेंज करो, गेम चेंज,
0: गेम चेंज, गेम चेंज करेंगे। अच्छा ये बताएं, आज ट्राई करना है पुराने गाने?
1: मुझे तो एक ही गाने भी याद नहीं है।
0: लो जी, अच्छा गेम चेंज होगी ना वो अगले हफ्ते से होगी, अगले हफ्ते से।
1: अभी पहले तो याद भी नहीं, अगर याद है ना तो मुझे सिर्फ यही याद होता है कि ये एक्टर है और ये एक्टर है, बस इतना याद होता है।
0: क्या याद होता है?
1: ये फिल्म का तो नाम भी याद नहीं होता है, लेकिन ये तो मालूम है कि ये शाहरुख खान फिल्म का है या संजय दत्त का है या इसका या इसका।
0: अच्छा एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम, एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम। चले नेक्स्ट वीक ये गेम रखेंगे, ठीक है? कहानी बताऊंगी आपको एक छोटी सी, आपने बताना है इस मूवी का एक्टर कौन था और एक्ट्रेसेस कौन थी। नेक्स्ट वीक
1: मिर्जा साहब वाला गेम लेके आओ, तीन का दम खेलो, उल्टा गिनती खेलो।
0: हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टी गिनती चले। ओके चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज। उल्टी गिनती में मैं उल्टी हो जाऊंगी, बैटमैन बन जाऊंगी मैं। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, देखते हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन बात कर रहा है? आरिफ भाई,
2: लस्सी वाला।
0: कौन सा वाला, कौन सा वाला, लस्सी वाला? हाँ लस्सी वाला, आरिफ भाई है ना लस्सी वाले। हाँ देखा मैंने सही बोला, अच्छा ही पहचाना था मैं भी डर गई थी, मैंने कहा लो मैंने कहीं कुछ और तो ना पहचान लिया। लस्सी वाला है, अच्छा लस्सी वाला, ओके। अच्छा अरे भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बताइए।
0: गर्मी में पॉपकॉर्न बन रहे हैं?
2: बन रहे हैं, गाड़ी में एसी भी नहीं है और ज्यादा बन गए।
0: ओए होए, गाड़ी का एसी सही कराएं भाई, पानी की बोतल साथ रखें, गाड़ी का एसी सही कराएं, अल्लाह ताला आपको सेहत।
2: गाड़ी का एसी का कंपनी बोल रही है मेरे को ठीक कराने के लिए, तुम अच्छा गैरेज देखो, और कंपनी ऐसी है ना मैं ठीक कराऊं, अगर दो तीन बाद खराब हो जाए तो वो बोलेगी तुमने ठीक कराया तुम समझो, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं कंपनी अपने से, वो बोल नहीं रही कि
0: तो अपना ही एक मसले मसाइल इनकी, इनका ये अलग डायमेंशन, आरिफ भाई अलग डायमेंशन में रहते हैं। ऐसे तो कोई मसले मसाइल है आरिफ भाई के कि मैं चुप हो जाती, मैं कहती मैं इनका क्या ही सोल्यूशन निकालूं, क्या करेंगे हम, ये अलग डायमेंशन में रहे, बहुत अलग सा था वो अरे भाई, अलग ही आदमी था,
2: एक इंसान तो अलग होना चाहिए,
0: अलग ही आदमी था वो। अच्छा अरे भाई
2: जो 1890 की आप लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तो आप लोग बोलते हो कि हमने ये किया, वो सब हमने भी किया है, मैं भी 2002 का हूँ पर मैंने भी किया है।
0: आप अर्ली अर्ली के ना, आप उस वाले एरा के हैं जो अभी फेड आउट होने से पहले पहले आ गए थे। अभी तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली आ रही थी, तो आप उस दौर के।
2: क्यों ये सब क्यों, इस उम्र जो आप लोगों ने बोला कि गाछ पे चढ़ने के लिए या कुछ जो भी खेल है हमने भी खेला है, ये गैप कब से अच्छा से हो गया, 2010 और 12 के बाद से एकदम गैप हो गया।
0: सही, एकदम ही झटका लगा है सबको।
2: हम लोगों ने भी एंजॉय कर लिया।
0: हाँ ये तो बात है, जो 2000 वाले बच्चे हैं, 2000 में जो बॉर्न हुए थे वो 2001-2002, तो वो उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत उनके अंदर होगा। अच्छा ये तो बताएं कि अगर आपको एक सुपर पावर दी जा रही है कि आपने या लायर डिटेक्टर बनना है या आपने आपके पास वो पावर आ जाए कि आप जो भी झूठ बोले उससे बच के निकल जाए।
2: ऐसे तो झूठ जिसके पास है मोबाइल वो छोटा मोटा झूठ तो बोलता ही रहता है, अब रहेगा रूम में बोलेगा मैं दोहा में हूँ, आ रहा हूँ 5 मिनट।
0: हाँ, ये होता है, ये बहुत नॉर्मली होता है।
2: अब जिसके पास फोन है वो लाजिम ये करता होगा, 100 में से 99 करते होंगे मेरे हिसाब से।

0: तो आप क्या करेंगे, आपको कौन सी पावर चाहिए?
1: मुझे चाहिए बस, ये तो मैं भी करता हूँ, तो लाइट डिटेक्टर।
0: लाइट डिटेक्टर सोच लें, दोस्त ने इंटरनेट पे लड़की बन के आईडी बनाई हुई होगी ये जो दोस्त होते हैं बहुत खतरनाक काम करते हैं, इन सबके कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे।
1: किस्सा बता दे रहा हूँ दोस्त का ही, ये लाइट डिटेक्टर के हवाले से। मेरा एक दोस्त है, अभी मतलब खास ही दोस्त है, मेरे तीन चार ही दोस्त है खास वाले, उसमें से एक वो है, नाम नहीं बता, वो भी क्यों सुनता रहता है जरिए। उसने एक बार क्या किया था, मतलब उसने जो मेरे साथ वो कुछ ऐसा काम किया था ना,
0: हाँ, प्रैंक कर दिया था कुछ।
1: वो दोस्त रखना, मतलब आप दुश्मन से हाथ मिला लो पर ऐसे दोस्त ना रखो। फिर भी अलहमदुल्ला अभी तक अच्छा दोस्त मैंने बना के रखा है। अब उसको वो चीज याद भी होगी नहीं होगी मालूम नहीं है, पर मेरे को खटकता रहता है कभी कभी।
0: भाई खटकना चाहिए, इस खटकने को याद रखना, खटकने को याद रखना, और जब हाथ मिलाओ तो ये खटकना आना चाहिए।
1: अभी उसके पास याद है नहीं है मालूम नहीं, अभी अलहमदुल्ला बहुत अच्छा दोस्त है, और उस टाइम पे दोस्त था उस टाइम पे भी, गांव के हम लोग, और वो जो काम उसने किया था ना तीन चार दोस्तों के साथ मिलके, मेरा फोन लेके उसने, उस हवाले से मेरे उसमें से किसी से बात नहीं होती है, बस यही एक बचा हुआ है अच्छा दोस्त।
0: चलें अल्लाह ताला बेहतर करे, कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका इंसान जो है ना भरपाई नहीं कर सकता।
1: वो तो रहेगा
0: और वो खटकना भी चाहिए। चलें भाई ये बताएं कि गेम खेलेंगे, गेम
1: खेल लूंगा, क्या मुश्किल है।
0: चलें भाई गेम खेलेंगे, और आज हमने जो है ना वो 1980s के गाने रखे, 1980s के, ठीक है। चलें भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपकी क्लॉक कहाँ गई मेरी, ओके 1 2 3 और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये बताइएगा,
2: ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा
1: मेरे दादा से जाओ
2: जब चूमता है सागर को।
0: अरे नहीं भाई ये बहुत मशहूर गाना है। अरे भाई ये तो मतलब जो रात को भी 90s का शो चलता है उसके अंदर भी, मतलब जो पुराने गोल्डन एजेस वाले गाने चलते हैं रेडियो पर, वो उसके अंदर ये बहुत बहुत मशहूर गाना है भाई, ये किशोर कुमार का गाना है भाई।
1: अब मैं अपना हालत बता रहा हूँ, या तो मैं गजल सुनता हूँ या कुमार सानू उदित नारायण।
0: अरे भाई ये किशोर कुमार का गाना है भाई। अरे भाई क्या बात कर दी,
1: मतलब ये मैंने सुना नहीं है
0: भाई, दिल दुखा दिया आपने तो, आपने तो मेरा दिल दुखा दिया। मतलब आप पहले प्लेयर ही, मतलब अब आपने मुझे कुछ कहने के लायक छोड़ा नहीं, टाइम भी खत्म हो गया आपका, मतलब ये क्या कर दिया। अरे भाई आप लस्सी पिए जाएंगे, आप लस्सी पिए,
1: मैं वेट कर रहा हूँ कुमार सानू जी का और उदित नारायण।
0: नहीं अब आप लस्सी पी जाएंगे। अच्छा चले, आपकी दिल की तसल्ली के लिए ये गाना बताएं, का है भाई, अब नहीं होगा,
1: नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा,
0: ये उदित नारायण है,
1: ये उदित नारायण लेडीज गा रही है।
0: अरे भाई उदित नारायण ने भी गाया है इस गाने में, वो जो मेल वाला सेक्शन गाया है वो उदित नारायण ने गाया है इस गाने में, दो लोगों ने गाया है।
1: मैं हार मानता हूँ
0: बस हो गया अभी कॉल काट दी जाएगी, अल्लाह हाफिज। कहते हैं मैं उदित नारायण का फैन हूँ, ये उदित नारायण के फैन चल रहे हैं कि कह रहे हैं कि उदित नारायण का गाना जो अलका याग्निक ने साथ में गाया था तो उन्होंने मिलकर, वो याद ही नहीं है मुझे। जाओ इसे कहते हैं लाइट डिटेक्टर, मुझे लाइट डिटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मुझे नहीं चाहिए लाइट डिटेक्टर, मैंने वैसे ही पकड़ लिया। अरे भाई आप लस्सी पिए जाकर, लस्सी पिए, दिमाग आपका थोड़ा सा डबल काम करेगा, फिर उसके बाद मीठी लस्सी। ओके
1: आज काम क्लास हो गया, अब रूम जा रहा हूँ।
0: चले भाई अपना आराम करें, एनर्जी अपनी बूस्ट करें, फिर बाद में याद करें।
1: ओके कल फिर
0: चलें जी, अल्लाह हाफिज। भाई ये क्या हो गया भाई, मैं मुझे उतना, अब मुझे लाइट डिटेक्टर की जरूरत ही नहीं रही ना, जिंदगी खत्म हो गई इसके बाद तो। भाई आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं तो आप कॉल करें 4434377 पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: हुसैन भाई कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह

0: है।
1: अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। और जो
0: असल में आप क्या है ना कि ये लकब बैठा हुआ है, कोई भी जैसे अभी आपने पूछा ना कैसे हैं, बस मैं यही बोलता हूँ, कोई भी हो सामने बस मैं यही बोलता हूँ, बुजुर्गों की दुआ है,
1: बुजुर्गों की दुआ है। बस शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आप बुजुर्गों की दुआ है। मैंने कहा शायद मेरे बालों का कलर देखकर ना कह रहे होंगे आप बुजुर्ग, लेकिन आप नहीं आया तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, कल आपने कबीर भाई के बारे में जो बताया था पता है?
1: जी मुझे पता, कबीर भाई के बारे में आप मुझसे पूछे ना, मैं बताती हूँ। एक दफा का इंसिडेंट नहीं है, मेरे पास एक फहरिस्त है।
0: कल शाम के प्रोग्राम में एक लिसनर ने उनसे पूछा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
1: सही
0: आप सच में टाइम के इतने पंचुअल हो, तब उन्होंने स्टोरी बताई कि हाँ आपके यहाँ दावत थी तो गए थे ले।
1: एक दफा नहीं, ये वो शख्सियत है, ये हम कहते हैं ना इकबाल हमेशा देर से आता है, तो मैंने कहा आप जो है ना अपना नाम हटा के इकबाल रख लें क्योंकि आप हमेशा देर से आते हैं। तो ये तो वो शख्सियत है हमारे भाई, हमारे जिगरी भाई, ये तो वो शख्सियत है जो इफ्तार के टाइम पर तब आते हैं जब तरावी के बाद आते हैं। इनको इफ्तार पे आप इनवाइट करेंगे तो ये तरावी के बाद आएंगे।
0: फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत मतलब इस मामले में मैं शाय हूँ, इसकी वजह से मैं जाता हूँ कि मुझे मतलब लोगों से बात करने में मैं क्या बात करूँ मुझे समझ में नहीं आता।
1: कोई नहीं, कबीर भाई और शाय, बस हो गई, बस हम पेट में दर्द हो रहा है मेरे।
0: आज तो मैं ये सवाल करूंगा कि आप शाय किस एंगल से, अगर आप शाय हो तो बाकी शाय वालों का क्या हाल होगा?
1: तो फिर मैं तो पैदा ही नहीं हुआ।
0: फिर हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई।
1: अरे भाई कबीर भाई भी ना फिल्म है पूरी। क्या बताया जाए। चलें अच्छा ये तो बताएं, आप ये बताएं कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप जो हैं वो या तो फिर लाई डिटेक्टर बन जाएं या तो फिर आपका कोई झूठ कभी पकड़ा ना जाए, क्या करेंगे?
0: पहले तो मैं मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन मैं लाई डिटेक्टर ही चूज करूंगा क्योंकि आई लव माइसेल्फ।
1: धक्के खा लिए, बहुत धक्के खा, टूटे हुए दिल जले, दिल जले।
0: वो गाना आपने सुना है, अपना हर दिन ऐसे थी और जैसे कि आखिरी।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, exactly,
0: उसमें एक लाइन है, मतलब दो तीन लाइन है कि दुनिया मतलब की यार है, इसकी उम्मीद बेकार है।
1: हाँ हाँ है,
0: बस मैं आई फॉलो।
1: अच्छा ये वो ही बता सकता है, मैंने कहा ना वो दिल जले, दिल जले,
0: दिल जले।
1: बहुत जला हुआ दिल है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो जिंदगी सिखा देती है, धक्कम धक्की में जिंदगी सिखा देती है। चले फिर भी दिल पत्थर का,
0: मुझसे जो भी बात करते हैं और जो भी मतलब या मशवरा लेते हैं या मैं बस यही बोलता हूँ हाँ भाई तुम सही हो, बस कर जाओ।
1: अच्छा ये मैंने भी बड़ी एक उम्र के एक हिस्से में आकर सीखा, बहुत देर से सीखा, अफसोस होता है कि बहुत देर से सीखा, लेकिन मजे की बात ये है कि आजकल की जो जनरेशन आ रही है ना वो इसमें बड़ी तेज है, एंड आई हैट्स ऑफ टू देम, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है उनके अंदर। उनको लोग कहेंगे कि ये उनको ये लोग कहेंगे कि आइसोलेशन का शिकार हैं, ये दिमागी तौर पे बीमार हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये नहीं कर, लेकिन आई रियली एडमायर देम। दो टोक मुंह पे बात करेंगे, उनको नहीं परवाह, वो आपको अच्छे लग रहे हैं आपको बुरे लग रहे हैं। हमारी एक जनरेशन ऐसी थी जो लोगों को पीपल प्लीजर के चक्कर में ना वो झूठ बोलते थे, ये जनरेशन नहीं करती, ये नहीं करती, ये कहती है भाई खत्म,
0: अपने आप को पीछे रख रख के कहीं खो सा दिया है। और ये मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बाल बच्चों के साथ हो, उनको क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बहुत जरूरी है।
1: हाँ ये बहुत जरूरी है। चले अब एक काम करते हैं, अब हम जो ना ज्यादा और बोरिंग बातें नहीं करते, हम गेम खेलते हैं, ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल गेम खेलते हैं, गेम आज का, चलिए कोशिश करेंगे।
1: इस हफ्ते का गेम यही है, इस हफ्ते बर्दाश्त कर ले, नेक्स्ट हफ्ते से गेम चेंज करेंगे।
0: कल का विनर हूं मैं भाई।
1: तो आज हमने 1980 से गाने रखे हैं, ठीक है?
0: वही बस इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है।
1: अरे कर जाएंगे, ये वाले गाने तो हम सबने सुने
0: इंशाल्लाह।
1: चले भाई ये 1 2 3 हमारा टाइमर कहाँ गया, ये रहा टाइमर और ये रहा गाना।
2: गजब का है ये दिन।
1: ओ भाई चले भाई ये वाला बताइएगा, ये वाला
3: कोई और देखे तो जलता है।
1: हाँ वही वही वही
3: बड़ी
1: मुश्किल, वही वही वही बहुत जोर से आ रहा है,
0: याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। ये तो जुगनू नौटियाल ने भी गाया रीमेक।

0: टाइम है, टाइम है, सोचे
1: ये दिल बेकरार कितना तुम्हारा, हमें तुमसे प्यार कितना।
0: और भाई पकड़ लिया। अच्छा ये वाला कौन सा, ये वाला
2: ऊंचे ऊंचे पर्वत
1: ये नीले नीले अंबर पर।
0: अरे भाई अच्छा ये वाला एक आखिरी, ठीक है।

0: चले भाई टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया, लेकिन लेकिन तालियां, आज का अभी तक का टॉप स्कोरर आप हैं, अभी तक का 3 का स्कोर किया. नहीं नहीं अब लास्ट वाला अब नहीं बताना, अब खबरदार खबरदार से बताया, आगे वाले से पूछूंगी, खबरदार. नहीं नहीं नहीं अभी नहीं बताना, बस अब दिमाग में रखें, आपको याद आ गया, लेट आया.
1: कहते वही है ना, तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, कट गए. ओके
0: चलिए, अभी तक के टॉप स्कोरर आप हैं, ठीक है, तसल्ली तसल्ली. चले अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. चलें भाई देखें अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलर कौन है, देखते हैं. अरे कॉल आई और यूं करके आई और यूं करके चली भी गई. तो भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, द नंबर इज 4434377 टू कॉल. आप अगर गेम खेलना चाह रहे हैं तो ज़रूर खेलें, आपको किसने मना किया है, मैंने तो नहीं किया. अच्छा क्या कह रहे हैं रईस खान, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए इन्होंने उर्दू लिखी है, मतलब ये मेरी उर्दू चेक कर रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज में पूरा टाइपिंग उर्दू में करके भेजिए, मुझे भी आती है उर्दू की टाइपिंग. अच्छा जी बिल्कुल होना भी चाहिए, होमवर्क नहीं तो बच्चे गैर जिम्मेदार आई गैर जिम्मेदार. अच्छा ओह सॉरी ये तो पुराना मैसेज पढ़ी मैं, 90s के बाद वाले सॉन्ग्स बस. अच्छा रईस भाई ने मुझे ये मैसेज किया, ठीक है ओके, 90s के बाद वाले सॉन्ग्स बस. क्यों भाई ये क्या हो रहा भाई. अच्छा ये कौन है हमारे साथ, यस आई एम रेडी टू प्ले. अरे वाह अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मज़ा, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार. और ये रहे हमारे कौन से वाले भाई, शहजादा सलीम भाई, उन्होंने कहा मुझे कॉल करें. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, हम हैं आपके साथ एफएम 107.
0: हाँ जी बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहजादा सलीम आ रहे हैं. आ चुके हैं भाई. देखिए आपसे पहले हुसैन भाई 3 का स्कोर करके गए.
2: ओके
0: तो आज हमने स्पेशली 1980s के गाने रखे, ठीक है. तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इजी होगा
2: इंशाल्लाह.
0: चले भाई. अच्छा गानों से पहले ये बता दें कि अगर आपको लाई डिटेक्टर बनना पड़े वो बनना पसंद करेंगे, या आप ये चाहेंगे कि भाई मेरे कोई झूठ ना पकड़ जाए. अब ये मत बोल देना मैं तो झूठ बोलता नहीं, ये वाली बात नहीं करना.
2: रिमाइंडिंग 1 मिनट, क्या क्वेश्चन है.
0: क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चुनना आपने एक ही है, 2 लूंगा वाला सीन नहीं है, या तो फिर आप लाई डिटेक्टर बन सकते हैं कि लोग अगर आपसे झूठ बोले तो आप फौरन ठक करके पकड़ लें, या तो फिर आप कोई भी झूठ बोले तो आपका झूठ कभी पकड़ा ना जाए, तबाही मच जाएगी.
2: और दूसरे का तो मैं पकड़ लेता हूँ लेकिन मेरा नहीं गेस कर पाते कोई लगा.
0: नहीं नहीं मैं कह रही हूँ आप क्या चूज करेंगे, क्या क्या चूज करेंगे आप.
2: मैं मेरा कोई पकड़ नहीं पाए.
0: डेढ़ होशियार चल रहे हैं ये. सही बात है. ये बता दें कितने झूठ बोल रखे हैं जो इतना इतना इतनी प्रिसाइज चॉइस है. कह रहे हाँ मेरे झूठ ना पकड़ जाए, मैंने बहुत झूठ बोल रखे हैं.
2: बताइए क्योंकि मामला इस तरह का है ना, तो कहीं ना कहीं है ना कनेक्ट हो जाता है.
0: सबसे पहले तो सबसे अगर झूठ पर चल गया तो सबसे पहले तो सासू माँ पकड़ के मारेंगी, बेगम तो बाद में आएगी. बेगम तो बाद में आएगी. अच्छा चले भाई, बेगम और सासू माँ से बचने के लिए हम अपने झूठ ना पकड़वाने का ऑप्शन चूज करेंगे.
2: ओके
0: चले अब हम खेलते हैं आपके साथ गेम, ठीक है. तो आपको दिया जाएगा 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर अंदर आपने गाने पहचानने, ठीक है. आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ.
3: जैसे तुझको
0: ठीक है, वेरी गुड हो गया, ख्याल आता रहेगा ये वाला.
3: क्यों ये चांद सितारे तकते हैं मुखड़े को तुम्हारे.
0: बाला सुब्रमण्यम मेरा फेवरेट होगा.

0: नहीं है ना, मेरे मेरे ख्वाबों में नहीं है।
1: मेरे रंग में रंगने वाली,
0: कौन सी वाली?
1: मेरे रंग में रंगने वाली।
0: हाँ जी, मेरे रंग में रंगने वाली, लेकिन रंग का वक्त खत्म हो गया है, तो आपका 2 का स्कोर है। मेरे रंग में रंगने वाली, क्या मूवी थी सलमान खान की, मस्त वाली। सलमान खान अपने एरा का, इस वक्त का सलमान खान सबसे बेस्ट था।
1: हाँ, लेकिन और थोड़ा पीछे जाना चाहिए था आप।
0: और पीछे जाना चाहिए था।
1: हाँ जी,
0: और
1: जी,
0: पीछे मैं जाती है अभी, और थे, लेकिन आप इससे आगे बढ़ते ना तो आपको और पीछे वाले मिलते।
1: चलो बैड लक,
0: चले कोई नहीं, बैड लक होता, 2 का स्कोर अच्छा खासा होता है। पहले बंदे ने 3 का किया, आपने 2 का किया है, कोई नहीं, बैड लक हो रहा। कल फिर से ट्राई करेंगे, मशीन फिर घुमाएंगे कल
1: इंशाल्लाह।
0: चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज
0: भाई। मैसेज की तरफ आए तो मैसेज किया है तौफीक भाई ने, सफा जी मोहम्मद तौफीक, अस्सलाम वालेकुम अल वकरा से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौफीक भाई, गाना पहचानने का गेम खेलेंगे? गाना क्या कहते हो, गाना पहचानोगे? अच्छा, मैसेजेस इतने सारे पड़े, मैसेजेस पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैसेज वाले फिर नाराज़ हो जाएंगे। ये असद भाई ने मैसेज भेजा है, क्या भेजा है, एक्सक्यूज़ वाली पावर चाहिए क्योंकि ऑफिस में लेट होने की मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। रोज नया बहाना सोचना भी फुल टाइम जॉब बन गया है जिसकी मुझे पेमेंट नहीं मिलती। तो भाई थोड़ा अलार्म जल्दी लगा लो ना, जल्दी उठ जाओ ना, मतलब देखो ये एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, पैसे भी नहीं मिल रहे उसके। अच्छा, और कौन है हमारे साथ, ये कौन है, वली, मैं वली। अच्छा ठीक है, मैं दोनों पावर्स के साथ दोनों पावर्स एक साथ चाहता हूँ। मैंने अभी बोला था एक के साथ एक फ्री नहीं मिल रही, एक ही मिलेगी। मैं दोनों पावर्स एक साथ चाहता हूँ, पहले झूठ पकड़ूंगा फिर अपना एक्सक्यूज सुना कर सबको कंफ्यूज कर दूंगा। बहुत बहुत अलग था वो, बहुत अलग था, सब चाहिए था उसे। ओ गोभी दया पुल्लो, यहाँ सब कुछ नहीं बट रहा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज बट रही है। तो भाई आ जाओ परफ्यूम शर्फ्यूम लगाकर, 4434377 पे आप कॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं हमारे साथ, अगर चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 इज द नंबर। और हम जो हैं गेम ये खेल रहे हैं कि आपको 1980s के गाने सुना रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ज़रा बताओ किस किस को ये गाने याद हैं, याद है किसी को? तो भाई करो, आप कॉल करो, और अगर कॉल नहीं कर पा रहे, गेम खेलने का दिल है, मूड है, तो फिर आप मुझे मैसेज कर दें, आप मुझे कहेंगे कि आई वॉन्ट टू प्ले द गेम, तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो भाई और किसका मैसेज है, अयाज बलोच का, अस्सलाम वालेकुम सफा सिस्टर, अयाज बलोच हेयर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयाज भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत। हनाया सिद्रा आई, ये कौन है, ये अपना नाम बता रहे, नहीं हनाया सिद्रा लिखा है, बस हनाया सिद्रा, बस दैट्स इट मैसेज में। भाई इसका थोड़ा मफहूम दे दे मुझे, क्या लिखा है। अच्छा जी, सफा जी कह रहा है प्ले टुडे, व्हाई नॉट। यूसुफ भाई आप जो है ना पूछा ना करें, आप कॉल किया करें। आप जो है ना देखें, आपका एक वो होता ना, एक लेवल होता है कि भाई ये लेवल मार्क सेट कर दिया गया, इस तक पहुंचो। तो मुझे ऐसा लगता है आप ऐसी वाली गेम खेलते हैं कि जिसमें एक बेंचमार्क सेट हो जाता है जिस तक सबने पहुंचना होता है। तो आपको कॉल की गई है और आप अल्लाह करे कॉल उठा लें तो हम जो है ना फिर आपके साथ गेम खेल लें। अच्छा नहीं नहीं, देखा मैंने गजनी वाली हरकत कर दी फिर से, मैंने आखिर में इनके नंबर के क्या था, आखिर में 8 था, मैंने 3 डायल कर दिया। वाह जी वाह, सफ़ा वाह, सफ़ा वाह, मैंने कहा ना सर्टिफाइड मैम, बस क्या करूँ, कभी गुरू नहीं किया कभी, माशाल्लाह। चलिए भाई और कौन है हमारे साथ, अभी यूसुफ भाई को कॉल करते हैं। यूसुफ भाई आप कॉल उठा लें तो आपसे अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह,
0: कैसे हैं यूसुफ भाई, ठीक ठाक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और मैं सोच रही हूँ आज कल मैं वापस से चश्मे की दुकान पर जाऊँ और उनसे बोलूँ कि तुम लोगों ने मुझे नंबर गलत पकड़ा दिया, क्योंकि आपका जो आखिर में 8 आता है ना नंबर के, मैंने वहां पर 3 डायल कर लिया, शुक्र है किसी ने उठाया नहीं, शुक्र है किसी ने उठाया नहीं, नहीं तो ऑन एयर इज्जत हो जाती मेरी। तो चलिए मेरी यूसुफ भाई, ठीक ठाक हैं आप? इससे पहले कि आपके साथ गेम शुरू किया जाए, आपसे इंटरोगेशन वाला सवाल किया जाएगा।

0: आप ये तो बताएं कि आपको अगर दो ऑप्शन दिए जाएं, दोनों में से एक चूज करना है आपने, आप या तो फिर लाई डिटेक्टर बन सकते हैं कि अगर आपसे कोई झूठ बोले तो आप फौरन फटाक से पकड़ लें, या तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो भी झूठ बोले वो कोई पकड़ा ही ना जाए।
1: जी मैंने चूज किया था फर्स्ट ऑप्शन।
0: फर्स्ट ऑप्शन, अरे हाँ आपने मैसेज किया था मुझे, हाँ आपने मैसेज किया, मैंने मैसेज पढ़ा था। तो फिर आपको और मुझे पत्थर का दिल लगवाना पड़ेगा भाई।
1: नहीं नहीं अभी तो ऐसे भी पता होता है, लेकिन एडिटर से थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
0: देखें
1: ये पता होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा
0: है। हमारा हाल जो है ना,
1: एडिटर के पास कंफर्म हो जाएगा।
0: हमारा हाल जो है ना वो कबूतर की तरह है। कबूतर जो है ना वो अपनी आंखें बंद करता है तो ये समझता है कि मैं छू गया।
1: जी जी
0: हम दोनों भाई बहनों का हाल वो कबूतर वाला है। तो चले
1: जी,
0: चले अब गेम की तरफ चलते हैं। कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला, दुख होने लगा मुझे तो। पता नहीं कौन कौन से चेहरे सामने आने लगे मेरे तो। हकीकत। अच्छा भाई चलें आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? आपको दिया जाएगा एक मिनट और आपने गाने पहचानने हैं। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। और ये सुनिएगा,

0: गजब का है दिन।
1: अरे भाई बिल्कुल सेट हो गया गजब का है दिन ये वाला।
0: जिंदगी
1: किन कहा है? अरे भाई जिंदगी किन ठीक है जिंदगी के ना टूटे ओके
2: मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी।
1: मोहम्मद रफी का है ये?
3: हाँ मोहम्मद रफी का बहुत पुराना।
1: याद आ रहा है आपको कुछ?

0: अरे भाई देर कर दी बताने में, लेकिन बता दिया। चलें थ्री कंसिडर करेंगे आपके लिए, तालियां हो जाए भाई, तालियां। लेकिन दिस वॉज गुड, मोहम्मद रफी का आपने पहचाना है, दिस वॉज गुड।
1: जी खास फिल्म का ऋषि कपूर का
0: और मजे का, बहुत बहुत अच्छा गाना था। तो भाई आपका थ्री का स्कोर हुआ है,
1: बहुत पुराने।
0: हाँ जी पुराने वो, मुझे जो है ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं आज 1980s के गाने चला रही हूँ, क्योंकि मुझे कल किसी ने सजेशन दिया था कि आप जो है ना नहीं चला रही, 90s के ही क्यों चलाती हैं आप, 80s के रखें तो हम मार का सर करेंगे। चलो 80s के रख लेते हैं,
1: 90s के बहुत हैं,
0: कल वापस से 90s पर आ जाएंगे हम। कल वापस से 90s पर आ जाएंगे।
1: थैंक यू।
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: तो भाई साथियों, इतनी सारी गेम तो खेल लिए, आपकी कॉल्स भी मुझे मौसूल हो रही हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी। देखो मेरे एनर्जी लेवल ना, अंदर बैठी हुई ऑफिस में, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं डिहाइड्रेशन का शिकार ना होऊंगी। तो थोड़ा पानी वानी पीने दो, वापस आती हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल तो यू आर माई सोनिया, याद है वो कौन, ऋतिक रोशन और अपना करीना कपूर। ओए होए, थोड़ा धमाल माल पाते हुए जाओ, फिर वापस आना, ठीक है? आप सुन रहे हैं सफा के साथ, सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: तो भाई साथियों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। और भाई अभी भी वक्त है, अगर कोई गेम खेलना चाह रहा है तो जरूर हमें कॉल कर सकता है 4434377 पर। द नंबर फॉर कॉलिंग एंड प्लेइंग द गेम इज, हम बॉलीवुड ट्रिविया खेल रहे हैं, आपको गाना सुनाऊंगी 1980s के गाने। आज के लिए स्पेशली सजेस्ट किए गए थे कि भाई सजेशन आया था तो मैंने कहा चलो आया है सजेशन तो उसको मान लिया जाए। तो भाई 1980s के गाने हैं और अगर आप खेलना चाह रहे हैं, अपने आप को ओल्ड इज गोल्ड पीस समझते हैं तो भाई आ जाएं मार्केट में और बता दें कि आपको कितने गाने पसंद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैसेज आया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलक भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला आपको खुशो खुनम रखे। और ये कौन है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सिर्फ लिखा हुआ इनके नाम के आगे ए, उनको इंटरनेशनल नंबर है। वाह भाई वाह, इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया, कॉल ना ही तो क्या हुआ, मैसेज तो आया ना, कोई तो है जो इंटरनेशनल लेवल पे सुन रहा है, जल क्यों रहे हो तुम लोग। अच्छा और कौन है, हानिया आपके शो में आई थी।

2022 में. ओके, हानिया हानिया सिद्रा. अच्छा, बच्चों के शो की बात कर रहे हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया. असल में दो शो एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है. तो हानिया का नाम तो मुझे याद है, हानिया का नाम याद है. तो लेकिन मैं तभी पूछ रही थी कि थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि क्या चल रहा है मार्केट में. अच्छा भाई साथियों, गेम के खेलने के लिए नंबर है 4434377 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर. आई वॉन्ट टू प्ले द गेम करके मैसेज कर दें तो हम आपको कॉल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, मैसेजेस की तरफ अगर चलूँ गेम से हटकर, तो आपसे सवाल ये पूछा था कि भाई आप बताएं कि आप लाई डिटेक्टर बनना चाहेंगे या आप जो हैं वो क्या करना चाहेंगे, आपकी झूठ कभी ना पकड़े जाएं, ये एक मामला चल रहा था. तो आप अगर चाहें तो इसका रिप्लाई भी मुझे भेज सकते हैं 6622107 पर. और हमारे पास एक भाई आए, लेट आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं. क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल वाहिद भाई, कैसे हैं, कैसा है ये गेम? बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था. मतलब ये कि मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी. आज का स्पेसिफिकली गानों का कलेक्शन जो है वो 1980s का है. 1980s के पिटारे में से निकालकर मैं आपको कुछ गाने सुनाऊंगी, कुछ छोटे छोटे ना, छोटे छोटे 20 seconds के. आपने पहचानना ये है कि इस गाने का टाइटल क्या है, समझ गए? सिंपल एज दैट. कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर. बस गाने का नाम पहचान दो, मुझे बता दो एक मिनट के टाइम के अंदर. आज का हमारा जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा हुसैन भाई ने 3 गाने पहचाने एक मिनट के अंदर, शहदाद सलीम ने 2 गाने पहचाने और यूसुफ भाई ने भी 3 गाने पहचाने. तो इतना तो अच्छा जो है ना मटीरियल चल रहा है मार्केट में कि आप आसानी से पहचान लो. तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, या चाहें तो आप मैसेज भेज सकते हैं 6622107 पर दैट आई वांट टू प्ले द गेम एंड आई विल कॉल यू, इट्स ओके, अपना बैलेंस बचा लें. अच्छा, मैंने सवाल किया था, सवाल ये था कि या आप लाइट डायरेक्टर बनना चाहेंगे या आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए कि आपका बोला हुआ झूठ कभी पकड़ा ना जाए. तो चलें एक और मैसेज की तरफ चलते हैं, मैसेजेस हमारे पास भरपूर पड़े हुए, तो मैसेज वालों नाराज नहीं होना. तो क्या कह रहे हैं अच्छा ये दूसरे वाले आसिफ भाई, आसिफ ओके, झूठ डिटेक्टर चाहिए. रेस्टोरेंट में वेटर जब कहे बस 2 मिनट में ऑर्डर आ रहा है तो असली सच पता चल जाए. बहुत ही भूखे चल रहे हैं, बहुत मेरी तरह, मैं आपको नहीं बोल रही, मतलब मेरी तरह भूखे चल रहे हैं. इस वक्त भूख का टाइम है ना, तो क्या कहेंगे, और उनको रेस्टोरेंट याद आएगा ना इस टाइम पे, खाना रेस्टोरेंट. तो मतलब वेटर के साथ फिर करेंगे क्या, वो बेचारा अगर बोलकर जा रहा है 2 मिनट, तो उसको तो पीछे से बोला गया कि भाई 2 मिनट, उस बेचारे का क्या कसूर, क्या ही मसला, मतलब क्या बेचारा क्यों, वाई वो बेचारा क्यों आए. चलें, फ्रंट फेस है रेस्टोरेंट का तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा. अच्छा भाई, और कौन है हमारे साथ, एक्सक्यूज पावर, क्योंकि मेरी नींद दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्या है लेट उठकर भी कहूंगा मैं टाइम पर उठ गया था, घड़ी गलत थी. ये कौन है, ये मकसूद भाई हैं हमारे. वाह भाई वाह, आपका और मेरा एक ही जैसा हाल क्यों चल रहा है, ऐसा वाइब आ रही है, ऐसे कनेक्टिंग वाइब होती है ना एक. मैं भी यही करती हूँ, मैं एग्जैक्टली यही करती हूँ. मैं बिल्कुल नहीं मानती कि मैं ज़्यादा सोती हूँ, और अगर मैं ज़्यादा सो भी जाऊँ और अगर मैं किसी चीज़ के लिए लेट हो जाऊँ तो मैं कहूँगी अरे अलार्म नहीं बजा. इस चीज़ को नहीं मानूँ कि मैं देर तक सोई हूँ, और इस चीज़ को तो बिल्कुल ही भूल जाऊँगी कि मैंने अलार्म बंद किया था फिर मैं सोई हूँ वापस से. देखें, इसे कहते हैं अब क्या कहा जाए, शहजादा भाई मसला ये है कि अब जो है ना टाइम रह गया बहुत कम. तो अब मैं आप लोगों से ज्यादा चाहूंगी, कल इंशाल्लाह वापस से खेला जाएगा गेम आपके साथ, या क्या कहते हैं, इनके साथ एक गेम खेल लिया जाए. नहीं, टाइम बहुत कम रह गया, बताए 5 मिनट रह गए, 2 मिनट के अंदर शहजादा भाई कह रहे मैंने तो खेल लिया था लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक और दफ़ा. शहजादा सलीम की ना वो वाली हालत हुई है इस वक्त, जो बच्चे जाते हैं ना प्लेलैंड और उनको राइड कोई अच्छी नहीं लगती, तो वो कहते हैं नहीं एक दफ़ा फिर जाकर देखूं, क्या पता अच्छी लग जाए. तो इस वक्त ना देखें, बाद अब बामलाइजा गुस्ताखी माफ़, जापना गुस्ताखी माफ़, लेकिन जापना ऐसा नहीं हो पाएगा. तो इंशाल्लाह जापना आपको वापस से कॉल करेंगे कल, ठीक है? तो कल खेलेंगे, कल 90s वाले गाने ले आएंगे ना. आज सजेशन था तो मैंने कहा कोई ये ना कहे कि भाई देखो सुनती नहीं है बात हमारी,
बोलती रहती, सुनती नहीं है, तो मैंने आज आपकी बात पूरी कर दी।

से गाने चलाए थे, अच्छा खासा रिजल्ट था सबका। तो भाई अब एक काम करेंगे, आपसे अलविदा चाहूंगी, और अलविदा मैं यही कहना चाहूंगी, आज का सवाल हमारा कमाल का था। देखें, किसी को चाहिए होता है झूठ पकड़ने वाली सुपर पावर, जो कि आप कह लें कि अपनी फैमिली, कोलीग्स या छुपे हुए राजों के ऊपर से पर्दा उठा सके, और किसी ने ये चूज़ किया कि भाई हमें परफेक्ट एक्सक्यूज वाली पावर चाहिए ताकि हम परफेक्ट सिचुएशन में झूठ बोल सकें। तरीका होता है ना, निकलने का एक तरीका मिल जाए। लेकिन एक मज़े की बात पता है क्या, एक सच ये है कि ज़िंदगी की असली सुपर पावर जो होती है ना, जो असली मैजिक होता है ना ज़िंदगी का, वो इन सुपर पावर्स में नहीं होता, बल्कि हमारी ऑनेस्टी, हमारी पॉजिटिविटी और हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर पर होता है। क्योंकि थोड़ा सा मजाक, जैसा कि एक भाई ने कहा था, एक मजाक बड़ा महंगा पड़ गया था, थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी हंसी और थोड़ा अपनों का साथ जो होता है ना, वही हमारे ज़िंदगी के स्पेशल लम्हे क्रिएट करता है। कोशिश ये करें कि सच्चे रहें। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि हमारी बातों से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आई होगी, एटलीस्ट मेरी बातों जरूर आई होगी, क्योंकि मैं बड़ी रैंडम बातें करती हूँ अपनी बातों में खुद हंसने वाला बंदा हूँ मैं। तो भाई बस ये याद रखें कि मजाक करना भी, अगर किसी से झूठ बोलना भी है, तो एक लिमिट में रहकर बोलें, इतना नहीं बोलें कि किसी को कोई नुकसान पहुँचे। बेज़रर से छोटे छोटे झूठ जो है ना, वो फिर भी हजम हो जाते हैं। कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मार लेना कि किसी और का मामला आपकी वजह से ख़राब हो जाए, ठीक है। वैसे झूठ बोले ही नहीं भाई, बोलो ही नहीं, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, खुश रहो, मंड मंड के खुश रहो। याद रखो कि जो अपना ख्याल नहीं रखता ना, वो किसी और का भी ख्याल नहीं रख सकता। तो अगर दूसरों का ख्याल रखना है, फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, कच्चे, सब सबका ख्याल रखना है ना, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना सीखो। जो अपना ख्याल नहीं रखता, वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। इसी नोट पर भाई मैं जाने लगी हूँ, साइन आउट करने लगी हूँ। मैं हूँ सफ़ा आपके साथ, आप सुन रहे थे शो सन एंड साउंड, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, और इंशाल्लाह फिर एक अच्छा सा गेम खेलेंगे, अच्छे अच्छे सवालात लेकर आएंगे, और कल फिर 90s वाले सॉन्ग पे चल पड़ेंगे अपने, क्या कहते हो, 80s के 90s सजेशन देकर भेजना, मैसेज कर देना ना, अभी मैसेज कर देना मुझे, मैं देख लूँगी कि 90s वाले सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि 80s वाले। 80s वाले पहचान नहीं पाए लोग, किशोर कुमार को नहीं पहचान पाए। दिल टूट गया मेरा, टूट गया गोभी दया फूलो, टूट गया मेरा दिल, लेकिन अच्छा खेला, जिसने भी खेला अच्छा खेला, गुड गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो भाई अब मैं जा रही हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। आतिफ असलम के साथ छोड़े जा रही हूँ। आतिफ भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आतिफ भाई आ जाओ, हाँ आ आ आ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, साइनिंग आउट ऑन अ गुड नोट, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, मंड मंड के ख्याल रखो, ढेर सारा। साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, सुनते रहें दिल से देसी FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे फिलहाल टाइम चेक का वक्त 1:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आप सुन रहे हैं शो।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: समर स्पोर्ट्स के शो में आप सभी का इस्तकबाल है दोस्तों। और FM 107 पे ये वो वक्त होता है जब हम स्पोर्ट्स की दुनिया से खबर लेकर आते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले इस शो में होती है बात सवाल को लेकर, एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग को थोड़ा सा परेशान करता है और अगर आपको जवाब पता है तो बड़ा आसान हो जाता है। आज का सवाल क्या है? आज के सवाल पे आ जाते जल्दी से। तो सवाल करेंगे फिर आप अपने जवाब तलाश करिए और मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल है ये आसान और टफ दोनों होने वाला है। आमतौर पर जब आप सवाल सुनते हैं तो आपको उसका एक आंसर पता होता है, लेकिन आज के सवाल में आपको एक नहीं दो तीन आंसर पता होंगे और वो दो तीन शायद सही भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको परफेक्ट आंसर भी देना है। तो आज का सवाल कुछ ऐसा ही है। पिछले दिनों हमने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकम्मल हुआ और उसमें स्पेन ने बाजी मार ली अर्जेंटीना के साथ। ये फाइनल मैच जिसमें अर्जेंटीना ने स्कोर नहीं किया उस तरह से कि वो मैच जीत पाती, लेकिन स्पेन के खिलाड़ियों ने, स्पेन के कीपर ने कुछ ऐसा करके दिखाया कि वो फाइनल मैच लेकर गए 16 साल बाद। 2010 में वो फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन 2026 में फाइनल में पहुंच के फीफा 2026 को अपने नाम किया और हर तरफ खुशी का माहौल था। वैसे कुछ भी हो, अगर जैसे अर्जेंटीना जीती तो खुशी थी, लेकिन स्पेन जीती तो ज्यादा खुशी। ये क्या है मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन है जो है तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल इसी पर है, आपको उन तीन प्लेयर का नाम बताना है जो गोल्डन बूट अवार्ड की रेस में शामिल थे। अच्छा, थे क्यों? अब यहां पर दो तीन जवाब हो सकते हैं, है ना, लेकिन क्योंकि पहला जो जवाब है वो तो मुझे लगता है, अगर ये पूछता मैं कि आपको गोल्डन बूट अवार्ड का जो शख्स है जिसे गोल्डन बूट अवार्ड मिलेगा इस बार, उसका नाम बताइए, तो वो आपको पता है, अब तक तो पता ही है। क्योंकि जैसे मैंने दो दिन पहले बताया था कि जो पहले नंबर पे है वो कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। दूसरे नंबर वाला वो शख्स है जो फाइनल खेल रहा है और पहले नंबर वाला वो है जो तीसरे पोजीशन के लिए खेल चुका है, उसने ज्यादा गोल कर दिए हैं। लेकिन अगर दूसरे नंबर वाले ने गोल नहीं किया तब तो पहले नंबर वाले को मिल जाएगा गोल्डन बूट अवार्ड, लेकिन अगर दूसरे नंबर वाले ने तीन गोल कर दिए तो उसे, यानी कि जो फाइनल खेल रहा है बंदा जो दूसरे नंबर पे ऑलरेडी है, उसे मिल जाएगा गोल्डन बूट अवार्ड। लेकिन कैच ये है कि इसमें दो तीन आंसर हैं, आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन आपको उन तीन प्लेयर के नाम बताने हैं जो गोल्डन बूट अवार्ड की रेस में शामिल थे। ठीक है, तो पहला आंसर भी आप जो देंगे वो भी सही होगा कि फला फला फला आदमी जो है फला टीम का है और वो ही जीतेगा, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा गोल उसी ने मारे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, लेकिन वो तीन आदमी कौन है जो गोल्डन बूट के अवार्ड में रेस में थे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107, 666-22107। मैंने कहा था ना कि ये सवाल ऐसा है कि इसके मुख्तलिफ आंसर हो सकते हैं, तो अगर आप जो भी आंसर देंगे इस सवाल से मिलता जुलता कंसीडर किया जा सकता है कि आपने सही जवाब दिया है। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लें 666-22107। और आज क्या कुछ बातें होने वाली है, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बताएंगे कि लंका प्रीमियर लीग में क्या कुछ होगा, यूईएफए चैंपियन लीग

जो सेकेंड क्वालिफाइंग राउंड है वो खेला जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी बात होने वाली है आज FM 107 पे। और साथ ही अगर हम बात करें कि साइकिलिंग में कुछ हो रहा है क्या, वैसे साइकिलिंग के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं समर स्पोर्ट्स में, लेकिन क्योंकि फीफा अब नहीं है, फीफा के बारे में बात करने के लिए इतना कुछ नहीं है तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली रोड साइकिलिंग है। और फिर ODI को लेकर जो कहानियां चल रही हैं, मैच जो हारी है इंडिया इंग्लैंड से, 2-1 से मैच इंग्लैंड ने जीत लिया, सीरीज जीत ली, और बहुत से सवाल गंभीर पर हैं। गंभीर पर इतने सवाल हैं कि उसका जवाब मुझे लगता है गंभीर कभी भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन चलिए ये भी एक मजे की बात है कि यू नो सवाल तो है अपने पास, एटलीस्ट जवाब गंभीर दे पाए या ना दे पाए। उसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई ये लेडीज स्पोर्ट नाइट ये कहाँ हो रहा है, कतर में हो रहा है भाई आज और कल, इस पर भी हम बात करेंगे FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सवाल यह है, गोल्डन बूट अवार्ड के रेस में 3 प्लेयर कौन से थे, उनका आपको नाम बताना है। या आसान और भी आप कर सकते हैं, यार मुझे फला तो पता है वो शख्स गोल्डन बूट अवार्ड पक्का जीतेगा। अगर आपने 2 दिन पहले गौर से सुना होगा तो आपको पता है पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है, क्योंकि ये बात मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी। गोल्डन बूट अवार्ड रेस में कौन है, सुन रहे FM 107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जवाब देने के लिए नंबर है 666-22107, ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है, क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे फजील के साथ हैं आप और समर स्पोर्ट्स, ये प्रोग्राम जहां पर स्पोर्ट्स की तमाम जानकारी आपको मिलती है। सबसे पहले शुरू करते हैं लंका प्रीमियर लीग से। दोस्तों, ये जानकारी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। LPL जिसे कहा जाता है, लंका प्रीमियर लीग, रंगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में ये शिफ्ट हो चुका है। बड़ा बवाल होने वाला है और दो बड़े फिक्स्चर्स हैं, जाफना किंग्स और कोलंबो कैप्स के दरमियान मैच होने वाला है। दोनों टीम्स अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए भिड़ने वाली हैं और 22 जुलाई यानी कल को अगर देखा जाए तो कल से ये जो खेल है वो ज़बरदस्त होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। साथ ही साथ UEFA भी हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। डम्बुला सिक्सर्स वर्सेस गैलेग्लैंड्स, ये भी मैच होने वाला है। इसकी जो लोकल टाइमिंग है 7:30 बजे से शुरू होगा ये मैच और होम ग्राउंड डेम्बुला का ये होम ग्राउंड है और फैंस का सपोर्ट मज़ा आएगा, देखने लायक होगा। साथ ही अगर हम बात करें UEFA चैंपियंस लीग की, तो सेकंड क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है। यूरोप की एलीट क्लब कंपटीशन का सेकंड क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो रहा है, जहां टीम्स में लीग स्टेज तक पहुंचने के लिए अपनी जान लगानी है, टीम्स को लगानी है। फिक्स्चर्स क्या हैं इस राउंड में, बड़ी यूरोपियन लीग के क्लब्स आमने सामने होंगे, जैसे कि फेनरबाख और गोर्निक ज़ाब्रुगे, लेवस्की सोफिया और साथ में यू क्रायवा, ये दो जो टीम है आपस में भिड़ेंगी। ये फॉर्मेट समझने के लिए ये समझ ले कि ये मैच दो लेग टाइज होते हैं, होम और अवे, और वेंसडे को इनका फर्स्ट लेग खेला जाएगा यानी कि कल के दिन। तो उसके अलावा अगर हम बात करें प्रीमियर लीग प्री सीजन फ्रेंडलीज की, तो अगस्त में शुरू होने वाले नए फुटबॉल सीजन की तैयारी के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL के टॉप क्लब्स ग्लोबल टूर्स और ट्रेनिंग कैंप्स पर हैं। इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल और चेल्सी के साथ साथ मैनचेस्टर सिटी, ये बड़े क्लब होने वाले हैं वर्ल्ड टूर पर। अलग अलग इंटरनेशनल वेन्यूज पर फ्रेंडलीज खेले जाएंगे यानी कि फ्रेंडली मैचेस खेले जाएंगे। और वैसे कितने भी फ्रेंडली हों, भले टूर्नामेंट ना हो, बड़े दो सपोर्ट करने वाले अलग अलग फैंस ना हो, राइवलरी ना हो, लेकिन फ्रेंडलीज होने के बाद भी, फ्रेंडली मैचेस होने के बाद भी इनके जो फैंस हैं ये ऐसे मैच देखते हैं कि भाई साहब आज तो फाइट होने वाली, आज तो झगड़ा होगा, आज मजा आएगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है भी। खैर, बात कर लेते हैं 22 और 23 यानी कि कल के दिन को फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा भी ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्ल्ड में दो बड़े धमाके होने वाले हैं। एक तरफ ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेगा आगाज होना है, दूसरी तरफ टूर दे फ्रांस अपने सबसे क्रिटिकल और आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें ग्लासगो के किक ऑफ, तो स्कॉटलैंड की खूबसूरत सिटी ग्लासगो एक बार फिर से कॉमनवेल्थ नेशन के टॉप एथलीट्स को वेलकम करने के लिए तैयार है। ओपनिंग सेरेमनी यानी कि परसों के दिन होगी ओपनिंग सेरेमनी। 2026 यानी कि 23 जुलाई 2026 को गेम्स का ग्रैंड आगाज होगा, जहां पूरे वर्ल्ड के एलीट एथलीट्स अपनी कंट्री के फ्लैग लेकर मार्च करेंगे। स्पोर्ट एक्शन में क्या होगा इस बार, शॉर्ट और एक्शन पैक्ड स्केड्यूल है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, ट्रैक साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स शुरुआती दिनों में ही धूम मचाने वाले हैं। फिर उसके बाद साइकिलिंग टूर दे फ्रांस स्टेज 17, दुनिया की सबसे मुश्किल और प्रीमियम साइकिलिंग अगर आपको देखनी है या साइकिलिंग इवेंट आपको देखना है तो आपको टूर दे फ्रांस जाना चाहिए। साइकिलिंग का जो शौक रखते हैं, मुझे लगता है ये साइकिलिंग के शौक रखने वाले बहुत बहुत बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन जो हैं वो हैं। इन्हीं लोगों की वजह से तो यार कतर में सबसे लंबा साइकिलिंग ट्रैक बना है है ना। फाइनल स्टेज या कहें सबसे टफ वीक में एंटर कर चुकी है, 22 जुलाई में यानी कि कल के दिन 22 जुलाई को खेला जाएगा 17वां स्टेज, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो है 174.7 किलोमीटर यानी कि 174.7 किलोमीटर लंबी फ्लैट रूट होने वाला है, तो मजे तो बिल्कुल आएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें लेडीज स्पोर्ट्स नाइट की, जो कि हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो कतर फाउंडेशन की तरफ से विमेन ओनली समर फिटनेस और स्पोर्ट्स इवनिंग का आगाज आज से हो रहा है। ये इवेंट 21 और 22 जुलाई की रात को चल रहा है। वेन्यू है इसका फीफा वर्ल्ड कप वाला मशहूर एडुकेशन सिटी स्टेडियम। स्पेशल फैसिलिटी है दोहा की गर्मी से बचने के लिए, यार कुछ तो होना चाहिए। एसी चलेगी क्या? हाँ बिल्कुल एसी चलेगी। पूरा इवेंट स्टेडियम के अंदर फुल्ली एसी एनवायरनमेंट में हो रहा है। एक्टिविटीज क्या है इसमें, लेडीज के लिए समर फिटनेस प्रोग्राम्स हैं, एथलेटिक्स और अलग अलग स्पोर्ट्स ट्रैक्स तैयार किए जा रहे हैं जहां वो बिना किसी हेजिटेशन के स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकती हैं। सो लेडीज स्पोर्ट्स नाइट की एंट्री की टाइमिंग्स और ये जो खास लोकेशन है कि मतलब गर्मी भी नहीं हो रही है और एसी चल रही है, उसमें स्पोर्ट्स खेलने का मजा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। टाइमिंग सुन लीजिए, शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक और 21 से लेकर 28 जुलाई तक यानी कि हर ट्यूसडे ये हो रहा है, कल भी होगा और आज भी हो रहा है। एंट्री गेट नंबर 35 से आपको एंट्री मिल जाएगी। टिकट पैसे लगेंगे? नहीं, बिल्कुल फ्री है एंट्री, बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको एजुकेशन सिटी वेबसाइट पर जाके प्री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एज की लिमिट इस समर एडिशन में सिर्फ 10 साल से ऊपर की फीमेल्स अलाउड है, छोटे बच्चियां और बॉयज अलाउड बिल्कुल नहीं है, तो इन बातों का खास आपको ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं हल्के हाथ से आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल, गोल्डन बूट रेस अवार्ड किसको मिलेगा, ये भी दे सकते हैं आप जवाब, और कि गोल्डन बूट रेस अवार्ड में कितने लोग रेस में थे, गोल्डन बूट के अवार्ड में कितने लोग रेस में थे ये आपको बताना। हमारा व्हाट्सएप नंबर 6622107 6622107। अनवर का मैसेज की तरफ अगर बढ़े तो इन्होंने जवाब दिया है 1 2 3 4 आए हाय बिल्कुल सही, 3 पूछे थे 4 जवाब दे दिए है, क्या बात है। इतना इतना फॉलो कर भी रहे हैं कि ऐसे आग बन करके यार मार दिया हवा में।

ही जवाब। साद नूर ने मैसेज करके डिलीट कर दिया है। आरिफ अंसारी ने कहा है एम्बापे, मेसी और हैलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। रमेश ने कहा है फ्रांस के एम्बापे पहले नंबर पे, अर्जेंटीना के मेसी दूसरे और इंग्लैंड के तीसरे हैरी केन। खैर हैलैंड भी थे अगर आपको याद हो, 7 गोल से हैलैंड, और साथ ही जो तीसरे नंबर पे आपने बताया रमेश भाई ने, वो हैरी केन। सो 7-7 गोल करके दोनों बराबर भी थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार मेसी अगर गोल कर जाते तो उनको मिल सकता था, लेकिन अगर एक गोल करते तो नहीं मिलता, 2 गोल करते तो बराबर पे आते, वो भी फ्रांस के एम्बापे के, और 3 गोल करते तो एम्बापे से ऊपर निकल जाते, टोटल 11 गोल होते। लेकिन 10 गोल के साथ एम्बापे गोल्डन बूट अवार्ड जीत चुके हैं। खैर ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मेसी ने फाइनली अलविदा कह दिया है। बड़े स्टार्स ने फीफा को, टूर्नामेंट को अब अलविदा कह दिया है। अब ये दोबारा खेलते हुए फीफा वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे, ऑल्दो क्लब्स में खेलते हुए जरूर दिखेंगे। ये 3 बड़े स्टार कौन है? सबसे पहले मेरा अपना फेवरेट रोनाल्डो, दूसरे नंबर पे कई लोग कहेंगे मेसी क्यों नहीं है, लेकिन पता नहीं बस है तो नहीं है तो यार अपनी अपनी चॉइसेस हैं यार। दूसरे नंबर पे ब्राजील के खिलाड़ी हैं नेमार, और तीसरे नंबर पे हैं मेसी। तो ये 3 खिलाड़ी अब आपको खेलते हुए फीफा वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे। ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप था, दुख तो है लेकिन इन्होंने बहुत ही लाजवाब हमें यादें दी हैं फुटबॉल के जरिए, हमें फुटबॉल का फैन बनाया है। आमतौर पे क्रिकेट के अलावा बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, लेकिन अगर फुटबॉल का फैन कोई बन गया है या फुटबॉल को देखने लग गए हैं, वो इन 3 बड़े खिलाड़ियों की वजह से ही। वेल 1:24 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और लोगों ने सही जवाब दे दिया है। गोल्डन बूट रेस में सबसे आगे हैं एम्बापे, ऑब्वियसली वो जीत चुके हैं, और फिर मेसी के बाद हैरी केन और हैलैंड भी हैं। इसी के साथ बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज है आशिक मियाँ का, नाम ही आशिक मियाँ लिखा है। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। उसके अलावा एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई एम्बापे। हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब, आपका नाम है सलीम। ओके सलीम साहब बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, जाने से पहले बस क्रिकेट की इतनी सी बात करनी है दुख के साथ कि इंग्लैंड 2-1 से सीरीज जीत गई ओडीआई का, और सवाल ये लोगों का बन रहा है कि यार जब जवान लोगों को आपको मौका देना ही है ओडीआई की टीम में तो सिराज क्यों नहीं? शमी चलिए मैं मानता हूं थोड़े से उम्र दराज हो गए हैं, बुमराह का थोड़ा मसला है फिटनेस का, उसके अलावा और भी बॉलर हैं, गुरनूर क्यों है ना, ऐसे प्लेयर क्यों जिनके पास एक ही प्लान है बैट्समैन को आउट करने का, और अगर वो प्लान नहीं कामयाब हुआ तो क्लूलेस हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे बॉलर आपने रखे हुए हैं जो ओडीआई कभी नहीं खेले, आईपीएल भी इतना नहीं खेले, और फिर आते ही इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे भी नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट आप उनको गेम खिला रहे हैं, ओडीआई खिला रहे हैं। फिटनेस, जवान लड़का और तेज तर्रार रफ्तार से फेंकने वाला, ये आपको चाहिए तो सिराज क्यों नहीं? अच्छी पेस स्विंग के साथ सही लेंथ चाहिए तो शमी क्यों नहीं? अच्छी स्पिन चाहिए तो कानपुर का कुलदीप क्यों नहीं? क्या मसला है उसमें भाई? ठीक है अक्षर पटेल बहुत अच्छे हैं, वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन फिर अगर आपने इतने ही प्लेयर को रखना, आपको ऑलराउंडर से भी मोहब्बत है, तो फिर हार्दिक पांड्या क्यों नहीं? तो ये कुछ सवाल थे यार, मैंने सोचा यार होने चाहिए, और यार गंभीर पर इतने सवाल तो हो ही गए, गंभीर के साथ साथ अगरकर पर भाई इतने ही सवाल है क्यों? लेकिन अब हो सकता है इसका जवाब बाद में मिल जाए, अगर टीम इंडिया कोई मैच जीती तो शायद अगर कराएंगे क्रेडिट लेने के लिए। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आज शाम 4 बजे आपकी अपनी मर्जी के गाने के साथ। तब तक सुनते रहें और एंजॉय करें FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी इट्स टाइम फॉर,
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हालचाल है, कैसे हैं आप? So are you ready आज के escape room के नए challenge के लिए? वैसे देखा जाए तो बाहर की गर्मी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, temperatures एकदम ऊपर जाते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है हाय कब वो सुकून के दिन आएंगे जब हल्की बारिश होगी, जब थोड़ी ठंडक होगी। वैसे इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसी वक्त उस ठंडक को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और इसी पावर के चलते आज एस्केप रूम भी बड़ा काम का होने वाला है, या यूँ कहें बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमारे कतर में टेम्परेचर्स हाई है, दूसरी तरफ हम एकदम वो कहते हैं ना ठंडक को महसूस करने वाले हैं, थोड़ा इन्जॉय करने वाले हैं आज की सिचुएशन में। लेकिन ये इन्जॉयमेंट कितना ज़्यादा होगा जब एस्केप रूम का चैलेंज आएगा, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ हम रुख करते हैं, उसके बाद आज का एस्केप रूम चैलेंज आपके सामने आने वाला है। सो आर यू रेडी? नहीं है रेडी तो हो जाइए, क्योंकि अगर फंस

हैं एस्केप रूम में तो निकलना मुश्किल है, फिर आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा. सो यस, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. एस्केप रूम हमारा जो शो है उसका मकसद यही है. सो 666-22-107, 666-22-107 इज आवर नंबर. इस नंबर को याद कर ले और इसी के जरिए आपकी मेरी जो बातचीत है वो कंटिन्यूसली चलने वाली है. तो अभी के लिए आई हाय, बहुत ही खूबसूरत गाना है सुनिधि चौहान, दिव्य कुमार एंड अमित त्रिवेदी का ग्रेट कॉम्बिनेशन. एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15

0: आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देश।
2: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता एंड अब वक्त हो चला है एस्केप रूम के आज के चैलेंज को रिवील करने का। तो आज जनाब ना सुबह का वक्त है ना दोपहर का वक्त है, आज का जो सीन है वो शुरू होता है सर्द रात से। हाँ जी, सड़क बिल्कुल सुनसान है और आप अकेले घर जा रहे हैं। वैसे आपके घर के पास एक कार्निवल लगा हुआ था, लेकिन रात बड़ी ज़्यादा हो गई है, इस टाइम पे कार्निवल भी बंद हो चुका है। बट जैसे ही आप कार्निवल के नज़दीक जाते हैं, सारी लाइट्स अपने आप जल जाती हैं और एकदम से सारी राइड्स शुरू हो जाती है। एंड यू फील सो गुड, ऐसा लगता है कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और वो कहते हैं ना कि मीठे मीठे पॉपकॉर्न की खुशबू, लेकिन इंसान कोई भी नहीं। ओ हो, इस कार्निवल को देखकर आपकी एनर्जीज तो हाई हो गई और आप अंदर चले भी गए। आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी कोई दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, यहाँ वहाँ से कोई ना कोई दिख ही जाएगा, रात का वक्त है, थोड़ी देर मैं यहाँ के वो कहते हैं ना रंगीनियों को एंजॉय करता हूँ। आप अंदर जाते हैं और लोहे का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो बंद हो जाता है। अब आप कहते हैं यार ये क्या हो गया। सो यहाँ से आपके एस्केप रूम का चैलेंज शुरू होता है। बल अगर आपको इस अबैंडन्ड कार्निवल से बाहर निकलना है, गेट की चाबी हासिल करनी है, तो आपको पूरे करने होंगे कार्निवल चैलेंजेस, ठीक है। अब आप धीरे धीरे गेम स्टॉल के पास से गुजरते हैं, एक राइड के पास पहुंचते हैं। वहाँ खूबसूरत लकड़ी के घोड़े एकदम लगे हुए हैं, म्यूजिक बहुत तेज है, पर आसपास कोई रूह तक नहीं। वहाँ एक बोर्ड पर आपका पहला राज, आपका पहला क्लू लिखा है, मैं एक ऐसी राइड हूं जो गोल गोल दायरा बनाकर घूमती है, मेरे पास लकड़ी के घोड़े हैं जो म्यूजिक की धुन पर ऊपर नीचे होते हैं, बताइए मुझे क्या कहते हैं। ऑलराइट, तो आपको इस राइड का नाम बताना है। कम ऑन गाइस, इट्स वेरी वेरी ईजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो सही जवाब दीजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ, और इस पहले पड़ाव को पार कीजिए। क्लू नंबर वन एक बार आपके लिए फिर से मैं दोहराऊंगी कि मैं एक ऐसी राइड हूँ जो गोल गोल दायरा बनाकर घूमती है, ठीक है, मेरे पास लकड़ी के घोड़े हैं जो म्यूजिक की धुन पर ऊपर नीचे होते हैं, बताइए मुझे क्या कहते हैं। कम ऑन, इट्स अ चैलेंज जो शुरू हो चुका है, और इस ब्यूटीफुल से कार्निवल से जिसने हमको अट्रैक्ट किया, जो कि अब घोस्टली हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना है, वरना फिर सारी उम्र हमें यहाँ के पॉपकॉर्न्स ही साफ करने पड़ेंगे। भाई देखो, हमें पॉपकॉर्न खाना पसंद है, यूँ बार बार साफ करना पसंद नहीं। आई यू रेडी? तो बस जल्दी जल्दी इस चैलेंज को सॉल्व कीजिए, और अभी सोचने के लिए मैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक देती हूँ। Ash King and Sunidhi Chauhan ki awaaz ka great combination. You're gonna love this song. Stay tuned to FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. क्या कहना भाई, एस्केप रूम का आज का चैलेंज बड़ा ही अडोरेबल सा है. मतलब आज हम फंस गए हैं एक अबैंडन्ड कार्निवल में, जो कि सिचुएशन में हमारे घर के रास्ते में पड़ता है. सिचुएशन ये थी कि काम से हम काफ़ी लेट फ्री हुए और रास्ते में जा रहे थे, एंड सडनली ये जो कार्निवल था जो कि बंद था रात में, एकदम से शुरू हो गया खूबसूरत लाइट्स के साथ. एंड यू नो, ये म्यूज़िक हमेशा वो बचपन की याद दिलाती है जब हम अक्सर ऐसे कार्निवल्स में, मेलों में या सर्कस वगैरह में जाया करते थे, है कि नहीं. एंड यू रियली एंजॉयड इट. और आप अंदर गए, आहा, पॉपकॉर्न्स की खुशबू, वो सारी यादें ताज़ा. बट सडनली वो जो लोहे का मेन एंट्रेंस वाला गेट था वो बंद हुआ. एंड देन अब आपको यहाँ से निकलना है तो तीन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. क्लू नंबर वन आपके लिए था, मैं एक ऐसी राइड हूँ जो गोल गोल दायरा बनाकर घूमती हूँ, और मेरे पास लकड़ी के घोड़े हैं जो म्यूज़िक की धुन पर ना ऊपर नीचे होते हैं. बताइए मुझे क्या कहते हैं. सो काफ़ी सारे जवाब आए हैं, लेकिन सही जवाब बहुत कम लोगों ने दिया है. और मे भी शायद वो सही जवाब, वो वर्ड एकदम से जहन में नहीं आ रहा होगा. चलिए हम सीधा सही जवाब की तरफ चलते हैं. सो इस क्लू का सही जवाब है कैरोसेल, मैरी गो राउंड या फिर हिंडोला. तो जिन्होंने भी सही जवाब दिए, जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां. क्या बात है, आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया. आफ्ताब, फैजान, साद, मोहम्मद यूसुफ खान, प्रिंसन ने भी सही जवाब दिया है, और कौन है, और कौन है, महफूज ने भी सही जवाब दिया है. हाँ, तो सही जवाब सिर्फ हमारे इन लिसनर्स ने ही दिया है. एक बार फिर से उनके लिए तालियां. पहला पड़ाव इन्होंने पार कर लिया है, सो इट्स अ गुड थिंग. वेल, कुछ हमारे लिसनर्स जवाब लिख रहे थे घोड़े वाले झूले और अपने लोकल वर्ड्स. देखिए, एग्जैक्ट वर्ड ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लूज तभी सॉल्व होंगे और तभी आप एस्केप रूम से बाहर निकल पाएंगे. तो यहाँ पर जब आपने सही जवाब दिया, जैसे ही आपने कैरोसेल ये नाम लिया, तो जो वो राइड थी ना, वो सारे घोड़े रुक गए और पास ही एक छोटा सा प्राइस बूथ खुल गया. वहां आपके लिए एक गरम स्नैक का बैग इंतजार कर रहा है. पर रुकिए, अगला रास्ता तभी खुलेगा जब आप इस क्लू को सॉल्व करेंगे. एंड क्लू नंबर टू ये है कि मैं एक सफेद और फ्लफी स्नैक हूं. शुरुआत एक छोटे पीले बीज से होती है, पर जैसे ही गर्मी मिलती है मैं पॉप हो जाता हूं. लोग मुझे मूवीज देखते वक्त बड़े शौक से खाते हैं. मैं क्या हूँ? कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर 6662107 पर, 6662107 पर अपने नाम के साथ. एंड लेट्स सी कि ये स्नैक का नाम कितने लोग सही दे पाते हैं. और अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुक करेंगे, और ये दूसरा पड़ाव आपको सॉल्व करना है इस म्यूजिकल ब्रेक में. सोचिए और सही जवाब दीजिए 6662107 पर. बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02। ये वो टाइम है जहां पर हमें हर एक चैलेंज को सुलझाना है और एस्केप रूम से आज एस्केप करना है। सो आर यू रेडी?
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम।

0: for Amita ke saath only on FM 107 Dil se Deep.
1: Yes, welcome once again FM 107 sun rahe hain aap. Main hu aapki A for Amita. और आज हम एक अबैंडन जो कार्निवल है उसमें जाके कैद हो गए. मतलब गए तो थे अंदर उस कार्निवल के कि भाई एंजॉय करेंगे, कुछ रिलैक्स होंगे, काम का स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, बचपन की यादें ताज़ा होंगी. बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा चैलेंज निकल गया है कि नहीं. आप अंदर गए और चैलेंजेस की शुरुआत हुई. पहला क्लू आपने सॉल्व किया जिसका जवाब था कैरोसिल, मैरी गो राउंड या फिर हिंडोला. और उसके बाद दूसरा क्लू आपके सामने आया. दूसरा क्लू, मैं एक सफ़ेद और फ्लफी स्नैक हूँ और शुरुआत एक छोटे पीले बीज से होती है, पर जैसे ही गर्मी मिलती है मैं पॉप हो जाता हूँ. लोग मुझे मूवीज़ देखते वक्त बहुत इन्जॉय करते हैं और शौक से खाते हैं, तो मैं कौन हूँ? आपको सही जवाब देना था. मुझे लगता है कि ये क्लू ऐसा है कि इसका कोई गलत जवाब दे ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारे लिसनर्स ने अपने पसंद के जो स्नैक्स हैं उन्हें इमेजिन कर लिया. वेल, सही जवाब इज पॉपकॉर्न्स. ठीक है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उन्हें क्या करना है इस वक्त? अपनी पीठ थपथपानी है भाई. बिल्कुल सही जवाब, इसे गलत कैसे कर सकते हैं? किसी ने क्लू सुना नहीं अच्छे से और लिखा कि समोसा, आलू भंडा, भुट्टा. देखो, जिन्होंने भुट्टा तक लिखा था वो नज़दीक पहुंच गए थे, लेकिन पॉपकॉर्न्स, कम ऑन, इट्स अ वेरी सिंपल क्लू जो कि बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता था. पर चले कोई नहीं, जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है उनके नाम हैं आफ्ताब, फैज़ान, अकबर, साद, सैयद, देन मोहम्मद यूसुफ खान, और ये कौन है, महफूज जी हमारे साथ हैं. महफूज ने सही जवाब दिया, जाकी ने सही जवाब दिया, और मिस्टर नीतू ने भी सही जवाब दिया है, और प्रिंसन ने भी सही जवाब दिया, और ये शख्स कौन है जिनका नाम नहीं लिखा है, ओके, हिशाम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. सो गुड जॉब, आप सब ने क्लू नंबर 2 सॉल्व कर लिया है. अब क्या करेंगे हम? वेल, आपने सही जवाब दिया तो कार्निवल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आप पहुंच गए, और आपके हाथ में वो जो गर्मा गर्म स्नैक था वो पॉपकॉर्न्स का था, वो बैग अब आप खाते हुए इंजॉय करते हुए थोड़ा आगे जा रहे हैं. हालांकि थोड़ा डर है कि आखिरी जो रास्ता है वो साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको घर जाना है, आप भी थक गए. ठीक है, सो ये जो आखिरी रास्ता है इसे एक बहुत बड़े चमकते हुए पहिए या यूं कहें व्हील ने रोका है. एग्जिट गेट तक पहुंचने के लिए इस पहिए को घुमाना होगा, और उसके लिए चाहिए है हमें आखिरी जवाब. सो क्लू नंबर 3 ये रहा, मैं एक विशाल या यूं कहें जायंट पहिया हूं जिसमें बैठने की जगह है. ठीक है, मैं आपको बुलंदियों तक या यूं कहें आसमान की ऊंचाई तक ले जाता हूं, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, और फिर वापस नीचे लेकर आ जाता हूं. मेरा नाम क्या है? बस इस बड़े से पहिए का नाम बताइए. 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर. उस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए. देखिए, इस वक्त आप एक अबैंडन कार्निवल में हैं, सारी जो क्लूज हैं वो कार्निवल से रिलेटेड है, और ये सारे जो क्लूज हैं एक्चुअली ये चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं. तो मैं एक विशाल या यूं कहें जायंट पहिया हूँ जिसमें बैठने की जगह है, मैं आपको बुलंदियों तक यानी आसमान की ऊंचाई तक ले जाता हूँ, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, और वापस उसे नीचे भी ले आता हूँ, मतलब वापस आपको नीचे भी लेके आता हूँ. तो मेरा नाम क्या है आपको जल्दी से बताना है. ठीक है, ये एक बहुत ही कमाल की राइड है, लेकिन मुझे इसका नाम चाहिए. ठीक है, हमारे लिसनर्स ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं. सोचिए व्हाट्स द नेम, और अभी आपको मैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले जाती हूँ. इट्स इम्पॉर्टेंट, एनर्जीज हाई रहने चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच गए और हमें एस्केप रूम से एस्केप करना है. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें।
1: हाँ जी, मेरे एस्केप रूम के सारे सर्वाइवर्स, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। कमाल की चीज़ है हमारा एस्केप रूम ये शो। हमेशा आप नए नए चैलेंजेस को सॉल्व करके बाहर निकलते हैं, और आज का चैलेंज मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप एक बड़े ही खूबसूरत से कार्निवल में, या यूँ कहें अबैंडन्ड कार्निवल में कैद हो गए। सोचा था आपने एक एक झूले में झूलेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे और फिर घर जाएंगे। वाह क्या बात है, लेकिन कैसे इन्जॉय करेंगे? यहाँ तो डर बढ़ते जा रहा है क्योंकि लोग हैं नहीं, कार्निवल की सारी चीज़ें अपने आप ही चल रही हैं। थोड़ा सा घोसली हो गया है कि नहीं, हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। बट एनीवे, आप सबने दो पड़ाव पार कर लिए हैं, दो क्लूज सॉल्व किए। पहले क्लू का सही जवाब था कैरोसेल, यानी मैरी गो राउंड या फिर हिंडोला, ठीक है, उस राइड का आपने नाम बताया। दूसरा क्लू था, उसका आपने जवाब दिया पॉपकॉर्न, ठीक है। अब तीसरा क्लू ये आपको एग्जिट गेट तक, या यूँ कहे एग्जिट गेट के बाहर ले जाएगा। बट क्या करें, अभी उसका जो रास्ता है उसे एक बड़े से जायंट व्हील ने रोका हुआ है। अब उसको व्हील को चलाना होगा, तो उसके लिए हमें क्लू नंबर 3 सॉल्व करना होगा। मैं एक विशाल जायंट पहिया हूँ जिसमें बैठने की जगह है, ठीक है। मैं आपको बुलंदियों तक, यानी आसमान की ऊँचाई तक ले जाता हूँ, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, और फिर वापस मैं नीचे ले आता हूँ। अब मेरा नाम क्या है? देखो, ये वो चीज़ है जिसमें जाने के लिए ना बहुत लंबी लाइन लगती है हर एक कार्निवल में, और इसकी राइड मैंने भी बचपन में बहुत ली है। सो कम ऑन, यू हैव टू गिव द राइट नेम। सही जवाब दीजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर। कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने ऑब्वियसली जवाब दिया है और लिखा है सिर्फ राइड या झूला। देखो, अब यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, मैंने हिंट भी आपको दे दिया है, तो राइड और झूला तो समझ आ रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है? कम ऑन, गिव मी द राइट नेम 666-22107 पर। मैं एक विशाल जायंट पहिया हूं जिसमें बैठने की जगह है, मैं आपको बुलंदियों तक, यानी आसमान की ऊंचाई तक ले जाता हूं, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, और फिर वापस नीचे ले आता हूं। कम ऑन, दिस इज द क्लू नंबर 3, यू हैव टू सॉल्व इट। और सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक दे देती हूं। थोड़ा सा इत्मीनान से सोचो, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करो और जवाब दो। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: यस, बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी फरमीता और इस वक्त हम आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं एस्केप रूम के, एंड जाहिर सी बात है आज एक अबैंडन कार्निवल में फंसे हुए हैं और यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त भागे जा रहा है तो सही जवाब तो बनता है। क्लू नंबर वन आपने सॉल्व किया, सही जवाब था कैरोसिल, मेरी गो राउंड, फिर इसे हिंडोला भी कहते हैं। क्लू नंबर टू का सही जवाब पॉपकॉर्न था, और क्लू नंबर थ्री में हमारे लिसनर्स की थोड़ी सी गाड़ी रुक रही है, चले एक बार रिपीट करते हैं और फिर सही जवाब की तरफ रुख करेंगे। तो मैं एक विशाल जायंट पहिया हूँ जिसमें बैठने की जगह है, मैं आपको बुलंदियों तक यानी आसमान की ऊंचाई तक ले जाता हूँ जहाँ से पूरा शहर दिखता है, और फिर वापस नीचे ले आता हूँ। तो आपको नाम बताना है कि ये जो राइड है, ये जो बड़ा सा जायंट व्हील है, इसे क्या कहते हैं। देखो बातों में मैंने जवाब भी दिया आपको। ओके, लेट्स सी द आंसर्स। कुछ ने लिखा है झूला, कुछ ने लिखा है स्विंग, कुछ ने लिखा है रोलर कोस्टर, कुछ ने लिखा है जायंट व्हील, कुछ ने लिखा है फेरिस व्हील, कुछ ने लिखा है आकाश झूला। तो सही जवाब है, जिन्होंने लिखा है फेरिस व्हील, जायंट व्हील, आकाश झूला, दैट्स द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है जनाब, आप सबने कमाल कर दिया। आइए देखें जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए हैं, उनके नाम हैं प्रिंसन महफूज, मोहम्मद यूसुफ खान, देन अकबर, साद, फैजान, आफ्ताब, सैयद। क्या बात है, मेरे को सही जवाब देके तीनों पड़ाव आपने पार कर लिए, और आज जैसे ही आपने सही जवाब दिया आपका एग्जिट डोर खुल गया और आप इस कार्निवल से बाहर आ गए, सीधा घर गए सेफ एंड साउंड, और अब आपने चैन की सांस ली। एग्जैक्टली, ये चैन की सांस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। चलिए इसी बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के हमारे लकी विनर कौन है। तो लकी विनर का नाम है महफूज। मुबारका जी, कमाल कर दिया आपने, कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी गुड। हाय, क्या बात है। वैसे हमारे सारे लिसनर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया जो नॉनस्टॉप हमारे साथ रहे एंड हमारे एस्केप रूम की शान को बरकरार रखा, है कि नहीं। वैसे कहा जाता है ना कि जिंदगी एक कार्निवल की तरह ही है, मतलब उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ पता क्या है कि इसकी राइड हम लेते रहें और ये सफ़र चलता रहे। तो राइड लेते रहिए, सफ़र चलता रहेगा और आपकी जो ज़िंदगी में एडवेंचर है ना, वो बना रहेगा, है कि नहीं। पर आज का एस्केप रूम आपको कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। अब कल क्या होने वाला है, कल दोपहर 1:30 बजे मैं सोच रही हूँ आपको लेके चलूँ एक केव चैलेंज में। कभी आप किसी केव में गए हो, गुफाओं में गए हो फॉर एनी एडवेंचर ट्रिप? नहीं गए हो तो कल का चैलेंज बड़ा मज़ेदार होगा। फिलहाल के लिए अब वक्त हो गया मेरे जाने का, तो मुझे दे दीजिए इजाज़त। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं FM 107, और आप अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढ लो, बातचीत वहीं पे भी कर सकते हैं। और अभी जाते जाते क्या कहना बनता है, हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर इको स्विच। साथियों जरा सोचिए, एक सनी सा एक धूप वाला दिन है, वीकेंड है, पार्क हरा भरा है, हवा में ठंडी सी फ्रेश हवा चल रही है और लोग पिकनिक मना रहे हैं। क्या तो मस्त माहौल लग रहा है। सैंडविचेस, जूस, किलकारियां, सब कुछ परफेक्ट ना, मजा आ रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, अब एक और सिनेरियो इमेजिन करें। सेम पिकनिक है, सेम मजा है, लेकिन जब लोग पार्क छोड़कर जाते हैं पिकनिक खत्म करने के बाद, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, जैसे यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। यही होता है इको फ्रेंडली पिकनिक का मैजिक, मजे भी और जिम्मेदारी भी और जमीन की हिफाजत भी। तो भाई साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली पिकनिक के बारे में। इको फ्रेंडली पिकनिक होती क्या है भाई? देखें, इको फ्रेंडली पिकनिक का सिंपल सा मतलब है नेचर को नुकसान दिए बगैर आउटडोर फन एंजॉय करना। यानी प्लास्टिक प्लेट्स की जगह रीयूजेबल प्लेट्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पर रिफिलेबल बॉटल्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बैग्स की जगह पर कपड़े के बैग्स यूज कर लेना। ये सिर्फ पिकनिक का तरीका चेंज करना है साथियों, मजा कम नहीं होता इससे। अब आप पूछेंगे भाई ये क्यों जरूरी है, तो जरा सोचिए एक छोटी सी पिकनिक से कितना वेस्ट बनता है। साथियों आप जानते हैं, सिर्फ 5 लोगों की पिकनिक से 1 से 2 किलोग्राम तक कचरा बन सकता है। और जब ऐसे आप कह लें कि मिलियंस ऑफ पीपल यू सी अराउंड जब पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो दुनिया भर में हर साल पता है आपको कितना वेस्ट जनरेट होता है? तकरीबन 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक प्लास्टिक बॉटल को खत्म होने में 400 से 450 साल लग सकते हैं। मतलब आज का जो आपने पिकनिक मनाई थी आज की, कल के बच्चों की दुनिया को वो अफेक्ट कर सकती है। देखें, एक नॉर्मल सी पिकनिक के बारे में अगर हम सोचें ना, तो लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और डिस्पोजेबल प्लेट्स ले जाते हैं। ये मैं भी करती हूँ अक्सर औकात, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना किया जाए। देखें, पिकनिक के बाद होता है कि सब कुछ डस्टबिन या कभी कभी वहीं पर छोड़ दिया जाता है जिस ग्राउंड पे आप बैठे होते हैं। रिजल्ट क्या होता है? गंदा पार्क और नेचर पर लोड आना। ये गलती हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हम सबसे हुई है ये गलती। अब इको पिकनिक में क्या होता है? घर से होममेड फूड लेकर जाना, स्टील बॉटल्स लेकर जाना, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाना, और वापस आते वक्त जब आप वहां से छोड़कर जा रहे हैं तो सब कुछ साथ ले

0: लेकर वापस आना। पहले मैं भी नॉन इको पिकनिक मनाती थी, लेकिन अब मैं भी इको पिकनिक पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ कि घर से होममेड फूड लेकर जाती हूँ, स्टील वाली बॉटल्स लेकर जाती हूँ, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाती हूँ, और जब हम वहां से जाते हैं तो अपना सारा सामान साथ में वापस लेकर जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि क्लीन पार्क, जीरो गिल्ट, सेम फन, डिफरेंट इम्पैक्ट। नहीं, ये इको फ्रेंडली पिकनिक सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसका रियल फायदा पता है क्या है? प्लास्टिक कम होता है, एनवायरमेंट क्लीन रहता है, जानवर सेफ रहते हैं, प्लास्टिक उनके लिए खतरा बन सकता है, नेचर खूबसूरत रहती है, पार्क्स और बीचेस क्लीन रहते हैं। बच्चों के लिए एक लर्निंग पॉइंट भी होता है, वो सीखते हैं कि छोटी हैबिट से बड़ा चेंज कैसे लाया जा सकता है। साथियों, कुछ फन फैक्ट्स आपको बताऊं। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को खत्म होने में 200 साल तक लग जाते हैं, एक रीयूजेबल बॉटल एक साल में तकरीबन 150 प्लस प्लास्टिक बॉटल्स रिप्लेस कर सकती है। हर मिनट दुनिया में लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं। देखिए भाई, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज से आप साल भर में 100 से ऊपर प्लास्टिक आइटम्स कम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अब बात करें प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में साथियों, तो प्रैक्टिकल टिप नंबर 1 है, अपना घर से खाना लेकर जाएं। पैकेजिंग, इससे वेस्ट जो होता है ना, पैकेजिंग वेस्ट, वो कम होगा। रीयूजेबल आइटम्स यूज करें, जैसे कि स्टील बॉटल्स हो गई, प्लेट्स हो गई और कटलरीज, ये बेस्ट हैं, घर से लेकर जाएं। प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड करें, सिंगल यूज चीजों से दूर रहें। चौथी टिप ये कि भाई वेस्ट वापस ले आए, यानी कि लीव नो ट्रेस रूल फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचुरल पैकेजिंग ट्राई करें, यानी कि कपड़े की बनी हुई बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इन्हें यूज करें। साथियों, इको फ्रेंडली पिकनिक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। अगर एक फैमिली भी हर वीकेंड इको फ्रेंडली पिकनिक मनाती है, तो इमेजिन करें कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है। तो साथियों, इको स्विच का आज का चैलेंज ये है कि नेक्स्ट पिकनिक पर सिर्फ 3 चीजें जरूर ट्राई करें। नो सिंगल यूज प्लास्टिक, रीयूजेबल आइटम्स यूज करें, सारा वेस्ट वापस लेकर आए, और देखें पिकनिक का मजा भी बेहतर हो जाता है और हमारी अर्थ भी, यानी कि हमारी जमीन भी खुश रहती है। इसी के साथ आप सुन रहे थे सफा के साथ इको स्विच ऑन FM 107, जहां छोटा सा स्विच बड़ा चेंज लाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूँ आपकी RJ माविश खान। आज का टॉपिक है इल्म हासिल करने की अहमियत पर। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। इस्लाम ने इल्म को बहुत बुलंद मकाम अता किया है, क्योंकि इल्म इंसान को रोशनी देता है और उसे सही और गलत में फर्क समझने में मदद करता है। इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि तजुर्बे, ऑब्जर्वेशन और सीखने के जज्बे से भी हासिल होता है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन असल इल्म वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए। जब इंसान इल्म हासिल करता है और उस पर अमल करता है, तो वो अपने और दूसरों के लिए फायदेमंद बन जाता है। आज का अमल यह है कि रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: और आज भी मैं अपने कल वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज भी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स मेटावर्स की और इकोनॉमी की। तो कल मैंने आपसे बताया था कि हाँ, किस तरह से जो है मेटावर्स पे जॉब्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स अपने आप में है क्या, वर्चुअल दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। कल हमने इस पर हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। आज बात करेंगे बिजनेस और ट्रेड की। जिया मेटावर्स एक बिजनेस हब बन चुका है। कंपनीज वहाँ अपने स्टोर्स ओपन कर रही हैं, ब्रांड्स अपने वर्चुअल शोरूम्स बनाएंगे जो और ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं लोग डिजिटल एसेट्स यानी NFTs जो है सेल करेंगे। सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी है, डिजाइन है, एंटरटेनमेंट है, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांजेक्शन्स जो है वो फास्ट और डिजिटल होंगे और ग्लोबल लेवल पर ट्रेड पॉसिबल होगा। वहीं अगर इसके मैं कुछ फायदे गिनवाऊं तो देखिए, दुनिया की किसी भी हिस्से से लोग बैठ कर काम कर सकें, यानी उनके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्पेस की अब जरूरत ही नहीं हो, लोग जो है लो कॉस्ट पर बिजनेस करेंगे, ये भी एक बड़ा फायदा है। फिर बात की जाए एक और अगर फायदे की, तो एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिल रही है। यू नो, लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए आइडियाज बना सकते हैं। वहीं पर लोग घर बैठे काम भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, चीजें आसानी से जो है ना एक्सेसिबल है। वहीं इनके रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो हमें और आपको समझ में आता है वो है सिक्योरिटी इश्यूज, हैकर्स और फ्रॉड का रिस्क। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। फिर एक और रिस्क की बात की जाए वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। लोग फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो करेंगे भी। वहीं एक और चीज जो हमें और आपको बेचैन कर देती है वो है एडिक्शन। लोग रियल दुनिया से दूर होकर इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा ना घुस जाए कि रियल दुनिया का जो उनका अपना एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाए। फिर एक चीज आती है समझ में, इनइक्वालिटी। हर कोई आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जिसके पास भरपूर पैसा होगा वो तो एडवांस्ड तरीके से पैसे बनाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा। देखिए, इसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा। मेटावर्स लोगों के सोशल इंटरेक्शंस को चेंज कर देगा। आजकल के बच्चे भी ना ज्यादा टाइम वर्चुअल दुनिया में ही गुजारना पसंद करते हैं, वही उनको लगता है कि हमारी रियल दुनिया है। आने वाले वक्त में ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी। लोग दूर रहकर भी कनेक्टेड तो होंगे लेकिन रियल रिलेशनशिप वीक हो जाएंगे। फ्यूचर में मेटावर्स एक फुल्ली फंक्शनल इकोनॉमी बन सकता है, जहां लोग काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी डिजिटल लाइफ बनाएंगे। हो सकता है कि लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में गुजारें, लेकिन नतीजा क्या है पता नहीं। मेटावर्स इकोनॉमी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का काम करने का तरीका बदल सकता है और बदल रहा है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी है, जहां मैनेज करना, जिन्हें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से यूज किया गया इसे तो मेटावर्स एक नया डिजिटल सिविलाइजेशन भी बन सकता है, और अगर सही तरीके से इसे यूज ना किया जाए तो शायद ये आपके और हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। फिलहाल सही इस्तेमाल, गुड बैलेंस, ये हमेशा हम सब के लिए बेस्ट टेकअवेज है।

0: इन्हें अप्लाई करना और इन पर काम करना और खुद को इस एडिक्शन से दूर रखना, अभी हमारी और आपकी समझ से ये बात दूर है ऐसा लगता है। चलिए फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इस टॉपिक से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ कल वापस हाजिर होंगे इसी सेगमेंट में जिसका नाम है 1 Step to 28:30। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए और जो रियल वर्ल्ड है फिलहाल जिसमें हम हैं, रियल कनेक्शंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए और देखते हो सुनते रहिए फिर 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: क्या बात है, ये मंजर देखने में जितना हसीन लगता है ना, उतनी ही बड़ी एक हकीकत हम सब रोज जीते हैं इस तपिश भरी धरती पर। पानी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, लेकिन कतर में वाटर इज मोस्ट प्रेशियस करेंसी। कभी सोचा है आपने कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां कोई परमानेंट दरिया या यूं कह रिवर नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं है जो बारह मासी बहती हो, और बारिश साल भर में 100 mm से भी कम होती है। अब जनाब, इतनी कम बारिश तो शायद एक मुनासिब यूं कहे तो प्रॉपर शार में निकल जाती है, लेकिन फिर भी कतर की रगों में जिंदगी दौड़ रही है। हमारे हरे भरे पार्क्स, हमारे चमकते टावर्स और आपके किचन का वो नल, ये सब कैसे चल रहा है, कभी सोचा है इसके बारे में? यहाँ हर एक बूंद जो आप देखते हैं ना, वो कुदरत का करिश्मा कम या यूं कहें ह्यूमन इंजीनियरिंग का मिरेकल ज्यादा है, और इट इज अ मिरेकल ऑफ साइंस जो हम अक्सर देखते हैं पर उसे थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। फिलहाल आज का एपिसोड हमारा बड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड गोल्ड के बारे में। आज जब आप दोहा में या अलवक्रा में या शायद लुसेल में अपने घर का नल खोलते हैं, तो क्या आपने कभी उस पानी का सफर सोचा है कि ये पानी आया कैसे हमारे पास? वो पानी सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं निकल रहा, वो पानी आया है अरेबियन गल्फ की उस नमकीन गहराइयों से जिसे हम द डीप ब्लू कहते हैं। वहां से उस खारे पानी को निकाला गया, उसमें से नमक के एक एक जर्रे को अलग किया गया, और फिर टेक्नोलॉजी की रगों से, मतलब हमारे हाई टेक पाइपलाइंस के नेटवर्क से होता हुआ वो कई माइल्स का सफर तय करके आपके ग्लास तक पहुंचता है। यस, ये कोई मामूली सफर नहीं है, इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक खारा समंदर एक मीठी जिंदगी में बदल जाता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम इसी लिक्विड गोल्ड की गहराइयों में उतरेंगे। हम बात करेंगे वाटर सिक्योरिटी की। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट रिजर्वॉयर्स के पीछे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने कतर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा दिया है, और साथ ही हम बात करेंगे उस रेवोल्यूशनरी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी की जो हमारे कल को सुरक्षित बना रही है। कैसे कतर सूरज की गर्मी और टेक्नोलॉजी की ताकत से अपना फ्यूचर लिख रहा है। कहीं ना जाए, मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत काम की होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम वंस अगेन, मैं हूं अमिता आपके साथ, और आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। और अब बारी है द ग्रीन वायर की। हाँ, तो ये क्या है ग्रीन वायर? हम अक्सर बुर्ज खलीफा या बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, इनकी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कतर की जमीन के नीचे एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड छुपा है जो दिखता तो नहीं पर हमारी रगों में जिंदगी बनकर दौड़ रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सीधा हमारी वाटर सिक्योरिटी से जुड़ा है। कतर ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात अपने लोगों की हिफाजत की आती है ना, तो हम सिर्फ बड़े ख्वाब नहीं देखते, हम उन्हें कंक्रीट की शक्ल में खड़ा भी करते हैं। कहा जाता है जहां चाह होती है वहां राह होती है, और इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री और करामा, इन दोनों ने मिलकर, वो कहते हैं ना कि एक ख्वाब को पूरा किया है, द वाटर सिक्योरिटी मेगा रिजर्वॉयर्स प्रोजेक्ट। सोचिए, उम बिरका से लेकर उम थुमामा तक कतर के 5 अलग अलग कोनों में 5 ऐसी साइट्स बनाई गई हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। इन रिजर्वॉयर्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वॉयर का खिताब दिया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हर एक टैंक इतना बड़ा है कि उसमें एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रही, इमेजिन 5 मैसिव साइट्स जहां पर जायंट कंक्रीट टैंक्स हैं, हाँ, और उनके अंदर पानी है। जब आप इनके पास खड़े होते हैं तो आप ना एक नन्हे से जर्रे लगते हैं, मतलब छोटा सा पार्टिकल लगते हैं, ये सिर्फ सीमेंट से बनी दीवारें नहीं है, ये बेसिकली कतर का एक सेफ्टी नेट है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? इसके पीछे की वजह सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था, इसके पीछे का मकसद है सर्वाइवल। हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कुदरती पानी की बहुत कमी है, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए या डीसैलिनेशन प्लांट्स में कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाए तो क्या हमारा शहर प्यासा रहेगा? हरगिज नहीं। इन मेगा रिजर्वॉयर्स की वजह से कतर के पास अब इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि अगर सारे प्लांट्स बंद भी हो जाए तब भी पूरे मुल्क की जरूरत को 7 दिनों तक पूरा किया जा सकता है। 7 days, आप समझ रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ वाटर, वो भी हाई क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर जो कि स्टोर्ड है और रेडी है। ये हमारा लिक्विड गोल्ड है जो जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है, और ये है हमारे कतर का विजन कि कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ और हमारी डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। वेल, एक खास बात आपको बतानी है कि ये जो पानी है इसे स्टोर करना काफी नहीं है, ठीक है, उसे बचाना और गार्ड करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एंट्री होती है तरशीद की। अब एक और बड़ी खबर ये है कि कतर का नया यूनिफाइड ऑपरेशन सेंटर अब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा काम कर रहा है। यस, वहां लगे हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड AI या यू कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। पहले क्या होता था कि अगर कहीं जमीन के नीचे पाइपलाइन लीक हो गई तो हफ्तों तक पता ही नहीं चलता था और लाखों गैलन पानी वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब हमारे डिजिटल चौकीदार या यूं कहें हमारे डिजिटल AI को हर एक लीक का पता चंद मिनट्स में चल जाता है, एंड दे आर डिटेक्टिंग एनोमलीज इन रियल टाइम। मतलब कतर सिर्फ पानी बचाने का काम नहीं कर रहा है, उसे गार्ड भी कर रहा है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि हमें सही वक्त पर पानी मिल सके। तो जनाब, ग्रीन वायर में आज हमने देखा कि कैसे कतर ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, और एक तरफ हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अजीम रिजर्वॉयर्स हैं और दूसरी तरफ AI जैसे शानदार टेक्नोलॉजी जो एक एक बूंद की हिफाजत कर रही है। लेकिन याद रखिए, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी अपना काम कर रहे हैं, पर असली हिफाजत जब आती है ना तो वो आपको और हमें ही करनी है। चलिए आगे इसके बारे में और बात करते हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 107, मैं हूँ अमिता आपके साथ, और कतर ग्रीन बीट्स पर आज बातें हो रही हैं लिक्विड गोल्ड की। वेल, आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो इस रेगिस्तान में सोना या यूं कहें गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। यस, एंड दैट इज आवर वाटर, हमारा पानी। आज हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर उस जगह पर हम चलते हैं जहां कतर की वाटर इंडिपेंडेंस का किला या यूं कहें फोर्ट्रेस बने हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ ओम अल हूल पावर प्लांट की। जब आप दोहा से दक्षिण की तरफ ड्राइव करते हैं तो एक अजीमोशान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये कतर का वो पावर हाउस है जो लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। ओम अल हूल वो जगह है जहां साइंस और नेचर, यस, का एक कमाल का संगम है, यू कहे मीटिंग पॉइंट है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले हम थर्मल डीसैलिनेशन पर डिपेंड करते थे। इसे आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो वो है कि समंदर के पानी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उबालना, फिर उसकी भाप को कैच करना और उसे ठंडा करके साफ पानी बनाना। सुनने में ये बड़ा सिंपल लगता है, जैसे किचन में चाय बनाना, पर जनाब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस तरीके में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती थी। लेकिन फिर आई एक रेवोल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओम अल हूल में आज यही जादू हो रहा है। इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े हाई प्रेशर पंप्स हैं जो समुंदर के खारे पानी को इतनी जोर से धकेलते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन से, यू कहे फिल्टर्स से गुजरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्टर्स इतने महीन हैं कि नमक के जर्रे जर्रे को वही रोक देते हैं और दूसरी तरफ से निकालना शुरू करते हैं, बिल्कुल साफ मीठा और शुद्ध पानी। अब आप सोचेंगे कि अमिता ये

रहे हैं सोलार पावर डीसैलिनेशन। तसव्वुर कीजिए कतर की वो तेज धूप जो कभी हमें परेशान करती है, वही धूप अब समुन्दर के पानी को मीठा बनाएगी। सूरज की गर्मी और समुन्दर का पानी दोनों मिलकर कतर को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल अ सस्टेनेबल साइकिल। हम रिसोर्सेज को खत्म नहीं कर रहे, हम उन्हें रिन्यू कर रहे हैं। कभी सोचिए कि जब हम ग्लास उठाते हैं तो हम सिर्फ पानी नहीं पी रहे, हम उन हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और उन टेक्नोलॉजी की रगों से गुजरे हुए एक सफर को पी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमारी तहजीब में पानी को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं माना गया है, पानी एक अमाना है, या यूं कहें एक अमानत है। हाँ जी, ये पानी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे पास एक अमानत है जो हमें अपनी आने वाली नस्लों को सही सलामत लौटानी है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस अमानत की हिफाजत कर रहे हैं। इस अमानत की हिफाजत के लिए हमें ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। यस, पहला है द तशहीद चैलेंज। हम दिन भर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, पर अभी का काम क्या है? आज एक काम हम करेंगे, कारामा का जो ऐप है ना वो डाउनलोड करेंगे। इसमें एक सेक्शन है जहां आप अपने डेली हैबिट्स डाल सकते हैं। ये आपको एक वाटर फुटप्रिंट स्कोर देगा। इसे अपने बच्चों के साथ एक गेम बना दीजिए। यस, देखिए कि घर में सबसे कम पानी कौन जाया करता है। जब हम बच्चों को बचपन से वैल्यू सिखाते हैं ना, तो वो बड़े होकर इस धरती के रक्षक या यूं कहें प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। तो जनाब, सोल्यूशन तो बस इतना सस्ता है कि आप हैरान ही हो जाएंगे। हाँ, कल किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर जाइए और उनसे कहिए कि मुझे एक फॉसेट एरेटर चाहिए। एक छोटा सा मैश स्क्रीन होता है जो आपके नल या यू कहें टैप के मुंह पर लग जाता है। ये करता क्या है, ये पानी के स्ट्रीम में हवा मिक्स कर देता है। इससे प्रेशर वही रहता है, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो 50% कम हो जाता है। मतलब वही प्रेशर, वही एहसास, लेकिन आधा पानी। ये बहुत ही कम दाम का है, पर मिलियन ऑफ गैलन्स पानी भी बचाता है और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। और मुझे लगता है कि ये जो अगला वाला, ये भी बड़ा कमाल का है। हाँ, जिन्हें गार्डनिंग का शौक है, स्पेशली उनके लिए, हमारे यहाँ पौधों को पानी देना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने ग्रे वाटर के बारे में सोचा है? जब आप किचन सिंक में सब्जियां धोते हैं ना, या चावल भिगोते हैं, वो पानी नाली में या यूं कहें ड्रेन में मत फेंकिए। उसे एक बाल्टी या यूं कहें बकेट में जमा कीजिए और अपने गार्डन में डाल दीजिए। रेगिस्तान में एक पौधा ये नहीं देखता कि पानी नल से आया है या सिंक से, उसे सिर्फ जीने के लिए नमी चाहिए होती है। ये छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो जनाब, कतर की दास्तान रेत पर नहीं बल्कि पानी पर लिखी गई है। एंशियंट वेल से लेकर ओम अल हूल के फिल्टर्स तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अगली बार जब आप ग्लास में पानी भरें, तो थोड़ा सा रुकिए, उसे देखिए और याद कीजिए कि ये हमारी अमानत है कि नहीं। वक्त कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन आज हमने कतर की रगों में बहते इस लिक्विड गोल्ड की बात की जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है, और हमें इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लों को महफूज किया जा सके। वैसे जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद बिल्कुल साफ होता जा रहा है। हम सिर्फ एक मॉडर्न नेशन नहीं बनाना चाहते, हम एक ऐसे नेशन को बनाना चाहते हैं जो अपनी रिसोर्सेज की कद्र करता है। तो बस इसी रिसोर्सेज की और एट द सेम टाइम हमारी सारी, वो कहते हैं ना, सहूलियत जो हमें मिली हुई है, उसकी हमें इज्जत करनी है कि नहीं। और इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का कतर ग्रीन बीट्स यही तक था। अब आपको मुझे देनी होगी इजाजत, वक्त है मेरे जाने का और आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, बेशक आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, या चाहे तो हमारा जो सोशल मीडिया है एफ एम 107 का, उससे भी जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हैं। तो बस आज जिस लिक्विड गोल्ड की हमने बात की है, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, चेरिश कीजिए, और अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नए
मुद्दे के साथ एक नए टॉपिक के साथ ठीक है तब तक के लिए क्या करना है अपना खूब सारा ख्याल रखना है

0: और सुनते रहना है FM 107 दिल से देसी.
1: One hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107. Time check.
1: उठाओ बाया हाथ और देख लो टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01।
2: आप सुन रहे हैं द रिक क्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। ये दूसरा घंटा है जब मैं आपके साथ हूँ, मतलब ऑब्वियसली 1 बजे भी था आपके साथ और फिर अब 4 बजे। दोनों अलग अलग टाइमिंग है और दोनों अलग अलग शोज भी हैं। द रिक्वेस्ट शो इसका नाम, एफएम 107 पे आपके अपने मर्जी के गाने लेकर मैं आ गया हूँ। हर हफ्ते हर दिन, हफ्ते में मतलब जितने भी दिन होते हैं 5 दिन अपन काम करते हैं और इन 5 दिनों में आपके अपने मर्जी के गाने तो चलने ही चलने चाहिए। हर दिन एक नया थीम होता है, एक नए सिंगर, एक नए आर्टिस्ट और कई बार बॉलीवुड के हिट गानों की लिस्ट लेकर आता हूँ, कई बार यू नो एक्टर्स के गाने, कई स्पेसिफिक बॉलीवुड मूवीज़ के गाने वो यहाँ पर प्ले होते हैं और हर एक दिन एक नई थीम होती है और ऐसे ही आज भी एक नई थीम है। कल तो सुखविंदर के गानों ने बवाल मचा दिया। मेरे पास बाद में भी मैसेज आया था कि यार आज मज़ा आया, यार ये वाला सुन के मज़ा आया, फला गाना सुन के मज़ा आया। सच में मेको और सुखिंदर वैसे भी जब साथ साथ रहते हैं तो क्या ही आग लगाते हैं। सुखिंदर ने वैसे भी अपने कुछ गानों में कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि यार सालों सालों बाद भी अगर उनका गाना सुनो तो मज़ा आ जाए, जैसे कि चले छैया छैया है ना मज़ा तो आता है। तो इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का एफ एम 107 पे 4:03 तक हमारा और आपका साथ और इस बीच आपके अपने गाने। बात कर लेकर थीम की तो आज का थीम क्या है, किस तारीख है आज, और आज का थीम है बॉलीवुड हिट्स। उन गानों को हम प्ले करने वाले हैं जो सलमान खान की फिल्म से रिलेटेड है। कुछ महीनों पहले सलमान खान की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा फिट लग रहे थे, उनके डोले शोले भी थे और

0: शर्टलेस वो फोटो थी जिसमें सिक्स पैक्स भी दिख रहे थे, बहुत ही उम्दा। लेकिन हाल ही में एक और उनकी वीडियो आई है जिसमें वो शायद थोड़े से बीमार लग रहे हैं, उनकी वो फोटो उस तरह की नहीं लग रही है जिस तरह की उनकी हुआ करती थी। एक वीडियो आई, पहले तो सबसे पहले जो वीडियो आई वो वीडियो में वो यू नो पूरा शेव्ड थे और बाल ज़रा भी नहीं, और ऐसे देखने में बड़ा अजीब लगा क्योंकि बगैर बाल के उनको अपन लोग ने कम देखा, बहुत कम देखा है, तो उनको देखने में बड़ा अजीब लगा। लेकिन चेहरे से भी थोड़ा सा लग रहा था ये बीमार हैं, डल लग रहा था चेहरा। उसके बाद कल परसों और भी वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें वो यू नो मस्टर्ड कलर का, खाकी कलर का एक कपड़ा पहना हुआ है, उसमें उन्होंने टोपी लगाई हुई है, बावजूद इसके वो बहुत दुबले भी लग रहे हैं, हेल्दी नहीं लग रहे हैं। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। लेकिन उनका जो ऑरा है ना, वो ऑरा उनकी बॉडी से लगता है, जब वो चलते हैं उनके ऑरे, उनका ऑरा जो है उनके आसपास ऐसा दिखता है। कोई हो नहीं हो, बॉलीवुड का कोई स्टार अगल बगल हो, बड़ा स्टार हो, लेकिन अगर सलमान खान हो तो सलमान खान पे नज़र जाती थी। लेकिन इस बार जो दो फोटोज़ या कहें वीडियोज़ आई है उसमें वो ऑरा लग नहीं रहा है, वो ऑरा बनाना पड़ेगा वापस से। खैर, अल्लाह उनको सेहत दे और जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। आज हम उन्हीं के गाने प्ले करेंगे, सलमान खान के फिल्म के गाने। सो सलमान खान की जितनी भी हिट फिल्में रही हैं आपको याद होगा, और उनके गाने आज प्ले करवाइए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो अभी भी तैयार हो जाओ, अपन रेडी हो गए ले और आपके मैसेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैसेज है शाम का, सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, हाउ आर यू, नंबर वन सिंगर फजील भाई, फजील भाई आओ जाना ही जाना सॉन्ग, सॉरी नंबर वन आरजे कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में थोड़ी गलती हो जाती है। अजहर हुसैनी सैयद, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, और ऐसे तारीफ करोगे तो फिर मैं खिलाना पड़ जाएगा ना कुछ उसके अलावा ये एक और मैसेज किस भाई का है, हुसैन साहब का है, तो भाई फिर लगा दो, लग गए 440 ठीक है 440 अपन लगा देते हैं, या फिर जग घूमिया, दोनों अच्छे हैं, एक गाना ही अपन लगाएंगे। लेकिन फिर सलाम है यूसुफ भाई की तरफ से, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग, ये है तेरा नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, बगैर तकलीफ वाले गाने के लोगों को सुकून नहीं मिलता है। साजिद भाई कहते हैं लव हुआ ले, अब ये गाना मैं कहाँ से लेकर आऊँ, अब देखो मैं चलो मैं टाइप कर लेता हूँ, अरे है ये गाना, जानम समझा करो, ठीक है तो ये गाना भी अपन डाल देते हैं। मुझे लगा यार लव हुआ से 5-6 गाने की लिस्ट आ जाएगी जिसमें मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि कौन सा प्ले करूँ मैं, 440 वोल्ट किधर है, चलो ये भी ढूंढ लेता हूँ अपन, ये भी आ गया। ये है आज जो गाने की लिस्ट आ रही है ना, एक बार में सर्च करने से मिल जाती है, वरना भाई उंगली मेरी घिस चुकी है, पता है मेरी उंगलियां आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे 3 साल के बच्चे जितनी हो गई है, घिस घिस के इतनी टाइपिंग कर ली कीबोर्ड में। भाई थोड़ा मूवी का नाम भी बताओ अजहर साहब, जाना ही जाना, मैं अब ये जाना जाना अलग अलग नाम से ही होगा, बहुत सारे गाने होंगे ना इसमें एक्चुअली, जाने जाना तेरे नाम गुर दिया ये वाला, देखो एक जाने जाने सा मिला है लेकिन ये पाकिस्तान का गाना है, फिर है तेरे बगैर जाने जाना अनाड़ी का, किशोर कुमार का गाया हुआ है, तो थोड़ा सा मूवी बताएं तो और क्लियर हो जाएगा ना, आसान हो जाता है मेरे लिए। फिर है तेरे नाम हमने किया है, ओके तेरे नाम मूवी का ये गाना, ठीक है तेरे नाम के गाने, जिंदगी तेरे नाम, ठीक है ये वाला गाना भी अपने को मिल गया। FM 107 पे ये 3 गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, सबसे पहले 440 वोल्ट, थोड़ा सा माहौल बन जाए। मीका सिंह की आवाज़ है, देखो परसों हमने कहा भी था कि इनके गाने जो हैं बड़े बड़े लाजवाब होते हैं, तो 440 वोल्ट जो हम सुनने वाले हैं वो होगा हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे, फिर दूसरे नंबर पे है लव हुआ, ये है साजिद की रिक्वेस्ट पे, और फिर तीसरे नंबर पे ये वाला गाना जो है तेरे नाम मूवी का ट्रैक, और ये किया है ये दूसरे वाले हुसैन, ये MD हुसैन है, ओके तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सारा, लग रहा है किसी को डेडिकेट ही कर रहे हैं MD हुसैन साहब, ठीक है मोहब्बत मोहब्बत की बात है भैया।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों कतर की अलग अलग जगहों से खबर आ रही है कि इस गाने पर लोगों ने अपनी छातियां जोर जोर से पीटी हैं। तो खबर ये भी है कि जल्लाद उस पार खड़ा हुआ है स्टूडियो के, और जब भी वो ये लाइन सुनता है कि

0: The Request Show. अपना सारा सनम, आए हाय क्या बात है, दिल जले लोगों का ये गाना. फिलहाल 4:24 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आप लोगों की और भी रिक्वेस्ट आ गई है हमारे FM 107 पे. जो नए लोग हैं उनको बता दें, आज का गाना है सलमान खान के हिट गानों को प्ले करने का. सो आज हिट गाने, आज का जो थीम है, वो है सलमान खान के गानों को प्ले करने का. सो और भी ऐसी रिक्वेस्ट आ गई हैं, और ऐसे तीन जो रिक्वेस्ट अगली आने वाली है वो बड़ा ही ऐसा, मतलब जल्लाद लवर गाने. इससे जल्लाद खुश हो जाएगा, कोड़ा नहीं बरसाएगा. ये गाना सुन के हो सकता है वो वापस आ जाए. और ये जो तीन गाने हैं, मतलब मेरे दिल के बड़े करीब होने वाले हैं. मैं एक तो है यू माई लव लिखा है साजिद ने, यू माई नहीं, वो है यू माई लव, माई लव जाने जा यू माई लव. पाटर मूवी का है ट्रैक, शान और श्वेता पंडित हैं, सूजी भी हैं इसमें, साजिद भाई की रिक्वेस्ट पे. तीसरे नंबर पे ये गाना है, ठीक है. फिर उसके बाद एक और गाने की रिक्वेस्ट है, ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवान. ये भाई कह रहा था ओ जाना ही जाना, मैं समझ नहीं पा रहा ये कौन सा है, क्योंकि ऐसे फिर बहुत सारे आ जाते हैं. तो ये गाना भी अपन लगा चुके हैं, और ये रिक्वेस्ट है किस भाई की रिक्वेस्ट है, लेट मी चेक, अजहर, हाँ अजहर हुसैन की रिक्वेस्ट है. और फिर तीसरे नंबर पे है चुनरे चुनरे, अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में ये गाना है, और इसकी रिक्वेस्ट जो करी है वो जाहिद भाई ने करी. ठीक है, जाहिद भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले हुआ, लेकिन एक फिलहाल कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम फजील भाई.
0: वालेकुम अस्सलाम हबीबी, कौन बात कर रहा है?
1: तुम सुधर जाओ तुमको.
0: क्या हो गया भाई?
1: ये 20,000 आदमी इधर है जिसको मैसेज लिखना नहीं आता है, 20,000 आदमी है. कल उठाया करो ना भाई, 20,000 आदमी जिसको मैसेज लिखना नहीं आता.
0: तो 19,900
1: नहीं आता, क्या करे?
0: 19,999 ने कॉल नहीं करी, तो एक ने कॉल करी तो उठा तो लिया भाई.
1: तो भाई उठा लिया, एक घंटे के बाद उठा, एक घंटा तुम्हारा खलास होने वाला
0: है. नहीं मेरा भाई, अभी से 20 मिनट हुआ.
1: अरे माफ कर दो,
0: गलती हो गई
1: भाई. मजाक का बात नहीं करता मैं, ये हम यकीन मानो. इधर देखो ये ऊंट वाला कितना आदमी है शानिया में पूरा, मैं ये तुम्हारा FM सुनता है, वो लोग को मैसेज लिखना नहीं आता है. लेकिन तुम्हारा काम मैं कॉल उठाऊंगा.
0: तो उठाया तो है, कह दो रहा हूँ मैं कॉल उठाया मेरा भाई, तभी तो कॉल उठाया, वैसे थोड़ी होता शो.
1: मजाक एक तरफ, बहुत तुम्हारा से हम लोग सुनता है, पूरा 20,000 आदमी के ऊंट वाला सुनता है, गाना सब सुनता है. कल तुम जो गाना सुना ना, वो ताल फिल्म का, वो क्या बोलता चका अनिल कपूर का, क्या बात है.
0: अरे मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपके सामने होता सही में कोड़े आप छीन के मार देते मुझे.

0: कर लेगा, हम लोग भी फरमाइश कर लेगा, हम लोग का हक बनता है भाई।
1: अरे नहीं बिल्कुल मेरा भाई, मैं इसीलिए फोन उठाया, क्या इस शो के जब बात कर रहे हो, जब किसी की रिक्वेस्ट ले रहे हो,
0: वो तीन चार आदमी मैसेज करते थे डेली, वही आदमी करता है भैया ये गाना सुना तो वो लोग का फरमाइश पूरा करके 5 बजे भाग जाता है, खलास है ड्यूटी खलास, बर्तन सफाई करने के लिए जाना पड़ता है।
1: बर्तन सफाई ये तो हमारा ही काम है। अरे मेरा भाई ऐसे ही तो होता है ना कि जब जब लोगों की रिक्वेस्ट आती है वो हम आप ऑडियो भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो यही तो फर्क है मेरा भाई, यही तो फर्क। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनिए मेरी बात। अरे नहीं मेरा भाई, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना वैसे ही आप ऑडियो में भी आप हमें कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। दूसरा ये जब हम बात कर रहे हैं लोगों के रिक्वेस्ट ले रहे हैं और जब हम यू नो बाकी लोगों को रिक्वेस्ट लेने के बाद उनके फिर यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं कि हमें गाना कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा, जब ये सारी डिटेल कर रहे होते हैं उस दौरान हम कॉल नहीं उठा सकते, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल है। उधर सामने कहा ना कोड़े वाला खड़ा है,
0: शानिया वाला पूरा 20 आदमी तुमको प्यार करता है, कबीर भाई को तुमको,
1: जिस तरह
0: 6 बजे वो भैन आता है उसको, सब हम लोग सुनता है। ये देखो 1 घंटा गाड़ी चलेगा, हम लोग सुनेगा सारा दिन तुमका
1: मेरा भाई,
0: तो किधर सुनता ऑफिस वाला।
1: मैं तो आपने आपने अपनी बातों से तो कोड़े मार ही दिए मेरा भाई।
0: वो लोग ऑफिस वाला किधर, वो लोग चाय पीने का टाइम नहीं मिलता तुमको, मैसेज करेगा
1: नहीं आप, तो आपने कॉल किया ना तो वैसे ही, अरे जब आप कॉल करेंगे तो कॉल उठा ली जाती, कभी कभार तो मिस हो ही जाता मेरा भाई, मैं समझता हूँ।
0: हम लोग गया था, हम कल ही आया, अभी कबीर भाई से मिलेगा कल, फिर देखो आता देखो।
1: हाँ अच्छा ये बताइए कौन सा गाना सुनेंगे, छोड़िए ये सब बातें अब छोड़िए, कौन सा गाना सुनेंगे?
0: वो सलमान खान का, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, तुम मेरे को बोला ना मायूस हो, हर चीज का वक्त होता है मेरा भाई, उसका वक्त खत्म हुआ, इंसाफ देने ऐसा होता है बॉडी मोडी लूज हो जाता है।
1: गाने का नाम, गाने का नाम बताइए।
0: वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है इसलिए उसका बॉडी अभी थोड़ा लूज होता है।
1: गाने का नाम तो बताए मेरा भाई,
0: वो बोलता है ना वो क्या बोलते है
1: जग घूमे यार। बताओ इतना सा बात कहनी थी भाई को, जग घूमिया प्ले करवाना था, इतना डांट दिया मुझे आज। इतना मेरी बेगम नहीं डांट दी जितना ये डांट के चले गए आज।
0: जा रहा
1: हूँ
0: कि भाई सलाम
1: अलैकुम। अरे नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे दिल में बहुत ज्यादा निशान पड़ गए इनके कोड़ों से। इतना सूत दिया है मुझे आज, ऐसी क्या गलती की, अब तो मुझे पक्का सैड सॉन्ग सुनना पड़ेगा। अब क्या मैं ये तेरे नाम वाला गाना प्ले कर सकता हूँ? कोई है सैड सॉन्ग जो इतना कूट जाने के बाद प्ले किया जा सकता है? तड़प तड़प सलमान खान का ही तो गाना ये, तड़प तड़प किस दिल से आ निकलती। ठीक है बाकी अब मैसेज पे आ जाते हैं जल्दी से, वरना फिर बाकी लोग अभी मैसेज वाले कहेंगे अरे मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, अरे मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। किसका, मैं कहां पर था, मैं सब भूल गया हूं भाई। ये कॉल के बाद क्या बोलना था मुझे? ओ जाने जाना, ये वाला तो अजहर का है पता चल गया है, साजिद का है यू आर माई, नहीं हाँ यू आर माई लव, और चुनरे चुनरे जाहिद भाई का। हाँ चलो भैया ये 3 बता दिया था, अब बाकी लोगों के मैसेज ले देते हैं। उसको बताओ कबीर का शो 5 बजे है। हाँ भाई उसको पता है 5 बजे का है, वो यही गुस्सा रहा है कि मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। अरे मेरा भाई जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तब तो अपन इधर लगे रहे थे तो कॉल नहीं उस वक्त उठाया, अभी फ्री हुए थे कॉल उठाया तो भाई ने लेकिन कायदे से सुताई कर दी है। ओके अस्सलाम वालेकुम फिर भाई, ये सॉन्ग लगा दो तेरा पल्लू सर के जाए, तेरा पल्लू सर का जाए, आई है ये भी अच्छा गाना, लेकिन हमारे पास शायद ऐसा है कि टाइम इतना बचेगा नहीं। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, वैसे तो ये वाला अभी पहले सर्च से नहीं मिला है। फिर उसके बाद ये है मैसेज ऑडियो में है, मैं ऑडियो कुछ देर में पढ़ूंगा। सलाम गोविंदा वाला, शेख साजिद मकसूद है ये। खान भाई गुस्सा हो गए। सैयद भाई सही में ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो ये ना ऊँट चलाने वाली, मुझे सही में इनके सामने होता मुझे ऊँट बना देते ये। एक सॉन्ग आपके प्यार में संवरने लगे फिल्म राज, मेरा नाम है शाहिद, आए हाय क्या गाना था यार। लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान गुड इवनिंग, और हंसते हुए गुड इवनिंग कराए, ये कोई चढ़ाने का तरीका है ये इकबाल भाई? ओ जाने जाना, ठीक है ये वाला गाना आपके लिए प्ली प्ले कर, दो लोग ने एक ही गाना कहा है तो क्यों ना प्ले हो, कमाल खान का गाना गाया हुआ ये गाना है। प्यार किया तो डरना क्या, मकसूद भाई ने कहा है ये गाना प्ले करने को, आगे लिखा है बड़े गुस्से में भाई, अरे आग उगल रहे थे भाई जान आज। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? अभी तक तो ठीक था कॉल से पहले, अभी थोड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ मैं। दिस इज असद, प्लीज प्ले दिल दिया गल्ला। ठीक है दिल दिया गल्ला, दो लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं है, वो तो जग घूमे है ना।

दिल दिया गल, मालूम है ये वाला गाना इतनी बार रिक्वेस्ट हो चुका है दिल दिया गलना वाला, कि अब मुझे ना ये गाने ये सुनते ही मुझे एसिडिटी होने लग गई भाई मेरे। मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लग गई। अगर वक्त बचता है तो मैं बिल्कुल प्ले करूंगा। मेरा भाई सलाम भाई, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं रियाज मंगाश, सॉन्ग लाल दुपट्टा प्लीज। मैं देखता हूँ मेरा भाई, अगर ये प्ले हो जाता है वक्त अगर हमारे पास बचता है तो। अब्दुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? पश्तो सॉन्ग, सलमान खान की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें पश्तो सॉन्ग गाया गया हो, क्योंकि आज की थीम है सलमान खान के गाने। फिलहाल ये तीन गाने एंजॉय करें। हाय, वो कॉल वाले भाई का जो जख्म है वो इसी गाने से भरेगा।

अभिजीत और अनुराधा की आवाज में गाना FM 107 पे। और मुझे याद आता है कि एक कोई रियलिटी शो था, उसमें सलमान थे और कहीं बाहर से कोई लड़की जो है ये गाना गा रही थी और उसने चुनरे चुनरे को ऐसे ही प्रनाउंस किया था, चुनरे चुनरे, ऐसा मत कर सलमान, ऐसा मत कर। बड़ी प्यारी वो वीडियो वायरल हुई थी। फिलहाल 4:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और जग घूमिया वो गाना जो दादा शाहनिया में थे। मैं एक मैसेज भी आया भाई उनके सामने, चले मत जाना मुमताज़ भाई, मैं नहीं जा रहा उनके सामने। मैं बाहर निकलने से भी डरूंगा, कहीं ऐसा नहीं है कि एक लाफे में एक कोड़े में मेरा काम हो जाए। फिलहाल ये गाना मैं पक्का प्ले करूंगा भाई, आप चिंता ना करें। लाल दुपट्टा मिल गया है, वो प्ले हो ना हो, लेकिन जग घूमिया प्ले होगा, मैं कसम खा रहा हूँ। क्योंकि अभी फिलहाल हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये ब्रेक है पहचान कौन गेम के लिए। जो भी हमें सुन रहे हैं FM 107 पे, वो ये गाना जो है यानी कि ये पहचान कौन गेम है, आसानी से खेल सकते हैं। और इसमें होता ये है, जो नए लोग हैं उनको बता दें, सिंपल सा काम ये है कि अवन यहाँ पर बीच से लिरिक्स काट कर प्ले करते हैं किसी भी गाने की, और आपको गाने का नाम बताना होता है या फिर हुक जो है गाने का वो बताना होता है। बड़ा सिंपल गेम है। और आपको व्हाट्सअप करना है ये गाना पहचानने के बाद, नंबर है 666-22107, क्योंकि आज सलमान खान की थीम थी तो आपको ये ही थीम पर रहते हुए मैं गाना सुना रहा हूं। जितने भी सलमान के गाने हैं वो यहां पर सुनाएंगे और आपको गेस करना है, देखते हैं कितने बड़े फैन है। वेल, मुझे 100% आज श्योरिटी है कि आप सारे गाने पहचान लेंगे। सबसे पहला गाना जो आ रहा है वो है ये।

क्या बात है, के की ये आवाज, गाने का नाम आपको बताना है। बताइए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22107। जब तक आप हमें व्हाट्सअप पे जवाब दे रहे हैं, आपके व्हाट्सअप के मैसेज मैं ले लेता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा ना, वो रियलिटी शो में लड़की आई थी, देखो मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन मुमताज़ भाई को देखो, उस लड़की का नाम असमा रफीक था। देख रहे कहाँ तक अगला आदमी कितने जमाने पहले की बात याद रखे हुए। ओफो, खैर गाने ये जो मैंने अभी प्ले किए हैं, आप धीरे धीरे लोग पहचानना शुरू करेंगे। सबसे पहले हुसैन भाई ने पहचान लिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और एक और ये जवाब है जीशान शरीफ का, बिल्कुल सही है। दानिश आज़ाद ने सही जवाब दिया, क्या बात है, बहुत सही खेल का मुजाहरा करते हुए। यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर ये कौन है, इनका नाम है अमर, अमर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है। और ये है मैसेज मुमताज़ का, फजील भाई वो कैमल वाले चाचा के सामने गलती से भी मत जाना वरना आपको सुधार ही देंगे। मैं कितना बिगड़ा हुआ यार, जो सुधार, सही में मैं डर गया हूँ। रमेश भाई ने कहा है मूवीज़ एनी सॉन्ग, अच्छा ठीक है, अब तो वक्त निकल गया मेरा भाई। फरद भाई कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, वजू भाई खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है फरद साहब, आई होप आप ठीक होंगे। मैं अभी तक तो ठीक हूँ, अब कल जब मैं मुलाकात करूँगा तब पता चलेगा कि शाहनिया वाले अंकल मिले कि नहीं मिले। कल अगर मैं 4 बजे यहाँ आकर शो कर रहा हूँ तो समझ लो फिर मेरे को नहीं मिले, और अगर नहीं आए तो फिर दुआ ही करना मेरा भाई, ठीक है। अब आज मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़नी पड़ेगी, दुआ तो करनी पड़ेगी ना मुझे सुबह उठ के, कि कल 4 बजे तक मौला किसी तरह ठीक रख ले, सेव करके रख ले। भाई अगर ओनली सलमान सॉन्ग है तो फिर इश्क की चाशनी, नहीं तो आवारा दिल मेरा दबंग 3, आवारा दिल मेरा। मैं देखो अब तो वक्त निकल चुका है सार शेख साहब, लेकिन कल थोड़ा जल्दी आइए तो आपके गाने जो है वो बिल्कुल प्ले करेंगे। एक और भाई की रिक्वेस्ट थी शाहब आलम, मेरा भाई वक्त निकल गया, आई एम रियली सॉरी, माजरत के साथ। वो खान साहब जैसे बैड लक, बड़ी क्लास लें आपकी। अच्छा वो ये शेख साहब हैं, ये दूसरे हैं, शेख साजिद मकसूद साहब हैं कह रहे थे, वो सही कह रहे हैं यार। जो ऑफिस में बैठे हैं वो नहीं सुन रहा है, लेकिन जो बाहर है वो सुन रहा है, ऑब्वियसली बात बिल्कुल सही है। ऑफिस वाले भी कभी कभार ऑन करके बैठे रहते हैं, जैसे जुलकर रहे हैं, यूसुफ भाई हैं, कई ऐसे और लोग हैं जो ऑफिस में रहते हैं तो सुनते हैं। बाकी क्लास तो ले ली उन्होंने आज मेरी। मैं चलो मान लेता हूँ। बाकी एक और ये मैसेज है, बिल्कुल सही जवाब है, अरहम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जो मैंने म्यूजिक सबसे पहला प्ले किया था पहचान कौन में, वो था ये मुश्किल सही। केके की आवाज में गाना है ये, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, लाजवाब। आप अंडर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते, जब भी के कोई भी गाना गाएं तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा, वो आप सुने और लुत्फ उठाएं उनके गायकी का, उनके आर्टिस्ट होने का, उनके सिंगर होने का। फिलहाल दूसरे गाने की तरफ आते हैं पहचान कौन गेम में, और 100% ये भी आप पहचान जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये गाना आपने नहीं पहचाना तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको गाने का शौक है नहीं। बस आप ऐसे ही हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, गाड़ी चला रहे हैं तो अपन सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप ये गाना नहीं पहचानते तो कुछ तो मसला है आपके साथ। वैसे ये गाना नेहा भसीन ने और विशाल ददलानी ने गाया है, बहुत ही फेमस ये गाना। सलमान खान या कोई भी शख्स जब एंट्री लेता है तो ये गाना वो चाहता है कि मेरे लिए प्ले हो। यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही पहचाना है, हुसैन ने भी सही पहचाना है, फिर उसके बाद दानिश ने भी सही पहचाना, क्या बात है। चलो बाकी और कोई है, और कोई पहचानने वाला है, श्याम भाई ये छोड़ो, मुझे ये बताओ के वाला पहला गाना क्यों नहीं पहचाना आपने, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, क्या आप कोई काम को चले गए थे? वेल ये भी बिल्कुल सही पहचाना है आपने श्याम साहब, कुछ नहीं, कम से कम पहला नहीं तो दूसरा ही सही। ये क्या लिखा है भाई, दानिश भाई कुछ ज़्यादा ही लिख गए क्या, स्वागत नहीं करेंगे हमारा, अच्छा ये थोड़ा पढ़ना पड़ता है फिर समझ में आता है लिखने की कोशिश क्या है, कभी अधूरे लिख जाते हैं ना लोग। वेल इस गाने का नाम

विशाल ददलानी और नेहा बसिन की आवाज में ये गाना सुना आपने, और बहुत ही उम्दा ये गाना। मैं कितने भी आर्टिस्ट अगर कहीं एंट्री ले रहे हैं ना भाई, तो ये गाना लोग प्ले करवा रहे थे जब ये गाना हिट हुआ था। खैर, सलमान खान के तीसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे श्योर है कि आप इस बीट को पहचान जाएंगे। और ये जो तीसरा गाना है पहचान कौन का, वो है ये।

हाँ जी, पहचाना गाने का नाम क्या है? बताओ. ये जो बीट है, मतलब बहुत ही ऑब्वियसली पता चल गया होगा ये मीका की आवाज़ है और अमृता है वैसे इस गाने में. फीमेल तो आपको वॉइस सुनाई नहीं दी, लेकिन काफ़ी मतलब देसी सीन की बीट है और बहुत कोई अलग अनोखा इसमें काम नहीं किया गया था. इसको बहुत ही रॉ रखा गया था. पूरा इंडियन कल्चर का जो म्यूज़िक है वो सारे थे इसमें, ठीक है? तो इसलिए देसी बीट इसमें रखी गई थी. तो गाने का नाम आपको बताना है, एक बार फिर से सुनिए.

वेल ये आप ऐसे भी बता सकते हैं कि मूवी का नाम क्या है, मूवी का नाम पहचान जाओ तो भी थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट्स सी कितने लोगों ने जवाब दिया। नायला ने वैसे पिछला जो स्वैग से स्वागत था गाना वो सही जवाब दिया है। दानिश शाहजाद ने इसका जो जवाब है बिल्कुल सही दे दिया है, तीसरे वाले का। दबंग का सॉन्ग है, नहीं ये दबंग का सॉन्ग नहीं है मेरे भाई। जीशान थोड़ा सा और आपको रिसर्च या अभी पता चल जाएगा किसका है। फिर उसके बाद ये जो है सही जवाब है हिशाम का, सॉरी याद नहीं आ रहा, यूसुफ भाई को याद नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं। नहीं यार एक बार और, वैसे हुसैन भाई ये तो आपने सही बताया कि बॉडीगार्ड मूवी का ट्रैक है। फिर बॉडीगार्ड का बता दिया एक और शख्स ने, दानिश आजाद ने, नायला ने बताया जुम्मे की रात, नहीं ये जुम्मे की रात नहीं है।

मेगा और अमृता का गाया हुआ ये गाना देसी बीट, कई बार बात करते हुए मैंने हिंट भी दिया कि देसी बीट इसमें लाया गया था, ये मैंने हिंट दे रहा था, कोई देसी बीट नहीं मतलब ठीक है, बट गाना तो पहचान गए होंगे। नायला ने एक बहुत यू नो देर कर दी बॉडीगार्ड का ये गाना बताते बताते, कहा है देसी बीट का ये गाना, बिल्कुल सही जवाब बट लेट, नहीं माना जाएगा ये काउंट नहीं होता फिर फिलहाल 4:55 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और एक वादा उन भाई का जो मैंने किया था, नाम तो बताया नहीं, डांटने में रह गए वो, कोई बात नहीं। राहत फतेह खान साहब का गाना सुनना चाहते थे जग घूमया, तो हर जो यू नो फैशन का कोई शो होता है ना उसमें एक स्टॉपर होता है, और वो स्टॉपर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इस गाने को रोका भी, और रोका क्या, मजबूरी भी थी और रुक भी गया। राहत फतेह खान का ये गाना है जिसका नाम है जग घूमया, ये मैं प्ले कर रहा हूँ, सुल्तान मूवी का ट्रैक है, और ये रिक्वेस्ट है उन भाई की जो शानिया में है और जिन लोगों को पता है, जिन्होंने डाटा है मुझे आज ये इसलिए कि अरे कॉल तो उठाया करो, लेकिन माजरत मेरा भाई कॉल नहीं उठा पाया, इसका सिर्फ एक कारण, एक रीज़न था, वो ये कि बाकी लोगों की रिक्वेस्ट जब पढ़ रहे थे तब आपकी कॉल आई, और फिर हम रिक्वेस्ट रिसर्च करने में लग गए थे, यहाँ पर डेटाबेस में वो गाने ढूंढने में लग जाता है इंसान, तो नहीं हो पाता है, सारे कॉल नहीं उठा सकते, ये मजबूरी है हमारी, आरजेस की मजबूरी भी है। फिलहाल इसी गाने के साथ छोड़े जा रहा हूँ, ये है शो स्टॉपर जग घूमया राहत फतेह अली खान की आवाज में, सुनते रहे FM 107 और मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे अगर मैं शानिया वाले भाई को नहीं मिला तो, वरना फिर अल्लाह मालिक है कोई शो को संभाल ही लेगा, उसमें क्या है फजील के साथ थे अभी तक आप दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: तो बच्चों क्या है, पढ़ाई जो है हमें यहीं पे रोकनी पड़ेगी। तो ये घंटी किसने बजाई, घंटी किसने बजाई? वापिस आओ बंटी, वापिस बैक इन द क्लास। छुट्टी से पहले

क्या समझ के आए हो ये बताओ पहले तो हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया चल है भाई। मैसेज कर दे रहा हमारे धुरे व्हाट्सएप है 666-22-107। बहुत ही चंगा नंबर और आपके मैसेजेस आएंगे तभी वो गाड़ी आगे बढ़ेगी भाई। मैसेज बड़े जरूरी हैं, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं बताऊं, मैं अच्छा एक चीज़ बताता हूं, एक चीज़ शुरू करने से पहले यार, आज की कहानी के लिए मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूं। आपको पता है मैं भाई डबल ट्रिपल एक्साइटेड हूँ। आज की कहानी ऐसी है, ऐसी कहानी मैंने शायद नहीं, मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं करूँगा, सुनाई होगी अच्छी तो सुना देता हूँ मैं पर आज की जो कहानी है ओए होए होए होए होए होए होए होए ये ऐसी ना सुनी होगी आपने भाई साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप गाड़ी साइड में ले लोगे, आप बोलोगे ये क्या सुना दिया। कईयों के आज जो है एंट्री एग्जिट मिस होने वाले हैं, बता रहा हूँ मैं। अगर आप ड्राइविंग करते हुए सुनोगे तो मौज आ जाएगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। अब इससे ज़्यादा मैं इस कहानी को बेच नहीं सकता, साफ सीधी बात 666-22-107 नंबर है, आप आ जाएंगे तो फिर जरा बाहर आ जाएगी। मैसेज जरा पढ़ लूँ, मैं भी हाजिर हूँ भाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी हाजिर हूँ मेरी जान, क्या हाल है आपके। ये हमें मैसेज क्या है, यूसुफ भाई ने, यूसुफ भाई मैं बढ़िया। और इसके बाद इकबाल भाई, खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, हमारे यासर साहब वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोगों की तो डी पी देख के मुझे नाम पता होते हैं। बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया भाई। और मैसेज क्या है, हिशाम भाई ने, वालेकुम अस्सलाम भाई को सलाम। सलमान भाई क्या हाल है भाई के। अशफाक भाई वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, और मुझे भी सेंड कर देना भाई। भाई देखो तो लाइव सुनेगा उसके भले होंगे, बाकी को तो मैं सेंड कर ही दूंगा। मज़ा आज की कहानी को लाइव सुनने में भाई, ना ना ना ना ना ना लाइव सुनने में भाई। जो आज लाइव सुनेंगे उनको मौज आ जाएगी, बता रहा हूँ मैं। और हुसैन भाई क्या हाल है भाई के, बढ़िया मेरा भाई, सब बढ़िया। आज हुआ ये कि आज क्या कहते हैं, दोपहर में जो है एक शख्स मुझे मिले और उन्होंने पता नहीं मुझे कहाँ से पहचान लिया, जबकि मैं तो पता नहीं ज़माने से सोशल मीडिया पर नहीं गया हूँ। तो वो आए और मुझसे बोले कि एक बात कहनी है आपसे, मैंने कही है। तो बोले कि आपको, और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कि कैसे हो ना, सीधा साल उन्होंने क्या पूछा, बोले आपसे लोग हेट तो करते होंगे, कुछ लोग तो होंगे। मैं कहा भाई ये तो पूछ लेते कैसे हो क्या चल रहा है। नहीं कह रहा मैं आपको तो बहुत पसंद करता हूँ लेकिन आपको हेट भी करते होंगे। मैं कहा हाँ भाई करते हैं, क्यों नहीं करते। इतना सवाल पूछ के वो शर्मा के चली गई, नाम भी नहीं बताया, ब्लू कुर्ते में थे वो। अब मैं उनके ऐलान तो कर नहीं सकता। एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है, जिन साहब का हो आकर बता देंगे। कहाँ भाई आपका नाम क्या है, कहाँ पर पता नहीं। एक मैसेज आया आगे जी, मुबीन भाई बहुत सारा प्यार भाई को सलाम, वालेकुम सलाम शाहनवाज भाई। और एक फ़ोटो भेजा भाई ने, भाई यो का फोटो भाई, अच्छा ओहो मुझे इन्होंने जो है वो एयर कैरियर पे जाके बिठा दिया और उन सबके पासपोर्ट चेक कर रहा हूँ ये क्या क्या ऊपर से मुझे पग अलग बना दिए भाई ने भाई मोहम्मद भाई वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मेरी जान, क्या हाल है भाई के। और मोहम्मद भाई के बाद जो है एक और मैसेज है, मेरा डीबी कैसा लग रहा है भाई, डीबी चेंज करोगे तब तो बताऊंगा मैं। खादिम भाई वहीं का वहीं है डीबी, तो कुछ चेंज किया क्या आपने, वही है डीबी तो जो पहले लगी हुई थी। मुझे लग रहा है भाभी ने कह रखा है, खादिम तुम ऐसी क्यूट लग दो चेंज मत किया करो, खादिम चेंज कर लो डीबी भाई, मैंने भी चेंज कर लिया, इट्स टाइम टू चेंज। कौन देख रहा है हमारी फोटो को यार, वैसे ही खादिम भाई हम तो ऐसे ही हैं यार, कौन देख रहा है हमारी फोटो को, चेंज करो यार। एक मैसेज, कबीर भाई सलाम अलैकुम, मैं तो अब भी साइलेंट लिसनर होके रह गया हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता आपके शो के टाइमिंग का, कभी सुबह तो कभी शाम। तनु वर्ड्स मनु का डायलॉग याद आ गया कि अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं भी निकल रहा, कहीं से भी निकल रहा अब्दुल इब्राहिम भाई सबसे पहले तो भाई को बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव मेरी जान, जितना आपने लॉट्स ऑफ लव लिखा है उससे 100x ज़्यादा आपको। अदरक ही हो गया हूँ भाई मैं क्या करें, करना पड़ता है भाई, रोजी और रोटी ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनके लिए करना पड़ता है। एम के साहब वालेकुम अस्सलाम, एक भाई ने मुझे हाई लिखा है समीर भाई। और फलक भाई ने भेजा है मैसेज, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, प्रेजेंट लगा दिया भाई ने, रोल नंबर 90 कह रहे हैं अपना ये। और एक मैसेज आया, सलाम कबीर भाई, भाई का नाम ख्याल है जिन्होंने अभी सलाम किया है। मेरे ख्याल से ख्याल साहब आपने बड़ा अच्छा ख्याल मन में आया कि आप मुझे सुनने के लिए आए। हमजा भाई वालेकुम अस्सलाम। तो बिफोर आई टेक दिस स्मॉल ब्रेक, क्योंकि अभी शाम के अदकार चलेंगे 11 मिनट 2 सेकंड के, आज की कहानी के बारे में मैं जैसे शुरुआत में गाना, मैं आपको सुनाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शायद इतना एक्साइटमेंट आप में भी नहीं होगा किसी भी कहानी को सुनने के लिए जितना मैं आ जाऊँ। ये कहानी भाई बस अभी बक दूंगा मैं कहानी, डर लग रहा है मुझे।

0: ऐसी कहानी है, पेट में नहीं रुक रही भाई। तो बस कुछ देर में आएगी, 5:30 बजे के आसपास, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। बाकी देखो आपके मैसेजेस बड़े ज़रूरी हैं इफ़ यू आर देर, और अगर आप ये हमारे इब्राहिम भाई ने जिन्होंने मैसेज किया है, क्या नाम है भाई का, पूरा नाम मैं पढ़ देता हूँ, भाई का नाम है अब्दुल्ला इब्राहिम, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वो अब्दुल्ला भाई की तरह अगर कोई है जो साइलेंट लिसनर है, सुनो मेरी बात, मैसेज कर दिया करो कभी कभी, एक दो बार, मतलब महीने में, चार महीने में एक बार कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। हैं बाकी ठीक है, कोई टेंशन नहीं, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, कोई मसला नहीं है। 666-22107 नंबर है, 666-22107। मिलते हैं 11:02 के बाद, ठीक है।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: तो मैं ये एफएम से।
1: अच्छा तो यहाँ मतलब कॉल करेंगे
0: आप लोग, कॉल करें, मैसेज करें, बात करो, करते करते करते एक दिन मैंने मतलब बात कर ली। हाँ। उस दिन से मेरा जो है ना
1: खुल गया एकदम,
0: मतलब पूरा ये खत्म हो गया।
1: नहीं पता क्या क्या सिस्टम क्या है मेरे शाये से, मेरा मतलब ये है क्या होता है जब भीड़ भड़का इकट्ठा हो जाता है ना, मेहमान नवाजी हो जाती है उसमें, तो खाना बनाना तक तो ठीक है, मेरे से बात नहीं हो पाती, समझ रहे हो? वो जब भीड़ में लोग बैठ जाते हैं ना फिर बात करना शुरू करते हैं, वो नहीं हो पाती।
0: हम लोग भाई, हम लोग बात करने वालों में से नहीं है, हम लोग बस अटैक की चीजें हैं कहाँ पे,
1: बस हाँ बस वही है भाई, वहाँ तक ठीक है। हाँ वो वाला फोकस है भाई अपना, उससे ज्यादा नहीं हो पाता भाई। ये वाला
0: सही बात है भाई, दावत में यार कहीं भी जाएगा तो आदमी बात क्यों करे भाई, गए हैं और बस प्लेट लेके बैठेंगे और क्या।
1: करेक्ट, काश ऐसा ही हर कोई समझ पाता मेरे भाई, काश ऐसा ही हर कोई समझ पाता, पर ठीक है कोई गल नहीं। अब बस कहानी सुनने के लिए रेडी हो जाओ भाई, शुरू कर रहा हूँ।
0: अरे भाई मैं तो रेडी हूँ, मैं चारों हाथ पैर से रेडी हूँ भाई।
1: ठीक है मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
0: चलो भाई।
1: ओके मेरे भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक मैसेज है, मुबीन भाई कह रहे हैं कि टिप्स भी दें शाये होने की, कैसे होते हैं शाये भाई। मैं फिर से देखो, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या है ना मुबीन भाई, सिंपल फंडा ये है कि जब मैंने देखा, जब चार पांच लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो आजकल लोग अपनी एज से ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और फिर कहाँ पर आके अटकते हैं, और सुनाइए और सुनाइए, तो वो मुझसे नहीं हो पाता भाई, वहाँ मेरी मैंने सिट्टी बिट्टी खुल जाती है। मैंने कहा ना भाई, मेरी एज के हिसाब से बात करो ना भाई, मुझे नहीं करनी बात प्रॉपर्टी की, ज़मीनों की, और इन्होंने फलां कर दिया, ढिमकाना कर दिया, भाई मेरे को नहीं जानना, मुझे जानना ही नहीं भाई, मुँह पे ना है टाइम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ये मोहम्मद अरफतुल इस्लाम साहब ने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई ये है शाइनेस, और तो कुछ नहीं भाई। मोइन भाई, आई गेस यू लग रही, क्योंकि मैं ऐसे

0: सोशल मीडिया पे आपकी फोटो देख ले भाई।
1: अच्छा पता लग जाता क्या उससे?
0: बिल्कुल भाई, आपके ऊपर कोई वो नकली इंप्रेशन होता ही नहीं फेस के ऊपर भाई।
1: भाई मेरे को स्माइल करनी नहीं आती, वो जो कैमरा लगा के लोग कहते हैं ना, मैं थोड़ा सबसे मुश्किल काम है भाई, सबसे मुश्किल काम है ये नहीं हो पाता भाई जबरदस्ती की।
0: नहीं कबीर भाई, मैंने आपकी जितनी भी फोटोज देखी है ना, चलो वीडियो तो अनदर मैटर है, वो बिल्कुल नेचुरल होती है भाई, उसमें कोई भी फेक हंसी नहीं है।
1: थैंक यू मेरा भाई, ये सुनने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है सोशल मीडिया पे, आज जाके मुझे ये सुनने को मिला। थैंक यू भाई।
0: जी जी जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और दूसरी कबीर हाँ। भाई दूसरी बात यार, ये जो महफिल की बात की है ना आपने,
1: हाँ।
0: यार आजकल पता नहीं ये क्या अजीब सा ट्रेंड चला है, आप चार दोस्तों के बीच में बैठोगे ना, वो लोग इतने बड़े बड़े ब्रोकर बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं, यार इसमें इन्वेस्ट करो उसमें करो,
1: ये परेशानी। वैसे गाबा भाई मेरा सवाल भी है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपके जितने दोस्त हैं आपकी उम्र के हिसाब से हैं, मतलब आपके एज ग्रुप में, या फिर आपसे एज में ज्यादा बड़े हैं, कैसे है सीन, कैसा आपका फ्रेंड सर्कल का?
0: थोड़े से बड़े हैं भाई,
1: थोड़े से बड़े हैं,
0: छोटे नहीं है ज्यादा। हाँ जी हाँ।
1: थोड़े से बड़े हैं, इनके कितने सालों का फर्क होगा कुल मिला के?
0: ज्यादा नहीं होगा, 5-7 साल का।
1: हाँ तो इतना तो ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्या?
0: बड़ी बड़ी बातें कुछ करते हैं, उनमें से जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कबीर भाई, उनसे अपनी नहीं जमती है भाई।
1: वही तो सीन है भाई, सारा सीन तो यहाँ आके रुक जाता है भाई, यही है।
0: बड़ी बातें भी कबीर भाई दो तरह की होती है ना यार, एक देखो आपने बैठ के बस बड़ी बड़ी बातें छोड़नी है, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, हाँ। जैसे आप बता रहे थे,
1: हाँ, हाँ।
0: वो चीजें नहीं यार अच्छी लगती। ठीक है आपके पास है, सही है,
1: हाँ।
0: वो लोग उंगलियों पे इतनी कंपनियां गिनवा देते हैं ना कबीर भाई।
1: अरे भाई मैं क्या बताऊं, मैं एक दो तरीके के प्राणियों से बड़ा परेशान हूँ, एक तो ये हिडन जेम बताने वाले कि हिडन जेम ठीक है, और दूसरी ये वाली जनता भाई, मैं बताऊं, इसलिए मैंने मिलने ही छोड़ दिया, मैंने कहा ना भाई मिलना ही नहीं, मुंह पे ना है टाइम, साफ सीधी बात। बट गाबा जी यही सीन है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, आपके छोटे हैं ग्रुप में, मतलब आपसे उम्र में छोटे?
0: जी हैं कबीर भाई।
1: अच्छा मतलब अजीज दोस्तों में कैसा एज ग्रुप है आपका, जो आपके बहुत करीबी हैं उनमें ज्यादा बड़े हैं कम हैं, कैसा है?
0: ज्यादा बड़े वाले हैं।
1: ज्यादा बड़े वाले हैं, अच्छा ठीक है, फिर तो आप ज्यादा ही ये सीन आपके साथ होता होगा ना, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग होंगे आपके।
0: एक्चुअली पता क्या है कबीर भाई, देखो बड़ी बातें भी दो तरह की होती है, आप दिल्ली के हो आप समझदार हो, जो शाम के बाद होती है ना, जब यार दोस्त इकट्ठे बैठते हैं किसी महफिल में, बैठते हैं खाते हैं पीते हैं, वो चीज अलग है, उसमें जायज है, उसमें जस्टिफाई भी है बड़ी बड़ी बातें छोड़नी। ये जो बिना वजह से यार बैठ के तुम इसमें इन्वेस्ट कर लो उसमें कर लो भाई, इतनी कंपनियां आ गई है ना कबीर भाई इन लोगों की वजह से, यार बंदे को ट्रस्ट ही नहीं है अभी बंदा किसमें इन्वेस्ट करे किसमें ना इन्वेस्ट करे।
1: हाँ वो तो है, और ये कंपनियों की बातें थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब हर कोई जो है मास्टर ब्रोकर है,
0: जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने हिडन जेम को हिडन कर दिया है ना, वैसे ही ये लोग भाई आपके पैसे को कहाँ पे हिडन करवा देंगे मेरे को नहीं पता।
1: नहीं ये बात तो सही है गाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान कॉल करने के लिए, और अब आज की कहानी सुन के मजा आएगा आपको गाबा जी, अगर टाइम निकाल के सुन लिया आज आपने।
0: भाई मैं सुनता हूँ कभी कभी कभी भाई, कोई चक्कर ही नहीं है बड़े भाई। अच्छा कबीर भाई एक बात पूछनी थी यार आपसे, एक बार आप सर्वर भाई और एक और थे आपके साथ दोस्त,
1: हाँ,
0: आप तीनों गए थे, मिर्जा जी ने ही बताई थी ये बात, भी
1: हाँ,
0: बीच बनाने के लिए गए थे।
1: हाँ, हम लोग बीच पे गए थे,
0: हुआ
1: हाँ,
0: था वहाँ पे,
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ, तो उन्होंने बोला था भी आगे की स्टोरी आपको कबीर भाई बताएंगे।
1: भाई वहाँ पे जाके सर्वर भाई ने एक नंबर खाना बनाया था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो बाकी जो शूट का काम था, जो डायलॉग वगैरह देने थे, वो मेरा काम था, और सरवर भाई का काम था खाना बनाने का, जिन्होंने बहुत ही शानदार बनाया भाई। मैं आज भी मिस करता हूँ वाला शो, अभी उसका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमारा ऑफिशियल पेज है उस पे, सुहाना सफर के नाम से है, बहुत काम
0: नहीं, मगर उन्होंने जिस हिसाब से बताया था भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट था उसमें।
1: क्या क्या ट्विस्ट, ऐसा क्या ट्विस्ट बता दिया
0: भाई मेरे को भी, यार पता नहीं भाई,
1: ये उनसे पूछना पड़ेगा भाई,
0: आपको मालूम है मिर्जा भाई को मालूम है क्या राज था?
1: आई डोंट नो भाई कौन से राज को रिवील करना है, मुझे बताया नहीं उन्होंने, मैं पूछता हूँ उनसे इस बारे में, कल मैं पक्का इस शो में रिवील करूंगा।
0: कबीर भाई देखो यार थोड़ा टाइम निकालो, बैठते हैं,
1: एब्सोल्युटली मेरा भाई।
0: नहीं वो नहीं कबीर भाई, मैं वैसे नहीं बोल रहा आपको ऑन एयर भाई, मैंने कॉल किया मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो अगर पॉसिबल है तो आप नजदीक में ही हो हमारे।
1: हाँ बिल्कुल मेरे भाई,
0: आ जाना विद फैमिली भाई, विद फैमिली आप आ जाना।
1: अरे मेरे भाई बहुत मोहब्बत मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, इंशाल्लाह जरूर।
0: ठीक है भाई मैं तो चार्ज हो गया,
1: थैंक यू सो मच भाई, ओके मेरा भाई,
0: थैंक यू बड़े भाई,
1: ओके मेरा भाई। और एक भाई नाराज हो रहे, कह रहे वेयर द स्टोरी, अभी बस बस बस अबित भाई गुस्सा नहीं, अबित भाई नहीं, कौन से भाई हैं भाई, एक सेकंड ना, गुस्सा नहीं, स्टोरी टाइम, ओके ओके ओके, लास्ट मैसेज पढ़ दूँ तो बस मैं लिखती हूँ।

0: जस्ट माई क्यूरियोसिटी, आप गए हिडन जेम वाले रेस्टोरेंट में? बहन मत पूछो, मैं तो हिडन जेम वाले बीच पे भी गया हूँ। मैसेज है, क्या हाल है भाई, हम भी इन्विटेशन दे दें। शौकत अली खान साहब, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल भाई दे दें। अच्छा चलो मैं कहानी शुरू कर दूँ, इससे पहले जो है लोग लाठी चार्ज कर दें। भाई एक प्रोमो चल रहा है बीच में, इतना सा सह लेना बस, एक और छोटा कर देता हूँ प्रोमो, रुको रुको, बिल्कुल ही छोटा कर देते। किधर गया भाई ये, 10 सेकंड चलेगा? ज्यादा बात नहीं, बहुत नाराज हो रहे हैं लोग।
1: आप सुन रहे हैं इवनिंग 974 विद दो हवाला कबीर, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: हां तो जी, अब मैं देखो कहानी शुरू कर रहा हूं, और आज की जैसे मैंने कहानी बताई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज एवर। आई डोंट नो, मैंने बेच तो दिए उस तरीके से, बट आई होप आपको मजा आए, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ है। सबसे पहले डिस्क्लेमर के मकसद, किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, इसलिए बेहद हैरत अंगेज है, एंड इसको सुकून से सुनिएगा, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है। ओके सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और जो आज का किस्सा है इसे सुनने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा 2005 में। तो चलते हैं जरा साल 2005 जुलाई के महीने में, जगह मॉन्ट्रियल कनाडा। इस वक्त एक शख्स जिसका नाम था काइल मैकडॉनल्ड, काइल जो था वो 25 साल का था, और काइल एक ऐसा लड़का था जो अपनी जिंदगी में टूटा हुआ था। वो इस वक्त अपने एक रेंटेड किराए के अपार्टमेंट में था, वहां बैठा हुआ था, कोई जॉब नहीं, रिसेंटली उसकी जॉब गई थी, कोई पैसा नहीं, बस जो लाइफ की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो थी उसके पास, और जिंदगी में कोई प्लान नहीं, आगे क्या करना है कुछ पता नहीं। और काइल जिससे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो सामने बैठी उसे यही कह रही थी कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर हम दोनों कैसे एक हो पाएंगे। और काइल ने एक लंबा सा पॉज लिया और उसके बाद उसे कहा कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, बस थोड़ा सा और टाइम दो, और लड़की वहां से उठ के चली गई और बोल के गई कि आई विल वेट, लेकिन ज्यादा नहीं। और कायल बहुत टेंशन में था, बस सर झुकाए अपनी जिंदगी के हर एक फैसले को, जैसे हम लोग करते हैं, कई मरतबा गलतियां हो जाती हैं, कई मरतबा गलतियां नहीं होती हैं, वैसे ही एनालाइज कर रहा था कि क्या क्या उसने सही किया या क्या कहीं गलती हो गई। और ऐसे सोचते सोचते उसके सामने एक छोटी सी डेस्क थी, एक टेबल थी, जिस पे एक चीज रखी हुई थी। ये चीज थी रेड पेपर क्लिप। आपने देखा पेपर क्लिप, वो जो पेपरों को साथ में रखने के लिए क्लिप होती है, ऑफिस के स्टेशनरी में अक्सर आती है। सो वो रेड कलर की एक पेपर क्लिप थी, और उसे वो बहुत देर से घूरे जा रहा था और अपने ख्यालों में गुम था। और ख्यालों में खोते खोते खोते और उस पिन को घूरते घूरते उसको एक आइडिया आया। ये आइडिया ऐसा था जो बेहद अजीब है सुनने में, और इसलिए वो शोर नहीं था, मगर उसने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। एक दरअसल गेम है जो वहां पर खेला जाता था जमाने में, अभी भी बच्चे दोपहर में ये गेम खेलते हैं। तो कनाडा और यूएस के आसपास के इलाकों में एक गेम है बच्चों का, जिसका नाम है बिगर एंड बेटर, दिस इज द नेम ऑफ द गेम। तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो दोपहर में निकलते हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स या उनकी जब समर हॉलीडेज होते हैं, और घर से निकलने के बाद अपने घर से एक छोटा ऑब्जेक्ट लेके निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, रैंडमली कुछ भी छोटा सा ऑब्जेक्ट लेके निकलते हैं। दरवाजों को, जो उनके नेबरहुड में डोर्स हैं घरों के, उन्हें खटखटाते हैं, जब कोई खोलता है तो फिर उससे कहते हैं बिगर एंड बेटर, और जब वो बिगर एंड बेटर बोलते हैं तो सामने वाले को उनकी छोटी सी चीज जो उन्होंने ऑफर करी है उसके बदले एक बड़े साइज की चीज देनी होती है। यहां तक क्लियर है? तो ये जो गेम था ये दिमाग में चल रहा था उसके लगातार काइल के, जैसे बच्चे जो होते हैं वो एक बटन लेके गए, शर्ट का बटन लेके गए, बदले में उन्हें पेंसिल मिल गई, पेंसिल के बदले एक टॉय मिल गया, ऐसे। तो ये आफ्टरनून का फेवरेट गेम, यही उसके दिमाग में चल रहा था इस पेपर क्लिप को सोचते हुए। और काइल ने फिर इस खेल को अपनाने का सोचा। उसने किया ये कि उसने उस पेपर क्लिप की, रेड पेपर क्लिप की एक फोटो खींची, और फोटो खींचने के बाद अपने बैंक अकाउंट को देखा, उसकी सेविंग्स कितनी बची हैं, जो ज्यादा नहीं थी मगर काम चलाऊ थी, और उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने जुलाई के इसी महीने में, 2005 साल था, उसने पोस्ट करा इसकी फोटो को,

0: इस पेपर क्लिप की, मामूली रेड रंग की पेपर क्लिप, और इसकी फोटो को पेस्ट करने के बाद इसने एक पूरा ब्लॉग लिखा और ऊपर लिखा बिगर एंड बेटर। उसने बोला कि मैं इसे ट्रेड करना चाहता हूं फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर। रूल्स बड़े सिंपल थे, किसी भी किस्म का पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं होगा और एक आइटम एक वक्त पे। और ये ब्लॉग डाल के वो बैठ गया। मीनवाइल वो नौकरियां भी तलाश रहा था जो उसे मिल नहीं रही थी। फिर एक महीना लग गया, लेकिन एक महीने के बाद कुछ हुआ। एक महीने के बाद दो औरतें जो थीं, उन्होंने इस ब्लॉग पे एक्चुअली रिस्पॉन्ड किया। ये दोनों रहती थी वैंकूवर में और इन्होंने कहा कि उन्हें पेपर क्लिप चाहिए, उसके बदले में वो ऑफर करेंगी एक पेन, एक मामूली पेन जो मछली के शेप का है। तो रिप्लाई आया और काइल ने कहा ठीक है, रूल के मुताबिक वो उन दोनों को बुलाएगा नहीं, वो खुद जाएगा और उन्हें वो देकर आएगा। वो रेड पेपर क्लिप जो उसके पास थी वो लेके गया, उन दोनों लड़कियों को दी। उन दोनों लड़कियों ने उसे मछली की शेप की एक पेन पकड़ा दिया। अब ऑन पेपर ये आइडिया आपको बेइंतहा इडियोटिक लग सकता है, आप बोलेंगे ये क्या बेवकूफ आदमी है, क्योंकि वो $400 लगा के वो पेपर क्लिप देने के लिए गया जिसके बदले में उसे क्या मिला, मछली की शेप का एक पेन। फिर उसने क्या किया, इस मछली की शेप के पेन को अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया, फिर लिखा बिगर एंड बेटर, जिसका रिप्लाई किया एक औरत ने डेढ़ महीने बाद। ये जो औरत थी इसका नाम था एनी, ये एक सिरेमिक आर्टिस्ट थी और सिएटल में रहती थी। इन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे ये मछली की शेप का जो पेन है ये दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक डोर नॉब दूंगी, डोर की नॉब होती है ना घुमा के दरवाजा खुलता है, वो दूंगी मेरे हाथों की बनाई हुई और उस पर क्यूट सा चेहरा बना हुआ है। काइल ने कहा ठीक है, और वो गया डोर नॉब लेके आया और मछली के शेप वाला पेन पकड़ा के आ गया, और ये डोर नॉब उसने पोस्ट कर दिया। इस डोर नॉब पे फिर एक बंदे ने रिस्पॉन्स किया 12 दिन बाद। इस बंदे का नाम था शॉन, ये मैसाचुसेट्स में रहता था और एक आर्मी रिक्रूट था। उसने बोला कि यार एक काम करो, ये जो डोर नॉब है तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक कैंप स्टोव दे देता हूं, जिसपे खाना वाना बनाते ना कैंपिंग वगैरह करते हुए, वो मैं तुम्हें दे दूंगा फ्यूल के साथ। काइल ने कहा ठीक है, वो गया, उसने वो डोर नॉब दिया, बदले में कैंप का स्टोव ले आया। अब ये जो स्टोव था इसको काइल ने पोस्ट किया अपने ब्लॉग पे, इस पे एक बंदे ने रिस्पॉन्ड किया। इस बंदे का नाम था मार्सन, ये क्वींस न्यूयॉर्क में रहता था। मार्सन ने उसे ऑफर किया कि मैं तुम्हें इस स्टोव के बदले एक छोटा वाला जो जनरेटर था, छोटा देखा है, छोटा सा जनरेटर के जमाने में बहुत मशहूर हुआ करता था, वो जनरेटर मैं तुम्हें देता हूं। डोर नॉब दिया। अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं पूरा पैटर्न देख रहे हैं आप। इस बीच कोई भी किसी ने किसी को चीट नहीं किया, किसी किस्म का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। एक रेड पेपर क्लिप अभी एक मशीन में तब्दील हो चुकी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, नोबडी इज चीटेड। इसे कहते हैं रिलेटिव वैल्यू। मेरे लिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे लिए गेमिंग कंसोल बहुत ज्यादा कीमती है, मगर आपके लिए वो कूड़ा हो सकता है। सब्जेक्टिव वैल्यू। अब इसे ऐसे देखिए कि एक बंदा रेगिस्तान में फंसा हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ है, उसे 5-6 दिन हो चुके हैं, उसकी जान आधी हो गई है, उसे रेत में अगर फर्ज कीजिए 1,00,000 रियाल मिल गए, क्या करेगा उसका वो? उसके लिए वो कीमती नहीं है, उसके लिए एक ग्लास पानी उस 1 रियाल से ज्यादा कीमती होगा। समझ रहे हैं आप? तो वैल्यू किसी किसी चीज की फिक्स नहीं होती है। एक बंदे का ये कहना कि मुझे ये नहीं चाहिए, वही चीज दूसरे बंदे के लिए हो सकती है कि यार मुझे यही चाहिए। और यही सफर काइल धीरे धीरे तय कर रहा था। किसी के लिए कोई चीज कूड़ा हो सकती है, वही चीज किसी के लिए खजाना हो सकती है। पर इन सबके बीच बैकग्राउंड में काइल के साथ एक चीज चल रही थी साथ साथ। ये सब कुछ जो वो जाके ट्रेड कर रहा था, कभी नॉर्थ अमेरिका कभी कुछ, ये सब फ्री में नहीं है। काइल को खुद जाना पड़ता था वैंकूवर, सिएटल, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, फीनिक्स एरिजोना टोरंटो, कभी जहाज का टिकट तो कभी ड्राइव करके हजारों हजारों किलोमीटर्स खुद के खर्चे पे, खुद की सेविंग्स पे। और वो रेड पेपर क्लिप, हाँ वो फ्री थी, मगर प्लेन का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वो तो लगेगा। ये एक ऐसी चेन क्रिएट हो चुकी थी जो काइल ने खुद क्रिएट करी और उसे वो खुद तोड़ना भी नहीं चाहता था। और यही चेन उसकी जिंदगी की सेविंग्स को भी धीरे धीरे खा रही थी। ये यूं समझिए कि काइल के लिए एक फुल टाइम जॉब है लेकिन उसे सैलरी नहीं मिल रही है। जब वो रेंट नहीं भर पा रहा था तो काइल इस दौरान गाड़ी में भी रहने लगा और जहां पे जो लोग अपने सामान को बाहर फेंक देते हैं उन सोफों पे भी सोने लगा, मगर उसने ये चीज नहीं छोड़ी। काइल के पास अब क्या है, काइल के पास अब आ चुका था जनरेटर। जनरेटर लेके वो पहुंचा न्यूयॉर्क सिटी, पर उसकी किस्मत ने यहां पे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया उसके साथ। न्यूयॉर्क की सड़कों पे जब उसने जनरेटर रखा तो डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट जो है वहां का, उन्होंने इस जनरेटर को सीज कर लिया कि आप ऐसे नहीं कैरी कर सकते इसको। अब यहां पे भी खर्चा, छुड़ाने का खर्चा, पर उसने किया, पूरा खर्चा किया। और ये जनरेटर उसने उसी को वापस दिया, मार्सन नाम के बंदे को, जिसने पहले ये काइल को दिया था। एंड फनीली इनफ मार्सन अब एक आरजे बन चुका था। उसने कहा एक काम करो भाई, जनरेटर तो मुझे दे रहे हो, बदले में मैं तुम्हें कुछ नियॉन साइंस देता हूँ, चमकते हुए देखे अपने साइंस लगे होते हैं बड़ी बड़ी दुकानों पे, और साथ में एक मशीन देता हूँ जिससे ड्रिंक्स बना सकते हो तुम। काइल ने कहा ठीक है। काइल ने जनरेटर मार्सन को दे दिया जो एक आरजे था, बदले में उससे ड्रिंक्स बनाने की मशीन और बहुत सारे नियॉन साइंस ले लिया। ये जो चीज थी इसने अपने ब्लॉग पे पोस्ट करी, जिसका जवाब दिया एक क्यूबेक में रहने वाले कॉमेडियन ने, बहुत मशहूर, जिनका नाम था मिशेल बैरेट। मिशेल ने कहा काम करो यार, ये नियॉन साइंस और ये जो तुम्हारी ड्रिंक्स बनाने की मशीन है, क्योंकि तुम बिगर और बेटर खेल रहे हो, लेट मी प्ले विद यू, तुम ये मुझे दे दो। मेरे पास एक, यार मेरे पुराने घर में ना एक स्नो मोबाइल मोबाइल है, वो सड़ रही है, स्नो में चलाने वाली होती है ना, वो सड़ रही है यार, वो ले लो तुम। कुछ ने कहा मुझे पार्टी के लिए सब चाहिए, वो मेरे किसी काम की भी नहीं है। तो ठीक है, काइल गया उनके पास, उन्हें दे दी वो ड्रिंक्स बनाने की मशीन और नियॉन साइंस, और बदले में वो स्नो मोबाइल जो उनके पास थी उनके गैराज से ले गया। अब ये स्नो मोबाइल उसने अपने ब्लॉग पे पोस्ट करे, इस पे रिस्पांस दिया एक स्नो मोबाइलिंग कंपनी ने, एक मैगजीन है जिनका नाम था स्नो राइडर्स वेस्ट। उन्होंने कहा ठीक है ये तुम हमें दे दो, बदले में ऑल पेड ट्रिप, मतलब पूरा खर्चा हम उठाएंगे और ट्रिप देंगे रॉकी माउंटेन्स में, जो कि याक ब्रिटिश कोलंबिया में है। अभी जगह बड़ी खास थी, यहां पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते, यहां पे महज 100-150 लोग रहते हैं। ये ट्रिप का वाउचर उसने अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया। इसके जवाब में एक बंदे ने रिस्पॉन्स दिया, बंदा बोला यार मुझे वहां पर जाना है, बहुत महंगा पड़ रहा है, तुम्हें काम करो ये ट्रिप का वाउचर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक बॉक्स ट्रक देता हूँ। छोटा वाला ट्रक देगा आपने, इसमें बक्से कैरियर इधर से उधर ले जाते हैं, वो वाला ट्रक दे दिया उसको। इस बंदे का नाम था ब्रूनो। अब पेपर क्लिप जहां से शुरू हुई थी, वो रेड पेपर क्लिप, अब वो एक ट्रक बन चुकी थी, क्योंकि ये ब्लॉग काइल का लगातार चल रहा था, तो ये ब्लॉग एकदम से फटा, मशहूर हो गया। 10,000 जहां पे विजिटर्स थे, अब 1,00,000 डेली के यूनिक विजिटर्स इस पैनल के। मेजर अखबार, बड़े बड़े मॉर्निंग शोज, आरजेस, टीवी, सब उसका इंटरव्यू ले रहे थे। वो भले ही किसी काम का नहीं था, मतलब काइल के पास जनरली कोई नौकरी नहीं थी, मगर वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन चुका था। अब बात सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की नहीं थी, अभी तक तो वो ऑब्जेक्ट्स इधर के उधर कर रहा था ना, अब बात आगे बढ़ गई थी। अब काइल के पास ट्रेड करने के लिए शोहरत थी, स्पॉटलाइट थी। अब उसके पास एक बॉक्स ट्रक आ चुका था, अभी तक यहां तक है ना मेरे साथ कहानी में। तो जो बॉक्स ट्रक था, इसने ये जो है पोस्ट किया अपने ब्लॉग पे, जिसका रिप्लाई दिया मेटल वर्क्स नाम की एक कंपनी ने। ये कंपनी जो थी कनाडा की एक बहुत मशहूर कंपनी है, आज भी है, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाते हैं ये लोग, बहुत मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मिसेस आगा में। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ट्रक हमें दे दो, बदले में 30 घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम हमारे स्टूडियो का एकदम फ्री। उन्होंने एक वाउचर साइन करके काइल को पकड़ा दिया। अब काइल कोई सिंगर तो था नहीं, उसका कोई बैंड तो था नहीं, वो क्या करेगा इसका। तो काइल ने 30 घंटे इस स्टूडियो के जो उसे वाउचर मिला था वो उसने अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर दिया। 12 घंटे बीतने के बाद एक रिस्पॉन्स आया। उनका नाम था जोडी नैनेट। जोडी जो थी उन्होंने कहा कि ये 30 घंटे जो स्टूडियो के हैं ये मुझे दे दो। एंड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन। उन्होंने कहा कि बदले में मैं तुम्हें एक साल रेंट फ्री अपार्टमेंट देती हूं फीनिक्स एरिजोना में, क्योंकि मेरे फादर जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं लेकिन आई कैन गेट इट फ्रॉम हिम। और मुझे सिंगर बनना है, मुझे स्टूडियो चाहिए बढ़िया सा रिकॉर्डिंग के लिए, और मैं अपने बलबूते पे करना चाह रही हूं। आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम हिम। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का ये अपार्टमेंट मिल गया उसको। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि जोडी जो एक बड़ी सिंगर बनना चाहती थी उसे स्टूडियो के 30 घंटे नहीं चाहिए थे सिर्फ, वो तो चाहिए ही चाहिए, मगर उसे काइल से उसकी शोहरत भी तो चाहिए। उसका नाम काइल के ब्लॉग पे आना इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग। और जब उसके ब्लॉग पे आएगी अल्टीमेटली उसका नाम भी आगे आएगा, जैसे मैं उसका नाम आपको बता रहा हूं। वो इंटरनेट पे आ गई, एक्सपोजर मिला उसे। आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? यही तो है, एक्सपोजर। एंड काइल बिल्ड समथिंग रियली स्पेशल। एक ऐसी कहानी काइल तैयार कर रहा था जिस कहानी का हिस्सा हर कोई बनना चाहता था। अब काइल के पास साल भर का फ्री अपार्टमेंट था फीनिक्स एरिजोना में, और बहुत शानदार था। उसने इसके फोटोज लेके अपने ब्लॉग पे पोस्ट किए, और चंद घंटों के बाद ही उसे एक शख्स ने कांटेक्ट किया। इनका नाम था, ये बहुत मशहूर रॉक लेजेंड थे, रॉक बैंड में थे, उनके लीड सिंगर थे, इनका नाम था एलिस कूपर। एलिस कूपर की मैनेजर जो उनका एक रेस्टोरेंट भी चलाती थी उनका नाम था लेजली, उन्होंने कांटेक्ट करके कहा कि मैं जो मेरे बॉस हैं एलिस कूपर उनका रेस्टोरेंट में काम करती हूं, और मैं एक काम करती हूं, तुम मुझे ये फिनिक्स एरिजोना वाला एक साल का रेंट फ्री घर दो, इसके बदले में एलिस कूपर के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मैं दिलवाऊंगी। तो यहां कुछ अलग हुआ, ये कुछ अलग किस्म की ट्रेडिंग थी। एक दोपहर, एक पूरा दिन इनफैक्ट, एक लेजेंडरी सिंगर के साथ बिताने का मौका बदले में काइल ने दे दिया। अब जब उसने पोस्ट किया काइल ने अपने ब्लॉग पे कि मेरे पास एक मौका है, मैं वो मौका किसी और को ट्रेडिंग में दे सकता हूं, एलिस कूपर के साथ पूरा दिन बिताने का, इसके बदले अगर कोई आना चाहे बिगर द बेटर। तो एक बंदे ने कांटेक्ट किया, यानी यहां पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया। यहां पे जिस बंदे ने काइल को कांटेक्ट किया उसने कहा कि बॉस मैं ना एलिस कूपर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन बदले में मेरे पास एक चीज है देने के लिए। और जो चीज उसके पास देने के लिए थी वो एक मोटराइज्ड स्नो ग्लोब था। आपने देखा ग्लोब, एक छोटा सा शीशे के अंदर बर्फ गिरती रहती है उसके अंदर आर्टिफिशियल, वो बड़ा खास होता है दिखने में मगर ज्यादा महंगा नहीं होता, महज $50 होगा वो हार्डली। मगर काइल ने उसको हाँ बोल दी। काइल ने कहा ठीक है यार तू फैन है कोई भी दिक्कत नहीं है ये ले, और बदले में उससे वो स्नो ग्लोब ले लिया। अब जब उसने वो स्नो ग्लोब ले लिया जो महज $50 का था, बदले में एलिस कूपर के साथ पूरा दिन दे दिया एक बंदे को, तो पोस्ट करने के बाद इंटरनेट वाले तो चढ़ गए उस पर, बोले यार ये क्या बात हुई, तुम क्या पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। पर काइल ने ये स्नो ग्लोब जब अपने ब्लॉग पे डाला तब तक ब्लॉग बहुत मशहूर हो चुका था। 2 महीने बीतने के बाद एक बड़े खास बंदे ने काइल को कांटेक्ट किया इसी ब्लॉग के जरिए। इनका नाम था मार्क हर्मन। मार्क हर्मन जो थे उन्होंने एक बंदे से मिलाया, इनका नाम था कॉर्बिन बर्नसन। कॉर्बिन साहब एक बहुत मशहूर हॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर और साथ में वर्ल्ड क्लास कलेक्टर, शौकीन थे स्नो ग्लोब्स के। दुनिया में सबसे बड़ा कलेक्शन स्नो ग्लोब्स का किसी के पास अगर आज भी है तो तो उन्हीं के पास है। और उन्हें चाहिए था एक रेयर एडिशन, एक मोटराइज्ड स्नो ग्लोब। उन्होंने काइल से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा काम करो ये ग्लोब मुझे दे दो, बदले में जैसे तुमने कहा बिगर द बेटर, आई विल गिव यू समथिंग। उन्होंने काइल को उसके बदले में दिया एक वॉइस ओवर का रोल अपनी एक एनिमेटेड मूवी के लिए जो आने वाली थी, डोना ऑन डिमांड। अब काइल ने वो ग्लोब दिया और वो जो एक्टिंग वाला जो ऑफर था वो ले लिया, और ये एक किस्म का गोल्डन टिकट था। और वो इस ऑफर को लेके बैठा रहा कुछ टाइम तक। फिर एक बहुत बहुत बड़ी चीज हुई काइल की जिंदगी में। एक टाउन था जिसका नाम था किपलिंग, ये ज्यादा बड़ा टाउन नहीं है, बहुत छोटा सा टाउन है, उस वक्त बहुत छोटा था, अभी तो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है। और यहां पर महज 1100-1200 लोग ही हैं। यहां पे एक लोकल ऑफिशियल थे, जैसे हम इंडिया में कहते हैं पार्षद या डीएम, ये जो शहर को चलाने वाला होते, तो इस टाउन के एक तरीके से मुखिया, प्रधान, जो समझना चाहे समझ लीजिए। उन्होंने काइल के ब्लॉग पर रिस्पॉन्स किया, उन्होंने बोला भाई सुनो, ये तुम्हारे पास ऑफर है एक्टिंग का, ये जो है हमें दे दो, हमारे यहां ऑडिशन कराओ, ठीक है, और बदले में हम आपको हमारे टाउन में 2-story घर देते हैं, वो भी मेन स्ट्रीट पे, मूवी रोल के बदले। लाइन लग गई, लाइन ऑडिशन के लिए इस किपलिन शहर में। और एक लोकल टीनेजर यहीं का, वो जीता भी ऑडिशन में और वो उसने एक्टिंग भी करी। जुलाई 12, 2006, एक साल बाद वो रेड पेपर क्लिप जो डेस्क पे पड़ी थी, एक नॉर्मल रेड पेपर क्लिप, आज घर बन चुकी थी। घर काइल के हाथों में चाबी थी एक घर की, और आंखों में आंसू थे। 14 से 15 बार ट्रेडिंग करने के बाद और एक पेपर क्लिप से इस कहानी को शुरू करने के बाद उसके पास घर था। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, कहानी बाकी है। ये जो घर काइल को मिला था, ये घर उसने वापस टाउन वालों को दे दिया। आता हूं मैं क्यों दिया, मगर आपको समझना होगा कि किपलिंग टाउन ने इतनी बड़ी चीज क्यों करी, कि घर क्यों दे दिया। मसला यह था कि किपलिंग टाउन खत्म हो रहा था, लोग छोड़ के जा रहे थे, वहां किसी किस्म का बिजनेस नहीं पनप रहा था। उन्होंने काइल की शोहरत का फायदा उठाया, और जब काइल ने यहां पर घर ले लिया तो सब तो दीवाने हो गए, एंड एवरीबडी वॉन्टेड टू गो टू किपलिंग, और किपलिंग का टूरिज्म बूम कर गया, हेडलाइंस में आने लगा, और किपलिंग जीत गया ये पूरा टाउन। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया, 2007 में दुनिया का सबसे बड़ा पेपर क्लिप बनाया गया स्टील का, और इसे टाउन किपलिंग में, तकरीबन 14 फीट का होगा ये स्कल्पचर, ब्राइट रेड टाउन में आज भी लगा हुआ है, आज भी लोग जाते हैं फोटोज लेते हैं इस टाउन में। पर जैसे मैंने कहा, काइल ने ये घर वापस कर दिया, किपलिंग वालों को डोनेट कर दिया। आज वहां पे एक कैफे है जिसका नाम है द रेड पेपर क्लिप कॉटेज, इसी नाम से कैफे है किपलिंग टाउन में। अब आप बोलेंगे यार घर तो दे दिया था, इसकी भी ट्रेडिंग कर लेता। हाँ तो की ना। काइल ने क्या किया, ये घर जब वापस दे दिया, इस पूरी कहानी को काइल ने पब्लिश किया 2007 की एक किताब में जो उसने खुद लिखी, जिस किताब का टाइटल है वन रेड पेपर क्लिप। ये किताब कोई आम किताब नहीं थी, कई मुल्कों में कई जबानों में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। ही बिकेम अ स्पीकर, काइल बिकेम अ मिलियनेयर, जगह जगह जाके टेड टॉक्स, जगह जगह जाके ब्रांड से जुड़ना, एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथ। वो खुद एक ब्रांड बन गया, और ऐसा ब्रांड जिसकी सच में कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। घर पाना कोई टारगेट नहीं था, वो छोटा सा आइडिया जो एक छोटे से नॉर्मल ऑफिस के पेपर क्लिप से शुरू हुआ, वो कहां तक पहुंचा, ये कहानी बयां करती है काइल मैकडॉनल्ड की कहानी। आई डोंट नो इससे इंप्रेसिव आपने अभी क्या सुना होगा, मगर मेरे लिए ये कहानी इज सुप्रीमली इंप्रेसिव। ये ऐसी है कि किसी हॉलीवुड बॉलीवुड की स्क्रिप्ट भी इसे छू नहीं सकती। दिस इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग बियॉन्ड क्रेजी। ये ऐसा हम कहते हैं ना कि बक्से के बाहर सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये है आउट ऑफ द बॉक्स। काइल ने फाइनली, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। शी नेवर लेफ्ट हिम, कि उसके पास है नहीं कुछ, उसी से शादी करी एंड काइल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। आज की तारीख में काइल मैकडोनल्ड बहुत बड़ी शख्सियत है और उनकी कहानी जगह जगह मशहूर है। उन पे आई डोंट नो इफ देयर इज अ मूवी कमिंग अप, बट ऐसा सुनने में आया था कि देयर इज समथिंग इन प्रोडक्शन जो बहुत जल्दी उनकी जिंदगी में बनाई जाएगी एंड इट विल बी पब्लिश्ड ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। सो ये थी आज की मेजर मेजर कहानी। बाकी आपके हवाले है, आई डोंट नो आप पे क्या असर हुआ इस कहानी का, पर आई फाउंड इट एस्टोनिशिंग, मतलब मैं हिल गया था भाई इस कहानी के बाद। सो आपके हवाले। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपका क्या रिएक्शन है, आई वुड लव टू नो। मैं एक कॉल ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम है 6 बजने में। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: जी भाई।
1: फिर भाई फुल साइलेंट स्टॉक।
0: हाँ?
1: ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं भाई, ये स्टोरी आउट ऑफ द टावर थी भाई।
0: वाकई
1: में यार, कसम से दिमाग झनझन आ गया पूरा। बॉडी वाइब्रेट में भाई, बहुत बहुत बहुत जबरदस्त। लेकिन एक बात क्या है ना, ये कहानी और सुनाने का जो तरीका है ना भाई आपका,
0: जी भाई,
1: ऑस्कर लेवल है यार, ऑस्कर लेवल।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
1: अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। मैं तो बोल रहा हूँ कबीर भाई, इसमें आप आगे बढ़ो यार। बहुत हेवी आप, मतलब बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर, क्या बोलते हैं, यही
0: स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर ही भाई। थैंक यू
1: भाई, बहुत बढ़िया करते हो यार। यही अगर मुझे सुनानी होती तो मैं बोलता ऐसे ऐसे और चार लोग बोलते हैं ओके।
0: नहीं भाई आपकी मोहब्बत
1: भाई। लेकिन यार कहानी यार, एक मतलब एक क्लिप।
0: हाँ भाई, एक पेपर
1: और वो ट्रेडिंग करते करते करते उसने क्या क्या नहीं हासिल कर ली भाई।
0: सोचो भाई कहाँ तक चली गई बात, समझ रहे हो, कहाँ तक ले गया
1: उसने, क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, सबको छोड़ा। और वाकई में यार,
0: और मेजर चीज तो बताना भूल गया, बाय द टाइम उनका जब ब्लॉग मशहूर हो गया था तो उनके पास उस वक्त $49 थे। ये मैं डिटेल में मेरी रह गई, जस्ट आई चेक्ड आउट, $49 उनके अकाउंट में थे सिर्फ। तो अगर वो ब्लॉग उस दिन वायरल ना होता तो शायद वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती, मगर बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी वो चीज़ ऐसी फटी कि ही स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट। तो ये मतलब मेरे लिए कहानी भाई, मैंने कहा ये बहुत जबरदस्त कहानी है
1: भाई। मुझे तो लगता है कि उन्होंने बस एक माइंडसेट बना लिया और उस राह में चलते चले गए, ये लिए वो लिए वो करते करते करते फाइनल। अब उन्होंने मतलब उनको ये भी आइडिया मिल गया था कि एक घर ड्रॉप करके मैं बस एक भाई किताब लिखूंगा।
0: हाँ। वो आइडिया आ गया था उनको कि घर लेके मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ किताब ही छाप देता हूँ ताकि दुनिया को तो पता लगे क्या चीज हूँ मैं।
1: हाँ, सही बात है यार, वाकई में वो चीज, वाकई में यार बहुत हेवी माइंड सेट वाला बंदा यार।
0: बिल्कुल भाई,
1: इस पे अभी तक मूवी नहीं बनी।
0: नहीं भाई अभी तक नहीं बनी है, पर उनके बारे में काफी चीज छापी जा चुकी हैं। आई थिंक एक मॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री है, मैंने चेकआउट करी थी, बट फिर मैंने उनकी किताब का ही ऑडियो सुना था क्योंकि उन्होंने खुद सब कुछ उसमें लिखा है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी देखी थी, तो सारी डिटेल्स हैं उसमें, इट्स ऑल ओवर इंटरनेट। तो ये बहुत मशहूर कहानी है
1: यार, ये ऐसा बंदा है मतलब अगर 5 लोग एक साथ बैठेंगे, मतलब बड़े बड़े औहदे वाले बैठे और ये फुल एटीट्यूड में बैठेगा कि मैं तो भाई ये लोग से अलग हूँ।
0: हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल चौड़ में भाई, अलग चौड़ की कहानी है
1: ये, चौड़ की भाई यार। वाकई में यार कबीर भाई, बहुत बहुत आपका भी थैंक यू यार, ऐसी ऐसी स्टोरी लाते हो यार, कहाँ से लाते हो पता नहीं,
0: बस भाई
1: कौन से मतलब न्यूज़पेपर की फैक्ट्री में जाते हो क्या मालूम
0: भाई। बहुत बहुत मैं खुद में हो चुका हूँ, मैं साइंटिस्ट हो गया हूँ इस मामले में, डेली घुस जाता हूँ उसमें
1: भाई। साइंटिस्ट को भाई सल्यूट है भाई, मिथुन वाला, क्या बात क्या बात क्या
0: बात, थैंक यू भाई, शुक्रिया मेरा भाई, बहुत बहुत थैंक यू मेरा भाई।
1: चलो शुक्रिया भाई, बहुत मजा आया भाई,
0: शुक्रिया मेरा भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई।
1: अरे इसके हाँ। बारे में कल भी मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी, अभी मेरे दिमाग से जाने वाली नहीं है भाई ये
0: भाई ये नहीं जाएगी कहानी, ये रुकेगी जहन में, रुकने वाली
1: नहीं, ये नहीं, ये छप गई, ये अब मैंने मतलब मेरे दिमाग ने भी ये स्टोरी लिख दी, इसको याद रखना।
0: पेपर क्लिप को जब अगली बार देखोगे तो सोचोगे तो सही। ये तो है
1: कसम से भाई, उस दिन सोचे आदमी देखेगा तो बोले अरे भाई इससे भी आदमी ना बड़े अहदे पे जा सकता है।
0: खेल है भाई, खेल है, आजकल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत सारा प्यार।
1: कहाँ से आते हैं?
0: थैंक यू भाई, ख्याल रखिए।
1: चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मजा आया कबीर भाई यार।
0: ख्याल रखिए, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और बस आपको मजा आना चाहिए, और तो क्या है, यही चाहिए। और आज की कहानी है तो मुझे भी सुनाने बहुत मजा आया, आई होप आपको अच्छी लगी। बहुत सारे मैसेजेस हैं ऑलरेडी, मैं रीड करूंगा, बट दिल से बताइएगा, ठीक है बात, गलत नहीं बिची थी आज मैंने कहानी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई देखो बात ऐसी है, 6:02 तो होली और आज की कहानी सुनाने के बाद मैं किसी की भी आईडी पे कभी नहीं हंसूंगा, कभी भी नहीं, लिटरली मैं किसी को डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि कहानी ऐसी है क्या मुझे भी कोई कुछ भी बोलेगा मेरे दिमाग में एक आइडिया ये कमाने का, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जब तक ये बिल्कुल हलाल आइडिया आपका चलेगा। भाई ने देखो पेपर क्लिप से धनिया बो दिया दुनिया में

माशाल्लाह आज की स्टोरी तो जबरदस्त दिल को छू गई. एक छोटी सी क्लिप बड़े घर तक पहुंची और वो भी एक सेलिब्रिटी. ये कहानी से एक बात साबित होती है कि इंसान अगर ठान ले तो बहुत कुछ पा सकता है. एब्सोल्युटली भाई, सारा खोपड़ी का खेल है भाई. लिखते हैं लव्ड इट. और दूसरी बात, ये हमेशा की तरह कहता हूँ, फिर से कह सकता हूँ कि ये एक लाइन की बात को स्टोरी की शक्ल में बहुत ही खूबसूरत नरेशन के साथ, विच इज़ वंडरफुल. थैंक यू सो मच मेरे भाई. घर सुकून से जा पाता हूँ जब ऐसे मैसेज आ जाते हैं आपके. तो थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली सेइंग दिस टू मी. थैंक यू फॉर बीइंग स्वीट टू मी. मैंने कहा ये गाना भी आपने गाया है, जो भी लगाया. जी भाई, वो मेरा था. जो रैप सुना था आपने वो मेरा ही था. अच्छा, बहन ने पूछा है उसमें. बहन, हाँ वो ऐसी था. और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम खारी मौलाना कबीर साहब. भेजूंगा भाई. एक मैसेज है, वाओ माशाल्लाह नाइस स्टोरी सेंड मी ब्रदर असद भाई. थैंक यू, डेफिनेटली ब्रो मैसेज भेजूंगा. और अशफाक भाई, लव यू टू मेरे भाई. थैंक यू सो मच. तो भाई आज की कहानी मैंने सुना दी. एंड मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ये सुनी है कहानी, भुला नहीं पाएंगे अब एक दो दिन तक ये स्टोरी. मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली. मैंने यार बाकी तो ठीक है, पीएस को फजूल क्यों बोला. मैंने ये बोला मुबीन भाई कि मेरे लिए खजाना है, पर वही गेमिंग कंसोल किसी और के लिए कूड़ा हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है. मेरे लिए तो मेरी जान है, मेरा गेमिंग कंसोल मेरी जान, मेरा भाई है. एक मैसेज है, ब्रो व्हाट, ब्रो व्हाट आर कंपनी टोल्ड ऑल एम्प्लॉयज, थिंक अबाउट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हाँ वही है ना, हर आइडिया जो आउट ऑफ द बॉक्स कहने के बाद सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, वही आइडिया कई मरतबा चिंगारी होता है. चिंगारी जो है फिर भाई फट सकती है. मुबीन भाई कह रहे हो गलत कर दिया. नहीं भाई, मैं पीएस के साथ कोई गलत नहीं कर सकता. हाय कबीर भाई, हाँ मेरे भाई, क्या हाल है भाई आपके. ये मैं क्या है, कुरेशी बहन है. थैंक यू भाई. अब चलेगा एक गाना बढ़िया वाला भाई. बहुत टाइम से ये शो की पहचान था एक टाइम पे ये गाना, और बहुत टाइम से मैंने भी नहीं सुना. सो आई एम गोना प्ले इट राइट नाउ. हाँ जी, अरे भाई कोई ना, कहानी पसंद आ गई है तो मैसेज कर देना हमारा धोरे व्हाट्सएप पे 666-221-07 पे भाई. उच्चारणा भाई आ रहे हो बादशाह सीधा हरियाणा से भाई.

अरे जी कोई ना। हाँ भाई बढ़िया चल रहा है भाई। मैसेज किया है तबसुम बहन लिखती हैं, एक दो दिन कबीर भाई हमेशा याद रहेगी ये स्टोरी। थैंक यू बहन। यही मेरा मकसद था, दिमाग में डाउनलोड कर दूं मैं। एक मैसेज है, हम साइलेंट लिसनर हैं, हमें भी सेंड। बिल्कुल ऑफ कोर्स, ये सैफुल हुदा जी ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच। आपका नाम सही पढ़ा मैंने, बिकॉज ये शाह है कि साहे मेरे को बता। इफ़ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग योर नेम प्लीज़ करेक्ट मी, प्लीज़। डांटिएगा नहीं, बिना डांट की, मेरा दिल थोड़ा सा कमज़ोर है बस, और तो कुछ नहीं। बोलो बेटे, बेटा म्यूज़िक हमारा।

भाई साहब खुश तो हैं आप गाने सुन के, और ये जान के मैं बड़ा खुश हूँ कि आप बड़े खुश हैं। तो यूसुफ भाई ने बड़ा मासूम सवाल पूछा, कह रहे ये जो गेम है बिगर बिग एंड बेटर, ये यहाँ पर भी है? छोटा यूसुफ भाई एक पेपर क्लिप से ताजमहल बना देता भाई साहब मैं भी। करीम साहब कहते हैं जबरदस्त स्टोरी, वालेकुम सलाम मेरे जान, बहुत बहुत शुक्रिया। जसविंदर पाजी कहते हैं हाँ जी क्या हाल है, बढ़िया भाई। और एक सेकंड का वॉइस नोट। ओके जी कोई गाल नहीं, सुन लेंगे अभी एक गाने के बाद, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और ये कहानी फिक्र मत कीजिए आपको मिल जाएगी। अभी भी कहानी के बारे में कुछ कहना चाहें, कोई साइलेंट लिसनर है दिल में कोई बात आ रही है, कह दिया करो यार, प्लीज़ कह दिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा मीनवाइल जब गर्मियां हो रही हैं तो इसमें भी इवेंट्स हैं बहुत सारे जिनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो कतर में जो एक्सपीरियंसेस हैं जो आज से 10 साल पहले होते थे वो तिगने चौगने 10 गुने हो चुके हैं। तो अभी इंडोर स्पेसिस का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। अक्रॉस कंट्री बहुत सारी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे ओपन एयर लिविंग रेसिडेंट्स के लिए, विजिटर्स के लिए सब कुछ मौजूद है। तो इसका पूरा जो लेखा जोखा है वो आपको पता ही है, कहाँ कहाँ जाना है, समझदार हो चुके हैं आप। पर जो लोग नए नए आए हैं, जीवाइन आइलैंड है भाई, कतारा कल्चर विलेज है, सेंट्रो, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। सो जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, फेस्टिवल्स पर काबू रखें, काबू इज इन कंट्रोल रखें, नज़र रखें अपनी बना के। बाकी कतर 2026 का जो हमारा पूरा शो है उसमें भी आपको मैं लगातार बताता चला जाऊंगा, एंड उसका भी पूरा पूरा फायदा उठाएं। एंड इसके अलावा जो थर्ड हाँ बाप पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन है उसके प्रोडक्ट्स की जो रिमार्केबल अचीवमेंट है उसके बारे में बताना ज़रूरी है। 174,152 किलोग्राम इतने आम बिक चुके भाई, समझ रहे, अभी तक 84,600 लोग जो हैं एग्जीबिशन का हिस्सा बन चुके हैं। ये जो एग्जीबिशन है ये इतनी ज़बरदस्त चली है क्योंकि कंक्लूड हो चुकी है, अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने तो आपने मिस कर दिया भाई। दो दो मैंगो फेस्टिवल आके चलिए चल गए और आप अभी तक नहीं आए भाई। आम की पेटी गर्मी में होनी होनी चाहिए, देसी होने की बहुत बड़ी निशानी है ये। तो जो ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में हुआ है, यहाँ पर 30 पाकिस्तानी लोकल कंपनी से पार्टिसिपेट किया से उनके फूड प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने अपनी वैरायटीज़ जिसमें आम का अचार, आम की मिठाई, आम की आइसक्रीम सब कुछ, और बाकी सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं पाकिस्तान से हमारे वो तो उसकी तो बात ही कुछ और है माशाल्लाह। तो इट हैज़ बीन अ रियली रियली रियली नाइस फेस्टिवल ऑल एंड ऑल। तो अगर आप इसका हिस्सा बने, आम की पेटियां आप भी लेके आएँ, बहुत बढ़िया बेटी। इनके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने अनाउंस किया है कि लोकल डेट्स फेस्टिवल जो है वो बस शुरू होने वाला है, और यहाँ पे फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल दिखने वाले डेट्स आपको नजर आने वाले फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होगा 25 जुलाई से। अभी बस 21 हो गई ना, 21 हो गई तो 25 जुलाई से शुरू होगा, 10 अगस्त 2026 तक चलेगा ईस्टर्न स्क्वायर में सुक वाकिफ में, और इसका भी हिस्सा बनेगा। तो जैसे मैंने कहा ना, बैक टू बैक बहुत सारे इवेंट्स हैं, इन सब का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसा भी नहीं आपको धूप में खड़े करके बोलेंगे ये तो खजूर देखो, अरे बाप पसीना बाद में पहुँचना पहले खजूर देखो, ऐसा अंदर पूरा एसी वेसी है सब बढ़िया है, सब पार्ट ऑफ इट। बाकी एक में से भाई क्या है, फ्री में मूवी देखने की कोई अच्छी सी साइट बताओ, पायरेसी करवा रहे हो मुझसे, अच्छा बताता हूँ मैं। बाकी बाकी क्या है, अभी मौसम 39 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा हल्का सा क्लाउडी है, पर भाई गर्मी तो अभी भी बनी हुई है लगातार, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। कल ह्यूमिडिटी का जो लेवल था वो हद से ज़्यादा था, 50 क्रॉस करने वाला था, 45 आई रिमेंबर मैंने बताया था सेम टाइम पे, और आज 20% है, तो काफ़ी कम ह्यूमिडिटी है विच इज़ काइंड ऑफ गुड। आज की हवाएं थोड़ी ज़्यादा हैं कल के मुकाबले, 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके, और जो नॉर्मल विंड है 18 किलोमीटर, तो आज थोड़ा हवादार गर्मी है, पर गर्मी तो है भाई, उससे आप ना छूट पाने के। और एक मैसेज है, हाय कबीर भाई, हाय भाई क्या हाल है भाई आपके, ये कृष्ण भाई ने मुझे मैसेज किया भाई, थैंक यू। तो भाई ये तो लिया काम, आप बताइएगा आपको कहानी अभी भी कैसी लगी, यू कैन स्टिल शेयर योर थाट्स, एंड कहीं ट्रैफिक में फंसे तो मैं हूँ ना, बता दीजिए 666-22-107 पर। और वैसे तो मोहब्बत वाले गाने इतने में

लाता नहीं हूँ, बट दिस वन इज क्वाइट अ स्पेशल वन. डांडा न्योली वाले का गाना भाई कैसे नहीं चलेगा भाई. इसकी हुक लाइन ना इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी प्यारी, मैं क्या बताऊँ. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सुनो गानी हुक लाइन है दिल बैठी. अरे भाई भाई भाई भाई भाई कर रहा गाना भाई कर रहा गाना. वॉल्यूम बढ़ा लो 22 तक ले जाओ बढ़िया. अरे मौज आ जाएंगे तो सुनो तो.

हाँ तो भाई जी बात सारी ऐसी है कि आज के दिन बहुत सारे इंटरनेशनल डेज को मार्क किया जाता है। वैसे तो सुबह सवेरे शायद महवेज भैन ने बता दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरा भी बताना बनता है। तो आज है जी जंक फूड का दिन है, दवा की पकौड़े वकोड़े खाए जाने वाला दिन है। जो लोग डाइटिंग पर है, मैं तो कुछ आपसे कह नहीं सकता, आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। आज मोमो का दिन है मेरे लिए, तो जंक फूड का मतलब इक्वल्स टू मोमोज का दिन। तो आज आपका भाई मोमो खाएगा बढ़िया करके, तो आज जंक फूड डे मुबारक हो। बाकी आज है कौन सा है? एक दिन का नाम सुनो, आज है टेक अ मंकी टू लंच डे। भाई बंदर कहाँ से लेके आऊँ मैं, कह रहे हैं टेक अ मंकी टू लंच डे, ये दिन है आज। ये तो नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगा मैं। इसके बाद है बी समवन डे, कुछ बन जाओ आज, बी समवन डे कुछ तो बनो। और आज क्या है? एक और कमाल का दिन है, कमाल का दिन है, ये सुनो। आज है इनवाइट एन एलियन टू लिव विद यू डे, एक एलियन को बुलाओ अपने साथ रहने के लिए। मेरे रिश्तेदार तो नहीं आ पाएंगे अभी, तो बहुत महंगी हो रही है फ्लाइट। ये दिन मैं आज तो नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगा। आज है इनवाइट एन एलियन टू लिव विद यू डे, तो भाई देख लो भाई, मेरे रिश्तेदार तो नहीं आ पाएंगे वरना मैं रोक लेता उन्हें। और इसके बाद है ये तो हमारे मतलब नहीं, ये है फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश आर्कियोलॉजी, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेना देना कौन से। और नहीं आज तो नहीं, कल इत्तफाकन मैंगो डे, तो हमारा तो मैंगो फेस्टिवल ही हो लिया, हमें क्या मतलब है औरों के मैंगो डे से। एक मैसेज है, किसी दोस्त को ले जाना जिसमें मंकी की हरकतें ज़्यादा हो। सबको ले जाना पड़ेगा भाई, जिंदगी भाई खर्चा बहुत हो जाएगा क्या भाई, काफ़ी दिनों से काड़ा शिस्सा चलेगा भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी भेजेंगे, मैं बिल्कुल भेजूंगा भाई, टेंशन को नहीं भाई। बाकी आज ये पता नहीं कि कौन डिसाइड करता है यार, इनवाइट एन एलियन टू लिव विद यू डे, कैसे कोई सोच सकता है कि ऐसा भी कोई दिन होगा, कैसे सेलिब्रेट करें। आगे डिस्क्रिप्शन में बताना चाहिए ना, कहाँ से लाऊं मैं एलियन भाई। बट ठीक है, ये कुछ दिन है, आप देख लो कैसे सेलिब्रेट करने। ए भाई कह रहे हैं बंदर की आवाज़ निकाल, इसके अलग से चार्ज करूंगा मैं। अलग से चार्ज करूंगा मैं। बस पांच रियाल निकालो, ट्रांजेक्शन लो भाई इनसे, हर आवाज के पांच रियाल, ठीक है। मुझे क्या काइल मैकडोनल्ड समझा है, है? यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा भाई, कैसे नहीं होगा। हाँ 666-22107 नंबर है, बता देना मुझे कहीं भी ट्रैफिक वगैरह लगा हो तो जरा हम भी मिल ले। मन देवे ना तू फड़क रे छोरी, लीजी सा कड़क रे छोरी, 6:22 से दिखे भाई गड्डी में, तेरा दमन बमन, गुड इवनिंग है, बढ़िया चल रहा है सब, रोक दे दिल की। अरे थम दो, मैसेज भी नहीं कर रहा, मैसेज कर दो 666-22107 पे। आहा सूट चुनरी।

0: इसका मतलब क्या होता है?
1: तो असील इफ यू आर देयर, आई डोंट नो इफ यू आर देयर, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा, शीशे के उस पार अंधेरा हो रहा का दी। बाकी 666-22107 नंबर है। तो बस बहन कह रही है कि आपको वो हिडन जैम मिला जो आपके घर के पास बताया जा रहा था, बहन इतना हिडन हो गया, मिल ही नहीं रहा, वो ज़्यादा ही हिडन जैम बता दिया। एक तो हमारे इतने स्मार्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा, इतना हिडन हो गया वो। एक मैसेज है, बहुत सारा प्यार भाई के लिए, भाई को बहुत सारा प्यार अशफाक भाई, थैंक यू। और एक मैसेज है, सलाम कबीर भाई, क्या हाल है? हमारे एक्साइटमेंट, अच्छा एंटरटेनमेंट के सिक्योरिटी गार्ड तो हूँ मैं भाई, बढ़िया हाल है। बाकी एक छोटा सा ब्रेक आ लिया भाई, कुछ देर में अजान के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी 666-22107 पे, तो आप रहिए मेरे साथ। एंड कुछ भी मैसेज करना चाहें आप ज़रूर ज़रूर किया करें। देखिए ज़रूरी नहीं है ना कि कोई वजह ही हो, हम कैसे हो, क्या हो, क्या चल रहा है, ये भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट ही होगा तभी बात होगी हमारी, ऐसा थोड़ी है। मैं कोई भाई सरकारी बैंक थोड़ी हूँ कि मेरे पास तभी आएंगे जब आपको पूरी चेक स्लिप चाहिए होगी या आपको कैश निकालना हो, ऐसे भी बात हो सकती है। तो उसके लिए 666-22107 नंबर है। बाकी इंशाल्लाह सारी बातें कुछ देर में होंगी, अजान के बाद मुलाकात होगी, तो आप जाने जाइएगा नहीं। 666-22107 ये नंबर है, और मैं दोहा वाला कबीर आपके साथ, जाना आपने है नहीं, बेस्ट जगह पर हो भाई, क्या करोगे आगे, स्टे ट्यून्ड।

में थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी, बस किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी, बस वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके,

भाई ये गाना है यार, ये गाना है भाई। क्या रैप किया था रंजीत ने साथ में फारिस, ये दुनिया। 6:36 बजे क्लॉक में दूहा वाला कभी रेफोन से होंगे। सलाम भेजा है मेरी जान खुदा है। हाँ जी, तो फिलहाल जरा कुछ ट्रैफिक अपडेट देते हैं। 666-22107 पर आप बता सकते हैं कहीं पर आप ट्रैफिक जैम में हैं, तो प्लीज़ अपडेट मी एज वेल। मैं तो यहाँ बैठा, मुझे क्या पता, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। मैं फिलहाल मैप देख रहा था, जहाँ जहाँ लाली लगी हुई है रोडों पे वो ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि मैप के हिसाब से जहाँ जहाँ लाल है वहीं वहीं ट्रैफिक जाम है। तो सबसे पहले अलजामिया स्ट्रीट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक आपको मिलेगा अच्छा खासा। इसके अलावा इन केस आप जो है ये अपना कौन सा एरिया, ये अलमरखिया स्ट्रीट, यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। दिस इज नॉट ट्रैफिक, हम दिल्ली वालों के लिए तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है ये। वेस्ट बे के पास अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी खुला मामला, आराम से आप निकल जाएंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कॉर्निश की तरफ जा रहे हैं अलमरखिया स्ट्रीट से, तो आपको इंटरसेक्शन पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सानी स्ट्रीट की तरफ अगर आप हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। मजलिस अल तवान स्ट्रीट की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो यू विल कनेक्ट एंड देन यू विल गेट द ट्रैफिक। बाकी इसके अलावा अल रियान रोड इज क्लियर, यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है। जो बिन महमूद ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है, मगर हल्का फुल्का, इट्स अ मूविंग ट्रैफिक, तो कोई मसला नहीं। सलवा रोड पे अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। बाकी और किधर भाई, सीरिंग रोड तो ठीक ठाक चल रहा है, इतना तो यहाँ बनता है। हैरानी तब होगी जब यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। इसके अलावा अगर आप बलसद के आसपास हैं तो इंटरसेक्शन पे स्पेशली सिग्नल्स के पास आपको ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ से निकलने में आपको 4-5 मिनट का स्टॉपेज हो सकता है, तो किसी से आपने वादा कर लिया कि मैं बस अभी आया तुरंत, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अलरियान की तरफ अगर आप है, अलरियान रोड से जामिया स्ट्रीट जवान स्ट्रीट की तरफ कनेक्ट होते हुए आपको इंटरसेक्शन पर थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। बाकी आप बता दीजिएगा 666-22107 पर। बाकी अवार अपन 2 रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी। गाना रिलीज हुआ है दूसरा, अरिजीत सिंह ने गाया भाई। चलो गाया तो गाया, लेकिन जो मूवी मतलब जो फिल्माया गया है गाना इमरान हाशमी पे, क्या लग रहा बंदा भाई, बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार माशाल्लाह। इतने लंबे बाल, फिर ऊपर से कुर्ता, और जो लुक दिया है उनको भाई, प्योर सिनेमा, प्योर सिनेमा, और ऊपर से ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में गाना है ये आवारापन। भाई मैं तो देखो फैन हूं, मैं तो बायस्ड ही रहूंगा। 6:39 बाय द क्लॉक, ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज।

भाई प्योर गूजबम्स भाई। अरिजीत सिंह की आवाज उफ। मैं लिख के दे रहा हूं ये गाना, धीरे धीरे चढ़ेगा और जब ये 14 अगस्त को मूवी रिलीज होगी ना, ये गाना थिएटर में स्पेशली बता रहा हूँ, बहुत बहुत आइकॉनिक सिनेमैटिक, जितने भी सुपरलेटिव वर्ड्स हैं वो सारा लगने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू जस्ट रियली ब्रेक द इंटरनेट रियली सून। ये गाने इसके पता है क्या है, लोग कह रहे हैं अरे वो नॉस्टैल्जिया, वो नॉस्टैल्जिया, पुराने वाले गाने ये था वो था, आई अग्री, बट ये गाने पता कैसे हैं, ये गाने इनमें प्रॉपर शायरी है, प्रॉपर लिरिसिज्म है, और उसके बाद ये गाने धीरे धीरे चढ़ते हैं। इफ यू लिसन टू इट इन अ काम सिचुएशन, जहाँ पर आप हबड़ा थबड़ी में नहीं है, वहाँ पे आपको गाने सच में अच्छा लगेगा। अरिजीत सिंह तो अरिजीत सिंह है यार, तो भाई अलग ही चीज़ है वो, अलग ही चीज़ है भाई।

भाई एक रिकमेंडेशन देनी है मुझे, क्योंकि इस टाइम पे हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। कोई मूवी शूवी अगर आपने देखी हो, कोई सीरीज जो आप फॉलो कर रहे हैं, देयर आर मेनी मेनी मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। आजकल मेरा चीप थ्रिल चल रहा है, मैं लॉकअप भी देख रहा हूँ, लायंस भी देख रहा हूँ। प्लीज मुझे जज मत करना वो बस मेरा होता नहीं है कि आप देख लेते हैं फिर आपको लोग जज करते हैं। मैंने सब कुछ देखा होगा लेकिन बिग बॉस नहीं देखा अभी तक, शुक्र है, पर मैंने लॉकअप देख लिया तो आप जितने मर्जी जज करो। मगर एक अच्छी चीज़ है जो अभी मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, एक मूवी है OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही है, उसका नाम है लेडीज फर्स्ट, ठीक है, वो देखना। आपको नाम में शायद सब कुछ ना समझ में आए लेकिन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। उसमें क्या होता है, एक आदमी जो होता है उसके साथ एक एक हादसा होता है और दुनिया जो होती है वो पूरी बदल जाती है, अपसाइड डाउन हो जाती है उसके लिए, और जो दुनिया पूरी तरह से पेट्रियार्कल सिस्टम को फॉलो कर रही है वो एकदम से पलट जाती है। तो अभी जैसे हम कहते हैं ना कि फेमिनिज्म है, बड़ा ज़रूरी है, इक्वल राइट्स, तो उसमें इक्वल राइट्स आदमियों के लिए मांगे जा रहे हैं। दुनिया पलट गई पूरी की पूरी, और सारी जो CEOs हैं, जो जितने भी दुनिया है वो पूरी तरह से औरतों से चल रही है, कब्जा कर लिया उन्होंने, और अब जो आदमी वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल कॉमिकल सटायरिकल मूवी और बहुत बहुत कमाल की है। यू विल लव इट एब्सोल्युटली। तो अगर आप देखना चाहें, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वॉच सम गुड कॉमेडी मटेरियल, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है इस हफ्ते का, ज़रूर देखिए। इन केस यू वॉचिंग समथिंग, कोई ऐसी सीरीज है, कोई मूवी अगर आप देख रहे हैं और आपने नहीं देखी है तो मुझे बताइएगा। एक भाई कह रहे हैं, भाई एक मूवी आपने कुछ दिनों पहले बताई थी, मैं भूल गया, दिनों पहले नहीं बताई होगी, बहुत टाइम हो गया होगा। क्या कह रहे हैं, एक अच्छी हॉरर बताइए। हॉरर कैसी वाली हॉरर देखनी है आपको? देखो हॉरर भी बहुत किस्म की है, तो कौन सी वाली हॉरर देखनी है आपको? इसमें आपको लगे ये कौन सा किधर से आएगा, वैसी वाली हॉरर देखनी है या फिर साइकोलॉजिकल देखनी है? एक मूवी है डिसेंट, इफ़ यू हैवंट सीन इट देखिएगा। उसमें कुछ एक ग्रुप होता है वो डिसेंट करता है, नीचे की तरफ जाता है गुफा के अंदर, और फिर बहुत कुछ होता है। मैं कुछ नहीं बताऊँगा बिकॉज पूरा ना मामला ख़राब हो जाएगा, शॉक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पर द डिसेंट या आर्ट डिसेंट ऐसी कुछ करके नाम है, लेट मी सी, द डिसेंट यही नाम है मेरे ख्याल में, द डिसेंट, हाँ द डिसेंट नाम है। 2005 में ही आई थी मूवी, बहुत कमाल की। इसकी रेटिंग से मत जाना, ये मूवी उसमें उस कैटेगरी में आती है जहाँ पे शुरुआत में लोगों ने कहा ये क्या मूवी है, लेकिन बाद में जाके हिट हो गई। रोटन टोमेटोज में भी इसको अच्छा खासा रेट किया, 87% है उस पर, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज एवर। बाकी हिंदी में क्या, हिंदी में देखो, हिंदी में कैसी वाली मूवी जाननी है आपको ये बताओ, कौन सी वाली मूवी बताओ, मतलब हॉरर बताऊँ, कौन सा जॉनर चाहिए आपको, उसके हिसाब से फिर मैं बात करूँगा। अगर आपने कुछ देखा तो आप भी बता सकते हैं, बिकॉज आई लव टू शेयर फ्यू थिंग्स। अगर आपने देखो अभी तो मैं ये सीरियसली कहूँगा कि एक अंडररेटेड मूवी जो आके चली गई, लोगों ने देखी नहीं देखी बात बहुत करी थी, वो हिंदी में जो मूवी आई थी तुम्बाड़। भाई जिसने अभी तक नहीं देखी, इफ़ यू आर लिविंग अंडर द रॉक और आप कह रहे हैं कि इंडिया में हॉरर मूवी इतनी अच्छी नहीं बन रही है, तो यू शुड वॉच तुम्बाड़। अभी भी वक्त है, देख लो भाई। मूवी जब रिलीज हुई थी तो कुछ नहीं कर पाई थी, और फिर लोगों ने इसको देखा और सराहा। बहुत बहुत क्रिएटिव जीनियस है ये मूवी, ज़रूर देखिएगा इफ़ यू हैव मिस्ड इट। तुम्बाड़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर फ्लिक्स एवर। मगर आपके जहन में भी कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा 666-22107 पर। बाकी कमर्शियल हिट्स तो लोग देखते रहते हैं, बहुत सारी कमर्शियल मूवीज़ आके चली भी गई हैं, बट इफ़ यू हैवंट सीन दिस वन, अरे लाला मत कर लाला, ज़रूर देखना। यूसुफ भाई, अच्छा उन्होंने पुराने मैसेज पर रिप्लाई किया, भाई मुझे कॉल कर रहे हैं, भाई मैं कॉल तो नहीं उठा पाऊंगा आपकी, मगर आप जो है मैसेज किया आपने वॉइस नोट एक मिनट का किया है, क्या नाम है इनका, शहराज मलिक साहब। शहराज भाई बात कर लेंगे, अलग से कोई टेंशन नहीं, एक मैसेज है जो भी हो, लेकिन अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो। तो भाई अब तुम्बाड़ देखो, मैं आपको तुम्बाड़ ही सेलेक्ट सजेस्ट करूंगा, यू शुड वॉच इट, आई थिंक आपको इजीली मिल भी जाएगी। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छे से रिटन है। क्या होता है कि राइटर्स जो है कई मरतबा मूवी बनाते हैं, और हमारी तरफ की स्पेशली परेशानी है कि मूवी का बिगिनिंग बहुत अच्छी होती है। मकसद मुझे लगता है राइटर्स की होता है इंटरवल तक बढ़िया चल जाए बस पिक्चर, इंटरवल के बाद संभाल लेंगे, फिर वो इंटरवल के बाद कुछ भी लिख देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है, वो पता नहीं जल्दबाजी है कि जो स्टूडियोज़ हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनका प्रेशर है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, बट इतना है कि कुछ जो बहुत वेल रिटन मूवीज़ हैं उनमें से एक तुम्बाड़, इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर, बहुत शानदार, बहुत अच्छी, क्लाइमेक्स तक जाते जाते बीच में इंटरवल भी आपको उतना ही शॉकिंग लगेगा जितना इसका क्लाइमेक्स। एक मैसेज है,
क्या है, तेरे नाम हमने किया है जीवन, अच्छे पुरानी पुराना मैसेज है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। वैसे इनहेरिटेंस हॉरर है, कोर्ट में देखी थी, दो दिन सो नहीं पाया। इनहेरिटेंस बहुत बढ़िया है। एक और मूवी बताता हूँ मैं, एक सेकंड मैं इसका नाम कंफर्म कर लूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट सीन इट, कुछ टाइम पहले देखी थी। सही बता रहा हूँ क्या मैं, एक सेकंड, हाँ कोहेरेंस। बहन मैं आपको मूवी लिख के दे रहा हूँ, वॉच दिस वन, ओके। एंड ये मूवी आप देखें, कोहेरेंस नाम है मूवी का। ये 2013 में रिलीज हुई थी। जिसको ऐसी मूवी देखनी है ना कि मतलब आप, आपका दिमाग एकदम इधर का उधर हो जाए और आप मूवी देख के उठाएं, बोले भाई ये क्या देख लिया बाबा, ये वैसी मूवी है। कोहेरेंस भी बहुत कमाल की है और इसमें कोई ऐसा हॉरर नहीं है, तो ये मैं समझिएगा मैं सिर्फ हॉरर ही बता रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया है, इट्स अ साइकोलॉजिकल, प्योर साइक

साइकोलॉजिकल मूवी जो आपके माइंड से खेलना शुरू करेगी शुरुआत से बिल्कुल आखिर तक, और आप बस हर से हैं है? ये क्या हुआ ऐसा निकलता चला जाएगा। घड़ी में भी ऐसी है देख के मुझे हो रहा है, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगा, 6:50 ऑलरेडी हो चुके हैं। कहानी में भेज दूंगा आपको, इंशाल्लाह कल 5 बजे मुलाकात होगी, मगर उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज़ मुझसे भी जुड़िएगा, आई नो आई एम नॉट एक्टिव, मगर प्लीज़ मैसेज आपके देख के अच्छा लगता है। सो दोहा वाला कबीर FM107, कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR। 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन, एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM107 पर इको स्विच। साथियों जरा सोचिए, एक सनी सा एक धूप वाला दिन है, वीकेंड है, पार्क हरा भरा है, हवा में ठंडी सी फ्रेश हवा चल रही है और लोग पिकनिक मना रहे हैं। क्या तो मस्त माहौल लग रहा है। सैंडविचेस, जूस, किलकारियां, सब कुछ परफेक्ट ना, मजा आ रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, अब एक और सिनेरियो इमेजिन करें। सेम पिकनिक है, सेम मजा है, लेकिन जब लोग पार्क छोड़कर जाते हैं पिकनिक खत्म करने के बाद, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, जैसे यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। यही होता है इको फ्रेंडली पिकनिक का मैजिक, मजे भी और जिम्मेदारी भी और जमीन की हिफाजत भी। तो भाई साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली पिकनिक के बारे में। इको फ्रेंडली पिकनिक होती क्या है भाई? देखें, इको फ्रेंडली पिकनिक का सिंपल सा मतलब है नेचर को नुकसान दिए बगैर आउटडोर फन एंजॉय करना। यानी प्लास्टिक प्लेट्स की जगह रीयूजेबल प्लेट्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पर रिफिलेबल बॉटल्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बैग्स की जगह पर कपड़े के बैग्स यूज कर लेना। ये सिर्फ पिकनिक का तरीका चेंज करना है साथियों, मजा कम नहीं होता इससे। अब आप पूछेंगे भाई ये क्यों जरूरी है? तो जरा सोचिए, एक छोटी सी पिकनिक से कितना वेस्ट बनता है। साथियों आप जानते हैं, सिर्फ 5 लोगों की पिकनिक से 1-2 किलोग्राम तक कचरा बन सकता है। और जब ऐसे आप कह लें कि मिलियंस ऑफ पीपल यू सी अराउंड, जब पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो दुनिया भर में हर साल पता है वो कितना वेस्ट जनरेट होता है? तकरीबन 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक प्लास्टिक बॉटल को खत्म होने में 400 से 450 साल लग सकते हैं। मतलब आज का जो आपने पिकनिक मनाई थी आज की, कल के बच्चों की दुनिया को वो अफेक्ट कर सकती है। देखें, एक नॉर्मल सी पिकनिक के बारे में अगर हम सोचें ना, तो लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और डिस्पोजेबल प्लेट्स ले जाते हैं। ये मैं भी करती हूँ अक्सर औकात, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना किया जाए। देखें, पिकनिक के बाद होता है ये कि सब कुछ डस्टबिन या कभी कभी वहीं पर छोड़ दिया जाता है जिस ग्राउंड पे आप बैठे होते हैं। रिजल्ट क्या होता है? गंदा पार्क और नेचर पर लोड आना। ये गलती हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हम सबसे ये गलती। अब इको पिकनिक में क्या होता है? घर से होममेड फूड लेकर जाना, स्टील बॉटल्स लेकर जाना, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाना, और वापस आते वक्त जब आप वहां से छोड़कर जा रहे हैं तो सब कुछ साथ लेकर वापस आना। पहले मैं भी नॉन इको पिकनिक मनाती थी, लेकिन अब मैं भी इको पिकनिक पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ कि घर से होममेड फूड लेकर जाती हूँ, स्टील वाली बॉटल्स लेकर जाती हूँ, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाती हूँ, और जब हम वहां से जाते हैं तो अपना सारा सामान साथ में वापस लेकर जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि क्लीन पार्क, जीरो गिल्ट, सेम फन, डिफरेंट इम्पैक्ट। नहीं, इको फ्रेंडली पिकनिक सिर्फ एक

0: सेल्स रिप्लेस कर सकती है। हर मिनट दुनिया में लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं। देखिए भाई, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज से आप साल भर में 100 से ऊपर प्लास्टिक आइटम्स कम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अब बात करें प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में साथियों, तो प्रैक्टिकल टिप नंबर 1 है, अपना घर से खाना लेकर जाए। पैकेजिंग, इससे वेस्ट जो होता है ना, पैकेजिंग वेस्ट, वो कम होगा। रीयूजेबल आइटम्स यूज करें, जैसे कि स्टील बॉटल्स हो गई, प्लेट्स हो गई और कटलरीज, ये बेस्ट हैं, घर से लेकर जाएं। प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड करें, सिंगल यूज चीजों से दूर रहें। चौथी टिप ये कि भाई वेस्ट वापस ले आए, यानी कि लीव नो ट्रेस रूल फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचुरल पैकेजिंग ट्राई करें, यानी कि कपड़े की बनी हुई बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इन्हें यूज करें। साथियों, इको फ्रेंडली पिकनिक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। अगर एक फैमिली भी हर वीकेंड इको फ्रेंडली पिकनिक मनाती है, तो इमेजिन करें कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है। तो साथियों, इको स्विच का आज का चैलेंज ये है कि नेक्स्ट पिकनिक पर सिर्फ 3 चीजें जरूर ट्राई करें। नो सिंगल यूज प्लास्टिक, रीयूजेबल आइटम्स यूज करें, सारा वेस्ट वापस लेकर आए और देखें पिकनिक का मजा भी बेहतर हो जाता है और हमारी अर्थ भी, यानी कि हमारी जमीन भी खुश रहती है। इसी के साथ आप सुन रहे थे सफा के साथ इको स्विच ऑन FM 107, जहां छोटा सा स्विच बड़ा चेंज लाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
5: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी। One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
7: One Step to 2030.
1: और आज भी मैं अपने कल वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज भी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स मेटावर्स की और इकोनॉमी की। तो कल मैंने आपसे बताया था कि हाँ, किस तरह से जो है मेटावर्स पे जॉब्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स अपने आप में है क्या, वर्चुअल दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। कल हमने इस पर हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। आज बात करेंगे बिजनेस और ट्रेड की। जी हाँ, मेटावर्स एक बिजनेस हब बन चुका है। कंपनीज वहाँ अपने स्टोर्स ओपन कर रही हैं, ब्रांड्स अपने वर्चुअल शोरूम्स बनाएंगे जो और ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं लोग डिजिटल एसेट्स यानी NFTs जो है सेल करेंगे। सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी है, डिजाइन है, एंटरटेनमेंट है, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांजैक्शंस जो है वो फास्ट और डिजिटल होंगे और ग्लोबल लेवल पर ट्रेड पॉसिबल होगा। वहीं अगर इसके मैं कुछ फायदे गिनवाऊं तो देखिए, दुनिया की किसी भी हिस्से से लोग बैठ कर काम कर सकते, यानी उनके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्पेस की अब जरूरत ही नहीं हो, लोग जो है लो कॉस्ट पर बिजनेस करेंगे, ये भी एक बड़ा फायदा है। फिर बात की जाए एक और अगर फायदे की, तो एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिल रही है। यू नो, लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए आइडियाज बना सकते हैं। वहीं पर लोग घर बैठे काम भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, चीजें आसानी से जो है ना एक्सेसिबल है। वहीं इनके रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो हमें और आपको समझ में आता है वो है सिक्योरिटी इश्यूज, हैकर्स और फ्रॉड का रिस्क, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। फिर एक और रिस्क की बात की जाए वो है आइडेंटिटी थेफ्ट, लोग फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं और करेंगे भी। वहीं एक और चीज जो हमें और आपको बेचैन कर देती है वो है एडिक्शन, लोग रियल दुनिया से दूर होकर इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा ना घुस जाएं कि रियल दुनिया का जो उनका अपना एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाए। फिर एक चीज आती है समझ में, इनइक्वालिटी, हर कोई आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जिसके पास भरपूर पैसा होगा वो तो एडवांस्ड तरीके से पैसे बनाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा। देखिए इसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा, मेटावर्स लोगों के सोशल इंटरेक्शंस को चेंज कर देगा, आजकल के बच्चे भी ना ज्यादा टाइम वर्चुअल दुनिया में ही गुजारना पसंद करते हैं, वही उनको लगता है कि हमारी रियल दुनिया है। आने वाले वक्त में ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी, लोग दूर रहकर भी कनेक्टेड तो होंगे लेकिन रियल रिलेशनशिप वीक हो जाएंगे। फ्यूचर में मेटावर्स एक फुल्ली फंक्शनल इकोनॉमी बन सकता है, जहां लोग काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी डिजिटल लाइफ बनाएंगे। हो सकता है कि लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में गुजारें, लेकिन नतीजा क्या है पता नहीं। मेटावर्स इकोनॉमी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का काम करने का तरीका बदल सकता है और बदल रहा है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी है, जहां मैनेज करना, जिन्हें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से यूज किया गया इसे तो मेटावर्स एक नया डिजिटल सिविलाइजेशन भी बन सकता है, और अगर सही तरीके से इसे यूज ना किया जाए तो शायद ये आपके और हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। फिलहाल सही इस्तेमाल, गुड बैलेंस, ये हमेशा हम सब के लिए बेस्ट टेक अवेज है। अब इन्हें अप्लाई करना और इन पर काम करना और खुद को इस एडिक्शन से दूर रखना, अभी हमारी और आपकी समझ से ये बात थोड़ा दूर है ऐसा लगता है। चलिए फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इस टॉपिक से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ कल वापस हाजिर होंगे इसी सेगमेंट में जिसका नाम है वन स्टेप टू 2830। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए, और जो रियल वर्ल्ड है फिलहाल जिसमें हम हैं, रियल कनेक्शंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, और देखते हो सुनते रहिए फ्रॉम 107 दिल से देसी।
7: वन स्टेप टू 2830।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम अक्सर कहते हैं कि मैंने इतने पारे पढ़ लिए, मैंने इतनी मरतबा कुरान ख़त्म किया, ये यकीनन बायस अजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज में सिर्फ एक ही आयत दोहराते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो आयत थी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें माफ़ फरमा दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। सोचिए सामने किराम, पूरा कुरान आप सल्लम को पढ़ना आता था, याद था, लेकिन एक आयत ने आपके दिल पर ऐसा असर किया कि पूरी रात उसी को दोहराते रहे। यही तदब्बुर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, कुरान को शेर की तरह तेज़ी से न पढ़ो और न खजूर के दानों की तरह जल्दी जल्दी बखेर दो, बल्कि उसके अजायब पर ठहरो, उसके ज़रिए दिलों को हरकत दो, और तुम में से किसी की फ़िक्र सिर्फ सूरत ख़त्म करना न हो। कितनी खूबसूरत नसीहत है सामिने किराम। हमारे तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे क्या फरमा रहे हैं। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रही अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है, जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं, और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे, तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम ऐसी बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है लेकिन सेहत और फिटनेस के लिए बेहद अहम है। तो आज हम बात करेंगे वर्जिश यानी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग की अहमियत क्या है। बहुत से अफराद एक्सरसाइज शुरू करते हैं जैसे कि दौड़ना, वजन उठाना या और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर देते हैं, जबकि जिस्म को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग दरअसल मसल्स, जॉइंट्स और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्टिव करने के लिए या हरकत करने के लिए तैयार करने का एक मौसर तरीका है। एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग के कई फायदे हैं। सबसे अहम फायदा ये है कि ये मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है या खून की रवानी को बेहतर बनाती है। जबकि ब्लड ज़्यादा मकदार में मसल्स तक पहुंचता है तो उन्हें ऑक्सीजन और गजाइत बेहतर अंदाज में मिलती है, जिससे वो एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग जिस्म की लचक में इजाफा करती है और अगर जो मसल्स हैं सख्त हों और इससे जो एक्टिविटी है वो कम हो सकती है, इसी तरह चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेचिंग मसल्स को नरम और लचकदार बनाती है जिससे जिस्म ज़्यादा आसानी से हरकत कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग मसल्स और इसके साथ साथ जोड़ों की हरकत को भी बेहतर बनाती है। मिसाल के तौर पर कंधों, घुटनों और जो कोहलों के जोड़ एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं। एक्सरसाइज से पहले हल्की फुल्की जो डायनामिक स्ट्रेचिंग जैसे कि बाजू घुमाना, टांगों को हिलाना या हल्की वॉक करना जिस्म को गर्म करने में मदद देती है। इससे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती है और जिस्म अचानक दबाव का शिकार नहीं होती है। स्ट्रेचिंग ना सिर्फ जिस्म बल्कि जहन को भी वर्जिश के लिए तैयार करती है। चंद मिनट की स्ट्रेचिंग इंसान की तवज्जो और यकसुई बढ़ा सकती है जिससे एक्सरसाइज ज़्यादा मौसर और महफूज हो जाती है। याद रखिए स्ट्रेचिंग के दौरान जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा ना खींचिए और हर हरकत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता कीजिए और अगर दर्द महसूस हो तो फौरन रुक जाइए। बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और खिलाड़ियों समेत हर उम्र के अफराद को अपनी जिस्मानी सरगर्मी से पहले मुनासिब स्ट्रेचिंग की आदत अपनानी चाहिए। मुख्तसरन ये कि एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग जिस्म को तैयार करती है, लचक बढ़ाती है और इसी तरह जो मुख्तलिफ इंजरीज हो जाती हैं उनके ख़तरे को कम करती है और एक्सरसाइज की जो कारकर्दगी है उसे भी बेहतर बनाती है।
3: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर के एक नौजवान फुटबॉलर यूसुफ अब्दुलरिसाक। या दोस्तों, 26 साल प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं यूसुफ और विंगर के तौर पर खेलते हैं। और दोस्तों, वो इस वक्त डोमेस्टिक फुटबॉल यानी कतर सज लीग में अल वखरा के लिए खेलते हैं, जबकि वो अल सद के प्लेयर हैं, लेकिन वो लोन के तौर पर वो अभी अल वखरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही कतर की कौमी फुटबॉल टीम की भी नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, अपनी तेज रफ्तार, ट्रांजिशन स्पीड और सीधी अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर यूसुफ को पिछले महीने मुनक्किदा वर्ल्ड कप फुटबॉल में कतर के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। और अगर उनके क्लब करियर के बारे में थोड़ा बात करूं तो पता चलता है कि यूसुफ ने अपनी फुटबॉल की तरबियत मशहूर एस्पार एकेडमी में हासिल की और 2018 में असद क्लब के साथ अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सितंबर 2025 में उन्हें ज्यादा मुसलसल प्लेइंग टाइम देने के लिए एक सीजन के लोन पर अल वखरा भेजा गया। 2025-2026 सीजन के डोमेस्टिक लीग में उन्होंने 4 गोल स्कोर किए और टीम के अटैक में अहम किरदार अदा किया। एंड मूविंग ऑन टू हिज इंटरनेशनल करियर, यूसुफ 2019 से कतर की सीनियर कौमी टीम का हिस्सा है। वो कतर की तारीखी 2023 AFC एशियन कप जीतने वाले स्क्वाड में भी शामिल थे और पिछले महीने मुनक्किदा, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैचेस में भी उन्होंने कतर के लिए कई अहम मुकाबलों में शिरकत की और अपनी स्पीड और अटैकिंग खेल से टीम को मजबूती फराहम की। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: One hit music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: बस बहुत हो गया रूटीन. Need an escape. एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें.
7: आज ही राबता करें
6: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
8: दोस्तों रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है. ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है. रात के अंधेरे में दूर गाड़ियों पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है. हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं. हमेशा याद रखें रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें. बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है. हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो. अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात.

0: FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. पर डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो

0: मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने प्रोग्राम में, दिल से जुड़े प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां हर रोज की कहानी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को यादगार बना देती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर में पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है। और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कहीं ले जाती है, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। और आज की जो हमारी मेहमान हैं, आप कतर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फैकल्टी मेंबर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। तालीम के शोबे में 25 साल से ज्यादा का वसी और कीमती तजुर्बा रखती हैं। सऊदी अरब और रियासत कतर में मुख्तलिफ इदारों में तालीम देने का उनका सफर बहुत ही नुमाया रहा है। आपने अपने करियर के दौरान किंडरगार्टन से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के तलबा को तालीम दी, जिसके जरिए आप मुख्तलिफ उम्रों और जहनी सतह के स्टूडेंट्स की जरूरियात को समझने का गहरा तजुर्बा भी रखती हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन और असरी टीचिंग मेथडोलॉजीज पर आपकी मजबूत पकड़ आपको एक मौसर मुअल्लिमा बनाती हैं। तालीम से गहरी लगन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जज्बे के साथ आप हमेशा ऐसी लर्निंग एनवायरमेंट्स क्रिएट करने पर जोर देती हैं जो एंगेजिंग हो, इंक्लूसिव हो और स्टूडेंट सेंटर्ड हो, जहां तालीमी तरक्की के साथ साथ शख्सियत भी बराबर की अहमियत रखती हो। ख्वातीन हजरात, आज हम दोहा डायरीज में नुज़हत परवीन साहिबा का दिल से खैर मकदम करते हैं। आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नुज़हत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला कि हमें टाइम दें और हमारे साथ अपनी कुछ जो कहानी है वो शेयर करें।
2: आपका मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे लायक समझा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम एंड FM 107।
1: थैंक यू सो मच मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हर उस लायक हैं कि हम आपकी कहानी जानें और आपसे बातचीत करें। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। मैम, अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें, एक टीचर और एक इंसान के तौर पर, तो वो क्या होंगी?
2: देखिए, हर इंसान के अंदर 3 शख्सियत, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया है जी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी खासियत होती हैं, लेकिन मैं अगर अपने आप को डिफाइन करूँ तो आई विल से लाइक आई एम वेरी क्यूरियस एंड परसिस्टेंट एंड आई एम वेरी कंपैशनेट। क्यूरियस इसलिए क्योंकि जिस एजुकेशन फील्ड से मैं हूँ वो एवरी डे इज अ डे ऑफ लर्न। आप हर रोज कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और परसिस्टेंट तो हम सभी हैं क्योंकि हम अगर हम गिव अप नहीं कर सकते। हमें किसी भी टास्क पे रहना पड़ता है क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी परसिस्टेंट और कंपैशनेट। एक टीचर का अगर वो केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे ख्याल से वो टीचर नहीं।
1: क्या बात है मैम, दोहा में एक टीचर की जिंदगी का एक आइडल या रिलैक्स

0: बैलेंसिंग दिन आपके लिए कैसा होता है?
1: एक परफेक्ट डे सरवत साहब बैलेंस होना चाहिए बस मेरे हिसाब से, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस रखें। क्योंकि एक परफेक्ट डे ये है कि आप अपने फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, और आप अपने प्रोफेशन को भी नहीं कर सकते। तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है जब आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके करते हैं। तो फॉर मी एनी प्रोफेशन, इफ यू बैलेंस योर लाइफ, दैट इज द परफेक्ट।
0: क्या बात है भाई। मैम, टीचिंग ने आपकी पर्सनैलिटी और सोच को किस तरह से शेप किया है, कुछ शेयर करना चाहती हैं?
1: जी, टीचिंग ने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा पेशेंट, पैथेटिक एंड ओपन माइंडेड बनाया है। बिकॉज जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनको उनके एनवायरमेंट को समझना, उनके बैकग्राउंड को समझना, उनकी जरूरत को समझना, ये सब बहुत जरूरी होता है। एक एकेडमिक से पहले एक टीचर्स को ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे ये बहुत अच्छे से सिखाया है कि एक ये लर्निंग जो है ना, वो लाइफ लाइन प्रोसेस है। एक स्टूडेंट एकेडमिक्स पे डिपेंड नहीं करता है, टीचर के मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है।
0: सही। चलिए मैम, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। कुछ पर्सनल और फैमिली के हवाले से सवाल करना चाहूंगा मैं। आपकी दोहा की जर्नी शादी के बाद शुरू हुई, ऑब्वियसली यहाँ आने का फैसला कैसा था?
1: जी बिल्कुल, शादी के बाद हम दोहा आए थे। ये फैसला मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला था, क्योंकि शुरू में जब आप पापा हूँ, क्योंकि भी नए माहौल, नई जिम्मेदारियाँ, एक चैलेंज था। लेकिन मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज्यादा चैलेंजिंग मुझे इसलिए नहीं लगा कि आई स्पेंड माय अराउंड 9 years ऑफ माय लाइफ इन सऊदी अरब। तो दोहा का माहौल मुझे कुछ मिलता जुलता लगा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जब लोग आते हैं अपने मुल्क से, दूसरे मुल्क, तो यस, इन द बिगनिंग इट इज रियली चैलेंजिंग एंड एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ का। और इट वॉज नॉट दैट चैलेंज फॉर मी, बट आई एंजॉयड कमिंग फ्रॉम डे वन।
0: क्या बात है। जब आप दोहा आई तो करियर और जिंदगी के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी या रही?
1: जब मैं दोहा आई, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे अपने करियर में ग्रोथ के दिक्कत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंशाल्लाह। आई वाज थिंकिंग दैट, और वो मिली। वो मिली भी, क्योंकि दोहा बहुत ही सेल्फ, कहते ना, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर आप देखें एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे। तो मैं बहुत खुश थी जब मैं आई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे मेरी करियर को एक परवाज मिलेगा।
0: वाह।
1: और वो मुझे मिला भी।
0: वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दोहा का पहला इम्प्रेशन क्या था, और वो भी उस टाइम पे?
1: As soon as I stepped out of the airport, my first impression कि दोहा इज अ वेरी क्लीन, ब्यूटीफुल, मॉडर्न एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात कि मैं जब शुरुआत के दिनों में थी तो हमारी फ्लाइट रात में लैंड हुई थी, तो इट वॉज वेरी सेफ। आई फेल्ट सो सेफ कि हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, कोई मसला नहीं, कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं, कुछ नहीं। आई वॉज एट पीस। बहुत ही पुरसकून, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्प्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर।
0: क्या बात है। शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और नए एजुकेशनल एनवायरनमेंट में एडजस्ट का कैसा रहा?
1: As I told you, सरवर साहब की, for me it was not that challenging, क्योंकि मैं सऊदीया से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था। बट हाँ, दूसरी कंट्री आप जाते हैं तो दूसरे कल्चर होते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम में काम किया हुआ था मैंने, तो इसलिए मुझे मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट की समझ थी, तो इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग फॉर मी। बट हर जगह आपको अपना कल्चर, अपना वर्क स्टाइल होता है, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे उसमें आप एडजस्ट हो जाते हैं। चैलेंजेस तो आपको सिखाते हैं लाइफ।
0: सही सही, क्या बात है मैम, बहुत खूब। दोहा में टीचिंग करियर कंटिन्यू करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका?
1: दोहा में टीचिंग करियर कंटिन्यू किया मैंने, इसका बहुत पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस आ गया। यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ नेशनलिटीज और बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ काम करने का मौका मिला, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें मेरी टीचिंग स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को

0: से बहुत डेवलप किया. अपॉर्चुनिटी बहुत थी, क्लासरूम में एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता था, हर स्टूडेंट एक नई स्टोरी के साथ आता था, एक नए बैकग्राउंड के साथ आता था. तो ओवरऑल आई से दोहा ने मुझे बहुत प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाया.
1: क्या बात है. तो क्या टीचिंग सिस्टम या स्टूडेंट्स के कल्चर में कोई ऐसा फर्क था जिसने आपको सरप्राइज किया?
0: ऑनेस्टली बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं लगा था. अगेन आई विल से कि मैं जब सऊदीया में थी तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बट यहाँ आने के बाद मेरी इतना सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मैंने वहाँ भी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज को पढ़ाया हुआ था. तो लेकिन ये था कि मैंने अरबिक नेशनैलिटीज को यहाँ पे आके ज्यादा पढ़ाया, यहाँ मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली. एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टीचिंग द डिफरेंट कल्चर, बिकॉज यहाँ पे मैंने खुद सीखा बहुत, सिखाने के तौर पर मैंने खुद बहुत सीखा.
1: क्या बात है. तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि ये फैसला सही था या नहीं?
0: Honestly, I never used to question whether the decision was right or wrong. हर नए सफर की तरह कुछ challenges जरूर आते हैं, लेकिन मैंने उनको ऐसे growth की तरह से लिया कि ये मेरी लाइफ लॉन्ग जो जर्नी होती है आपकी, उसकी में एक ग्रोथ का काम करेगा, एक लेवरेज का काम किया इसने मुझे. इसने मुझे प्रोफेशनली बहुत डिवेलप किया और मुझे ऊपर उठाया, मेरी स्किल्स को बहुत डिवेलप किया, स्टेबिलिटी दी मुझे, नए एक्सपीरियंस हासिल हुए. तो आई जस्ट से कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि फैसला सही था गलत था. आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट.
1: क्या बात है. आइए मैम अब दूसरे सेगमेंट की जाने पर चलते हैं. कुछ हार्ड डेज, स्ट्रॉन्ग डेज, इमोशंस, एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ सवाल हैं मेरे पास. क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई या होमसिकनेस महसूस हुई, खासतौर पर शुरू के दिनों में?
0: देखिए सर साहब, हम सब अजनबी हैं इस मुल्क में, कहीं ना कहीं अपना मुल्क तो याद आता है.
1: सही.
0: और शुरू के दिनों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है. नया मुल्क है, नया माहौल है, और अपने घर वालों की याद, अपने वालदैन की याद, अपने भाई बहनों की याद बहुत सताती है शुरुआत के दिनों में.
1: सही, सही.
0: लेकिन दोहा में एक चीज है, आपका ये जो सेफ एनवायरनमेंट और वेलकमिंग एनवायरनमेंट है ना, इसने कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट किया कि बस कि ये हमारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है कि यहाँ पे.
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब. जब घर और अपने शहर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी, कैसे समझाती थी?
0: जब घर अपने शहर याद आता है तो मैं अपने करियर की गोल पर फोकस करती हूँ. मैं अपने आप को समझाती थी कि मैं किस लिए हूँ यहाँ पर.
1: वाह.
0: मैं किस मकसद से आई हूँ यहाँ पर. और यस, अपने पेरेंट्स को कभी कॉल करती थी तो उसमें मुझे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिलता था, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे. और मैं उनसे डिस्कस भी करती थी अपनी चीजों को, तो वो मुझे करते थे कि आप किस गोल की भी कही है बेटा, आपको अपने गोल पे फोकस रहना है. तो आप अगर जिंदगी में कोई गोल है ना, तो सारी चीजें एक साइड हो जाती
1: है. क्या बात है मैम. एक सवाल जो हर वर्किंग लेडी के लिए काफी मायने रखता है, टीचिंग और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना कैसा रहा?
0: इट इज रियली चैलेंजिंग फॉर एनी वुमन, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो. लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले, इवन अगर आप हाउस मेकर हैं, कोई आप जॉब नहीं भी करती है, तो सबसे पहली चीज होती है टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि देखिए ना, जो वुमेन को कहा जाता है मल्टी टास्क, क्यों कहा जाता है कि वो एक ही जगह रह के वो हर तरह के काम करती हैं, बच्चों को पालने से लेके, घर संभालने से लेके, अपने प्रोफेशन से लेके. तो ये अगर आपने टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीख लिया तो सर्वर साहब एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये दो चीजें मैं समझती हूँ, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आपको बना देती है. आपको फिर कोई भी चीज आपके रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, आपको नहीं लगता कि ये एक मेरे रास्ते का वो है पत्थर है. नहीं, अगर आपने डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखा तो आप सब कुछ पा लें, सब कुछ आप सक्सेस आपकी पलवों में होगी.
1: क्या बात है इंशाल्लाह ताला. मैम जैसे आपने मेंशन किया कि आप पहले सऊदी में काफी वक्त गुजारा, उसके बाद दोहा तशरीफ लाई, तो क्या कभी ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा?
0: जी हाँ, जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं वाकिफ भी थी यहाँ के माहौल से.
1: एक फिक्र होती है, एक परेशानी होती है.
0: लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस कभी वेस्ट नहीं जाते. तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे पिछले एक्सपीरियंस मैंने गेन किए थे सऊदीया में, तो बहुत सपोर्ट किया मुझे. मतलब आई वुड नॉट से कि आई स्टार्टेड हियर फ्रॉम द स्क्रैच. मैंने मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बड़ी मदद की दोबारा से खड़े होंगे. आप कह सकते हैं एक सीढ़ी की तरह से मुझे मदद मिली है मेरे पास.
1: क्या बात है. इसी के हवाले से एक दूसरा सवाल ये कि आपके शौहर साहब और फैमिली का इस सफर में क्या रोल रहा है.
0: बहुत बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं. कभी ऐसा भी होता था कि मुझे बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के जाना पड़ता था तो मेरा बेटा मेरी बच्ची के ध्यान रखता था, मेरे शौहर रखते थे. बहुत सपोर्ट किया फैमिली के सपोर्ट के बिना. इट वाज नॉट पॉसिबल.
1: क्या बात है.
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: आपकी दोहा लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसका जिक्र आप करना चाहें.
0: टर्निंग पॉइंट पूरी तरह से सेटल होना शुरू किया हुआ जब, तब कह सकते हैं कि प्रोफेशनली जब मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस मैंने महसूस किया तो उसको मैं कहती हूँ कि मैं वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. उसने मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया, ये लगा कि अब कोई भी चैलेंज मेरी लाइफ में आ जाए तो आई कैन इजीली ओवरकम दैट चैलेंज इन माय लाइफ.
1: क्या बात है.
0: बहुत प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाया मुझे दोहा ने.
1: बहुत खूब. दोहा की जर्नी और सऊदी की जर्नी, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आज पीछे देखते हुए कुछ एक सीख की मैं बात करूं तो कुछ ऐसी सीख है जो आपको मिली जो शेयर करना चाहती हूं आप.
0: यस, लुकिंग बैक टुडे द बिगेस्ट लेसन व्हाट आई हैव लर्नड इज हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू ओवरकम एनी चैलेंज. क्योंकि कभी कभी हम बीच में छोड़ देते हैं, हम कर नहीं पाते हैं चीजों को. आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है कई दफा लाइफ में. आपको लगता है कि ये चीज आपसे नहीं हो पाएगी तो इसमें आपको पेशेंस और परसिवरेंस की जरूरत होती है. और सबसे बड़ी चीज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिसिप्लिन. तो उसने बड़ा मतलब साथ दिया क्योंकि मैं जो हूँ एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ. मेरे फादर वाज इन एयर.
1: वाओ वाओ वाओ वंडरफुल. अच्छा
0: तो ये आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो हमारे खून में.
1: क्या बात है
0: तो उसने बड़ा सपोर्ट किया. तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ ये जो बचपन में चीजें हमने सीखी हैं वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं जरूर काम आती है.
1: क्या बात है खास तौर पे जो घर से तरबियत और तालीम मिलती है और वालदैन जो सिखाते हैं वो वाकई काम आता है. मैम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग और मेमोरी बिल्डिंग के हवाले से बात करते हैं. क्लासरूम का कोई ऐसा यादगार वाकया जो आज भी आपके दिल के करीब हो.
0: सर्वर साहब क्लासरूम का अगर मैं यादगार.
1: डेली कुछ ना कुछ नया होता है.
0: बहुत होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ होता है. वो बस ये है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि काइंडनेस, एम्पैथी एंड दूसरों की केयर करना सिखाना बहुत जरूरी है. क्योंकि एकेडमिक्स तो बच्चे कर लेते हैं.
1: सही.
0: बाइनों को खूब करते हैं बच्चे. लेकिन अगर हम अपने बच्चों को हमें उनको एक बेहतर सिटीजन भी बनाना तो उसके लिए हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होता है. तो जब मैं स्टूडेंट को एक दूसरे की मदद करते हुए देखती हूँ और रिस्पेक्ट करते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एकेडमिक्स में नहीं मेरे बच्चे सोशल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं.
1: वाह वाह बहुत अच्छे. क्या किसी स्टूडेंट ने कभी आपको ऐसा सबक या लेसन दिया जो आप खुद कभी नहीं भूल सकती.
0: यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी. मुझे अल्लाह ने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक यू कैन से स्कूल में जब मैं टीचिंग करती थी, हायर ग्रेड्स को पढ़ाती थी, तो आई गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. मतलब वो ब्लाइंड थे और आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वो नॉर्मल क्लासरूम में वो स्टूडेंट रहते थे. 3 से 4 बच्चे थे वो और नॉर्मल क्लासरूम में होते थे. उनके अपने नोट्स टेकर मशीन्स होती थी तो जब हम उनको पढ़ाते थे तो दे यूज्ड टू टेक द नोट्स इन देयर नोट्स टेकर मशीन. आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई वाज सो हैप्पी कि अल्लाह हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच दीज चिल्ड्रन. और एक नॉर्मल क्लासरूम सेटअप, उनकी जो हेड थी वो आवाज से मतलब उनके पास 7-8 साल के बाद गई, उन्होंने मुझे मेरी आवाज से पहचाना.
1: वाह वाह वाह वाह. ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि ये माशाल्लाह उनके पास कुव्वत होती है इस चीज की.
0: कुव्वत होती है जी. और मतलब उनको पढ़ाना एक इतना मतलब आपको कहते हैं ना आपकी सोल को जो चीज टच कर जाए. तो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे मिला उन बच्चियों को पढ़ाने से कि उनको मैं मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती. वो 4 बच्चियां मेरी लाइफ की जो है वो बहुत मतलब अगर कहती हूँ एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट मेरी लाइफ में कह सकते हैं या एक टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एजुकेशन की।
1: अच्छा, इसी से मुतालिक मैम, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी शख्सियत जिनका आप लेना नाम लेना चाहें जिन्होंने आपकी सोच या करियर को बदला?
0: उसमें है अपने वालिद साहब का नाम लूं।
1: वाह,
0: उन्होंने
1: क्या नाम है मैम उनका?
0: मोहम्मद नईम।
1: माशाल्लाह।
0: उन्होंने, आपको मैं एक छोटा सा एक वाक्य बताऊंगी, जब मैं स्कूल जाया करती थी, स्कूलिंग में करती थी, तो मैं साइकिल से जा सकती थी, तो एक बार मैं धूप में वापस आई, तो गर्मी, मई जून की गर्मी तो आपको मालूम है हिंदुस्तान की क्या होती है, तो मैं जब आई तो मैंने अपने अब्बा से कहा, मैंने कहा अब्बा कि जब मैं देखती हूँ ना कि कार में लोग बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं साइकिल पे चलूं।
1: एक बच्चे ने अपने वालिद से भाई जो बात सादगी से कही जा सकती है,
0: तो मेरे वालिद साहब का बड़ा प्यारा जवाब था, उन्होंने कहा कि बेटा आपने कार वाले को देखा, आपने कभी रिक्शे वाले को नहीं देखा कि जो खुद को साथ था दो और सवारियों को खींच रहा है। तो मेरे वालिद साहब की एक सीख जो मुझे आज तक याद है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने अगर लाइफ में स्ट्रगल करनी हो तो नीचे देखें, और अगर आपने लाइफ में सक्सेस लेनी है तो ऊपर देखें। तो अगर आपको स्ट्रगल करनी है तो रिश्ते वाले का जज्बा रखें, और सक्सेस चाहिए तो ये याद रखें कि ये कार में एक दिन मुझे बैठना,
1: बहुत
0: ये कार मेरी मम्मी चाहिए।
1: बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोहा में टीचिंग की सबसे पसंदीदा बात क्या है आपके लिए?
0: डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड, क्योंकि एक क्लासरूम में आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज मिलती हैं। और सबसे मजे की बात होती है जब लंच टाइम होता है, बच्चे का लंच बॉक्स खोलते हैं ना, इतना खूबसूरत वो मंजर होता है सबा भाई, तो क्या बताऊं कि बच्चों के रंग बिरंगे लंच बॉक्सेस में रंग बिरंगे खाने, रंग बिरंगी खुशबुएं, मतलब मजा आ जाता है, मजा आ जाता है, देख के मजा आ जाता है।
1: क्या बात, बहुत अच्छा। अगर आप अपनी जिंदगी पर डायरी लिखें तो उसका टाइटल क्या हो सकता है?

0: ट्रूथ, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड।
1: वाह, चलिए मैम अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। क्या दोहा में टीचिंग के दौरान कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जो याद है आपको शेयर करना चाहती हूँ?
0: जी बिल्कुल, हम एक बार मैं केमिस्ट्री लेसन ले रही थी, तो जब मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी तो आई रोट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एसपीएस 4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो एक बच्चा मेरे पास आता है कोई अपनी प्रॉब्लम लेके कि मिस ये कैसे होगा, ये कैसी रिएक्शन होगी। दूसरा बच्चा पीछे से आके केमिकल रिएक्शन से 2 मिटा देता है कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड से 4 मिटा देता था। तो पीछे से बच्चे कहते हैं मिस यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग। नहीं कहता है, मैं जब पलट के देखती थी तो वाकई वो गलत होती थी। मैं ये कैसे हो सकता, रिपीटेडली होता था वो। फिर मैंने उनको बाद में पकड़ा।
1: ओके वेरी गुड। ऑलराइट, क्या कभी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट ने ऐसा जवाब दिया हो जो आपको हंसने पर मजबूर कर गया?
0: जवाब तो नहीं, लेकिन एक इंसिडेंट बड़ा मजे का हुआ था। जब हम आपको तो पता हो ये सारी चीजें हम लोग भी कर चुके होंगे कहीं ना कहीं लाइफ में। जब मैं बोर्ड पे लिखी जाती थी तो एक बच्चा हमेशा विजिल करता था, सीटी बजाता था। और मैं जब पलटती थी तो कोई बोलते नहीं थे कि कितने विजिल किया। तो मैं बहुत दिनों तक मैं उस बच्चे को, मैंने कहा एक दिन तो पकड़ूंगी। तो मैं अटेंड किया कि मैं बोर्ड की तरफ लिखने जा रही हूँ और मैं एकदम घूम गई, वो बच्चा पकड़ा गया। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा आपको यू लाइक टू विजिल राइट? तो कहता यस। तो मैंने कहा चले आपका सिर्फ आज ये पनिशमेंट जो कह लें इसको या कुछ भी कह लें,
1: भाई सबक होता है बच्चों के लिए। तो
0: हाँ बच्चे, सबक आपका ये है कि आप यू लाइक टू विजिट तो टुडे यू विल विजिट। मैंने कहा आप कितनी देर तक विजिट कर सकते हैं? तो कहता आधे घंटे तक। मैंने कहा नहीं, आधा घंटा तो बहुत हो गया, आप सिर्फ 3 मिनट करेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे खड़े और पूरी क्लास आपको सुनेगी। तो ये उनका सबक था। तो वो बड़े खुश बोले। मैंने कहा लेकिन आप ये याद रखना कि 3 मिनट या मुझे खैर याद नहीं या 2 मिनट मैंने उनके साथ हूँ। मैंने कहा अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो आपको वो डबल हो जाएगा। तो वो बच्चा हुआ कि ये तो बहुत इजी है। मैं कहा चले फिर शुरू करें। तो उसने जब शुरू करी विसल तो बीच में कहता मैं मिस इट इज हार्ड। मैं कहता नो नो 4 मिनट। तो फिर कहता मिस नो नो आई सेड 8 मिनट। तो कहता है कि नहीं अब तो ब्रेक होने वाला है। तो देखिए बच्चे की जो आप ऐसा सबक दें जो बच्चे को भी जिंदगी भर याद रहे।
1: पीछे बहुत अच्छा मैसेज दे रही हैं आप एक्चुअली।
0: जी तो उनको ये समझ आई कि ये चीज जो हम एक फनी वे में ले रहे थे ये कितनी डिफिकल्ट भी हो सकती है।
1: क्या बात है। क्या किसी स्ट्रेंजर या कलीग ने शुरू के दिनों में आपकी ऐसी मदद की हो जो आप आज तक याद रखती हैं?
0: तो भाई एक नहीं है, बहुत है, बहुत है। शुरुआत में मैं सबसे अच्छी बात दोहा की ये है कि यहाँ पे लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब खुल के आते हैं। मतलब आपको आके पूछते हैं यू आर न्यू इफ यू नीड एनीथिंग वी आर ऑलवेज देयर। मेरी जितनी भी नेशनैलिटी, जितनी डिफरेंट नेशनैलिटी, मतलब मुझे अपनी पर्सनल से प्रोफेशनल लेवल तक सबने मदद की।

0: सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ का है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: हम भी वो हैं जो कभी

skočný. Maximum music, maximum fun. On FM 107. Dizzy. Yeah.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए।

कि वो मखलूकात भी जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, हर एक अपने अपने अंदाज में अल्लाह की हम तो तस्बीह कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उनकी ज़बान नहीं समझते। अल्लाह फरमाता है وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। सामने किराम, अब कुरान के एक नहायत बारीक उसलूब पर गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है मा फिस समावाती वल अर्द, बाज़ जगह फरमाया मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, यानी माँ का लफ्ज दोबारा लाया गया। देखा होगा आपने कहीं सुब्हानल्लाह मा फिस समावाती वल अर्द, कहीं सुब्हानल्लाह मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, यानी दो मरतबा लफ्ज माँ आया है। बज़ाहिर दोनों का तर्जुमा एक ही बनता है लेकिन कुरान में भाई कोई इजाफी लफ्ज तो नहीं, जब माँ दोबारा आया है तो गोया यहाँ कुछ अलग मतलब भी लिया गया है, यानी यहाँ जिन की मखलूकात पर अलग जोर दिया गया है। यहाँ मा फिस समावाती वल अर्द कह सकते थे जिससे माना अदा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ वमा फिल अर्द दोबारा जिक्र किया गया, वह कि यहाँ ज़मीन की मखलूकात पर कुछ ख़ास तवज्जो दी गई है कि ज़मीन का हर जर्रा भी अल्लाह की तस्बीह में शरीक है। ये ताकीद हमें मुतवज्जे करती है कि हम भी इस ज़मीन पर रहने वाली मखलूक है। अगर ज़मीन की हर चीज़ अपने रब की तस्बीह कर रही है तो फिर इंसान क्यों गाफिल रहे। अब सिर्फ ज़मीन वालों का जिक्र क्यों किया गया? कुरान में अक्सर ऐसा होता है कि तस्बीह का जिक्र करने के फौरन बाद इंसानों से मुतालिक अहकाम आते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला गोया ये फरमा रहे हैं देखो पूरी कायनात मेरी इताअत में है, अबे इंसान तुम भी अपनी जगह पहचानो, अपना मकाम जानो, तुम इस अजीम तस्बीह करने वाली कायनात से अलग नहीं हो। दो मकामात जहाँ सिर्फ अल्लाह का जिक्र है कुरान में, दो ऐसे मकामात भी हैं जहाँ तस्बीह के बाद ज़मीन वालों का जिक्र नहीं आता, वहाँ पूरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह ताला की सिफात पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ मकसद सिर्फ अल्लाह की अजमत, उसकी बादशाही, उसकी हिकमत और उसकी कुदरत को बयान करना है। इन आयात में गोया इंसान को दुनिया से हटाकर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। ये कुरान का एक हैरत अंगेज उसलूब है, कभी इंसान को मुखातिब करता है, कभी पूरी कायनात को, और कभी सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सामने रख कर दिल को उसकी मारिफत से भर देता है। सामने किराम, आखिर तस्बीह क्या है? ये जो यसब्बिहु सब्बहा, ये मदनी सूरतों में ये जो इब्तदाई आगाज़ है इसका क्या मतलब है? यसब्बिहु तस्बीह क्या है? हम जब कहते हैं सुबहान अल्लाह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह हर नुक्स से पाक है। अल्लाह पर जुल्म का तसव्वुर नहीं, अल्लाह पर कमज़ोरी का तसव्वुर नहीं, अल्लाह पर भूल जाने का तसव्वुर नहीं, अल्लाह पर नाइंसाफ़ी का तसव्वुर नहीं, अल्लाह हर ऐब से मुनज़्ज़ह है। यही तस्बीह है सामने किराम। उलमा ने यहाँ इस सिलसिले में तस्बीह और हम के दरमियान एक नहायत खूबसूरत फ़र्क भी बयान किया है कि तस्बीह का मतलब है अल्लाह की ज़ात से हर नक्स को दूर समझना, और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की तमाम कामिल सिफात का इकरार करना। गोया पहले दिल को गलत तसव्वुरात से पाक किया जाता है, फिर उसमें अल्लाह की सही मारिफत भरी जाती है। पहले नफी फिर इस बात, पहले पाकी फिर तारीफ, इसीलिए कुरान में तस्बीह और हम्द अक्सर साथ साथ आते हैं। अब सामिन किराम, जैसा कि हमने पहले कहा था कि कुरान की हर सूरत अपने से पहले वाली सूरत से जुड़ी हुई है, अपने बाद वाली सूरत से भी, यही वजह है कि जब हम किसी सूरत का मुताला करें तो सिर्फ उसी सूरत पर नज़र न रखें बल्कि उसके पड़ोसी यानी उससे पहले और बाद की सूरतों को भी देखें। तो मदनी सूरतों में एक है सूरह सफ़ और एक है सूरह जुमा। तो सूरह सफ़ और सूरह जुमा के दरमियान चलें हम ताल्लुक़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सूरह सफ़ का आगाज़ होता है सुब्हानल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, यानी आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ ने अल्लाह की तस्बीह की। यहाँ फ़ेल माज़ी इस्तेमाल हुआ है जबकि सूरह जुमा शुरू होती है युसब्बिहुल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, यहाँ फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया है कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है और करती रहेगी। गोया एक सूरत माजी का यानी पास्ट का जिक्र है और दूसरी हाल और मुस्तकबिल का यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। दोनों को मिलाकर देखिए तो मालूम होता है कि अल्लाह की तस्बीह अजल से जारी है, आज भी जारी है और हमेशा जारी रहेगी। ये कुरान के हुस्न तरतीब का खूबसूरत नमूना है। तो सूरह सफ़ के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब करे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर के एक नौजवान फुटबॉलर यूसुफ अब्दुर्रिसाक। या दोस्तों, 26 साल प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं यूसुफ और विंगर के तौर पर खेलते हैं। और दोस्तों, वो इस वक्त डोमेस्टिक फुटबॉल यानी कतर स्टार्स लीग में अल वखरा के लिए खेलते हैं, जबकि वो अल सद के प्लेयर हैं, लेकिन वो लोन के तौर पर वो अभी अल वखरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही कतर की कौमी फुटबॉल टीम की भी नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, अपनी तेज रफ्तार, ट्रांजिशन स्पीड और सीधी अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर यूसुफ को पिछले महीने मुनक्किदा वर्ल्ड कप फुटबॉल में कतर के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। और अगर उनके क्लब करियर के बारे में थोड़ा बात करूं तो पता चलता है कि यूसुफ ने अपनी फुटबॉल की तरबियत मशहूर एस्पार एकेडमी में हासिल की और 2018 में असद क्लब के साथ अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सितंबर 2025 में उन्हें ज्यादा मुसलसल प्लेइंग टाइम देने के लिए एक सीजन के लोन पर अल वखरा भेजा गया। 2025-2026 सीजन के डोमेस्टिक लीग में उन्होंने 4 गोल स्कोर किए और टीम के अटैक में अहम किरदार अदा किया। And moving on to his international career, Yusuf 2019 से कतर की सीनियर कौमी टीम का हिस्सा है। वो कतर की तारीखी 2023 AFC एशियन कप जीतने वाले स्क्वाड में भी शामिल थे और पिछले महीने मुनक्किदा, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैचेस में भी उन्होंने कतर के लिए कई अहम मुकाबलों में शिरकत की और अपनी स्पीड और अटैकिंग खेल से टीम को मजबूती फराहम की। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम ऐसी बात करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन सेहत और फिटनेस के लिए बेहद अहम है। तो आज हम बात करेंगे वर्जिश यानी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग की अहमियत क्या है। बहुत से अफराद एक्सरसाइज शुरू करते हैं जैसे कि दौड़ना, वजन उठाना या और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर देते हैं, जबकि जिस्म को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग दरअसल मसल्स, जॉइंट्स और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्टिव करने के लिए या हरकत करने के लिए तैयार करने का एक मौसर तरीका है। एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग के कई फायदे हैं। सबसे अहम फायदा ये है कि ये मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है या खून की रवानी को बेहतर बनाती है। जबकि ब्लड ज़्यादा मकदार में मसल्स तक पहुंचता है तो उन्हें ऑक्सीजन और गजाइत बेहतर अंदाज में मिलती है, जिससे वो एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग जिस्म की लचक में इजाफा करती है और अगर जो मसल्स हैं सख्त हों और इससे जो एक्टिविटी है वो कम हो सकती है, इसी तरह चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेचिंग मसल्स को नरम और लचकदार बनाती है जिससे जिस्म ज़्यादा आसानी से हरकत कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग मसल्स और इसके साथ साथ जोड़ों की हरकत को भी बेहतर बनाती है। मिसाल के तौर पर कंधों, घुटनों और जो कोहलों के जोड़ एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं। एक्सरसाइज से पहले हल्की फुल्की जो डायनामिक स्ट्रेचिंग जैसे कि बाजू घुमाना, टांगों को हिलाना या हल्की वॉक करना जिस्म को गर्म करने में मदद देती है। इससे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती है और जिस्म अचानक दबाव का शिकार नहीं होती है। स्ट्रेचिंग ना सिर्फ जिस्म बल्कि जहन को भी वर्जिश के लिए तैयार करती है। चंद मिनट की स्ट्रेचिंग इंसान की तवज्जो और यकसुई बढ़ा सकती है जिससे एक्सरसाइज ज़्यादा मौसर और महफूज हो जाती है। याद रखिए स्ट्रेचिंग के दौरान जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा ना खींचिए और हर हरकत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता कीजिए और अगर दर्द महसूस हो तो फौरन रुक जाइए। बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और खिलाड़ियों समेत हर उम्र के अफराद को अपनी जिस्मानी सरगर्मी से पहले मुनासिब स्ट्रेचिंग की आदत अपनानी चाहिए। मुख्तसरन ये कि एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग जिस्म को तैयार करती है, लचक बढ़ाती है और इसी तरह जो मुख्तलिफ इंजरीज हो जाती हैं उनके ख़तरे को कम करती है और एक्सरसाइज की जो कारकर्दगी है उसे भी बेहतर बनाती है।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर इको स्विच। साथियों जरा सोचिए, एक सनी सा एक धूप वाला दिन है, वीकेंड है, पार्क हरा भरा है, हवा में ठंडी सी फ्रेश हवा चल रही है और लोग पिकनिक मना रहे हैं। क्या तो मस्त माहौल लग रहा है। सैंडविचेस, जूस, किलकारियां, सब कुछ परफेक्ट ना, मजा आ रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, अब एक और सिनेरियो इमेजिन करें। सेम पिकनिक है, सेम मजा है, लेकिन जब लोग पार्क छोड़कर जाते हैं पिकनिक खत्म करने के बाद, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, जैसे यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। यही होता है इको फ्रेंडली पिकनिक का मैजिक, मजे भी और जिम्मेदारी भी और जमीन की हिफाजत भी। तो भाई साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली पिकनिक के बारे में। इको फ्रेंडली पिकनिक होती क्या है भाई? देखें, इको फ्रेंडली पिकनिक का सिंपल सा मतलब है नेचर को नुकसान दिए बगैर आउटडोर फन एंजॉय करना। यानी प्लास्टिक प्लेट्स की जगह रीयूजेबल प्लेट्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पर रिफिलेबल बॉटल्स यूज कर लेना, प्लास्टिक बैग्स की जगह पर कपड़े के बैग्स यूज कर लेना। ये सिर्फ पिकनिक का तरीका चेंज करना है साथियों, मजा कम नहीं होता इससे। अब आप पूछेंगे भाई ये क्यों जरूरी है? तो जरा सोचिए, एक छोटी सी पिकनिक से कितना वेस्ट बनता है। साथियों आप जानते हैं, सिर्फ 5 लोगों की पिकनिक से 1 से 2 किलोग्राम तक कचरा बन सकता है। और जब ऐसे आप कह लें कि मिलियंस ऑफ पीपल यू सी अराउंड जब पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो दुनिया भर में हर साल पता है कितना वेस्ट जनरेट होता है? तकरीबन 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक प्लास्टिक बॉटल को खत्म होने में 400 से 450 साल लग सकते हैं। मतलब आज का जो आपने पिकनिक मनाई थी आज की, कल के बच्चों की दुनिया को वो अफेक्ट कर सकती है। देखें, एक नॉर्मल सी पिकनिक के बारे में अगर हम सोचें ना, तो लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और डिस्पोजेबल प्लेट्स ले जाते हैं। ये मैं भी करती हूँ अक्सर औकात, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना किया जाए। देखें, पिकनिक के बाद होता है ये कि सब कुछ डस्टबिन या कभी कभी वहीं पर छोड़ दिया जाता है जिस ग्राउंड पे आप बैठे होते हैं। रिजल्ट क्या होता है? गंदा पार्क और नेचर पर लोड आना। ये गलती हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हम सबसे हुई है ये गलती। अब इको पिकनिक में क्या होता है? घर से होममेड फूड लेकर जाना, स्टील बॉटल्स लेकर जाना, रीयूजेबल बॉक्सेस लेकर जाना।

0: और वापस आते वक्त जब आप वहां छोड़कर जा रहे हैं तो सब कुछ साथ लेकर वापस आना। पहले मैं भी नॉन इको पिकनिक मनाती थी, लेकिन अब मैं भी इको पिकनिक पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ कि घर से होममेड फूड लेकर जाती हूँ, स्टील वाली बॉटल्स लेकर जाती हूँ, रियूजेबल बॉक्सेस लेकर जाती हूँ, और जब हम वहां से जाते हैं तो अपना सारा सामान साथ में वापस लेकर जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि क्लीन पार्क, जीरो गिल्ट, सेम फन, डिफरेंट इम्पैक्ट। नहीं, इको फ्रेंडली पिकनिक सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसका रियल फायदा पता है क्या है? प्लास्टिक कम होता है, एनवायरमेंट क्लीन रहता है, जानवर सेफ रहते हैं, प्लास्टिक उनके लिए खतरा बन सकता है, नेचर खूबसूरत रहती है, पार्क्स और बीचेस क्लीन रहते हैं। बच्चों के लिए एक लर्निंग पॉइंट भी होता है, वो सीखते हैं कि छोटी हैबिट से बड़ा चेंज कैसे लाया जा सकता है। साथियों, कुछ फन फैक्ट्स आपको बताऊं। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को खत्म होने में 200 साल तक लग जाते हैं, एक रियूजेबल बॉटल एक साल में तकरीबन 150 प्लस प्लास्टिक बॉटल्स रिप्लेस कर सकती है। हर मिनट दुनिया में लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं। देखिए भाई, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज से आप साल भर में 100 से ऊपर प्लास्टिक आइटम्स कम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अब बात करें प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में साथियों, तो प्रैक्टिकल टिप नंबर 1 है, अपना घर से खाना लेकर जाएं। पैकेजिंग, इससे वेस्ट जो होता है ना, पैकेजिंग वेस्ट, वो कम होगा। रियूजेबल आइटम्स यूज करें, जैसे कि स्टील बॉटल्स हो गई, प्लेट्स हो गई और कटलरीज, ये बेस्ट हैं, घर से लेकर जाएं। प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड करें, सिंगल यूज चीजों से दूर रहें। चौथी टिप ये कि भाई वेस्ट वापस ले आए, यानी कि लीव नो ट्रेस रूल फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचुरल पैकेजिंग ट्राई करें, यानी कि कपड़े की बनी हुई बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इन्हें यूज करें। साथियों, इको फ्रेंडली पिकनिक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। अगर एक फैमिली भी हर वीकेंड इको फ्रेंडली पिकनिक मनाती है तो इमेजिन करें कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है। तो साथियों, इको स्विच का आज का चैलेंज ये है कि नेक्स्ट पिकनिक पर सिर्फ 3 चीजें जरूर ट्राई करें। नो सिंगल यूज प्लास्टिक, रियूजेबल आइटम्स यूज करें, सारा वेस्ट वापस लेकर, और देखें पिकनिक का मजा भी बेहतर हो जाता है और हमारी अर्थ भी, यानी कि हमारी जमीन भी खुश रहती है। इसी के साथ आप सुन रहे थे सफा के साथ इको स्विच ऑन FM 107, जहां छोटा सा स्विच बड़ा चेंज लाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है इल्म हासिल करने की अहमियत पर। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। इस्लाम ने इल्म को बहुत बुलंद मकाम अता किया है, क्योंकि इल्म इंसान को रोशनी देता है और उसे सही और गलत में फर्क समझने में मदद करता है। इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि तजुर्बे, ऑब्जर्वेशन और सीखने के जज्बे से भी हासिल होता है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन असल इल्म वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए। जब इंसान इल्म हासिल करता है और उस पर अमल करता है, तो वो अपने और दूसरों के लिए फायदेमंद बन जाता है। आज का अमल यह है कि रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: और आज भी मैं अपने कल वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. आज भी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स मेटावर्स की और इकोनॉमी की. तो कल मैंने आपसे बताया था कि हाँ, किस तरह से जो है मेटावर्स पे जॉब्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स अपने आप में है क्या, वर्चुअल दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है. कल हमने इस पर हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी. आज बात करेंगे बिजनेस और ट्रेड की. जी हाँ, मेटावर्स एक बिजनेस हब बन चुका है. कंपनीज वहाँ अपने स्टोर्स ओपन कर रही हैं, ब्रांड्स अपने वर्चुअल शोरूम्स बनाएंगे जो और ज्यादा बढ़ेंगे. वहीं लोग डिजिटल एसेट्स यानी NFTs जो है सेल करेंगे. सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी है, डिजाइन है, एंटरटेनमेंट है, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. ट्रांजेक्शन जो है वो फास्ट और डिजिटल होंगे और ग्लोबल लेवल पर ट्रेड पॉसिबल होगा. वहीं अगर इसके मैं कुछ फायदे गिनवाऊं तो देखिए, दुनिया की किसी भी हिस्से से लोग बैठ कर काम कर सकते, यानी उनके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी. वहीं पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्पेस की अब जरूरत ही नहीं हो, लोग जो है लो कॉस्ट पर बिजनेस करेंगे, ये भी एक बड़ा फायदा है. फिर बात की जाए एक और अगर फायदे की, तो एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिल रही है. लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए आइडियाज बना सकते हैं. वहीं पर लोग घर बैठे काम भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, चीजें आसानी से जो है ना एक्सेसिबल हैं. वहीं इनके रिस्क भी हैं. सबसे बड़ा रिस्क जो हमें और आपको समझ में आता है वो है सिक्योरिटी इश्यूज, हैकर्स और फ्रॉड का रिस्क. ये तो बहुत बड़ा रिस्क है. फिर एक और रिस्क की बात की जाए वो है आइडेंटिटी थेफ्ट. लोग फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं और करेंगे भी. वहीं एक और चीज जो हमें और आपको बेचैन कर देती है वो है एडिक्शन. लोग रियल दुनिया से दूर होकर इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा ना घुस जाएं कि रियल दुनिया का जो उनका अपना एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाए. फिर एक चीज आती है समझ में, इनइक्वालिटी. हर कोई आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाएगा. जिसके पास भरपूर पैसा होगा वो तो एडवांस्ड तरीके से पैसे बनाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा. देखिए, इसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा. मेटावर्स लोगों के सोशल इंटरेक्शंस को चेंज कर देगा. आजकल के बच्चे भी ना ज्यादा टाइम वर्चुअल दुनिया में ही गुजारना पसंद करते हैं. वही उनको लगता है कि हमारी रियल दुनिया है. आने वाले वक्त में ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी. लोग दूर रहकर भी कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन रियल रिलेशनशिप वीक हो जाएंगे. फ्यूचर में मेटावर्स एक फुल्ली फंक्शनल इकोनॉमी बन सकता है, जहां लोग काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी डिजिटल लाइफ बनाएंगे. हो सकता है कि लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में गुजारें, लेकिन नतीजा क्या है पता नहीं. मेटावर्स इकोनॉमी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का काम करने का तरीका बदल सकता है और

0: बदल रहा है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी हैं, जहां मैनेज करना, जिन्हें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से यूज किया गया इसे, तो मेटावर्स एक नया डिजिटल सिविलाइजेशन भी बन सकता है, और अगर सही तरीके से इसे यूज ना किया जाए तो शायद ये आपके और हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। फिलहाल सही इस्तेमाल, गुड बैलेंस, ये हमेशा हम सब के लिए बेस्ट टेक अवेज है। अब इन्हें अप्लाई करना और इन पर काम करना और खुद को इस एडिक्शन से दूर रखना, अभी हमारी और आपकी समझ से ये बात दूर है ऐसा लगता है। चलिए फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस टॉपिक से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ कल वापस हाजिर होंगे इसी सेगमेंट में, जिसका नाम है 1 Step to 28-30। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए, और जो रियल वर्ल्ड है फिलहाल जिसमें हम हैं, रियल कनेक्शंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, और देखते हो सुनते रहिए फिर 107 दिल से देसी। 1 Step to 20-30
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल आपका इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों आज का जो शो है या कहें आज का जो फ्रॉड का टॉपिक है वो जबरदस्त है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हो सकता है आप खुद फंसना चाहें या फंस जाएं। वेल बताता हूं कैसे। आजकल हो रहा है ये ड्राइविंग टेस्ट का फ्रॉड। कैसे होता है ये फ्रॉड इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं और फिर कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये होता ऐसे है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक कॉल या एक मैसेज आता है और आप ड्राइविंग जो क्लासेस हैं वो अपने लगातार चला रहे हैं, आप चाहे अपने मुल्क में हो चाहे कहीं पर भी हो। मुल्क में मतलब ऐसा है कि किसी भी शहर में किसी भी कंट्री में हो आप ड्राइविंग टेस्ट लगातार ले रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, और आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो करीब 2-3 महीने बाद होने वाला है। तो ऐसे में आपको लगता है टाइम बहुत है, लेकिन आप क्लासेस लेते रहते हैं। उसी दौरान आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आप अगर अपनी ड्राइविंग टेस्ट बढ़वाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 3 महीने बाद है, अब आप 15 दिन बाद या 5 दिन बाद कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। बड़ा आसान है, बस 50 कतरी रियाल या 100 कतरी रियाल आप इस लिंक पर क्लिक करके भरें और अपनी डेट जो है ड्राइविंग टेस्ट की वो चुने। 5 दिन बाद की डेट आपको दिखाएगा जब आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और आपको लगेगा कि ड्राइविंग टेस्ट आपका 5 दिन बाद है, लेकिन ये एक पूरी तरह से फ्रॉड है। आपको किसी भी तरह से ड्राइविंग टेस्ट के लिए कॉल या मैसेज नहीं आता है, और लोग अलग अलग ड्राइविंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर बनके या व्हाट्सएप का या एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे बनके आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, और उसमें कई बार ये लोग यू नो मिनिस्ट्रीज की ऐसी फोटो या ऐसी तस्वीरें लगाते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपका ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ 2 दिन में या 3 दिन में कर देंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आप डिटेल भरते हैं, सबसे पहले डिटेल उनके पास पहुंचती है, और हो सकता है कई बार इस तरह से काम होता है कि हो सकता है कि लिंक काम ही ना करे, क्योंकि डिटेल तो आपने दे दी है, लेकिन कई बार वो लिंक काम करेगी। वो लिंक में आप अपनी डिटेल डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, लेकिन 100 की जगह 1000 या 10000 कतरी रियाल एक बार में चला जाएगा जैसे ही आप OTP शेयर करेंगे या फिर उस वेबसाइट पे या फेक वेबसाइट पे पूरी डिटेल डाले। तो ऐसे में बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से इस तरह के फ्रॉड स्कैम में फंसने का डर होता है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपका जो टेस्ट है ड्राइविंग का वो जल्दी से जल्दी हो। आप चाहते हैं कि मुझे 4-5 महीना वेट ना करना पड़े, उससे पहले पहले मेरा टेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, और ऐसा होता भी नहीं है। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जो टेस्ट की डेट दी जाती है वो वहीं से उसी जगह से जाके आपको मैन्युअली अगर चेंज करवानी तो करवा सकते हैं। मोस्टली तो ये बाद की डेट होती है, पहले की डेट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर आपको चेंज करानी है तो आप मैन्युअली उसी ड्राइविंग स्कूल में जाकर डायरेक्ट बात करें जहां पर आपका नाम एनरोल है। वेल, अब बात करते हैं ऐसे में बचा कैसे जा सकता है। बचने का सिंपल ट्रिक है, बचने के लिए मैं बताता हूँ, फ्रॉड से बचने का बड़ा आसान तरीका है, लेकिन आसान है भी नहीं, क्योंकि इस तरह के लालच में आप फंस जाते हैं। आसान तरीका यह है कि किसी भी फ्रॉड लिंक या व्हाट्सएप या कॉल का जवाब न दें। अगर कॉल का जवाब दिया है तो उनकी इन बातों पे भरोसा ना करें। दूसरा, व्हाट्सएप के किसी भी लिंक पे किसी भी तस्वीर में क्लिक ना करें। आपके पास कॉल आए और वो ये कहे कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बाद की डेट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करें और कहें कि मैं डायरेक्ट उसी जगह यानी कि जहां पर मैंने एनरोल किया है वहां जाकर अपना काम करवा सकता हूं, मुझे आपकी या किसी और की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप बच सकते हैं, और उसके अलावा कहीं पर भी किसी भी लिंक पे अपना डिटेल ना डालें। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं जहां पर आपने एनरोल किया है, जिस स्कूल में जिस ड्राइविंग स्कूल में आपने एनरोल किया है, और आप ये भी कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपने लर्निंग लाइसेंस भी किसी से शेयर ना करें, और उसके अलावा अपना नंबर जो पर्सनल है वो इंस्ट्रक्टर से या बाकी किसी से जो उस जगह पे यानी कि ड्राइविंग स्कूल के आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको स्कैम करना चाहते हैं, उनसे भी लर्निंग या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बाकी कोई चीज़ें अपना फ़ोन नंबर ये कोई भी डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि ये तरीका है स्कैमर का कि छोटी सी छोटी डिटेल से आपको वो स्कैम कर सकते हैं। तो ये थी फ्रॉड की आज की बात. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी शो में, जिसपे हम बात करेंगे एक नए फ्रॉड के बारे में. ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: स्कैम अलर्ट.

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर। मैं हूं आपकी आरजे महविश और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर।
2: टॉपिक ऑफ द डे,
1: द एनर्जी शिफ्ट, रिन्यूएबल्स वर्सेस फॉसिल फ्यूल्स। ये है वो वक्त जब हमें सोचना है कि हम अपनी दुनिया को कैसे रोशन रखेंगे, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी। Today we are diving into why the world is moving towards solar and wind power, और हम सब कैसे इस चेंज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास है इस शो में कुछ एक्साइटिंग सेगमेंट्स, जैसे कि इंस्पायरिंग स्टोरीज, प्रैक्टिकल टिप्स और फन चैलेंज आपके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को ग्रीनर बना सकें। फॉलो करना ना भूलिएगा हमें FM 107 पे और अपना फीडबैक शेयर करें हमारे साथ ऑन आवर व्हाट्सएप @666-22107। तो चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एनर्जी का फ्यूचर, रिन्यूएबल वर्सेस फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल और गैस हमारी दुनिया को बहुत सालों से चला रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। कार्बन इमिशंस, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अब दुनिया एक नए रास्ते पर चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर और विंड पावर। सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। ऑयल, गैस और कोल, ये तीन चीजें पिछले 200 साल से दुनिया की इकोनॉमी का इंजन है। आज भी दुनिया की 80% से ज्यादा एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आती है। कार चलानी हो, फैक्ट्री चलानी हो या घर में एसी ऑन करना हो, सब कुछ ऑयल, गैस और कोल के दम पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, ये फ्यूल्स लिमिटेड हैं, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जब हम इनको जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस, और वही गैसेस बनाती हैं क्लाइमेट चेंज, यानी कि ज्यादा गर्मी, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, बारिशों का पैटर्न बदलना और सी लेवल का बढ़ना। आप सोचिए, एक तरफ दुनिया चल रही है ऑयल और गैस पर और दूसरी तरफ यही चीजें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे कि डॉक्टर आपको दवा दे भी रहा है और साइड इफेक्ट से आपकी सेहत भी खराब हो रही है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। ये एक नया रास्ता है जो दुनिया चूज कर रही है। रिन्यूएबल का मतलब ही है जो खत्म ना हो, जैसे सूरज की रोशनी, हवा का चलना, पानी का बहना, ये चीजें खत्म नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सूरज हर दिन निकलता है और उसकी रोशनी से हम बिजली बना सकते हैं। सोलर पैनल से आज दुनिया का नक्शा बदल दिया है। विंड एनर्जी, हवा चलती है तो बड़े बड़े टर्बाइन्स घूमते हैं और बिजली प्रोड्यूस होती है। फिर है हाइड्रो पावर, दरियाओं और पानी के जरिए एनर्जी बनती है इनके जरिए। जियोथर्मल और बायोमास देखें तो जमीन के अंदर से हीट लेना या ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। सबसे बड़ी बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, मतलब बिजली बनती है लेकिन हवा में स्मोक या पोल्यूशन नहीं जाता। और एक और अमेजिंग चीज, रिन्यूएबल एनर्जी अब चीप होती जा रही है। 10 साल पहले सोलर पैनल लगाना बहुत महंगा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है और कॉस्ट नीचे आ गई है। अब अगर हम कतर की एग्जांपल दें, तो यहाँ ट्रेडिशनली ऑयल और गैस इकोनॉमी का बैकबोन रहे हैं, लेकिन कतर समझ रहा है कि फ्यूचर सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करना नहीं हो सकता। इसी वजह से कतर ने एक मैसिव सोलर प्रोजेक्ट डेजर्ट के अंदर शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि हजारों घरों को बिजली मिल सकती है। सोचिए, एक डेजर्ट जो पहले खाली था, अब क्लीन एनर्जी का पावर हाउस बनता जा रहा है। और ये सिर्फ कतर की बात नहीं, सऊदी अरेबिया में न्यूम सिटी प्रोजेक्ट है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाने का प्लान है। यूएई में मजदार सिटी बन रहा है जो कि इको फ्रेंडली होगा। ये सब एग्जांपल्स दिखाती हैं कि गल्फ कंट्रीज जो पहले सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टर्स थे, अब क्लीन एनर्जी के लीडर्स बन रहे हैं। लेकिन लिसनर्स, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के भी चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो स्टोरेज प्रॉब्लम है। अगर रात हो जाए तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा। अगर हवा ना चले तो विंड टर्बाइन रुक जाएगा। तो एनर्जी को स्टोर करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बैटरीज की टेक्नोलॉजी अब इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी थोड़ी कॉस्टली है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, सोलर और विंड फार्म्स बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। सब मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पावरफुल है। ऑयल और गैस कंपनीज के इंटरेस्ट रिन्यूएबल के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन अगर चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं। साइंटिस्ट बेहतर बैटरीज बना रहे हैं, गवर्नमेंट्स सब्सिडीज दे रही हैं और पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, चाहे एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आए या रिन्यूएबल से, अगर हम उसे वेस्ट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। आपने नोटिस किया होगा, घर में लाइट्स जलती रहती हैं जब कोई रूम में नहीं होता। पुराने अप्लायंसेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसके साथ ही एसी अननेसेसरीली चलता रहता है, वाटर हीटर्स अननेसेसरीली ऑन रहते हैं। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बर्डन बन जाती है। कतर जैसे मुल्क में जहाँ गर्मी ज्यादा है, एसी बहुत चलते हैं। अगर हम एनर्जी एफिशिएंट एसी यूज करें और अननेसेसरी यूसेज अवॉइड करें तो हम बहुत बिजली सेव कर सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं दुनिया के ट्रेंड्स पर। पहले सबसे पहले यूरोप की बात करते हैं। जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन ने विंड और सोलर एनर्जी में बहुत इन्वेस्ट किया है। जर्मनी तो अपना हाफ से ज्यादा पावर रिन्यूएबल से जनरेट करता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया ने भी अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाई है और सोलर फार्म्स के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे स्टेट्स रिन्यूएबल्स के लीडर्स हैं। यानी कि दुनिया भर में एक रेवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन हर मुल्क की स्पीड अलग है। जो मुल्क फॉसिल फ्यूल्स पर हैवीली डिपेंडेंट है, उनके लिए ट्रांजिशन स्लो है। अब सवाल ये है कि हम जैसे इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट्स और बिग कंपनीज का काम है? जवाब है नहीं। हर छोटा स्टेप मैटर करता है। अपने घर में एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करना, सोलर पैनल्स लगाना अगर पॉसिबल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पोल यूज करना इंस्टेड ऑफ सिंगल कार्स राइड्स, अवेयरनेस स्प्रेड करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एनर्जी सेविंग की इम्पोर्टेंस बताना, ये सब चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो आइए एक टेबल की तरह कंपैरिजन करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस रिन्यूएबल्स। फॉसिल फ्यूल्स रिलायबल हैं, लेकिन पोल्यूटिंग और लिमिटेड। रिन्यूएबल्स क्लीन हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन स्टोरेज और कॉस्ट इश्यूज हैं। फ्यूचर किसका है? आंसर क्लियर है, रिन्यूएबल्स का। लेकिन ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होगी, एक जर्नी है जहां हमें फॉसिल फ्यूल्स ग्रेजुअली कम करने हैं और रिन्यूएबल्स बढ़ाते जाना है। लिस्टनर्स, इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां सिटीज सोलर एनर्जी पर चल रही हैं, कार्स इलेक्ट्रिक हैं, हवा साफ है और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये रियलिटी बन सकती है अगर अभी से हम सब एक्शन लें। रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। नई जॉब्स मिलेंगी, नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी और मुल्क अपनी रिसोर्सेज पे डिपेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग ऑयल। कतर जैसे मुल्क अगर रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सिग्नल है कि दुनिया का फ्यूचर ग्रीन एनर्जी में है। तो लिसनर्स, फॉसिल फ्यूल्स ने हमें 200 साल तक सर्व किया, लेकिन उनकी लिमिट अब आ गई है। अब वक्त है कि अब हम नए रास्तों पर चलें, रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करें, एनर्जी वेस्टेज को कम करें और अपनी जिंदगी को सस्टेनेबल बनाएं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, ये हमारी जनरेशन का मिशन है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे स्टेप्स लें तो एक दिन आएगा जब हमारी दुनिया पोल्यूशन फ्री होगी और एनर्जी क्लीन होगी। सो लेट्स बी द चेंज, एनर्जी का फ्यूचर हमारे हाथ में है। एक दफा आखिर में फिर बात करते हैं कि क्यों है ये शिफ्ट इतना जरूरी। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस बिजली बनाते हैं बिना किसी हार्मफुल इमिशंस के। दूसरा, ये रिसोर्सेस खत्म नहीं होते, सूरज की रोशनी और हवा हमेशा रहेगी जबकि ऑयल और गैस एक दिन खत्म हो सकते हैं। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी अब पहले से ज्यादा अफोर्डेबल हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और कॉस्ट कम हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स हियर इन कतर। यहाँ के सोलर प्रोजेक्ट्स बहुत इंस्पायरिंग है। एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट डेजर्ट में बन रहा है जो हजारों घरों को क्लीन एनर्जी देगा। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कतर जैसे मुल्क जो पहले ऑयल और गैस पे डिपेंड करते थे अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, एनर्जी वेस्टेज का। रोजाना जिंदगी में हम देखते हैं कि कितनी बिजली वेस्ट होती है। मसलन घरों पे लाइट्स ऑन रहती हैं, कोई रूम में नहीं होता, या पुराने अप्लायंसेस ज्यादा बिजली खाते हैं तो इनको भी रिप्लेस करना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें एड अप होती रहती हैं और एनवायरनमेंट पर बोझ बन जाती हैं। सो कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे पहले पहला स्टेप है अवेयरनेस का, अपने एनर्जी यूसेज को समझना और उसे कम करना। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना।

चाहे वो घर में सोलर पैनल्स लगाना हो या एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना हो, हर छोटा स्टेप काउंट करता है और हम सब मिलकर अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं ग्रीन फ्लैश के साथ।

0: जी दोस्त फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 पे शो सस्टेन द फ्यूचर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माबिश खान। अब चलिए सुनते हैं ग्रीन फ्लैश, जहां हम दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी की लेटेस्ट खबरें लेकर आते हैं।
1: ग्रीन फ्लैश,
0: आज हम बात करेंगे तीन बड़ी कहानियों के बारे में जो रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को हाईलाइट करती हैं। पहली खबर, एक मुल्क ने सबसे बड़ा सोलर फार्म लॉन्च किया है जो 2 मिलियन घरों को क्लीन एनर्जी दे रहा है। ये सोलर फार्म डेजर्ट के वाइड एरिया में स्प्रेड है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये क्लाउडी डेज पर भी काम करता है। दूसरी खबर है, एक और मुल्क ने विंड एनर्जी में रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ऑफशोर विंड फार्म्स बनाए हैं जो समंदर के अंदर टरबाइन से बिजली पैदा करते हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ क्लीन एनर्जी देता है बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लिए भी जॉब्स क्रिएट करता है। तीसरी खबर, एक सिटी ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया है। अब उनकी बसेस और ट्रेन सोलर और विंड पावर से चलती हैं, जो एयर पोल्यूशन को ड्रामेटिकली कम कर रहा है। इन तीनों स्टोरीज से एक बात तो साफ है, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है और हमें भी इस रेस में शामिल होना होगा। अब हम चलते हैं ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट के सेगमेंट में, जहां हम देखते हैं कुछ कटिंग एज आइडियाज जो फ्यूचर को शेप कर रहे हैं।
1: ग्रीन इनोवेशन,
0: आज हम बात करेंगे एक गेम चेंजर के बारे में, फ्लोटिंग सोलर फार्म्स। फ्लोटिंग सोलर फार्म्स ये क्या होता है? फ्लोटिंग सोलर फार्म्स वो सोलर पैनल्स होते हैं जो पानी के ऊपर जैसे लेक्स या रिजर्वर्स पर फ्लोट करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये लैंड का स्पेस नहीं लेते और पानी के साथ रहने से पैनल्स कूल रहते हैं, जो इनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। एक मुल्क ने तो अपने रिजर्वर्स पर इतने बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बनाए हैं कि वो हजारों घरों को पावर दे रही हैं। ये टेक्नोलॉजी दिखाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। चाहे डेजर्ट हो, समंदर हो या लेक हो, हम कहीं भी क्लीन एनर्जी पैदा कर सकते हैं। Isn't that exciting? चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो आप अपनी रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर लाइफ ग्रीनर। आज का टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये रही कुछ आसान सी टिप्स।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: अगर आपके घर में स्पेस है तो रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने के बारे में सोचिए। ये ना सिर्फ आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करेंगे बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। कतर में अब सोलर पैनल्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो जरूर चेक कीजिए। अपने घर के पुराने बल्ब्स को LED बल्ब से रिप्लेस कीजिए। ये 80% कम एनर्जी यूज करते हैं और ज्यादा देर तक चलते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, बड़ा इम्पैक्ट। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे TV, कंप्यूटर और AC को एनर्जी सेविंग मोड पर रखें। ये छोटी सी आदत आपकी एनर्जी कंजप्शन को काफी कम कर सकती है। तो आज से ही इन टिप्स को अपनाइए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को छोटा कीजिए।
1: Voices of the Planet.
0: और अब वक्त हुआ है Voices of the Planet का। आज सुनेंगे हम Voices of the Planet में जो आवाज, वो होगी बिल मैककेबन की। और ये बात कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से कि रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर कितना ब्राइट है और हम कितना होपफुल हो सकते हैं। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज में कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
2: Daily average temperature of the planet. We have enough weather buoys and satellites and meteorological stations that we can average out the temperature every day around the Earth and give a number. And that number really spiked for the first time in late June, early July of 2023. The world is always hottest on average at the solstice in the Northern Hemisphere because there's more land mass here. And those days were the hottest days, scientists told us, that they'd ever measured. our measurements go back a couple hundred years, but scientists are good at building proxy records that go back much, much further. Glacial sediments, lake cores. Talk to Kurt Steger if you
0: want. Hey listeners, अभी आपने सुना Will McCabin को और यकीनन आप भी मेरी तरह बहुत ही इंस्पायर भी हुए होंगे और होपफुल भी होंगे. अगर आप भी इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा @666-22107. और अब हम आ गए हैं अपने टेक अवे चैलेंज सेगमेंट पर. हर हफ्ते हम आपको एक छोटा सा सस्टेनेबिलिटी चैलेंज देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसे ट्राई करेंगे.
1: वीकली चैलेंज.
0: इस हफ्ते का चैलेंज है स्विच टू एलईडी लाइटिंग. एक हफ्ते के लिए अपने घर के कम से कम 3 बल्ब्स को एलईडी बल्ब से रिप्लेस कीजिए. ये ना सिर्फ एनर्जी सेव करेगा बल्कि आपके बिल में भी कमी लेकर आएगा. अगले हफ्ते के शो में हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया. सेंड अस योर स्टोरीज ऑन व्हाट्सएप @666-22107 और टैग अस ऑन सोशल मीडिया @FM107 कदर. और अब इसके साथ हम आज के शो को यहीं खत्म करते हैं. शुक्रिया आप सबका सस्टेन द फ्यूचर के साथ वक्त गुजारने के लिए. अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक और एक्साइटिंग टॉपिक पर, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टिंग नेचर्स बैलेंस. हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग स्पीशीज हमारे प्लैनेट के लिए जरूरी है और कैसे हम अल्थकीरा के मैंग्रोव्स जैसे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो अगले संडे को हमसे जरूर मिलिएगा और तब तक के लिए कीप इट ग्रीन, कीप इट सस्टेनेबल. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय.
1: सस्टेन द फ्यूचर. आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, देसी।
3: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
5: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

चाहिए। हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़े करते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर उसका गजब है और उनके लिए सख्त आजाब है। वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीजान नाजिल की है। और तुम्हें क्या खबर, शायद के फैसले की घड़ी करीब ही आ रखी हो। जो लोग उसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो उस पर ईमान रखते हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जो कुछ चाहता है देता है और वो बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं।